0: का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: महर्षि उड़िया बाबा को भी एक उपासक ने प्रश्न किया था कि महाराज जी मन कैसे रुके, तो उड़िया बाबा ने उत्तर दिया नियम पालन से। यदि हम नियम पर दृढ़ रहें तो मन हमारा क्या कर सकता है, नियम तो परमात्मा देखता है, हम लोग नियम पर दृढ़ नहीं रहते, इसी से हमारे देश की दुर्दशा है। संध्या वंदन तक का नियम जाता रहा है, भजन करने के लिए नियम की बड़ी आवश्यकता।
2: हाँ, बड़े नियम की आवश्यकता है। तो जैसे प्रातः काल से सायंकाल तक की हर व्यक्ति की अपनी एक दिनचर्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हम 4 बजे उठे, कल 7 बजे उठे, पर फिर मन को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मन के लिए एक दिनचर्या होनी चाहिए कि हमको 10 बजे सोना है, 4 बजे उठ जाना है, तो फिर 4 से 4:15 नहीं होना चाहिए, 4 बजे उठ जाना, ऐसा नियम बना ले। और उठ करके हमको थोड़ी देर नाम जप करना है, थोड़ी देर हमें वाणी जी का गायन करना है, थोड़ी देर हमें ध्यान, एक अपनी दिनचर्या। फिर हम अपने संसार के कार्य के नियम, जो संसार के कार्य हैं, उनको भी करते हुए भगवान को समर्पित करें। जैसे जो पद में है, जो आपको राष्ट्र सेवा मिली है, जो आपको समाज सेवा के पद मिले हैं, या आपको जो घर की सेवा के कार्य मिले हैं, उनमें बहुत धर्म पूर्वक आचरण होना चाहिए। अगर आप अधर्म आचरण करते हैं, अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, तो आप सुबह जग करके थोड़ा माला चला लीजिए, फिर भी आपका कल्याण नहीं होगा, क्योंकि आप अपने पद का, अपने सेवा का दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे हम जानते हैं कि अधर्माचरण है, ये अधर्मी है, हमें पता है दोषी है, और वो हमको कुछ धन दे देता है, और हम उसको मुक्त करवाने की बात सोचते हैं, और जो निर्दोष है उसको फंसा देते हैं। अब तुम चाहे जितना माला चलाने की कोशिश करो या दान पुण्य करो, वो तुम्हारा अधर्म आचरण, वो अधर्म का धन तुम्हें सतमार्ग में नहीं जाने देगा। नियम लेना चाहिए कि जिस पद में है, जिस धर्म में है, जिस कर्तव्य में है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होंगे। जितना जब महान है, उतने कर्तव्य महान है। दोनों बातें समझना है। जब माला फेरा और इसके बाद बेईमानी, अधर्माचरण, इनका कोई नियम नहीं है कि हमें कैसे चलना है, तो वो माला काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका तभी सत्य भाव माना जाएगा माला जपला, जब धर्माचरण है, धर्माचरण नियम से। बोले वो बड़े कट्टर नियम वाले हैं, उनको घूस नहीं, आप उनको भयभीत करके नहीं काम करवा सकते, प्रलोभन में काम नहीं करा सकते। ये हमारी गृहस्थी है ना, तो गृहस्थी के पालन के लिए धन चाहिए, और धन के लिए हम धर्म को आगे रखें, धन को नहीं, धर्म को। हमारा कर्तव्य क्या, प्रायः जैसे पूज्य बाबा ने कहा, आज हमारे देश में
1: बहुत दुर्दशा हो रही है,
2: दुर्दशा हो रही, क्यों? क्योंकि सब अपनी जगह से गलत हो रहे हैं। अगर अपनी जगह हम ठीक रहे तो हमारी दुर्दशा नहीं होगी, हमारा भजन कम होगा, लेकिन हम धर्म से चल रहे हैं तो हम विजयी होंगे, हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो कार्य मिला है वो भगवान का ही कार्य, सृष्टि भगवान का कार्य। जैसे नए बच्चे कुछ वकालत पढ़ रहे थे, तो यहाँ के प्रश्न किया था कि हम जानते हैं कि वो दोषी नहीं है, हम जानते हैं कि वो दोषी है, पर दोषी हमें पैसा दे रहा है, तो हम वकालत पढ़ी इसीलिए, हम उसको जिताएंगे, तो क्या कोई पाप है? तो उनका खुला पाप है। बोले नहीं, हमारी कोई ऐसा कंपनी दो, ऐसा कुछ बोले कि हमारी कंपनी को ये सिखाया जाता है, तो हमको तो ये करना ही होगा, अगर नहीं करेंगे तो हमारी वकालत का मतलब क्या रहा? तो नहीं, वकालत का मतलब अधर्मी को मुक्त करवाना नहीं है, वकालत का मतलब अधर्मी के सबूत एक

0: एकत्रित करके उसको दंड दिलवाना है और धर्मात्मा को मुक्त करवाना है। अब इसके लिए आपके पास अर्थव्यवस्था अगर कमजोर भी है तो धर्म व्यवस्था आपकी पूरी है। धर्म व्यवस्था ठीक है तो परिवार स्वस्थ रहेगा, सुखी रहेगा, भगवान आप पर प्रसन्न रहेंगे। अच्छा, फिर हमने तर्क रखा कि जैसे आपकी बहन के साथ कोई गलत व्यवहार करे, आपको पता है, और वो आपको 10 लाख रुपया घूस दे तो क्या आप उसका पक्ष लेंगे? नहीं, तो फिर दूसरी बहन के साथ किया है। अब यहां विचार करना है ना, अपने भाई का अगर कत्ल किए हो, मुझे पता हो कि ये दोषी है, तो क्या हम पैसे से उसको मुक्त करने देंगे? लगेगा कि जान की बाजी लगा देंगे और तुम्हें हम ऐसे ही एक गरीब आदमी की किसी ने हत्या की है, तो आपका पक्ष बनता है। पर यह ज्ञान कहां मिलेगा? बिना अध्यात्म के ये ज्ञान तो मिलेगा नहीं। ज्ञान तो इस बात का मिला कि कैसे पैसा कमाया जाए। अच्छा, वो पैसा यदि अधर्म से आया है तो आपकी दुर्दशा कर देगा, आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। तो जो बाबा कह रहे हैं कि आज हमारे समाज की बड़ी दुर्दशा हो रही, उसका कारण यही है कि हमें अध्यात्म का ज्ञान नहीं, हमें धर्म का ज्ञान नहीं, और बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती है। बिल्कुल पता है आदमी निर्दोष है और हम धन के प्रभाव से उसको दंड दे देते हैं। वो दंडा भगवान जब आपको पलट कर देंगे तो आप सह नहीं पाओगे, उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। तो इसलिए समाज को चाहिए अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए एक नियमावली बना ले। जैसे कुछ दुकानों का नियम होता है कि वहां फिक्स रेट होता है, नहीं होता? वहां ये नहीं चलेगा कि कसम से कहते हैं कि तुम्हें हम अपना जान करके कि 100 रुपया मीटर ये मिला है, हम बिल्कुल मुनाफा नहीं ले रहे। नहीं, झूठ क्यों बोल रहे हो? दुकान खोले हो मुनाफा के लिए, झूठ क्यों बोल रहे हो? नहीं लेंगे मुनाफा, हम जितने का लाए उससे मुनाफा लेंगे, पर 120 रुपया मीटर देंगे, कपड़ा बढ़िया है, नाप फिट है, इससे नीचे नहीं उतरेंगे, हमें सफाई देने की जरूरत नहीं है कि हम कसम खाते हैं या ऐसा। हम जानते हो ये बिजली है, दुकान है, नौकर लगे हैं, तो इसका मुनाफा लेने के लिए दुकान खोलें, कोई दान करने के लिए तो नहीं। तो सबको पता है मुनाफा लेगा, लेकिन एक फिक्स दाम, उसे 10-20 रुपया का मुनाफा लेकर के हम उसको बेच रहे हैं। लेकिन झूठ क्यों बोले? बोले झूठ के बिना धंधा नहीं चलता, नहीं ऐसा नहीं है। अब असत्य बोलोगे तो उससे जो आपको मुनाफा मिलेगा वो आपकी बुद्धि भ्रष्ट करेगा, और सत्य है कि मुनाफा के लिए है वही चीज, और आप एक फिक्स रेट में दे रहे हैं, बढ़िया है। अब अगर आप कोई मिलावट करके भोजन सामग्री दे रहे हैं, आपको पता है, तो जो खाने वाले के हृदय में बैठे हुए भगवान है वो तुम्हारे जीवन में मिलावट कर देंगे, तुम्हारा जीवन महान दुखमय हो जाएगा। ये कहां समझा जाता है? एक आदमी सिंथेटिक दूध बना रहा है, उससे कहो ये अपने बच्चे को पिला, नहीं पिलाएगा। फिर ये दूसरे का बच्चा जब पिएगा तो उसकी हालत क्या होगी? दूसरे शरीर में जाएगा तो हालत क्या होगी? वो केवल धन की बुद्धि रख रहा है। एक आदमी घी में केमिकल मिला रहा है, एक ऐसे अभक्ष पदार्थ मिला है, वो स्वयं नहीं खाएगा लेकिन वो होटलों में भेजा जाएगा, हजारों लाखों लोग खाएंगे, बीमारी बढ़ेगी, उसको रुपया से मतलब है। ये चीज, ये दुर्दशा हर जगह धर्म का ज्ञान न होने के कारण फैल रही, नहीं फैल रही। एक मरीज बीमार है, असली दवाओं में पैसे ज्यादा है, नकली दवा लेकर के असली के दाम में बेच देना, उसको बिल्कुल फायदा ना होना, लेकिन परमात्मा देख रहा है, तुम जानते हो नकली दवा है। वो तो नहीं जानता बेचारा, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, किसान आदमी गांव का आया है, तुमने दे दिया और उसने पैसा दिया असली के, अब वो पैसा तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट करेगा, तुम्हारे परिवार में कलह पैदा करेगा और तुम्हारा पतन कर देगा। ऐसे हर डिपार्टमेंट में, हर विषय में यदि हम अपने धर्म से चले, अपने सत्य से चले, और थोड़ा भी भजन होगा वो आपको उत्तम गति प्रदान करेगा। पर ऐसा कहां समझ में आ रहा? अध्यात्म के बिना भला ऐसा समझ में आएगा? तो इसीलिए कह रहे हैं हमारे देश की दुर्दशा हो रही। पूर्वजों में पहले यह था कि हमारा धर्म नहीं जाना चाहिए चाहे प्राण चले जाएं, हमारा चरित्र नहीं जाना चाहिए चाहे सर्वस्व नष्ट हो जाए, आज इसकी कोई परवाह नहीं। तो उसी से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जीवन एक पशुवत आचरण वाला हो जाता है, और वो अपने को बड़ा सुखी समझने लगते हैं कि हमारे पास बड़ा वैभव है। लेकिन प्यारे, उस दिन को याद करो जिस दिन तुम्हारा आखिरी समय होगा, ना तुम्हारा फार्म हाउस जाएगा, ना महल तुम्हारा जाएगा, ना बैंक बैलेंस जाएगा, ना कोई व्यक्ति, और ना ये शरीर, अब तुम्हारे कर्म तुमको भोगवाएंगे। उस समय की कौन याद करता है? अगर उस समय की याद हो तो भय लग जाए कि नहीं नहीं पाप नहीं करूंगा, क्योंकि जाना है यहां से। अच्छा कब जाना कुछ पता लगे, किसी भी समय ट्रांसफर हो सकता है इस शरीर से। तो हमें लगता है कि महापुरुषों के जो वचन है कि हमें एक नियम से जीवन जीना चाहिए, धर्म पूर्वक जीवन जीना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, जो हमारे लिए कर्तव्य। आज प्रायः धन प्रधान बुद्धि होने के कारण कर्तव्य स्वभाव हो रहा है। एक विद्यालय में विद्यार्थी के लिए जो गुरु पद में बैठा है उसका क्या कर्तव्य है? वो अपने कर्तव्य को भूला हुआ है। भला छोटे छोटे विद्यार्थियों को जिनकी नींव पूरे राष्ट्र सेवा में समाज सेवा में बन सकते हैं, अगर उनको हम सही शिक्षा नहीं दी तो उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। अगर उनको हम गलत सपोर्ट कर दिए तो उनका पूरा जीवन बर्बाद, क्योंकि नया जीवन है। और जगह जगह अपने अपने कर्तव्यों का यदि पालन किया जाए तो पूरा समाज सुखी हो जाए। लेकिन कर्तव्यहीनता आ रही, कोई अपने कर्तव्य को नहीं समझ रहा है। तो यही बात महापुरुष जनों को दुख लगता है कि अगर सब अपने कर्तव्य का पालन करें, धर्म का पालन करें, भगवान का नाम जप करें तो सब सुखी हो जाए। सुख सब चाहते हैं और आचरण दुख वाले करते, इसीलिए सुख नहीं मिल रहा है, परिणाम में हमें दुख मिल रहा है। सच्ची मानना वो रुपया पूरे परिवार में अशांति पैदा कर देगा। और धर्म पूर्वक 100 रुपया लाओगे और 4-5 परिवार के बैठ के नमक रोटी खाओगे, आनंद से सोओगे, बड़ा प्यार रहेगा, भगवान की कृपा रहेगी, पर ये बात समझ में नहीं आती है। तो ये वृत्ति अगर छोड़ी ना जाएगी तो कुछ भी कर लो, कहीं भी दान पुण्य कर लो, लाभ नहीं मिलेगा। अगर दान देने की बात कही गई है तो धर्म पूर्वक कमाए हुए धन से। अगर आप मेहनत से कमाए हो ना, 10 रुपया दे दोगे ना तो 10 रुपये का वो आटा लाके अगर 2 रोटी खाएगा तो खूब वजन होगा। वो आप 1,00,000 रुपया बेईमानी कर रख दोगे ना तो बैठे बैठे वो गंदा ही सोचेगा, वजन ले होगा। उसका गंदा सोचना और आपका गंदा करना दोनों मिल करके, उसके कारण भी तो आप बने ना, तो आपका ही पतन हो जाएगा। उसको तो भगवान बचा लेंगे क्योंकि भगवान की शरण में है। तो मुझे लगता है अधर्म के धन से कभी किसी को लाभ नहीं मिलता। तो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए यदि नाम जप किया जाए तो बहुत जल्दी हमको लाभ प्राप्त हो जाए। बहुत सुंदर मतलब ये चर्चा होती है, अगर आप लोग इसको धारण कर ले तो निहाल हो जाएंगे। सच्ची कह रहे, ये जो बातें हैं ये बहुत सुंदर जीवन को पुष्ट करने वाली हैं, पर आप धारण कर लें तो बात है। नहीं नहीं तो जैसे लाभ दिखाई दे रहा 50,000, तभी बातें भूल जाओगे, ये बातें अच्छी नहीं लगेंगी। हे यार बहुत बढ़िया काम घर में आएगा, पर हमारी ये बात ध्यान रखना, 50,000 घर में अशांति पैदा कर देगा। सच्ची मानना आप धर्म से चलना, धर्म से चलोगे तो भगवान तुम्हारी रक्षा में रहेंगे। अधर्माचरण देखो कैसी कैसी घटनाएं होती हैं। बढ़िया कार है, फिल्मी गाना लगाए चल रहे हैं और वो एक्सीडेंट हुआ, आग लग गई, बाहर निकली नहीं पाए, वो अंदर ही जल गए। क्या हुआ? ये करोड़ों रुपए की कार भूंज दिया तुमको अंदर ही बैठा के, धू धू करके आग लग गई, अंदर जल। ए ऐसे जलना चाहते हो या भगवान के आनंद में चिंतन करके शरीर छोटे हो, फिर दाह संस्कार हो ऐसे कि सब लोग भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए जा रहे, फिर आपका अंतिम संस्कार, वहां जीवित जल गए। क्या हो सकता है? एक एक पल तुम्हारे कर्म का हिसाब होगा, एक एक सेकंड का। हे ऐसे कर्म करो कि हमारा अच्छा हिसाब हो, बुरा हिसाब। ये मत समझो कोई देख नहीं रहा, वो देख रहा है जिसको हिसाब कर रहा है, वो देख रहा है। उसके लिए कोई वकील या किसी सबूत की जरूरत नहीं होती, वो सर्वांतरयामी आपके अंदर बैठे ही देख रहा है। तो सदैव जैसे सत्संग सुन रहे हैं तो अगर हाथ जोड़ के प्रार्थना है, थोड़ी भी बात मान लोगे तो आप सच्चे सुख के मार्ग में चलने लगोगे। नहीं तो भाई बहुत गंदी हवा चल रही है, माया की बहुत गंदगी ऐसी फैल रही, कलिकाल है ना, कि ये बातें किसी को पसंद नहीं आती। वो बात बताओ कि हम कितना रुपया कमा ले, कैसे कितने भोग भोग ले, और वो अध्यात्म में नहीं है। आपको सच धोखे में मत रहना, अध्यात्म में है। जितना आप धर्म से चलोगे उतना सुखी होगे, और लोक में है जितना धन मिल जाएगा उतना सुखी माना जाएगा। लेकिन वो सुख नहीं है, वो चंद मिनट के लिए हाइलोजन की तरह जलेगा, फ्यूज हो जाएगा। और धर्मात्मा दीपक की तरह जलेगा पर बहुत काल तक चलता रहेगा। इन बातों का चिंतन कीजिए, खूब नाम जप कीजिए और भगवान के भरोसे रहिए, गंदे आचरण मत कीजिए।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: चित्रकूट जाते हुए श्री राम के राज्याभिषेक के लिए गुरु की आज्ञा पाकर भरत जी पवित्र तीर्थों का जल ले गए थे, किंतु वहां से श्री राम के स्थान पर वो केवल उनकी पादुका लेकर ही लौट सके। अब उस पवित्र जल की समस्या थी, जिसे किसी उचित स्थान पर तिरोहित करना था। चित्रकूट की सभा में भरत जी के सभी संशयों के समाधान के पश्चात अत्रि मुनि के परामर्श के अनुसार तीर्थों के पवित्र जल की स्थापना उस अगम कूप में की गई, जो निकट के पर्वत के समीप ही था। छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि ऋषि तथा अन्य साधु संतों समेत भरत जी उस अनादि स्थल पर पहुंचे, जो कालक्रम में लोप हो गया था। इसी कारण किसी को उस कुएं का पता भी न था। सेवकों ने पवित्र जल रखने के लिए उस जलयुक्त स्थान पर एक विशेष कूप का निर्माण किया। अत्रि ऋषि ने भविष्यवाणी की कि लोग इसे भरत कूप की संज्ञा देंगे। ऋषि ने उस स्थल विशेष की महिमा श्री राम को भी सुनाई। अपने समग्र समाज सहित भरत तथा शत्रुघ्न ने चित्रकूट के उस वनखंड का विचरण करके प्रकृति की छटा का सुख प्राप्त किया।

भरत के पीछे पीछे अयोध्या और जनकपुर से आए स्वजनों की विदा होने का करुण अवसर है। सबको विदा करने का अच्छा दिन है, ऐसा जानकर भी श्री राम को उनसे कुछ कह सकने में संकोच होता है। उपस्थित समाज उनके इस शील के सम्मुख नतमस्तक है। श्री राम की मनोदशा से भरत को अपनी उद्गार निवेदित करने की प्रेरणा मिलती है। अग्रज ने उनकी हर रुचि को मान दिया है, किंतु भरत ये सोचकर व्यथित हैं कि उनके कारण श्री राम, लक्ष्मण तथा जनक नंदिनी ने कितने संताप और कष्ट सहे हैं। अतः अब वो आज्ञा मांगते हैं और जिस प्रकार के आचरण से उन्हें श्री राम के चरणों के दर्शन फिर प्राप्त हों, ऐसी सीख की याचना भी करते हैं।

अयोध्या वासियों सहित राजा जनक के चित्रकूट से प्रस्थान करने की वेला आ पहुंची है। भरत के भक्ति तथा समर्पण भरे वचन सुनकर श्री राम गदगद हो गए। विदा करते हुए वो भरत को पावरी देना चाहते हैं, किंतु संकोच होता है। क्षणिक सोच विचार के पश्चात गुरुजन तथा बड़ों की उपस्थिति का संकोच त्याग कर उन्होंने भरत को अपनी चरण पादुका दे दी। भरत ने खड़ाओं की जोड़ी को सिर पर धारण किया।

0: तो भौजी आज सुबह से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395651 या 97-0-97-06-575।
7: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
8: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
9: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
10: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
11: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
9: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
8: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
9: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
11: कॉल करे 87-894-18-744।
8: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
12: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स।
9: BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
11: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
9: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
11: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
9: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
11: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
9: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
11: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
9: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
11: सिवान ब्रांच में 9942071405, मेरवा ब्रांच में 8207856403।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
3: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बाल मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
4: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
4: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
7: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
8: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
7: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
8: अच्छा तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
7: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
9: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
10: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
9: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
10: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
9: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
10: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
11: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
12: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
11: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
12: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399।

0: जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
1: यहाँ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9939365923।
3: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
4: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
5: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
4: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
6: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
7: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
8: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयां भी मिलती हैं।
9: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434403।
10: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
11: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
10: आज ही संपर्क करें 7388894 या 9198886973।
12: मैंने

0: सब।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
3: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
3: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
3: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902। नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
3: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
2: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंतोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
2: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
3: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
2: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
3: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
2: बोलबम, हर हर महादेव।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
3: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
4: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
3: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
0: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
3: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
3: और 90971-6602।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
6: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
7: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
6: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
7: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
6: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
7: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
6: संपर्क करें 84710-3992 या 97-65-65-750।
8: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल, सखी वार्ता के तहत बच्चियों को किया गया जागरूक, जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा, मारपीट की घटना पर सफाई कर्मियों ने किया हड़ताल, सदर SDO ने भैंसही पंचायत का किया औचक निरीक्षण, 20 जुलाई से पठानकोट के लिए शुरू हो रही है साप्ताहिक ट्रेन सेवा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। महिला एवं बाल विकास निगम कार्यालय के द्वारा जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को लेकर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में उच्च माध्यमिक विद्यालय हथुआ के सौरेजी में एक बैठक की गई, जिसमें छात्र छात्रों के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत सखी वार्ता सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत लक्ष्य के अनुसार सुयोग्य लाभुकों को पहला बच्चा होने पर 5,000 और दूसरी बच्ची पर 6,000, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लाभुकों का पंजीकरण पर 2,000+1,000, ICDS द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत ड्रॉप आउट बच्चियों को चिन्हित कर उनकी सूची तैयार करना तथा प्रत्येक माह में एक बार बेटी जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन करने पर भी निर्णय लिया गया। इस दौरान हेडमास्टर की अध्यक्षता में छात्र छात्रों के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत ड्रॉप आउट बच्चियों को भी चिन्हित कर उनकी सूची तैयार करने की बात कही गई। बाल विवाह रोकथाम हेतु घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, साइबर सुरक्षा तथा अन्य योजनाओं के बारे में भी बच्चियों को जागरूक किया गया और सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर जिसमें 1811121930 और 1098 के बारे में भी जानकारी दी गई। जिलाधिकारी समीर सौरभ की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की मासिक समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के प्रगति पर विस्तृत समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने तथा स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में उप विकास आयुक्त गौरव कुमार, सिविल सर्जन गोपालगंज, कार्यक्रम प्रबंधक धीरज कुमार और सभी प्रखंडों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक, सामुदायिक उत्प्रेरक एवं प्रखंड अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सहायक भी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने भव्य पोर्टल की समीक्षा की, अस्पतालों की रैंकिंग, डॉक्टर परामर्श, मरीजों के वाइटल रिकॉर्ड, औसत प्रतीक्षा समय, बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन, डाइट एवं चिकन, लिनेन एवं लॉन्ड्री तथा आशा कार्यकर्ताओं की सक्रियता पर भी विस्तार से समीक्षा की गई। बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्वास्थ्य संस्थानों की सराहना करते हुए कमजोर प्रदर्शन वाले संस्थानों को सुधार लाने का निर्देश दिया गया। HMIS की समीक्षा के दौरान गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण, प्रथम तिमाही में ANC, TD टीकाकरण, आयरन, फोलिक एसिड वितरण, संस्थागत प्रसव सहित मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से जुड़े सभी संकेतकों की समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी ने सभी प्रखंडों को निर्धारित लक्ष्य की 100% उपलब्धि सुनिश्चित करने तथा प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्रों पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। गोपालगंज शहर के थामे रोड स्थित हलखोरी शाह के पोखरा के पास नाले की उड़ाही के दौरान सफाई कर्मियों के साथ कुछ स्थानीय लोगों का विवाद हो गया था। बताया जा रहा है कि इस दौरान कुछ लोगों ने सफाई कर्मियों के साथ मारपीट की थी। इसके बाद अब सफाई कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कार्य का बहिष्कार कर दिया। इसको लेकर सफाई कर्मियों ने विरोध करने के बाद महिला थाने में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। कर्मियों का आरोप है कि अब तक पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इसको लेकर शहर में विरोध मार्च भी निकाला गया और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक सफाई कार्य का बहिष्कार करने की बात कही गई। सफाई कर्मियों ने स्पष्ट कहा कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक नगर परिषद क्षेत्र में सफाई कार्य बाधित किया जाएगा। इस फैसले से बरसात के मौसम में शहर की स्वच्छता व्यवस्था पर बुरा हाल पड़ सकता है। हालांकि वरिष्ठ पदाधिकारी इस मामले को सुलझाने के लिए लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस मामले में नगर परिषद ने मध्यस्थता की पहल भी की है। बताया जा रहा है कि नगर परिषद की जमादार पिंकी कुमारी ने कहा है कि बरसात के दौरान नियमित रूप से नालों और सड़कों की सफाई की जा रही है। वहीं कार्यपालक पदाधिकारी अजय कुमार ने कहा कि दोनों पक्षों को बातचीत के लिए बुलाया गया है और मामले का जल्द ही समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जिला पदाधिकारी समीर सौरभ के निर्देश पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी अनिल कुमार ने माझा प्रखंड के भैंसही पंचायत का निरीक्षण किया। इस दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जमीनी हकीकत का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान वार्ड संख्या 7, 8, 9 और 12 में संचालित हर घर नल योजना का निरीक्षण कर पेयजल आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की गई तथा अधिकारियों को योजना सुचारू रूप से संचालित करने के निर्देश दिए गए। इसके बाद प्राथमिक विद्यालय का भी निरीक्षण किया गया। विद्यालय तक पहुंचने वाले रास्ते तथा विद्यालय की चहारदीवारी से संबंधित समस्याओं का भी अवलोकन कर संबंधित विभाग को आवश्यक कार्रवाई के लिए और शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी ने जन वितरण प्रणाली के दुकान का भी निरीक्षण किया। खाद्यान्न वितरण व्यवस्था, लाभार्थियों को मिलने वाली सुविधाएं, अभिलेखों की जाँच और पारदर्शिता के साथ नियमित वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थिति का भी जायजा लिया गया। जहां आवश्यक मरम्मत एवं रख रखाव की जरूरत पाई गई वहां संबंधित एजेंसी को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए गए। सारण तटबंध का भी निरीक्षण कर बाढ़ पूर्व तैयारियों, तटबंधों की सुरक्षा व्यवस्था एवं रख रखाव कार्यों की समीक्षा की गई। संबंधित अधिकारियों को तटबंध की नियमित निगरानी करने तथा किसी भी प्रकार की क्षति की सूचना तत्काल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। थामे रेल खंड पर अब यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। रेल प्रशासन ने छपरा पठानकोट छपरा साप्ताहिक विशेष ट्रेन के संचालन की घोषणा की है। यह ट्रेन 20 जुलाई से 28 सितंबर तक छपरा से प्रत्येक सोमवार तथा 22 जुलाई से 30 सितंबर तक पठानकोट से प्रत्येक बुधवार को कुल 11 फेरों के लिए चलाई जाएगी। जिले के प्रमुख रेलवे स्टेशन थामे पर इस ट्रेन का ठहराव दोनों दिशाओं से आने वाली गाड़ियों के रूप में होगा। जिले के यात्रियों को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब की यात्रा के लिए अब सीधी रेल सुविधा मिलेगी। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वाराणसी सुमित कुमार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार गाड़ी संख्या 051-93 छपरा से पठानकोट साप्ताहिक विशेष गाड़ी प्रत्येक सोमवार को छपरा से दोपहर 2 बजे प्रस्थान करेगी। यह गाड़ी छपरा कचहरी से दिघवा दुबौली होते हुए थावे स्टेशन पर शाम 5:05 पर पहुंचेगी। इसके बाद तमकुही रोड, पड़ौना, कप्तानगंज, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, लक्सर, रुड़की, सहारनपुर, जमुनानगर, जगाधरी, अम्बाला, केंट, लुधियाना और जालंधर केंट होते हुए अगले दिन रात को 10:15 पर पठानकोट पहुंचेगी। वापसी में यह गाड़ी 051-94 नंबर की गाड़ी बनकर पठानकोट से छपरा के लिए प्रत्येक बुधवार को रात 12:30 पर पठानकोट से प्रस्थान करेगी और जालंधर, लुधियाना, रुड़की, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, कप्तानगंज, पड़ौना, तमकुही होते हुए थामे स्टेशन पर सुबह 6 बजे पहुंचेगी। इसके बाद दिघवा दुबौली और छपरा कचहरी होती हुई सुबह 9:15 पर छपरा जंक्शन पहुंचेगी। रेलवे के अनुसार इस विशेष ट्रेन में कुल 19 कोच लगाए जाएंगे। इनमें एक जनरेटर और लगेज यान भी रहेगा। बताया जा रहा है कि इस गाड़ी में LSLRD 2 साधारण द्वितीय श्रेणी कुर्सी यान, 5 पोर्ट शयन यान और 2 वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी, 6 वातानुकूलित तृतीय वर्ग श्रेणी और 2 वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी तथा तांबा के कोच भी इसमें शामिल रहेंगे। इससे गोपालगंज समेत आसपास के यात्रियों को यात्रा के दौरान पर्याप्त सीटों की सुविधा मिलने की संभावना है। गोपालपुर थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त बीकेश यादव को गिरफ्तार कर लिया। यह आरोपी गोपालपुर थाना क्षेत्र के हरियापुर गांव के हीरालाल यादव का पुत्र बताया जा रहा है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उत्पाद विभाग की पुलिस ने बघौच पुल के पास छापेमारी करते हुए एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि इसके पास 112 लीटर शराब मिली है। इसके साथ ही एक और आरोपी को भी पुलिस ने पकड़ा है। इन दो गिरफ्तार आरोपियों के पास से बोलेरो गाड़ी भी बरामद की गई है। पकड़ा गया आरोपी सोना लाल कुमार और संदीप कुमार बताए जा रहे हैं। ये दोनों पूर्वी चंपारण के निवासी हैं। इनकी गाड़ी और शराब को जब्त किया गया है और दोनों पर उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में कुचायकोट प्रखंड के बड़हरा पंचायत भवन परिसर में आश्रय घरों में रह रही विधवाओं के लिए अधिक प्रयास किए जाने की जरूरत, अस्थायी लोक अदालत का गठन, अनुसूचित जाति और जनजाति हेतु विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें पैनल अधिवक्ता संजय कुमार द्विवेदी तथा PLV वैश अली की टीम द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों को आश्रय घरों में रहने वाली विधवाओं के लिए अधिक प्रयास करने की जरूरत पर जानकारी दी ताकि इन सभी महिलाओं की स्थिति में सुधार हो सके। साथ ही महिला आयोग, महिला हेल्पलाइन, महिला शेल्टर होम इत्यादि की व्यवस्था के बारे में भी विस्तार पूर्वक लोगों को जानकारी दी गई। बताया जा रहा है कि इसके पूर्व जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा के स्थानांतरण के दौरान बड़े पैमाने पर जारी किए गए शस्त्र लाइसेंसों को लेकर एक बड़ा प्रशासनिक और कानूनी विवाद खड़ा हो गया है। लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया पर अब गंभीर सवाल उठने लगे हैं। बताया जा रहा है कि प्रशासन ने सभी लाइसेंस धारकों से नए और वैध चरित्र प्रमाण पत्र जमा करने को कहा है। इसके साथ ही उच्च अधिकारियों के निर्देश पर फिलहाल लाइसेंस बुक का वितरण भी रोक दिया गया है। मीडिया खबरों के अनुसार थाने में ऑनलाइन आवेदन की जा रही है। पुलिस विभाग के आंकड़ों ने विवाद को और बढ़ा दिया है। बताया जा रहा है कि नए पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने जब पदभार संभाला था तब पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उनके आने के बाद से SP कार्यालय के द्वारा एक भी नए शस्त्र लाइसेंस के लिए जिला पदाधिकारी कार्यालय को कोई अनुशंसा नहीं भेजी गई है। इसके बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में लाइसेंस जारी किया गया है। यह मामला अब मुख्यमंत्री सहयोग पोर्टल तक भी पहुँच चुका है। इधर कुचायकोट थाना की पुलिस ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी से 720 लीटर देशी शराब को जब्त किया है और गाड़ी को भी जब्त किया है। इसमें तस्कर के गिरफ्तारी की सूचना नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कोनवा मोड़ के पास छापेमारी की, जहां वाहन जांच करते हुए स्कॉर्पियो गाड़ी को पकड़ा गया। इस गाड़ी के अंदर से 720 लीटर देशी शराब मिली है। तस्कर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। अब इस वाहन मालिक और चालक के विरुद्ध कांड दर्ज करते हुए पुलिस अब आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। कटिया थाना की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास मामले में एक प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी अभिषेक दुबे पिता पुजारी दुबे साकिन रेपुरा थाना कटिया जिला गोपालगंज का निवासी है। सासामुसा बेलवा ब्रिज के पास पुलिस ने छापेमारी कर विधिवत इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सखी वार्ता के तहत बच्चियों को किया गया जागरूक। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा। मारपीट की घटना पर सफाई कर्मियों ने किया हड़ताल। सदर एसडीओ ने भैंसही पंचायत का किया औचक निरीक्षण। 20 जुलाई से पठानकोट के लिए शुरू हो रही है साप्ताहिक ट्रेन सेवा। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
10: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
11: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
12: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
11: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
13: गोला एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
14: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
13: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
15: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
16: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
17: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395-651 या 97-0-97-06-575।
18: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
19: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
6: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
19: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
6: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
20: दोस्तों, यह है मेरा शो जिसका नाम है टाइम मशीन, माइथोलॉजिकल कहानियों का सफर। ऐसी कहानियों का सफर जिसमें हम मिलते हैं उन पात्रों से, उन कहानियों से जो शायद भारत की अपनी कहानी का हृदय हैं। आस्था जुड़ी है इन कहानियों से, विश्वास जुड़ा है, शायद थोड़ी सच्ची, शायद थोड़ी काल्पनिक, लेकिन फिर भी इस देश की रूह में बसी हैं ये कहानियां। बचपन में सुनते थे हम सब। चलिए फिर वापस चलते हैं उन्हीं कहानियों की ओर, क्योंकि हमारे पास है टाइम मशीन। मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कहानी ब्रहन नला। दोस्तों जानते हैं ये जो टाइम मशीन है दरअसल वक्त का एक रोजनामचा है। इसमें पल पल का हिसाब दर्ज है। वो 4 साल पहले आई आपकी छींक हो या हजारों साल पहले लड़ा गया महाभारत का युद्ध हो। एक ऐसा इतिहास जहां एक रानी के 5 पति थे, सब महायोद्धा थे, जहां उन सबको अपना सब कुछ जुए में हार कर ऐसे वनवास पर जाना पड़ा था जिसमें उन सबको अपनी पहचान छुपाए छुपाए घूमना पड़ा था। आज की कहानी इसी महाभारत काल से आई है। टाइम मशीन मुझे मत्स्य राज्य ले गई थी। मत्स्य राज्य आज के नेपाल को कहा जाता था। मैं एक महल में था। इससे पहले कि कुछ समझ पाता मुझे सामने से 2 सैनिक आते दिखाई दिए। आज रानी सुदेशना राजकुमारी की परीक्षा लेंगी। आज पता चलेगा ब्रहनला कितने अच्छे से सिखा पाई है राजकुमारी उत्तरा को। सिखा पाई नहीं, पाया कहो मित्र। दोनों ही हंसते हुए दाईं तरफ मुड़ गए। इस विशाल महल में खोना बहुत आसान था। सोचा उन्हीं के पीछे हो लूं कि तभी बाईं तरफ से मृदंग की तेज थाप गूंजी और मैं बंधा बंधा उसी ओर चल दिया। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता मृदंग के साथ घुंघरुओं की भी आवाज तेज होती जाती। मैं राजा विराट की नृत्यशाला के सामने खड़ा था। सुनहरे झीने पर्दों से दिख रहा ये रंग महल अद्भुत था। रंग महल का गुंबद गहरा, बहुत गहरा था और उसी से लटकते कांच के झूमर में हजारों दीप जल रहे थे। नृत्यशाला के एक किनारे रानी सुदेशना बैठी थी। दासियां उनके बाल संवार रही थीं। बीच में खड़ी दासी का चेहरा ढका हुआ था। रंगशाला के बीचों बीच राजकुमारी नृत्य कर रही थीं और वहीं थोड़ी दाहिनी तरफ सारे वादक बैठे थे, लेकिन निगाहें टिकती थीं सिर्फ और सिर्फ मृदंग बजाने वाले अनोखे वादक पर। मृदंग पर चलने वाली उसकी उंगलियां दिखती ही नहीं थीं। उसने अपने दुपट्टे को दांतों में दबा रखा था। उसकी भुजाओं में विशेष बल था, जैसे सालों की वर्जिश का नतीजा हो। वो अचानक उठा और बिना ताल का तारतम्य तोड़े राजकुमारी के साथ नृत्य करने लगा। औरतों की वेशभूषा, नाचती हुई आंखें, कमर तक लहराते लंबे बाल और गठा हुआ मर्दों जैसा शरीर। नृत्य तो ऐसा कि बड़े से बड़ा नर्तक भी घुटने टेक दे। ये वादक ईश्वर के बनाए मर्द और औरत के फर्क को धूमिल करने वाली सबसे उम्दा रेखा थी। रानी सुदेशना अचानक उसी चेहरा ढकी दासी का हाथ झटक कर उठी और वादक के पास आकर बोली, बस ब्रहनला बस, मान गए हम तुम्हारे हुनर को आज। ब्रहनला की आंखें पल भर को हाथ सहलाती उस दासी की ओर चली गईं। अचानक देसी घी की खुशबू से सारी हवा भर गई। मैं पर्दों में थोड़ा और अंदर सरक गया। रानी सुदेशना और राजकुमारी उत्तरा के लिए खाना आया था। खाना देखते ही रानी बरस पड़ी, ये हमारे मना करने पे भी सत्तू के लड्डू क्यों आते हैं खाने में? आखिर बल्लभ देव को कितनी बार समझाना होगा? सत्तू के लड्डुओं का नाम सुनते ही ब्रहनला की आंखें फिर उस चेहरा ढकी दासी की ओर चली गई। दोनों के बीच आंखों ही आंखों में कुछ इशारा हुआ और ब्रहनला वहां से बाहर आ गई। मैंने ब्रहनला के पीछे जाने का फैसला कर लिया था। ब्रहनला सारे बाजार का चक्कर काट रही थी। कभी कोई मलमल का कपड़ा उठाती और उसे दुकानदार की ओर फेंक कर कहती, छूने से तो सूत का कपड़ा भी नहीं लगता। तो कभी किसी सुनार के पास जाके कोई पायल उठा के कहती, जब घुंघरू लगाने ही नहीं थे तो ये बनाई क्यों? सारा शहर पार हो गया था। उसकी चाल किसी हिरणी की तरह थी, लेकिन नजर बाघ की। ब्रहनला कुछ भी हो, लेकिन सिर्फ एक नर्तकी नहीं हो सकती थी। हम किसी श्मशान पर पहुंच गए थे। ब्रहनला एक पेड़ के पास जाकर रुक गई। उसने उस पेड़ के तने को ऐसे छुआ जैसे बरसों से बिछड़ा कोई बहुत अपना हो। फिर चौकन्ने होकर चारों तरफ देखा। मैं दूसरे पेड़ की आड़ में छुप गया। वहां थोड़ी ही देर में अलग अलग दिशाओं से 4 और आदमी आए। ब्रहनला ने उन्हें देखते ही एक साथ बाहों में भर लिया। भीम भैया, यूं अचानक क्यों बुलाया? मैं तो लड्डू देख के डर ही गया था। ब्रहनला ने उनमें से एक लंबे चौड़े आदमी से कहा, तुम सबकी बहुत याद आ रही थी अर्जुन। इस 1 साल के अज्ञातवास ने हम 5ों पांडवों को एक दूसरे से ही अनजान बना दिया है। तो ये क्या 5 पांडव थे? ब्रहनला अर्जुन कैसे हो सकता था? दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर जिसके धनुष के आगे बड़ी से बड़ी सेना हार मान ले, वो अर्जुन महाराज विराट के यहाँ नर्तकी था। लेकिन यूं हम पकड़े भी जा सकते हैं भीम, एक साल खत्म होने में एक महीना ही बचा है, बस कुछ और वक्त मेरे भाई। ये युधिष्ठिर ही हो सकते थे, भीम से बड़े तो वो ही थे। आगे से ध्यान रखूंगा, लेकिन द्रौपदी कहाँ है? उसे लड्डू नहीं मिले? लड्डू तो हमें साथ ही मिले थे, ब्रह्मला मेरा मतलब अर्जुन बोले। तभी पायल की छनक से सारा श्मशान गूंज गया, छह जोड़ा आंखें आवाज की ओर मुड़ गईं, वही चेहरा ढकी दासी थी। अब उसका चेहरा ढका नहीं था, और जैसा कि द्रौपदी के बारे में कहते हैं, वो उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर थी। उसकी आंखें वाकई कमल के फूल की कलियों जैसी थीं, लेकिन इन आंखों में मोटे मोटे आंसू धरे थे। भीम सबसे पहले बोले, पांचाली क्या हुआ? उन्होंने द्रौपदी को दोनों हाथों से थामा और उनका ध्यान उसके फटे हुए दुपट्टे की ओर गया। भीम की आंखों में लावा उतर आया, लगता ही नहीं था कि यही भीम महाराज विराट के यहाँ रसोइये का काम कर रहे थे। किसने किया ये? महाराज विराट के साले सेनापति कीचक ने। मैं एक जिंदगी में कितनी बेइज्जती सहूं आर्य, मैंने क्या किया है आखिर ऐसा? पांडवों के सामने फिर एक मुश्किल नागफनी की तरह मुंह बाए खड़ी थी। भीम का गुस्सा उस वक्त किसी के संभाले नहीं संभल रहा था, उनकी आंखें लाल हो गई थीं और बाजुएं फड़कने लगी थीं। मैं कीचक को नहीं छोड़ूंगा। युधिष्ठिर ने ही उनको ये कह के शांत किया कि एक महीने की बात है, उनका कोई भी कदम उनको अपने राज्य से हमेशा के लिए दूर कर सकता था। युधिष्ठिर परेशान थे, वो महाराज विराट के यहाँ मंत्री थे, जिस पासों के खेल में वो 13 साल पहले अपना सब कुछ कौरवों को हार आए थे, वो वही जुआ रोज महाराज को खिलाते थे। द्युत कहते हैं इसे, आज के जमाने में लूडो समझ लीजिए। इसी द्युत के खेल में पांडव द्रौपदी को भी हार गए थे, तब द्रौपदी की भरी सभा में बहुत बेइज्जती करी गई थी। उसी के बाद पांडवों को 13 साल के वनवास पर भेज दिया गया था, जिसमें से 1 साल अज्ञातवास का था। अगर इस साल में किसी ने पांडवों को पहचान लिया तो ये वनवास फिर शुरू हो जाता। नकुल और सहदेव भी युधिष्ठिर से सहमत थे, अर्जुन कुछ नहीं बोले थे, उन्होंने बस द्रौपदी के कंधे पर हाथ रखा और एक बार फिर उसी पेड़ का तना सहलाया। भीम ने उनसे कहा, बहुत जल्द हमारे शस्त्र इस पेड़ पर नहीं हमारे कंधों पर होंगे अर्जुन, हम पांचाली के हर अपमान का बदला लेंगे। उसके बाद वहां से सब अलग अलग दिशाओं में निकल गए। मैं श्मशान से बाजारों की तरफ निकल आया था। वक्त के फेर भी अजीब हैं, एक राजा को भी दास बना के रख देते हैं। ऐसे योद्धा जिनसे जीतने का दम पूरे हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं था, ऐसे राजकुमार जिनका राज्य घाटी से समुद्र तक फैला था, वो एक छोटे से राज्य के राजा के अस्तबल संभाल रहे थे, गायें चरा रहे थे, उनकी रसोई में खाना बना रहे थे और औरत का वेश बनाकर उसकी बेटी को नृत्य सिखा रहे थे। अपनी सोच में ही गुम मैं महल के पास पहुंच गया था। वहां अजीब हलचल मची हुई थी, हर कोई राजसभा की ओर जा रहा था और लोग आपस में बातें कर रहे थे। आज तो सेनापति कीचक ने अन्याय की हद कर दी, महारानी की दासी को बालों से पकड़कर राजसभा में ले आए, महाराजा ने भी कुछ नहीं किया। मेरा मन बैठ गया, हो न हो ये द्रौपदी ही थी। राजसभा लोगों से पटापट भरी हुई थी, कीचक की निर्दयी हंसी सारे भवन में गूंज रही थी। द्रौपदी वहीं जमीन पर गिरी हुई थी, उसके खुले केश बिखरे हुए थे और होंठों के पास से खून बह रहा था। मंत्री कंक यानी युधिष्ठिर के बगल में भीम खड़े थे, उनकी आंखों में अंगारे साफ थे। अचानक कीचक ने बढ़कर द्रौपदी को एक लात मारते हुए कहा, दासी है तू, एक मामूली बाल सजाने वाली सैरंद्री, इस राजसभा में भी तेरी मदद के लिए कोई नहीं आएगा, यहां सेनापति भी मैं हूं और राजा भी। द्रौपदी कराह रही थी, सभा शर्म से गड़ी जा रही थी, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मदद को आगे आए। जब राजा ही अपने साले को नहीं रोक रहे तो और कोई क्या रोकता। कीचक किसी खुले सांड की तरह सारी सभा में टहल रहा था। तभी द्रौपदी खड़ी हुई और बोली, आज तुमने मेरा ही नहीं मेरे 5 महावीर पतियों का अपमान किया है कीचक, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मैं सभा से निकल आया, मुझसे आगे देखा नहीं गया। वहीं सभा में बैठे द्रौपदी के 2 पति उसके किसी काम नहीं आए थे। शाम हो चली थी, मैं महल में भटक गया था। समझ नहीं आ रहा था कि किस दिशा मुड़ूं कि एक बार फिर मुझे मृदंग की गूंज सुनाई दी। मैं फिर संगीत की दिशा में चल दिया। रंगशाला अंधेरे में डूबी हुई थी, बमुश्किल 4 या 5 मशाले ही जल रही होंगी। वादक मृदंग बजा रहा था और ब्रह्मनला नृत्य कर रही थी, पर क्या उस नृत्य को नृत्य कहा भी जा सकता था? तांडव तांडव था वो। उस दिन उत्तरा के साथ नृत्य करने वाली ब्रह्मनला तो कोई और ही थी। शिव का रौद्र तांडव शायद ऐसे ही होता होगा। पसीना पानी की तरह शरीर से बह रहा था, ब्रह्मनला के पांव दिखते ही नहीं थे। आंखों से ऐसा तेज निकलता लगता जैसे कोई सामने आ जाए तो जल ही ना जाए। तभी ब्रह्मनला के घुंघरू टूट गए, कुछ बिखर कर उसके पैरों में भी चुभ गए, पैर लहू लुहान हो गए। वादक मृदंग छोड़कर उठ गए, ब्रह्मनला बस गोल गोल घूमे जा रही थी। तभी वहां द्रौपदी आई। आप यहाँ नृत्य कर रहे हैं आर्य? मेरा जीवन एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं रह गया है। जिसका जब मन करता है वैसे अपमान कर लेता है, और मेरे लिए खड़ा होने वाला भी कोई नहीं है, और यहाँ आप नृत्य कर रहे हैं? ये नृत्य नहीं है पांचाली, ये तांडव है, रौद्र तांडव। कीचक का संहार होना तय है, तुम्हारे इस अपमान का बदला कीचक को चुकाना होगा। ब्रह्मनला के भीतर का अर्जुन बदले की आग में जल गया था। कीचक एक अबूझ पहेली बनकर पांडवों के सामने था। द्रौपदी के बिखरे खुले बाल और उसके होठों के पास की चोट उन पांचों भाइयों को दिन रात कचोट रही थी। सब एक बार फिर वहीं श्मशान पर मिले। मैं ब्रह्मनला के पीछे पीछे ही रहता था, सो उसी के पीछे मैं भी श्मशान पहुंच गया था। भैया, मैं कीचक की बाहें उखाड़ दूंगा, उसकी हिम्मत कैसे हुई पांचाली को छूने की? भीम गरज रहे थे। ब्रह्मनला का भेष बनाए अर्जुन उसी शस्त्रों वाले पेड़ के पास खड़े थे। युधिष्ठिर बोले, अज्ञातवास खत्म होने में अब 1 महीना भी पूरा नहीं है भीम। हम इस समय ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जिससे किसी को भी हमारी असलियत पे शक हो। क्या फिर से वनवास हो जाने के डर से हम पांचाली का यूं ही अपमान हो जाने दें बड़े भैया? नकुल की आवाज से धिक्कार की महक साफ उठ रही थी। पांचाली का हमारी पत्नी होने के अलावा दोष ही क्या है? सहदेव ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, पांचाली के अपमान का बदला लिया जाएगा सहदेव, और ये बदला हम कल रात ही पूरा करेंगे। अब तक शांत खड़े अर्जुन बोले, बच्चों जैसी बात मत करो अर्जुन। युधिष्ठिर समझाते हुए बोले, बच्चों जैसी नहीं योद्धाओं जैसी बात कर रहा हूं मैं बड़े भैया। रंगशाला रात के वक्त बिल्कुल खाली रहती है। अगर हम वहां किसी तरह कीचक को ले आए तो भीम भैया और कीचक का मल्ल युद्ध वहीं हो जाएगा। कीचक खुद मल्ल युद्ध में तेज है, हम में से और कोई उससे नहीं जीत सकता। मल्ल युद्ध चुपचाप नहीं लड़ा जाता अर्जुन, 2 बलशाली मल्ल जब युद्ध करते हैं तब भयानक शोर होता है, और शोर होने पे सबका ध्यान हमारी ओर आ ही जाएगा। भीम ने कहा, उसका ध्यान मैं, सहदेव और नकुल रख लेंगे। सहदेव अपनी गायों को बहुत अच्छे से समझता है, और नकुल अपने घोड़ों को। नकुल घुड़साल में घोड़ों को नहीं सोने देगा, और सहदेव अपनी गायों को हांकता रहेगा। महल के भीत मैं उत्तरा को रात्रि में तांडव नृत्य सिखाने के लिए मृदंग बजाऊंगा। किसी को शक नहीं होगा, और रंगशाला से आवाजें बाहर नहीं जाएंगी। अर्जुन ने सारी योजना समझाते हुए कहा, लेकिन कीचक मध्य रात्रि में रंगशाला आएगा ही क्यों? हम वहां उसे लेकर कैसे आएंगे? युधिष्ठिर ने पूछा। कीचक को रंगशाला लाने का काम मेरा है आर्य, कीचक रंगशाला जरूर आएगा, द्रौपदी ने आत्मविश्वास से भरकर कहा। कीचक की मौत अब तय थी, लेकिन इस सब के बाद पांडवों का क्या होगा? क्या वो पहचान लिए जाएंगे, पकड़ लिए जाएंगे? ये सोचकर ही मैं पूरी रात सो नहीं पाया। अगली सुबह द्रौपदी बिना अपना चेहरा ढके कीचक के भवन के पास वाले बागों में ही घूम रही थी। वहां के बाग राज्य के सबसे सुंदर बाग थे। ऐसे फूल, ऐसी सजावट खुद महाराजा विराट के बाग की नहीं थी। कीचक महाराजा का साला होने के कारण एक बेकाबू सांड हो गया था। न उसे कोई रोकने वाला था, न कोई टोकने वाला। जब उसने द्रौपदी को अपने बाग में देखा तो फिर उसकी ओर चला आया। उसने द्रौपदी के कंधे पर हाथ रखा और बोला, मैं तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहता था, पर तुम्हें भी मेरी बात मान लेनी चाहिए थी। तुम्हारी सुंदरता पर मैं ये सारा राज्य वार सकता हूं, तुम क्यों नहीं चलती मेरे साथ? द्रौपदी कीचक के हाथों से दूर हटती हुई बोली, मेरे पांच पति बहुत ही क्रूर हैं सेनापति, अगर उन्हें भनक भी पड़ गई तो वो मुझको मार डालेंगे। मेरे रहते तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता, कीचक पास आते हुए बोला। तो फिर ठीक है, रात के समय रंगशाला में कोई नहीं रहता, आप मध्य रात्रि में मुझसे वहीं मिलिएगा। ये कहकर द्रौपदी वहां से चली गई। कीचक अपनी मौत के तय समय से अनजान रात की तैयारियों में लग गया। घड़ियालों ने पहर बदलने का नाद किया। मध्य रात्रि से कुछ पहले ही महल के अस्तबलों और गौशालाओं से आवाजें आने लगी थीं। महल की औरतें आपस में बात करती कि जानवरों का यूं रोना शुभ शगुन नहीं होता है। मैं रंगशाला में जा छुपा था। ब्रह्मनला उत्तरा के कमरे में थी। उत्तरा को सिखाने के लिए ब्रह्मनला खुद तांडव करने वाली थी। मध्य रात्रि का नाद हुआ, ठीक इसी वक्त कीचक ने रंगशाला में प्रवेश किया। रंगशाला में घुप अंधेरा था। बीचों बीच पड़े पलंग पर एक महिला बैठी थी। कीचक ने जो ही उसके कंधे पर हाथ रखा, भीम ने दुपट्टे से निकलकर उसका हाथ मोड़ दिया। ठीक इसी वक्त मृदंग और घुंघरुओं की आवाज से महल गूंज गया। बाहर जानवरों की आवाजें और तेज हो गई थीं। भीम और कीचक में भीषण युद्ध मच गया। कभी भीम कीचक को पटखनी देते, कभी कीचक भीम को। उधर ब्रहनला के घुंघरुओं की आवाज डरावनी होती जा रही थी। भीम ने कोहनी गड़ाकर कीचक की बाजू ऐसी खींची कि कीचक की बाजू उखड़ ही गई। कीचक थक गया था। वो दर्द से कराहता रहा, चीखता रहा, पर उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। भीम ने अगले दो वारों में कीचक को हमेशा के लिए शांत कर दिया था। मैं रंगशाला से भागा, उत्तरा के कमरे की तरफ से गुजरा तो देखा उत्तरा हाथ जोड़े ब्रह्मनला के सामने खड़ी है और ब्रह्मनला अपने एक पैर पर खड़े शिव मुद्रा में लीन है। बाहर मवेशियों की आवाजें धीमी पड़ गई थी। ब्रह्मनला के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अर्जुन ने आज सिद्ध कर दिया था कि युद्ध सिर्फ बाहुबल से नहीं बल्कि बुद्ध के बल पर भी जीते जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी बस इतनी ही। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आप जब चाहेंगे, जितनी बार चाहेंगे, मैं यहीं मिलूंगा आपको एक और नई कहानी सुनाने को तैयार, क्योंकि ये है टाइम मशीन।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
21: सुनिए सुनिए सुनिए,
22: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
21: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
22: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
21: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
6: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
6: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
6: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
2: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
23: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
23: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
23: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनो फेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765655750।
3: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
4: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
5: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
5: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
5: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
6: तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
7: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
6: अरे, ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
7: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
6: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान लिया।
7: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
8: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
5: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
10: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
9: आज ही संपर्क करें 7388894 या 9198886973।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
2: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
2: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
3: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99 399 66 999।
4: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
5: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
4: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
5: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
4: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
6: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
7: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
6: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
7: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
6: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमान गढ़ी गोपालगंज में है।
7: जानकारी है तो कॉल करे 62052612 पे।
8: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
8: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
8: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।

0: आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
5: ओम नमः शिवाय।
6: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
5: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
6: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
5: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
6: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
5: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
6: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
5: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
6: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
5: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
6: बोलबम हर हर महा

0: एक बूंद को हमें बचाना है तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तीन देशों की यात्रा संपन्न, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ विस्तृत वार्ता के बाद स्वदेश रवाना। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए, दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। अमेरिका ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए हमले शुरू किए, ईरान ने जल मार्ग को अगली सूचना तक किया बंद। मौसम विभाग ने अगले चार दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया और लिंडा नोसकोवा ने कैरोलिना मुकोवा को हराकर अपना पहला विंबलडन टेनिस खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। इस दौरान श्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ व्यापक बातचीत की। भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। इस दौरान रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और डेयरी तथा पशुपालन सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ऑकलैंड में सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय मूल के 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। श्री मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को विश्वसनीय मित्र बताते हुए न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की भी उन्होंने प्रशंसा की। श्री मोदी ने श्री लक्सन के शानदार आतिथ्य के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। श्री मोदी ने 40 वर्ष बाद भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा के बारे में कहा कि अगली यात्रा में इतना समय नहीं लगेगा।
3: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
2: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के दौरान भारत ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, नवाचार, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार किया है। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। श्री सिंह वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गृहमंत्री कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में महत्वाकांक्षी सामूहिक पौधारोपण अभियान की शुरुआत भी करेंगे।
4: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने संसदीय क्षेत्र को देश में सबसे हरा भरा बनाने के लिए महत्वाकांक्षी गांधीनगर हरियाली लोकसभा अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके तहत इस साल गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में 1.25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। इस अभियान के तहत वन विभाग अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में वन कवच मॉडल के माध्यम से लगभग 60 लाख स्वदेशी पौधे लगाएगा, जो त्वरित पर्यावरण सुधार के लिए जापानी मियावाकी पद्धति का गुजराती स्वदेशी संस्करण है। अपने दौरे के आखिरी दिन श्री शाह कल गांधीनगर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट ग्रुप बैठक और पहली अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषक अपराध प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे देहगांव में नवनिर्मित APMC सब्जी मंडी का भी लोकार्पण करेंगे। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: उत्तर प्रदेश सरकार व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और RKBK के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। एक रिपोर्ट।
5: 27 विभागों के समन्वय से चलाए जाने वाले इस विशाल वृक्षारोपण अभियान में वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग सर्वाधिक 15 करोड़ 50 लाख पौधारोपण करेगा। ग्राम्य विकास विभाग 10 करोड़, कृषि विभाग 3 करोड़ 25 लाख, उद्यान विभाग 1 करोड़ 50 लाख और पंचायती राज विभाग 1 करोड़ 22 लाख पौधे लगाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे भी 5.5 लाख पौधे लगेंगे। महाअभियान 2026 में इस वर्ष समरस वन, समृद्धि वन, कृषि वन, ऊर्जा वन, कपि वन समेत अनेक नवीन वन तैयार किए जाएंगे। महर्षि चरक औषधि वन की शुरुआत 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस पर की गई है। इस अभियान का प्रमुख हिस्सा मिशन छाया, अविरल धारा पौधारोपण, सहजन भंडारा और आम भंडारा भी होगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
6: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने गोवा में अपनी 2 दिवसीय परामर्श प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संवैधानिक विशेषज्ञों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और मीडिया से विचार विमर्श किया। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: पहले दिन समिति ने गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, संवैधानिक विशेषज्ञों, राज्य निर्वाचन आयोग तथा गोवा विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। दूसरे और अंतिम दिन कल समिति ने गोवा विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर गणेश गांवकर, विपक्ष के नेता यूरियाले माव तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायकों से चर्चा की। इससे पहले समिति के अध्यक्ष और सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से सुशासन को बढ़ावा मिलेगा, चुनावी खर्च कम होगा और बार बार होने वाले चुनावों से होने वाले प्रशासनिक व्यवधान में कमी आएगी। समिति अब अपने राष्ट्रव्यापी परामर्श अभियान के अगले चरण में लखनऊ का दौरा करेगी। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फुकवोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। ये हादसा उस समय हुआ जब 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट फुकवोक द्वीप के पास रटनगोवाई टापू के निकट अचानक ऊंची लहरों की चपेट में आकर पलट गई। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने मृतकों की सूची जारी की है। इनमें 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका की सेना ने कहा है कि हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए गए हैं। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। ईरान की नौसेना ने कहा कि इस इलाके में अमेरिका का दखल खत्म होने तक किसी भी जहाज को इस रास्ते से निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नौसेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य की इस घटना को लेकर अमेरिका की किसी भी कार्रवाई का कड़ा जवाब दिया जाएगा। अमेरिका ईरान से सार्वजनिक रूप से होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर हमला नहीं करने का आश्वासन चाहता है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तनाव के बावजूद ईरान के साथ बातचीत जारी रहेगी। ईरान ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य उसके नियंत्रण में ही रहेगा और इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों को शुल्क देना होगा। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही के लिए 2 अलग अलग रास्तों का प्रस्ताव दिया है, लेकिन ईरान ने इस तरह के प्रस्ताव को पहले ही खारिज कर दिया था। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका एस जानकी अम्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ मुकेश कुमार बल।
4: फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इंग्लैंड के जूड बेलिंघम ने अतिरिक्त समय में 2 गोल करके इंग्लैंड को जीत दिलाई। इंग्लैंड तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। उधर लंदन में कल रात विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को 6-2, 5-7, 6-3 से हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस बीच पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यैनिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार आज रात 8:30 से खेला जाएगा। महिला डबल्स के फाइनल में आज 10वीं वरीयता प्राप्त गुओ हान्यू और क्रिस्टीना म्लाडेनोविच की जोड़ी का मुकाबला दूसरी वरीयता प्राप्त गैब्रियला डब्रोवस्की और लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 से शुरू होगा। और इंग्लैंड ने कल रात साउथहैम्प्टन में 5वें और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में भारत को 56 रन से हराकर श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली है।
1: और अभी अभी प्राप्त समाचार के अनुसार अमेरिका के कंसास में जारी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड एक एक गोल से बराबरी पर हैं। मौसम विभाग ने अगले चार दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। इनमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा शामिल हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
5: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाई है। नवभारत टाइम्स ने प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को प्राथमिकता देते हुए लिखा है, आतंकवाद पर बनाएंगे ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप, प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम के बीच सहमति। पंजाब केसरी ने आईएनएस महेंद्रगिरी के जलावतरण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को प्रमुखता दी है, भविष्य के युद्ध सिर्फ एआई से नहीं सैनिकों के दम पर जीते जाएंगे। जनसत्ता ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का बयान दिया है, चढ़ावा चोरी कलंक, व्यवस्था में जल्द सुधार। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर बरसात में बेहाल होते शहरों पर विश्लेषण दिया है, हर बरसात में देश के शहरों में लोग जलभराव और उससे जुड़ी समस्याओं से जूझते हैं, इसके बाद भी नगर निकायों का काम करने का तौर तरीका नहीं बदला है। अखबार ने लिखा है कि अब यह जरूरी हो गया है कि संसद में एक विशेष सत्र बुलाकर बिगड़ते शहरीकरण को संवारने के लिए कोई सार्थक बहस की जाए। दैनिक भास्कर ने राष्ट्रीय राजधानी के मौसम का मिजाज दिया है, कमजोर पड़ा मॉनसून, अब एक हफ्ते झेलनी पड़ेगी गर्मी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तीन देशों की यात्रा संपन्न। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए, दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। अमेरिका ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए हमले शुरू किए, ईरान ने जल मार्ग को अगली सूचना तक किया बंद। मौसम विभाग ने अगले चार दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
7: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
8: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
7: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
8: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
7: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
8: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
7: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
9: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
10: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
9: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
10: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
9: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
11: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द। अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
12: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
13: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
12: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
14: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
15: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
16: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
15: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
16: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
15: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
16: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
15: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
16: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
5: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
6: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
7: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
8: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
9: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
4: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
6: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
4: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
3: कॉल करें 87-894-18744।
10: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
11: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034648652 पे।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: ओम नमः शिवाय।
5: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
4: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
5: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
5: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
5: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
4: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
5: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
4: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
5: बोलबम, हर हर महादेव।
6: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
7: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
8: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
7: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
3: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमान गढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
6: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
7: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स। BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
8: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
7: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायकोट,
8: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
7: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
8: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
7: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
8: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
7: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
8: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।

0: कब भौजी? आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
4: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: मैं बनूंगा,
7: मैं बनूंगा, मैं भी बनूंगा।
0: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
5: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-029-94-921 पे,
0: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
5: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AM-Z पर।
8: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
9: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
8: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
10: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
8: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड, थावे रोड, भी मार्केट के बगल में, कृष्णा जी के मकान में।
10: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99-55-94-94-53
8: और 90-97-61-60-02।
11: बोतल वोडका, काम मेरा रोस्टा, ना मुझको करूँ

0: पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के लिए 8,33,00,000 रुपए की राशि जारी की गई। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में MBBS सीटें बढ़ाने की दी मंजूरी। PMCH में सीटों की संख्या 200 से बढ़कर 250 हुई। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी हिस्सों में कई स्थानों पर भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री सिंह देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। कृषि मंत्री जन भागीदारी के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन में परिवर्तित करने का भी आह्वान करेंगे। कार्यक्रम में देश के लगभग सभी राज्यों से ऐसे वृक्ष मित्र शामिल होंगे जिन्होंने वृक्षारोपण, जल संरक्षण और पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के क्रियान्वयन के लिए 8,33,00,000 रुपए की राशि जारी की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि इस राशि में केंद्र सरकार 5,00,000 और राज्य सरकार 3,33,00,000 रुपए का अंशदान देगी। मंत्री ने बताया कि इस राशि से निर्धन परिवारों के लिए जीविकोपार्जन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के कार्य किए जाएंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज मुजफ्फरपुर में नगर विकास और आवास विभाग की मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के लिए लगभग 1,047,00,000 की लागत वाली 982 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन योजनाओं से सड़क, जल निकासी, पार्क समेत अन्य शहरी आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन का कल अंतिम दिन है। उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार का शोर बढ़ गया है। प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा और जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के कल नामांकन दाखिल करने की संभावना है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि पार्टी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा 13 जुलाई को नामांकन दाखिल करेंगे।
1: जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के प्रत्याशी हैं नीरज कुमार सिन्हा जी, तो बांकीपुर के एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते वो काम कर रहे हैं। 13 तारीख को अपना नामांकन करेंगे। पूर्व में जो प्रत्याशी थे उन्होंने पारिवारिक कारणों से असमर्थता व्यक्त की चुनाव लड़ने से। उन्होंने कहा मैं पार्टी का कार्यकर्ता रहूंगा, चुनाव में भी पूरी पूरी मेरी सहभागिता रहेगी। तो केंद्रीय नेतृत्व में चुनाव समिति ने नीरज कुमार सिन्हा जी जो उसी विधानसभा के कार्यकर्ता।
0: उपचुनाव के लिए अब तक 11 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। इनमें राजद की रेखा गुप्ता प्रमुख हैं। 16 जुलाई तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। 30 जुलाई को मतदान होगा जबकि 3 अगस्त को मतगणना कराई जाएगी। राज्य सरकार विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण VBG रामजी से प्रदेश में सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण कराएगी। ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने बताया कि ऐसी ग्राम पंचायतें जिनमें सामुदायिक शौचालय निर्माण का काम अधूरा है, वहां महादलित टोलों और साप्ताहिक हाटों में भी सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण पर विशेष बल दिया जाएगा। उन्होंने अधूरे निर्माण स्थलों को भी चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। प्रधान सचिव ने बताया कि कचरा संग्रहण और निस्तारण में किसी भी तरह की लापरवाही या कोताही पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि महादलित टोलों और साप्ताहिक हाटों में भी सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण पर विशेष रूप से ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने शेखपुरा जिले में सभी पंचायत में जल्द से जल्द पंचायत सरकार भवन के निर्माण को पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने विभाग की ओर से चलाए जा रहे विभिन्न विकास और कल्याण योजनाओं की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिए। श्री प्रकाश ने अरियरी प्रखंड अंतर्गत चांदी पहाड़ इलाके में आयोजित कार्यक्रम में लोगों से विकास योजनाओं की निगरानी करने को कहा है। शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत वर्ष 2026 में इंटरमीडिएट की परीक्षा में सफल अविवाहित छात्राओं को प्रोत्साहन राशि

0: देने के लिए 700 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। विभाग ने जारी आदेश में लिखा है कि छात्राओं को 25-25 हजार रुपए दिए जाएंगे। इस वर्ष 5,65,675 छात्राओं ने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की है। गया जी के बिपाड़ परिसर में विधानसभा सदस्यों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। प्रबोधन कार्यक्रम का आज अंतिम दिन है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि यह कार्यक्रम उपयोगी है, इससे विधायकों को काफी लाभ होगा।
1: सभी माननीय मंत्री लोगों के ओरिएंटेशन का कार्यक्रम, तो इससे बहुत कुछ फायदा होगा। चीजों को समझने में, जनता की सेवा करते हुए काम करने में बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए।
0: राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में MBBS सीटों को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। आयोग के मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड के अध्यक्ष M.K. रमेश ने बताया कि पटना मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में सीटों की संख्या 200 से बढ़ाकर 250 कर दी गई है, जबकि JLNMCH में 120 की जगह 150 सीटों पर नामांकन होगा। वहीं कटिहार मेडिकल कॉलेज में सीटों की संख्या 150 से बढ़ाकर 200 कर दी गई है। इसके साथ ही राज्य में नए मेडिकल कॉलेजों में भी सीटों की संख्या निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि निजी मेडिकल कॉलेजों में सीटों को बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। इधर IGIMS में दंत शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी। IGIMS के प्राचार्य डॉक्टर रंजीत कुमार ने बताया कि संस्थान की स्थापना के बाद अनुसंधान कार्य में तेजी आएगी और PG की पढ़ाई भी शुरू होगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने औरंगाबाद से पटना के नौबतपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 139 को 4 लेन बनाने की मंजूरी मिलने के बाद DPR बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। NHAI के कार्यपालक अभियंता तुलसी प्रसाद ने बताया कि जिन हिस्सों में 4 लेन बाईपास का निर्माण होगा, वहां की पुरानी सड़कों को 4 लेन में तब्दील नहीं किया जाएगा। ऐसी पुरानी सड़कों को राज्य सरकार के पथ निर्माण विभाग को सौंप दिया जाएगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में मानसून की सक्रियता बनी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और सीवान जिले में अत्यधिक भारी बारिश, जबकि पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी, कटिहार और पूर्णिया जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
1: 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर मध्य भाग के अधिकांश स्थानों में, उत्तर पूर्व भाग के अनेक स्थानों में, जबकि शेष भाग के कुछ स्थानों में वर्षा होने की संभावना है, तथा 24 घंटों के दौरान राज्य के गोपालगंज, मुजफ्फरपुर एवं सिवान जिलों में एक दो स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के अधिकांश जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात होने की संभावना है। राज्य के पूर्वी चंपारण, कटिहार, पूर्णिया, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पटना के विक्रम में लगभग 100 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। राजधानी पटना में भी 90 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नेपाल के तराई क्षेत्रों में भारी बारिश और उत्तर बिहार के कई क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नदी का पानी पश्चिम चंपारण जिले के योगापट्टी प्रखंड के सिसवा गांव में कई घरों में घुस गया है। गांव को प्रखंड से जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर भी 4 से 5 फीट पानी बह रहा है। जिले के रामनगर प्रखंड अंतर्गत दोन क्षेत्र में अवरहिया गांव के पास सड़क ध्वस्त हो जाने से लगभग 18 गांव का सड़क संपर्क टूट गया है। इधर कोसी नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हुई है। इसे देखते हुए नदी पर स्थित बराज के कई फाटक खोल दिए गए हैं। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के अनुसार स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। शिक्षा विभाग ने बाढ़ से प्रभावित होने वाले विद्यालयों की पहचान कर बाढ़ आने से पूर्व सभी तैयारियां पूर्ण कर लेने के आदेश दिए हैं। विभाग ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर चिन्हित विद्यालयों को निर्देश दिया है कि विद्यालयों के अभिलेख, शिक्षण सामग्री और उपकरण सुरक्षित स्थान पर रखे जाएं। आदेश में कहा गया कि जिन विद्यालयों में राहत शिविर लगाने की संभावना हो, वहां पढ़ाई के लिए वैकल्पिक स्थान की पूर्व योजना बनाई जाए। मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को बाढ़ के दौरान क्या करें और क्या ना करें की नियमित जानकारी देने के भी निर्देश दिए गए हैं। विद्यार्थियों और अभिभावकों को पठन पाठन सामग्री सुरक्षित रखने के प्रति जागरूक किया जाए। बच्चों को बाढ़ से बचाव, डूबने से सुरक्षा और नाव से सुरक्षा संबंधित जानकारी देने को भी कहा गया है। दरभंगा मंडल कारा के सहायक अधीक्षक नंदू चौधरी को निलंबित कर दिया गया। सहायक अधीक्षक पर पत्नी की हत्या और दहेज प्रताड़ना का आरोप है। वहीं पटना की बेउर जेल के 3 कक्षपालों को कार्य में लापरवाही बरतने को लेकर निलंबित कर दिया गया है। मद्य निषेध विभाग में दारोगा के 78 पदों पर नियुक्ति के लिए आज परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा के लिए राज्य में 515 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में लगभग 2 लाख अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। इधर पूर्व मध्य रेल बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए आज 10 परीक्षा स्पेशल रेलगाड़ियों का परिचालन कर रहा है। पूर्व मध्य रेल के अनुसार ये रेलगाड़ियां बक्सर पटना, क्यूल गया, नवादा गया समेत अन्य मार्गों पर चलाई जा रही हैं। सीवान जिले के मैरवा थाना क्षेत्र के पंडितपुरा गांव में लगभग 5.5 लाख रुपए के जाली नोटों के साथ एक महिला और एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की जांच में सारण जिले के सदर और सोनपुर प्रखंड के मनरेगा की योजनाओं में अनियमितता मिलने के बाद 4 अधिकारियों और कर्मचारियों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। रोहतास जिले के अकूढ़ी गोला थाना क्षेत्र की पुलिस ने एक मकान से 50 लाख रूपये की शराब बरामद की है। अररिया जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बढ़हरा चौक के पास बीते दिनों एक पिकअप चालक और एक मवेशी व्यापारी से लूट मामले में पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। मुंगेर जिले के तारापुर संग्रामपुर मुख्य मार्ग पर रामपुर पंचायत स्थित 3 माइल चौक के पास एक हाईवा की चपेट में आने से बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी अखबारों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के हवाले से लिखा है, लोग नौकरी करने बिहार आए, ऐसा विकास करें। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, दुनिया में 3री सर्वश्रेष्ठ है भारतीय वायुसेना, चीन छूटा पीछे। दैनिक भास्कर ने अयोध्या मामले पर लिखा है, श्रद्धालु घटे, होटल ऑक्यूपेंसी 25% ही बची, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद बदले हालात। प्रभात खबर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हाजीपुर में पेपरलेस निबंधन प्रणाली की शुरुआत पर लिखता है, अब 75 वर्ष से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को घर बैठे रजिस्ट्री की सुविधा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के लिए 8,33,00,000 रुपए की राशि जारी की गई। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में MBBS सीटें बढ़ाने की दी मंजूरी। PMCH में सीटों की संख्या 200 से बढ़कर 250 हुई। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी हिस्सों में कई स्थानों पर भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: सुनिए सुनिए सुनिए,
5: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
4: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
5: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
6: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
7: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
8: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
9: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
8: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434068 पे।
10: तो अब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
11: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
10: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
11: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
10: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
11: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिए, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
12: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
10: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
13: हमें लगता था कि हम अपने सोलर सिस्टम को अच्छी तरह जानते हैं, पर ऐसा नहीं है। न्यू रिसर्चेस से पता चला है कि हमारे सोलर सिस्टम के पास ही एक अनसीन 9th प्लैनेट भी हो सकता है, और ये शायद बहुत बड़ा हो, प्लूटो से 5,000 गुना और अर्थ के मास से 10 गुना ज्यादा बड़ा।
14: एस्ट्रोनॉमी में हमारा सामना ज्यादा रेवोल्यूशन से नहीं होता है, लेकिन ये डिस्कवरी काफी बड़ी है।
15: ये सोचकर बड़ा अजीब लगता है कि हम काफी टाइम से यूनिवर्स पर नजर रखे हुए हैं, फिर भी हमें ये 9th प्लैनेट कभी दिखाई नहीं दिया।
13: अगर ये प्लैनेट 9 वाकई मौजूद है तो ये कैसा दिखता होगा? क्या ये कोई रॉकी सुपर अर्थ की तरह का प्लूटो या गैसी मिनी नेपच्यून? क्या प्लैनेट 9 किसी दूसरे स्टार से अलग हुई एलियन दुनिया है? और क्या ये सन से 100 बिलियन माइल्स दूर लाइफ को एक नया घर दे सकता है?

0: जरा रात को आसमान की तरफ देखिए, स्टार्स अपनी जगह फिक्स्ड मालूम होते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक उन्हें देखेंगे तो उनमें से कई अपनी जगह बदलते दिखेंगे। धीमी स्पीड वाली यही रोशनियां प्लैनेट्स हैं। रॉक के ऐसे बड़े बड़े टुकड़े जो हमारे होम स्टार सन का चक्कर काटते हैं। हमें लगता था ये प्लैनेट 8 है, लेकिन ऐसा नहीं है।
1: हमें लगता है हम अपने सोलर सिस्टम को अच्छी तरह समझते हैं, हमें सारे प्लैनेट्स मिल गए हैं, लेकिन सच ये है कि हमने एक बड़ी चीज को मिस कर दिया।
0: सन 2014 में एस्ट्रोनॉमर्स का एक ग्रुप काइपर बेल्ट को स्टडी कर रहा था। ये आईसी एस्ट्रॉइड्स की एक बड़ी सी ऐसी पट्टी है जो नेपच्यून की ऑर्बिट के काफी बाहर मौजूद है। इनमें से ज्यादातर ऑब्जेक्ट्स सन के चारों तरफ गोल गोल घूमते हैं, लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स एक छोटे ग्रुप को लेकर हैरान हैं जो इन रूल्स को फॉलो नहीं करता और वाइल्ड एक्सटेंडेड ऑर्बिट्स में मेन बेल्ट से काफी बाहर घूमता रहता है। काइपर बेल्ट से काफी बाहर मौजूद कोई चीज इन एस्ट्रॉइड्स को इनके इलाके से बाहर ला रही है और इसका साइज किसी बड़े प्लैनेट जितना है। कैलटेक एस्ट्रोनॉमर माइक ब्राउन ने इन अजीब ऑब्जर्वेशंस के बारे में सुना है और उन्होंने प्लैनेट थ्योरी को गलत साबित करने का फैसला किया है।
2: हमने जब इन चीजों के इन अलाइनमेंट्स को देखा तो हमें लगा कि अब तो हर कोई ये कहेगा कि प्लैनेट दिख रहा है, लेकिन हमें बहुत स्ट्रांगली ये प्रूव करना है कि ये कोई प्लैनेट नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोई नया प्लैनेट है ही नहीं।
0: माइक ने अपने साथी कॉन्स्टेंटीन बटीगन से एक कंप्यूटर सिमुलेशन रन करने को कहा ताकि पता चले कि 9th प्लैनेट का काइपर बेल्ट पर क्या असर होता है। हैरानी की बात थी कि सिमुलेशन से ऐसी इलॉन्गेटेड ऑर्बिट्स का अंदाजा हुआ जो पहले देखी गई ऐसी ऑर्बिट्स जैसी ही थी, लेकिन इस सिमुलेशन ने एक सरप्राइज भी दिया। ये सरप्राइज था कि पहले सेट के ही परपेंडिकुलर रोग ऑर्बिट्स का एक दूसरा सेट भी होना चाहिए। अगर माइक काइपर बेल्ट के अंदर इन अजीब चीजों को लोकेट कर सकते थे तो फिर प्लैनेट 9 का होना तय था।
3: मैन स्टिमुलेशन रिजल्ट्स को माइक के ऑफिस ले गया जो मेरे ऑफिस से थोड़ी ही दूरी पर है। मैंने उनसे कहा, देखो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। वो बोले, नहीं, 2012 DR30 नाम का एक ऑब्जेक्ट है जिसकी ऑर्बिट तुम्हारे वाले ऑब्जेक्ट जैसा ही है।
0: माइक का एस्ट्रॉइड इस प्रेडिक्शन से काफी सिमिलर लगता है। वो ऐसे और ऑब्जेक्ट्स के लिए पुराने रिकॉर्ड्स देखते हैं और उन्हें ऐसे चार और ऑब्जेक्ट्स इसी जगह पर मिल जाते हैं, लेकिन वो इस प्रेडिक्शन से आखिर कितने करीब हैं?
3: मुझे याद है मैं सोच रहा था कि हम अब डेटा यानी रियल ऑब्जर्वेशनल डेटा को मॉडल के ऊपर रखेंगे, और माइक ने कहा कि अगर ये दोनों मैच कर जाते हैं तो हो सकता है कि मैं बेहोश हो जाऊं।
2: थियरी कहती है कि उन्हें यहाँ पर और यहाँ पर होना चाहिए। मैंने तुरंत कैलकुलेशन की ताकि पता चले कि वो कहाँ थे, और फिर पता चला कि वो यहाँ है। 1, 2, 3, 4, 5 ये उन्हीं लाइंस पर हैं जहां हमने इनके बारे में प्रेडिक्ट किया था। जैसे ही हमने ये सब देखा हम दूर हो गया और हम ये सोचने लगे कि अब हमें इसके बारे में सबको बता देना चाहिए, क्योंकि ऐसा एक्चुअली है।
0: माइक और कॉन्स्टेंटीन सोलर सिस्टम के सबसे बड़े सीक्रेट को अनलॉक कर चुके हैं। प्लैनेट 9 वाकई असली था और इसका साइज शायद हमारी अर्थ के मास से 10 गुना तो होगा।
4: हम अपने मून या प्लूटो जैसी किसी चीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्लैनेट के साइज वाले किसी चीज की, और इसका ग्रेविटेशनल इफेक्ट इन चीजों पर असर डाल रहा है।
5: कोई बड़ा सा प्लैनेट हो सकता है और ये हमें नजर भी नहीं आया है। शायद ज्यादातर लोग इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन एविडेंट सच में रिमार्केबल है।
0: प्लैनेट 9 मौजूद है ये प्रूव करने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स को ये अपने टेलीस्कोप से नजर आना चाहिए, लेकिन एक प्रॉब्लम है। कंप्यूटर सिमुलेशन से इसकी लोकेशन का एक ब्रॉड आइडिया ही मिलता है और प्लैनेट 9 बहुत दूर है और बेहद धुंधला सा दिखता है।
1: हम प्लैनेट्स के जहाँ मिलने की उम्मीद करते हैं ये उस जगह से काफी दूर है। अगर ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में है तो शायद इसकी ज्यादातर लाइफ सन से इतनी दूर बीतती है कि हम इसे मिस कर गए।
0: प्लैनेट 9 भला कितनी दूर है? इसकी विशाल ऑर्बिट को समझने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इसका एक स्केल मॉडल बनाया जाए, और शायद ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वर्किंग स्केल मॉडल होगा।
6: प्लेनेटरी साइंटिस्ट केविन वॉश इस बारे में एक्सप्लेन करेंगे और वो शुरू है सन के साइज से।
7: तो अभी हमारे पास है ये किक बॉल, यही आज हमारे मिनी सोलर सिस्टम के स्केल को सेट करने वाली है। तो हर चीज को सन के साइज के हिसाब से किया जाएगा।
6: केविन फिलहाल इनर रॉकी प्लैनेट्स की पोजीशन को तय कर रहे हैं। इन चारों को इस स्केल पर सन के 54 मीटर के दायरे है, पर कौन से ज्यादा बड़े साइज का नहीं लगेगा। इसे एक वर्किंग सोलर सिस्टम बनाने के लिए हमें ड्रोन्स की जरूरत होगी।

0: हर ड्रोन एक अलग प्लैनेट से करता है और ऑर्बिट स्पीड्स को इस तरह सेट किया गया है ताकि एक अर्थ ईयर को सिर्फ 30 सेकेंड में कंप्लीट किया जा सके। ये अभी से साफ हो गया है कि ये इनर प्लैनेट्स कितने नजदीक नजदीक हैं और किस तरह पास वाले प्लैनेट्स दूर वाले प्लैनेट्स के मुकाबले ज्यादा जल्दी चक्कर लगाते हैं।
1: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
2: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
1: हाँ अंकल, मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
2: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
1: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
3: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
4: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
3: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
4: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
3: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
4: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
5: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
6: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
7: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
5: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
7: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
7: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
7: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
5: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com। ओम नमः शिवाय।
7: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
5: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
7: दूसरा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ तारापीठ जगन्नाथपुरी गंगा सागर कालीघाट कोलकाता रजरप्पा राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
5: तीसरा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ गया बोधगया वाराणसी अयोध्या गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
7: चौथा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ गुवाहाटी माँ कामाख्या धाम दार्जिलिंग सिलीगुड़ी गंतोक जनकपुर अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
5: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
7: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
5: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
7: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
5: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
7: बोलबम हर हर महादेव।
8: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे शुगर नायका कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स होम डेकोरेशन टॉयज एंड गिफ्ट्स ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
9: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करे 86034-48652 पे।
0: जुपिटर इस स्केल पर इस सन से एक फुटबॉल फील्ड से थोड़ी ज्यादा दूरी पर है।
10: 120 मीटर चलने के बाद हम गए हैं जुपिटर तक, जो सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट है। लेकिन इस साइज स्केल के हिसाब से भी जुपिटर का साइज सिर्फ एक लॉलीपॉप जितना है।
11: सैटर्न तक पहुंचने के लिए एक और फुट करनी होगी।
10: अब हम इस लेक बेड से आगे देख रहे हैं, मुझे ड्रोन्स दिखाई नहीं दे रहे हैं जिन्होंने काफी दूरी तय कर ली है।
11: यूरेनस तक की दूरी तो और भी ज्यादा है, ये फुटबॉल के तीन फील्ड्स जितनी या किसी एयरक्राफ्ट कैरियर की लंबाई जितनी दूरी पर है।
10: लग रहा है कि आउटर सोलर सिस्टम में काफी तेज हवा चल रही है, मुझे चिल्ला कर बात करनी होगी। यहाँ वाकई बहुत तेज हवा है।
11: यूरेनस के बाद नेपच्यून तक की दूरी ऑलमोस्ट 180 मीटर्स है। प्लैनेट 9 की डिस्कवरी से पहले हमें लगता था नेपच्यून ही सूर्य से सबसे दूर मौजूद प्लैनेट था। यह हमारे स्केल मॉडल के मुताबिक सूर्य से अप्रोक्सीमेटली 800 मीटर दूर है, लेकिन नेपच्यून की ये दूर दराज ऑर्बिट भी प्लैनेट 9 की ऑर्बिट।
12: अब हम नेपच्यून के ऑर्बिट तक पहुंच गए, लेकिन इसे भी सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग ही कहा जाएगा। हमें फीट में नापना छोड़कर माइल्स में मेजरमेंट शुरू करना होगा। हमें प्लैनेट 9 तक पहुंचने के लिए कार चाहिए।
11: प्लैनेट 9 की जो ऑर्बिट है वो बेहद एलिप्टिकल है। सूर्य से इसकी सबसे नजदीकी दूरी भी 19 बिलियन माइल्स है। ये नेपच्यून की ऑर्बिट से 6 गुना ज्यादा चौड़ी और सबसे दूर वाली जगह पर प्लैनेट 9 112 बिलियन माइल्स दूर है। और इस स्केल पर ये दूरी किकबॉल साइज के हमारे सन से करीब 18 माइल्स है।
10: यहाँ रोड खत्म हो जाती है। जहाँ हमने सोलर सिस्टम की शुरुआत की थी वहाँ से अब हम करीब 18 माइल्स आ चुके हैं, लेकिन सोलर सिस्टम के स्केल पर ये दूरी 100 बिलियन माइल से भी ज्यादा होगी। हमें प्लैनेट 9 के ऑर्बिट के सबसे दूर वाले हिस्से तक पहुँचने के लिए इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी। ये लेकिन हमें ये नहीं पता कि प्लैनेट 9 दिखता कैसा होगा, पर इसका साइज शायद इस छोटी बॉल जितना होगा। तो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स के लिए चैलेंज ये है, 18 माइल्स दूर से किसी छोटी बॉल को कैसे देखें। हमें यही काम करना है।
11: हमारे टेलीस्कोप्स को प्लैनेट 9 को देखने में कई साल लग सकते हैं, और तब तक हमारे साइंटिस्ट्स सिर्फ ये स्पेक्यूलेट ही कर सकते हैं कि मिस्टीरियस दुनिया कैसी होगी।
13: फिलहाल ये अंदाजा तो लगा रहे हैं कि प्लैनेट 9 एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमें ये बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये कैसा है, इसलिए हम इसमें जो चाहे इमेजिन कर सकते हैं। साइंटिस्ट इस बारे में बता जरूर रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि इसके बारे में कुछ पक्की इन्फॉर्मेशन मिले।
11: तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है? साइंस के हिसाब से पॉसिबिलिटीज है, और पहली वाली कमाल की है। प्लैनेट 9 उन्हीं मटेरियल्स से बना हो सकता है जिनसे अर्थ बनी है, लेकिन ये इससे 10 गुना बड़ा हो सकता है, यानी एक रॉक की अर्थ। लेकिन सन से इतनी दूर होने की वजह से ये विशाल रॉकी प्लैनेट दिखेगा कैसा? इस अजीब वॉल्केनिक प्लैनेट पर आग से बने निशान हैं, जो डीप स्पेस के ठंडे अंधेरे से न जाने कैसे निकलता है। प्लैनेट रॉक से ही बना हो सकता है, लेकिन ये इससे 10 गुना ज्यादा बड़ा होगा। इसे कह सकते हैं रॉकी सुपर अर्थ।
13: हमने जब यूनिवर्स पर नजर डाली तो हम समझ गए थे कि सबसे कॉमन टाइप का जो प्लैनेट होना चाहिए हमारी पूरी गैलेक्सी में, वो हमारे पास है नहीं, जिसे कहा जाता है सुपर अर्थ।
11: जब कोई प्लैनेट अपने होस्ट स्टार के सामने से गुजरता है तो उसकी लाइट में होने वाली हल्की सी कमी को नापकर केपलर स्पेस टेलीस्कोप नेल्स को ढूंढता है। केपलर जिन ज्यादातर एलियन सोलर सिस्टम्स को खोजता है उनकी सुपर अर्थ्स होती हैं। तो हमारे स्टार की कोई सुपर अर्थ क्यों नहीं है?
13: कहीं ऐसा तो नहीं कि प्लैनेट 9 हमारा ही मिसिंग सुपर अर्थ हो?
11: अगर प्लैनेट 9 कोई रॉक की सुपर अर्थ है तो ये नजदीक से दिखता कैसा होगा? प्लैनेटरी जियोलॉजिस्ट जेनी रेडेबा को लगता है कि प्लैनेट 9 आग और बर्फ की एक हैरत अंगेज दुनिया होगी।
14: इस वक्त हम आइसलैंड में हैं और आइसलैंड खूबसूरत से फ्लाई कर रहे हैं। ये एक ऐसी परफेक्ट जगह है जहाँ से आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि अगर प्लैनेट 9 कोई रॉकी सुपर अर्थ है तो वहाँ क्या हो रहा होगा।
11: ब्लैक माउंटेन्स और लावा फ्लोज उस हीट से बने हैं जो अर्थ के बनने के दौरान बचकर सरफेस पर पहुंच गई थी। प्लैनेट 9 और भी ज्यादा इंसुलेटिंग रॉक, तो उसके अंदर तो ऐसी और भी हीट मौजूद होगी।
14: हम एक ऐसी बॉडी की बात कर रहे हैं जिसका मास अर्थ के मुकाबले शायद 10 गुना ज्यादा हो। ये क्योंकि इतनी बड़ी है तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा इंटरनल हीट, भले ही ये सोलर सिस्टम में बहुत दूर मौजूद है, ये सन से भी बहुत दूर है, फिर भी इसमें अपनी बहुत सारी एनर्जी होगी।
11: प्लैनेट 9 के सरफेस पर उतरने के बाद शायद एक बहुत ही बेरहम दुनिया का सामना करना पड़े। ये सन से बिलियंस ऑफ माइल्स की दूरी पर मौजूद है, इसलिए इसकी सरफेस पर दूर दराज तारों की चमक और जबरदस्त जियोलॉजिकल एक्टिविटी की लाली ही नजर आएगी।
14: हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि अगर हम किसी रॉकी अर्थ प्लैनेट 9 पर हों तो वहां का लैंडस्केप बिल्कुल ऐसा ही होगा। वहां हर वक्त वॉल्केनोज इरप्ट होते रहते होंगे, साथ ही हमें वहां बहुत सारी बर्फ दिखेगी। इसकी वजह से इतना ठंड, उसके कुछ हिस्से कंडेंस होकर सरफेस पर सेटल हो चुके होंगे।
15: वहां पर वोल्केनोज होंगे, वहां पर कैनियंस होंगी, वहां पर टेक्टोनिक प्लेट्स होंगी, माउंटेन्स बन रहे होंगे, ये सारे प्रोसेस वहां अभी चल रहे होंगे, जबकि हम इसे आउटर सोलर सिस्टम में मौजूद एक ठंडी जमी हुई और बेजान दुनिया समझते हैं।
11: जब गर्म लावा सरफेस पर पहुंचता है तो ये स्पेस की ठंडक में फौरन जम जाता है, जिससे ऑब्सीडियन कहलाने वाला एक अजीब सा वोल्केनिक ग्लास बनता है, और इसकी ये बात आइसलैंड के सब जीरो वोल्केनो से मेल खाती है।
14: चलिए इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। हम एक ऐसे लैंडस्केप में हैं जहां सिर्फ स्टार्स की रोशनी है और वोल्केनोज के फटने की वजह से फैल रहे लावा की लाल चमक भी मौजूद है जो उस लैंडस्केप को रोशन कर रही है। इसके अलावा गैसेस भी मौजूद हैं जो फौरन ही बर्फ की शक्ल में बदलकर नीचे स्नो के तौर पर गिर रही हैं। ये लैंडस्केप वाकई बहुत ही ज्यादा मैजिकल होगा।
11: विशाल रॉकी प्लैनेट 9 का मामला बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि ये एक जीते जागते वोल्केनिक वर्ल्ड की शानदार तस्वीर पेश करता है। लेकिन एक प्रॉब्लम भी है।
16: अगर प्लैनेट 9 वाकई एक सुपर अर्थ है तो ये बना कैसे और ये बना कहां पर? हमारे सोलर सिस्टम में और कोई सुपर अर्थ नहीं है, और जो हमें दूसरे स्टार्स के आसपास नजर आती हैं वो अपने स्टार्स से बहुत करीब हैं। तो फिर हमारी सुपर अर्थ इतनी दूर हमारे सोलर सिस्टम के किनारे पर कैसे पहुंच गई?
11: प्लैनेट 9 के एक रॉकी सुपर अर्थ बनने के लिए ये जरूरी रहा होगा कि वो इनर सोलर सिस्टम में बने और फिर अपनी मौजूदा पोजीशन में पहुंच जाए। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, क्योंकि शुरुआती सोलर सिस्टम में इतना रॉकी मटेरियल बचा नहीं था कि उससे विशाल प्लैनेट 9 भी बन जाए, और मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स भी।
16: ये सोचना मुश्किल है कि अगर अर्थ से 10 गुना ज्यादा मास वाला कोई पंथर और उसके बावजूद आज मौजूद रॉकी प्लैनेट्स भी बन पाते।
11: अब वक्त है एक नई थ्योरी का। अगर प्लैनेट 9 आउटर सोलर सिस्टम में बर्फ से बनता तो कैलकुलेशंस हमें बताती हैं कि यह अर्थ के मास से 10 गुना बड़ा होना चाहिए था, और अगर कोई इतनी बड़ी बर्फीली दुनिया होती तो उसका लिक्विड वाटर वाला अपना एक इंटरनल ओशन ही रहा होता। वहाँ एक नई दुनिया सामने आती है जहाँ आइसी गीजर्स जमी हुई सतह की दरारों से बाहर निकलते हैं, और इसके नीचे सोलर सिस्टम में लिक्विड वाटर की सबसे बड़ी बॉडी मौजूद होती है।
17: घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
18: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
17: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
19: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
20: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
19: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
20: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
21: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
20: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
21: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
20: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
21: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
1: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
2: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
1: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
2: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
22: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
23: मैं बनूंगा।
21: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
22: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
21: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
22: ओनली ऑन रेडियो रंजन 90.4 AMZ पर।
24: प्लैनेट से हमारा सोलर सिस्टम बनता है वो एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। सन के सबसे नजदीक मौजूद 4 प्लैनेट्स रॉक से बने हैं, उसके बाद वाले 4 ज्यादातर गैस से बने हुए हैं। नेपच्यून से आगे गैस की जगह बर्फ ले लेती है, जिससे कई दूसरे वर्ल्ड्स बने हैं। ये है काइपर बेल्ट, वाटराइज्ड एस्ट्रॉइड्स की एक जमी हुई दुनिया। यहाँ ऐसे मिलियंस हैं।
25: काइपर बेल्ट स्पेस की वो जगह है जो नेपच्यून की ऑर्बिट से बाहर है, और ये दूरी अर्थ से सन की दूरी से 50 गुना ज्यादा है, यानी कि ये काफी दूरी पर है। और यहाँ पर मौजूद हैं आइसी बॉडीज, ये बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े हैं, और इनमें से कुछ रॉक्स और दूसरी चीजें भी हैं, पर ज्यादातर बर्फ है।
24: शायद प्लैनेट 9 भी इन्हीं मटेरियल्स से बना है। ये काइपर बेल्ट के सबसे बदनाम मेंबर प्लूटो का एक बड़ा वर्जन है। प्लूटो को 1930 में क्लाइड टाम्बाओ ने ढूंढा था। इस छोटी सी बर्फीली दुनिया को फौरन ही 9th प्लैनेट बता दिया गया। ये हमारे मून से भी छोटा था, लेकिन 1990s में माइक ब्राउन और कुछ दूसरे लोगों ने प्लूटो के साथ ऑर्बिटिंग करती हुई बर्फीली दुनियाओं का पता लगा लिया। प्लूटो काइपर बेल्ट में मौजूद एक आम ऑब्जेक्ट था, और फिर इसका दर्जा घटाकर ड्वार्फ प्लैनेट कर दिया गया, जिससे दुनिया को बड़ी निराशा हुई।
26: यह आइडिया हर किसी को पसंद आ रहा है कि मैंने प्लूटो का आइडिया खत्म किया और अब मैं एक नया 9th प्लैनेट लाकर उसकी कमी पूरी कर रहा हूँ। हमने जब प्लैनेट 9 को ढूंढना शुरू किया था तो उससे काफी पहले ही मेरी बेटी ने सजेस्ट किया कि आपको एक नया प्लैनेट ढूंढना चाहिए, और अगर ऐसा प्लैनेट मिलता है तो फिर से 9 प्लैनेट हो जाएंगे और हर कोई फिर से आपको पसंद करने लगेगा।
24: अगर प्लैनेट 9 एक आईसी काइपर बेल्ट वर्ल्ड है तो ये अब तक खोजी गई ऐसी सबसे बड़ी दुनिया होगी।
26: प्लूटो फिलहाल काइपर बेल्ट में मौजूद सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, और इसका मास अर्थ के मुकाबले 1% से भी कम है, जबकि प्लैनेट 9 का मास अर्थ से 10 गुना ज्यादा है। तो काइपर बेल्ट के सबसे बड़े नोन ऑब्जेक्ट और प्लैनेट 9 के साइज के बीच हजारों गुना मास का फर्क है।
25: तो हम बात कर रहे हैं सुपर मेगा अल्ट्रा प्लूटो की, जो बहुत बहुत बड़ा है, और कि इस तरह की कोई आइस बॉल कैसी दिखती होगी?
26: ये सोचना बहुत अजीब बात नहीं होगी कि इस जगह पर अब भी इंटरनल जियोलॉजिकल एक्टिविटी चल रही है, जो इस दुनिया को बेहद ठंडा और बेजान होने से बचा रही है।
24: अगर हम अंधेरे से इस हाइपोथेटिकल मेगा प्लूटो प्लैनेट 9 पर नजर डालते हैं तो हमें एक बड़ी सी बर्फीली दुनिया मिलती है। यहाँ सुपर प्लैनेट 9 के मुकाबले कहीं कम रॉक है, लेकिन बर्फ के मास से ही इतनी ग्रेविटी बन जाती है ताकि वहाँ कोर के गहराई वाले हिस्से में भी हीट जनरेट हो सके।
13: किसी प्लैनेट को जिंदा रखने के लिए सबसे जरूरी चीज है मास। क्या इसके पास अंदरूनी हिस्से को गर्म रखने लायक मास है? जिस चीज का मास अर्थ से 5-10 टाइम ज्यादा होगा, शायद उसका अंदरूनी हिस्सा गर्म होगा।
24: नजदीक से देखने पर सरफेस पर जबरदस्त एक्टिविटी दिखती है, लेकिन ये वॉल्केनोज वाटर आइस उगलते हैं, लावा नहीं।
13: अगर जायंट प्लूटो जैसी कोई चीज मौजूद है तो ये बहुत अमेज गिप होगा। यहाँ पर आइस वोल्केनोस जमे हुए पानी के जेट्स छोड़ते होंगे, यहाँ बर्फ बरसती होगी। हो सकता है कि इस लैंडस्केप में ऐसे हजारों इरप्शंस होते रहते हों।
24: ये ड्रामेटिक और पीला इलाका एक सीक्रेट वर्ल्ड का गेटवे है, यानी एक ऐसे बड़े से समुद्र का दरवाजा जहाँ पानी और आइस क्रिस्टल्स मिली जुली शक्ल में है। शायद ये सोलर सिस्टम में अकेली सबसे बड़ी वाटर बॉडी है।
15: यहाँ इतनी गर्मी जरूर मौजूद होगी कि उससे यहाँ पानी बना रहता है, तो ये कोई टेरेस्ट्रियल रॉकी प्लैनेट नहीं है और ना ही ये कोई यूरेनस या नेपच्यून है। बेशक ये एक मेगा ओशन वर्ल्ड है, लेकिन शायद ये बहुत ठंडा है।
24: काइपर बेल्ट में मौजूद प्लूटो और दूसरी चीजें छोटी है, तो इन्हीं बिल्डिंग मटेरियल्स ने एक साथ मिलकर इतना बड़ा प्लैनेट कैसे बना लिया।
26: तो इस आइडिया के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि प्लैनेट 9 प्लूटो का ही कोई बहुत बड़ा रूप है। हमारा ये सोचना कि सोलर सिस्टम के बहुत दूर वाले हिस्से में इतना महा ही नहीं कि उसके एक साथ आने से इतना बड़ा प्लैनेट बन पाता।
13: अगर आप काइपर बेल्ट पर नजर डालें तो वहाँ छोटी छोटी आइसी बॉडीज नजर आती हैं, वहाँ पर बड़ा कुछ नहीं है। और हमें लगता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि डस्ट और गैस की जिन डिस्क से प्लैनेट्स बने उनमें सन के नजदीक ज्यादा स्टफ था, और जब तक ये स्टफ प्लूटो वाली जगह पहुंचा तब इतना मटेरियल नहीं था कि उससे अर्थ के मास से 5 to 10 गुना बड़े मास वाला कोई प्लैनेट बन पाता।
24: तो अगर प्लैनेट 9 बर्फीले बाहरी सोलर सिस्टम में नहीं बना और ये रॉकी इनर सोलर सिस्टम में भी नहीं बना, तो ये बना कहाँ? इस बात की गुंजाइश ज्यादा है कि प्लैनेट 9 हमारे सोलर सिस्टम के बीच वाले गैस रिच जोन में बना, जहाँ जुपिटर, सैटर्न और नेपच्यून भी गैस से बना। प्लैनेट 9 नेपच्यून जैसा भी हो सकता है, पर शायद उससे छोटा, एक मिनी नेपच्यून। लेकिन ये दूसरे गैस जायंट्स के मुकाबले इतनी दूर तक, और ये गैस जरा एक अजीब सी ट्रांसल्यूसेंट दुनिया के बारे में सोचिए, जो अंधेरे में गहराई पर रहने वाले किसी बड़े से क्रीचर जैसी चम जो हलचल पैदा कर रही है। कहीं ये कोई प्लैनेट तो नहीं?
13: मुझे ये सोचकर हैरानी होती है कि हम आसमान में दूसरे स्टार्स के चारों तरफ घूमने वाले हजारों प्लैनेट्स के बारे में जानते हैं। हमने कैसे अपने ही सोलर सिस्टम में एक बड़े प्लैनेट को मिस कर दिया।
24: प्लैनेट 9 के बारे में हम करीब करीब कुछ नहीं जानते, फिर भी इसके मौजूद होने की पॉसिबिलिटी है। हमें कुछ हैरान करने वाले ऑप्शंस देती है। ये एक बड़ी पथरीली दुनिया हो सकती है जिसके सेंटर में आग हो, या फिर एक आइसी वर्ल्ड जिसमें हो एक जायंट स्लशी से जुड़ी प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ नई बातें सामने आई हैं।
25: तो अगर ये रॉकी मेटालिक सुपर अर्थ नहीं है और ये प्लूटो जैसी बर्फ की कोई बड़ी बॉल्ब है क्या, तो इसका जवाब है एक गैस जायंट। तो यही पॉसिबिलिटी मुझे ज्यादा दमदार लगती है, एक गैस जायंट।
13: जब आप प्लैनेट 9 के मास के बारे में सोचते हैं और फिलहाल कहाँ है, तो मुझे यही लगता है कि ये शायद नेपच्यून का एक मिनिएचर वर्जन है।
24: गैस से बने बड़े प्लैनेट्स को हमारे सोलर सिस्टम का मॉन्स्टर्स कहा जा सकता है। अर्थ जैसी सॉलिड सरफेस के बजाय गैस जायंट्स का एटमॉस्फेयर बहुत घना और उथल पुथल भरा होता है, जिसकी मोटाई हजारों लाखों किलोमीटर होती है, और ये इनके छोटे से रॉकी कोर्स को। जुपिटर सबसे बड़ा गैस जायंट है, इसका मास अर्थ से 300 टाइम्स से भी ज्यादा है। जुपिटर से आगे बढ़ें तो गैस जायंट्स और छोटे होते जाते हैं। ये है सैटर्न, यूरेनस और फिर नेपच्यून, जिसका मास अर्थ से करीब 17 टाइम्स ज्यादा है। अगर प्लैनेट 9 एक गैस जायंट है तो ये और भी छोटा होगा, एक मिनी नेपच्यून जैसा।
25: अगर प्लैनेट 9 एक मिनी नेपच्यून है, अगर ये काफी कुछ नेपच्यून जैसा है, तो ये अर्थ जैसे किसी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जैसा नहीं होगा और जुपिटर जैसे किसी गैस जायंट जैसा भी नहीं होगा। मुझे लगता है नेपच्यून इन दोनों के बीच की चीज है और इसका कोर शायद रॉकी होगा, पर एस्ट्रोनॉमर्स को लगता है कि ये ज्यादातर आइस से बना है जिसमें मीथेन है, पानी है और दूसरी कई चीजें, और उसके ऊपर ही थिक एटमॉस्फेयर है।
24: नेपच्यून के घने बादलों का रंग नीला है और इनमें मीथेन के मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन प्लैनेट का एटमॉस्फेयर ट्रांसपेरेंट हो सकता है।
26: यहाँ इतनी ठंडक है कि सन से कोई एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती ही नहीं है, और इस वजह से एटमॉस्फेयर में जो भी भारी चीजें या मॉलिक्यूल्स हैं वो वक्त के साथ साथ सरफेस पर गिरते गए होंगे और सबसे हल्के एलिमेंट्स सबसे हल्के मॉलिक्यूल्स ही एटमॉस्फेयर में टिके रहे होंगे। तो हो सकता है कि वहाँ सिर्फ प्योर हाइड्रोजन या हीलियम ही हो और इस वजह से एटमॉस्फेयर एकदम
15: सन से इतनी दूरी कोई मिनी नेपच्यून कैसा दिखता होगा? शायद ये किसी जेलीफिश जैसा लगता होगा जो ट्रांसलूसेंट होती है, जिसके अंदरूनी ऑर्गेनिज्म को आप देख सकते हैं और प्लैनेट के अंदरूनी हिस्से पर नजर डाल सकते हैं।
24: बेशक यहाँ एटमॉस्फेयर ट्रांसपेरेंट हो सकता है, लेकिन ये प्लैनेट शांत बिल्कुल नहीं है। इसके अंदरूनी हिस्से में थंडर्स और हल्की रोशनियाँ चमकती रहती हैं, क्योंकि दूर दराज स्टार्स से आने वाली सोलर विंड्स इस प्लैनेट के मैग्नेटिक फील्ड्स तक पहुँचती है।
15: अगर हम प्लैनेट के अंदरूनी हिस्से को देखें तो ऐसा लगेगा जैसे डीप सी के खूबसूरत ऑर्गेनिजम्स हों जो बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं। और अगर इस प्लैनेट को कंपेयर किया जाए तो यहाँ हमें डीप ओशन के अंधेरे के मुकाबले स्पेस के अंधेरे जैसा ज्यादा नजर आएगा।
24: प्लैनेट 9 के अंदर गहराई से देखने पर शायद साइंटिस्ट्स को कुछ ऐसी चीज स्टडी करने का अनोखा मौका मिलेगा जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। यह है एक जायंट प्लैनेट कोर। अक्सन 2011 में साइंटिस्ट्स ने सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करके हमारे सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन की नकल करने की कोशिश की, लेकिन जब तक उन्होंने इस मिक्सचर में एक एक्स्ट्रा गैस जायंट प्लैनेट नहीं जोड़ा, उनके मॉडल कामयाब नहीं हुए।
26: हमारे करंट सोलर सिस्टम को रिप्रोड्यूस करना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन एक साइंटिस्ट ने यह कहा कि अगर हम अपने सोलर सिस्टम में एक पांचवा बड़ा प्लैनेट जोड़ दें तो वो प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम से इजेक्ट हो जाएगा और फिर उतने ही प्लैनेट्स बचेंगे जितने आज हमारे पास हैं।
24: तो कहीं प्लैनेट 9 वही गुम हुआ गैस जायंट तो नहीं जिसके बारे में सुपर कंप्यूटर्स ने प्रिडिक्ट किया था? कंप्यूटर मॉडल्स दिखाते हैं कि जुपिटर की जबरदस्त ग्रेविटी की वजह से ये इजेक्ट हो गया था, लेकिन क्या प्लैनेट 9 फिर अपनी ग्रेविटेशनल खूबियों की वजह से हमारे सोलर सिस्टम के किनारे पर डिग गया?
13: कभी कभी हमारे मैथमेटिकल मॉडल्स ऐसी चीजें प्रिडिक्ट करते हैं जो हमारे हिसाब से इम्पॉसिबल हैं, और फिर वो हमें मिल जाती हैं। हम ये जानते हैं कि अगर बनते हुए प्लैनेट्स के बीच एक मिनी नेपच्यून को शामिल कर दे तो मॉडल्स बेहतर ढंग से काम करेंगे। हो सकता है हमें वो की मिल गई हो प्लैनेट 9।
24: हम ऐसे जायंट प्लैनेट्स के बारे में जो इजेक्शन का शिकार हुए। साइंटिस्ट्स ने इजेक्टेड प्लैनेट्स को स्टार्स के बीच वाले खुले स्पेस में फ्लोट करते देखा है, तो कहीं प्लैनेट 9 के साथ भी कुछ ऐसा ही तो नहीं हुआ?
25: ये हो सकता है कि अर्थ से भी कोई बड़ा प्लैनेट बन रहा हो। डिस्क के इस कमाल के एरिया में कोई सुपर अर्थ जैसी चीज, कोई गैस जायंट बनने की राह पर हो जहां ये बहुत सारे मटेरियल्स के बीच खिंच कर आ गई हो और जुपिटर जैसा गैस जायंट बन गई हो। फर्क ये है कि ये जुपिटर के ज्यादा नजदीक आने से पहले ही ग्रेविटेशन की वजह से इस गजब के फीडिंग ग्राउंड से दूर होकर बाहरी सोलर सिस्टम से कुछ ज्यादा चली गई हो। ऐसा हो सकता है।
24: क्या प्लैनेट 9 वाकई एक फ्रोजन मिनी नेपच्यून है जो बाहरी सोलर सिस्टम के क्योस वाले इलाके में पहुंच गया है? फिलहाल तो हमें यही लगता है, लेकिन एक ऑप्शन और भी है। कुछ साइंटिस्ट्स को लगता है कि हो सकता है प्लैनेट 9 हमारे सन के आसपास बना ही ना हो। तो क्या यह हमारा प्लैनेट एक ऐसी एलियन दुनिया है जिसे किसी और स्टार ने छीन लिया?
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
24: अगर मिस्टीरियस प्लेनेट 9 एग्जिस्ट करता है तो ये सोलर सिस्टम में मिला अब तक का सबसे दूर वाला प्लेनेट है। ये नेपच्यून से भी करीब 20 गुना ज्यादा दूर है। तो आखिर ये वहां पहुंचा कैसे? ये वहां बर्फ से बना था या फिर ये एक रॉकी सुपर अर्थ या एक मिनी नेपच्यून के तौर पर इनर सोलर सिस्टम से बाहर निकला था? इस बारे में रिसर्चेस चल रही। एक और ऑप्शन तो बहुत ही गजब का है।
25: तो सवाल ये है कि अगर ये दोनों ही बातें ठीक नहीं है तो ये आया कहां से? इस बारे में एक और भी जवाब हो सकता है और वो ये है, 9 आउटर स्पेस से आया एक एलियन विजिटर है।
24: हमारा सन उन 200 बिलियन स्टार्स में से एक है कि वे गैलेक्सी के बीच में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल का चक्कर लगा रहे हैं। इन ज्यादातर स्टार्स में शायद कई प्लैनेट्स होंगे और अब साइंटिस्ट्स को ये लगता है कि वक्त वक्त पर दोस्त एक दूसरे के कुछ ज्यादा ही करीब से गुजरते हैं। नतीजा होता है प्लैनेटरी थेफ्ट।
13: हम जानते हैं कि सन गैलेक्सी में घूमता है। पॉसिबल है कि सन किसी दूसरे सोलर सिस्टम के इतने करीब से गुजरे कि एक प्लैनेट ही चुरा ले।
24: आज हमारा सन स्पेस में वैसे ही अकेला घूमता है जैसे ओपन ओशन में कोई यॉट। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। अगर हम 4.6 बिलियन ईयर्स पीछे जाएं, तो हमारा लोकल स्टार क्लस्टर कहीं ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पर था और तब अब अपनी जगह बदल सकता था।
7: सन एक ऐसी नर्सरी में पैदा हुआ जहां और भी हजारों स्टार्स थे। इस हार्बर में भी चारों तरफ बहुत सारी बोट्स, बहुत सारे नेबर्स मौजूद। के साथ भी ऐसा ही था।
24: सन जैसे स्टार्स का जन्म स्टेलर नर्सरीज में होता है। ये गैस के ऐसे विशाल बादल हैं जो कोलैप्स हुए और इनमें हजारों लाखों स्टार्स बने जो एक दूसरे के बहुत करीब हैं। एस्ट्रोनॉमर्स को लगता है कि स्टार्स की इसी तंग जगह में मौजूद अफरा तफरी के बीच से हमारे सन की ग्रेविटी ने प्लैनेट नर्सरी एक पड़ोसी से चुरा लिया होगा।
7: जरा इस बारे में सोचिए, एक एलियन स्टार है और उसके आसपास एक प्लैनेट बन जाता है, यही है प्लैनेट 9। तभी पास से सन गुजरता है और ये इतने करीब होता है कि ये प्लैनेट 9 को अपने साथ चुराकर गैलेक्सी में ले आता है।
24: ये बात साइंस फिक्शन जैसी लगती है, लेकिन शायद हमारे सन का एक क्रिमिनल रिकॉर्ड हो सकता है।
25: इस बात के एविडेंसेस हैं कि आज हमारे सोलर सिस्टम में जो कॉमेट्स हैं, उनकी शुरुआत शायद हमारे सोलर सिस्टम में ना हुई हो, उन्हें दूसरे स्टार्स ने चुराया हो। और अगर ऐसा है तो ये सोचना ही नहीं है कि कोई ऐसा प्लैनेट जो किसी और स्टार के इर्द गिर्द बना है, वो किसी और तरीके से हमारे सोलर सिस्टम में आकर हमारी फैमिली का हिस्सा बन गया होगा।
24: अगर प्लैनेट 9 वाकई किसी और स्टार से निकला है तो हम पक्के तौर पर कैसे जानेंगे एलियन विजिटर है?
26: इसके लिए हम प्लैनेट 9 का एक DNA टेस्ट करना चाहेंगे। इसकी सरफेस से कुछ मटेरियल लेंगे और उस चीज को ढूंढेंगे जो हमारे हिसाब से हमारे सन के आसपास नहीं बन सकती, क्योंकि ये हमें हमारे सोलर सिस्टम में कहीं नजर नहीं आती।
25: हो सकता है कि हमें इस पर अच्छी तरह नजर डालने के लिए और इसके केमिकल कॉम्पोजिशन को जानने के लिए एक प्रोब भी भेजना पड़े, ताकि हम इसकी ऑर्बिट के बारे में सही सही जान सकें। इस तरीके से शायद हमें ये पता लगे कि कुछ ऐसे सॉलिड एविडेंस हैं जिनसे ये पता चलता है कि ये यहाँ बना है या ये कहीं और बना है।
24: लेकिन इससे पहले कि हम प्लैनेट 9 तक कोई प्रोब भेजें, पहले तो हमें इसे ढूंढना पड़ेगा। माइक ब्राउन जैसे एस्ट्रोनॉमर्स ने इसके मिल सकने वाली जगह को मैथ के जरिए और नैरो डाउन करके इस चैलेंज को थोड़ा और आसान बना दिया है।
26: फिलहाल हम ये जानते हैं कि प्लैनेट 9 आसमान के जिस हिस्से में है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो सकता है, लेकिन हमें लगता है कि हम इसके बारे में थोड़ा और बेहतर जानते हैं। हमने आसमान के उस इलाके को पिन पॉइंट कर लिया है जहाँ ये मौजूद है और वो बस इतना बड़ा है। ये भी काफी बड़ा हिस्सा है लेकिन पूरे आसमान के मुकाबले छोटा है।
24: माइक का आसमान वाला ये हिस्सा ओरायन के कॉन्स्टेलेशन के नजदीक है। इन्हें प्लैनेट 9 को ढूंढने के लिए सर्दियों तक इंतजार करना पड़ेगा जब ओरायन आसमान में सबसे ऊंचाई होगा, तब ये हवाई में मौजूद सुबरू इंफ्रारेड टेलीस्कोप का इस्तेमाल करेंगे। इस टेलीस्कोप को डीप स्पेस के कोल्ड बैकड्रॉप में बहुत दूर मौजूद ऑब्जेक्ट्स के बेहद हल्के हीट सिग्नेचर को भी पकड़ने के लिए फाइन ट्यून किया गया है। बेशक प्लैनेट 9 जमा हुआ हो फिर भी ये स्पेस से ज्यादा गर्म होगा और इस कमाल के टेलीस्कोप को टेम्परेचर में बस इतना मामूली सा फर्क ही चाहिए होता है।
8: हम आसमान के उसी एरिया में कुछ हफ्तों के अंतर पर ली गई दो पिक्चर्स को देखना चाहते हैं। स्टार्स तो मूव

0: फैमिली का घर हो सकता है। ये भी हो सकता है कि ऐसे किसी मून पर लाइफ मौजूद हो जिसकी सन से दूरी 100 बिलियन माइल्स है।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमलश्री में।
6: जी हाँ, कमलश्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
9: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
10: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
0: अगर प्लैनेट 9 वाकई है तो ये सोलर सिस्टम के बर्फीले बाहरी हिस्सों में होगा, लेकिन सन से 100 बिलियन माइल्स दूर भी लाइफ का होना मुमकिन है। खुद इस प्लैनेट पर नहीं, बल्कि इसके मून्स के अंदर।
11: हम काफी पहले से ही मून्स को बेहद मामूली जगह मानते आए हैं, पर कमाल की बात ये है कि लाइफ मिलने के हिसाब से ये सबसे अच्छी जगह हो सकती हैं। हमारे सोलर सिस्टम में ही प्लैनेट्स के मुकाबले प्लैनेट्स के मून्स पर लाइफ मिलने की गुंजाइश ज्यादा है।
0: मून्स एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट्स के लिए काफी एक्साइटिंग होते हैं, क्योंकि कभी कभी इनमें लिक्विड वाटर हो सकता है, चाहे सन से कितनी ही दूर क्यों ना हो, और इसकी वजह होती है टाइडल हीटिंग। इलिप्टिकल ऑर्बिट्स पर मौजूद मून्स को उनके पैरेंट प्लैनेट की ग्रेविटी बार बार कुचलती और समेटती जाती है, इससे हीट पैदा होती है और बर्फ पिघलने से लिक्विड वाटर के अंडरग्राउंड समुद्र बन जाते हैं, और लाइफ के लिए पानी जरूरी है ये हम जानते हैं। इनका साइज साइंटिस्ट्स के प्रेडिक्शंस जितना ही बड़ा है, तो इसके कई मून्स हो सकते हैं, और ऐसे किसी मून पर गर्म सॉल्टी ओशंस हो सकते हैं जहां लाइफ सरवाइव कर सके।
12: तो अगर प्लैनेट 9 मिलता है और उसके आईसी मून्स होते हैं और इन आईसी मून्स की ऑर्बिट एकदम सही होती है, तो इसके अंदर हीट मौजूद हो सकती है। ऐसे में सन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है।
13: सरफेस के नीचे लिक्विड वाटर मौजूद हो सकता है जो ऐसे मून की इंटरनल जियोलॉजी से गर्म हो। वहाँ पानी वाले गीजर्स हो सकते हैं जो हमें सैटर्न और जुपिटर के मून्स पर से निकलते नजर, और यही सब प्लैनेट 9 पर भी हो सकते हैं।
0: ऐसे प्लैनेट 9 के बारे में सोचिए जिसके कई बड़े बड़े मून्स हों। ऐसा सबसे नजदीकी मून जबरदस्त ग्रेविटी की वजह से मेल्टिंग प्वाइंट तक गर्म होता है। यहाँ लाइफ नहीं है, यहाँ जो भी पानी था वो लाखों साल पहले उबला था, जिससे रॉक की एक गर्म और एरिड बॉल बनी। इससे भी और आगे एक दूसरा बड़ा सा मून है, और ये नई दुनिया एक चमकदार व्हाइट वाटर आइस से घिरी है। लेकिन यहाँ एक सीक्रेट छुपा है, गर्म लिक्विड वाटर का एक बड़ा सा ओशन, जिसे ओशन फ्लोर पर मौजूद वोल्केनिक वेंट्स गर्म करते हैं। इस छिपी हुई दुनिया में एक्टिव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा है, और ये हल्के रंग के बेहद अजीब एक्वेटिक क्रीचर्स को पाल भी सकती है।
12: हम लाइफ को जोड़ते हैं सन के साथ। हमारे हिसाब शुरुआत ऐसे ही हुई, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमें सन की जरूरत नहीं। ओशन के बॉटम में ऐसे ट्यूब

0: हैं जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स के बल पर जिंदा हैं, उन्हें अपनी जरूरत के सारे केमिकल्स और हीट अर्थ के अंदरूनी हिस्से में मिल जाते हैं।
1: नामुमकिन नहीं है। कई डेकेड्स पहले अगर ऐसी बात कोई कहता तो शायद लोग उसकी बात पर हंस देते, लेकिन उसके बाद से हम एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स में मौजूद लाइफ के बारे में इतना कुछ जान चुके हैं कि अब ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। हमारे सोलर सिस्टम प्लूटो से भी आगे किसी प्लैनेट पर लाइफ हो सकती है।
2: जहाँ कहीं भी एनर्जी है, जहाँ कहीं भी हीट है, वहाँ लाइफ हो सकती है, यहाँ तक कि प्लैनेट 9 पर भी।
3: एक अच्छी खबर है, अगर प्लैनेट 9 है तो हम शायद उसे अपने टेलीस्कोप से देख पाए। जुपिटर और सैटर्न के एक्टिव मून्स रात में सबसे चमकदार नजर आते हैं। इसकी वजह है वो गर्म सतह में मौजूद दरारों से निकलता है और फिर उसके जमने से पानी की सफेद लेयर्स बन जाती हैं। अगर प्लैनेट 9 के मून्स पर लिक्विड ओशंस होंगे तो उनकी सरफेस भी ब्राइट दिखनी चाहिए। प्लैनेट 9 और इसके मून्स को देखने की दौड़ जारी है, लेकिन जब इसकी पहली पिक्चर्स अर्थ तक तो हमें क्या नजर आएगा इसका बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है।
2: जहाँ तक प्लैनेट 9 को ढूंढने की बात है, मुझे फिलहाल कमाल की टेंशन महसूस होती है। हमारे पास ऐसे जायंट टेलीस्कोप्स हैं जो आसमान में इसे ढूंढते रहते हैं, तो मैं बड़ी उम्मीद के साथ इसके मिलने का इंतजार कर रही हूँ।
4: मेरी बेटी को लगता है कि प्लैनेट 9 पिंक है और उस पर पर्पल डॉट्स है, शायद उसकी बात सही भी हो।
3: अगर और जब हमें प्लैनेट 9 मिल जाता है तो उसके बाद से अपने सोलर सिस्टम के बारे में हमारा नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा।
0: ये बहुत ही एक्साइटिंग बात है। अगर ये मौजूद है तो हमें ये जरूर सिग्नल दे रहा होगा कि हमारे सोलर सिस्टम के बारे में हमें अभी बहुत कुछ जानना है। हमने इसमें जितने सीक्रेट्स की मौजूदगी सोची थी, ये उससे भी कई गुना ज्यादा होंगे।
5: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
6: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
5: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
6: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गेठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
5: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
6: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
0: ओम नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम, हर हर महादेव।
2: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
3: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87894-18744।
5: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
6: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
5: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का आधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
6: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
7: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
8: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
9: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
10: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003। 62042434003।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: मैं बनूंगा,
5: मैं बनूंगा, मैं भी बनूंगा।
0: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे,
0: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में।
3: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 अमर।

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइंस तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 8570-32042 पे।
6: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
7: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
8: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
7: अरार मोड़ एसपी कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
8: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
7: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
8: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
7: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
8: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
7: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
8: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
2: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
3: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94 309 45 651 या 97 097।

0: और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूं?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
3: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
3: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
3: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।

0: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
2: मैं बनूंगा।
1: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रंजीन 90.4 AMZ पर।
3: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
4: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
3: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
5: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
3: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
5: जानकारी के लिए कॉल करें 99554-94-53
3: और 90-97-61-60-02।
6: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
7: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
8: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
9: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
8: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
10: हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, सलाम, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM और मैं हूँ आपके अपनी रेडियो दोस्त आरजी सोनी, आप सभी के बीच हाजिर हो चुकी हूँ आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस के साथ। 12:03 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में और अभी से लेकर 4 बजे तक मैं आप सभी के साथ हूँ, आपकी फरमाइशों के साथ हूँ। और अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं कार्यक्रम में, जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप, इंस्टा, कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। नंबर है व्हाट्सएप के लिए 98527-88291 पे व्हाट्सएप मैसेज करिए या फिर अपनी आवाज में एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्ड करिए और हमें भेज दीजिए अपने नाम, पता और गाने की फरमाइश के साथ। उसके अलावा आप रेडियो रिमझिम के इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज करके अपने गाने की फरमाइश को सुन सकते हैं या फिर कॉल करिए 72-77-16-65-96 पे और जुड़ जाइए अपने सो योर वॉइस योर चॉइस से। और चलिए बिना देरी के आज की शो की आगाज करते हैं। जब तक आपकी मैसेज पहुंचती है तब तक एंजॉय करते हैं एक खूबसूरत से गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की बात करें तो काफ़ी सारे मैसेज हमारे पास पहुँच चुके हैं और काफ़ी सारे लिसनर हमसे जुड़ चुके हैं, तो बिना देरी के बढ़ेंगे आज की अगली पहली फरमाइश की तरफ। उससे पहले यहाँ काफ़ी सारे मैसेज है और मैसेज है यहाँ मुस्तफ़ा जुड़ चुके हैं सऊदी से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। और अनिश यादव है गाँव दुमरा यदुवंशी टोला से और गाना सुनना है तेरा जिक्र, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी, बने रहिए हमारे साथ में सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि नमस्कार जी, हम भी जुड़ गए हैं, सगीर आलम अंसारी हैं तेजपुर आसाम से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी, बिल्कुल हाजिरी लग चुकी है। एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि तेरे संग प्यार में नहीं छोड़ना और गाने के साथ है नौशाद अली जी मोतिहारी जिला से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और फरमाइश प्ले करने की पूरी कोशिश है, यहाँ वॉइस मैसेज पहुंचा हुआ है, नाम मेंशन नहीं है तो नाम जरूर बताइए आप कौन है कहाँ से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि कल आधा सो करके कहाँ चली गई थी भारती जी को देख करके, और कैफ मोबाइल गोंडा यूपी से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है, कुछ काम था जिसकी वजह से चले गए थे और उसके बाद भारती जी आ गई थी। और आगे यहाँ एक और मैसेज है लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून, मैं भी आ गया हूँ और आप आई बाहर आया और मेरा गाना चला दीजिएगा बिल्कुल। और MD महमूद जी है केरला से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि वेरी वेरी नाइस सॉन्ग और नाम मेंशन नहीं है, नाम बताइए आप कौन है कहाँ से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। और गाने की फरमाइश है तो बिल्कुल प्ले करने की आपकी फरमाइश जो है पूरी कोशिश है। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि नमस्ते सोनी जी, और हर सुबह आप मुस्कुराती रहे, हर शाम आप गुनगुनाती रहे, दुआ है कि आप जिसे भी मिले, मिलने वाले को आपकी याद सताती रहे, सुपर बात और है क्या बात है। और मैसेज के साथ है अनिल जी छोटपुर से लिख रहे हैं कि जब आपका शो आ गया तो प्यार तो आएगा ही, और नाइस ओपनिंग सॉन्ग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में जुड़े। और आगे यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि नमस्कार सोनी जी, आप कैसी है, और मैं भी शो से जुड़ गया हूँ रोहित देहरादून से, और चिरागों में इतना नूर ना होता तन्हा दिल मजबूर ना होता, हम आपसे मिलने जरूर आते अगर आपका घर इतना दूर ना होता, लिखने नाइस ओपनिंग सॉन्ग। और आज बारिश तो हद कर दी है, हम लोगों को घर से बाहर निकलने ही नहीं दे रहा है, तो जरूरत क्या है आपको बाहर निकलने की, ऐसे तो आप हमेशा बाहर घूमते ही हैं, कम से कम बारिश के बहाने तो आराम करिए। और आगे यहाँ और भी सारे मैसेज लिख रहे हैं कि आपका गाना बहुत ही अच्छा लगा, दिल खुश हो गया गाना सुन करके। और कृष्णा कुमारी जुड़ चुके हैं पिपरा नारायण से, बहुत बहुत स्वागत है, गाना सुनना है थम के बरस जरा थम के बरस, बिल्कुल आपकी फरमाइश है, प्ले करेंगे, बने रहिए हमारे साथ में सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। यहाँ प्रमुख जी जुड़ चुके हैं लुधियाना पंजाब से, लिख रहे हैं कि गाने की फरमाइश और डेडिकेट है RJ सोनी एंड सभी लिस्नर को, बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत है आपका, और फरमाइश है प्ले करने की कोशिश है आपकी भी फरमाइश को। यहाँ जम्मू कश्मीर से श्री सागर दीवाना जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है, लिख रहे हैं कि नाइस ओपनिंग सॉन्ग मैडम जी, सुनकर मजा आ गया बहुत खूब। और यहाँ राम कुमार पांडे जी जुड़ चुके हैं लंदन से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। इरशाद मास्टर जी हैं धनाव से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। न्यू फैशन टेलर नागपुर महाराष्ट्र से, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और फरमाइश है तो प्ले करने की पूरी कोशिश है। मनीष जुजाक है फाजिलनगर कुशनगर उत्तर प्रदेश से, धनीश मिश्रा जी दिल्ली से। एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि सोनी जी नमस्कार, आपका इंतजार हम लोगों को रहता है, 12 बजने का इंतजार और पहले राउंड में गर्दा उड़ा दिया आपने, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और मैसेज करने वाले हैं राम कुमार जी बालाघाट MP से, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। और यहाँ सोनू जी जुड़ चुके हैं सऊदी अरब से फरमाइश के साथ, बहुत बहुत स्वागत। प्रीति रदास जी हैं, लिख रहे हैं कि सुपर ओपनिंग सॉन्ग, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। महमूद अंसारी जयपुर से, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अहमद अली जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और बिना देरी के बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ, और फरमाइश है तेरा जिक्र, और फरमाइश करने वाले हैं अनिश यादव जी दुमरा यदुवंशी टोला सिवान से, तो एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।
1: फोटोग्राफी इज अ हॉबी दर्शन, नॉट अ करियर। पहले तुम अपना फ्यूचर संभालो, फिर हमारे फ्यूचर के बारे में सोचो।

और यहाँ अनिश यादव जी की तरफ से मैसेज पहुंच गया, लिख रहे हैं थैंक यू मैम गाना बजाने के लिए। और यहाँ और भी कई सारे मैसेज है। मिस्टर कुमार जुड़ चुके हैं मोतिहारी जिला से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और लिख रहे हैं कैसे हो, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं।

0: 93.4 रेडियो रंजन सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश पहुंची थी सिवान यदुवंशी टोला से अनिश यादव जी की। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मैडम जी पूरा मैसेज पढ़िए। बिल्कुल पूरा पढ़ेंगे, पहले नाम तो शामिल कर ले, फिर फरमाइश के टाइम में आप सबकी मैसेज पढ़ देंगे। और यहाँ मैसेज है, अहमद अली जी है सारे वार्ड नंबर 1 से, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम मैम और गुड आफ्टरनून मैम सभी। और आप आती हैं तभी प्यार आता है, ओहो। और सुपर ओपनिंग सॉन्ग आते आते धमाल मचा दिया। और आगे यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि हेलो मैम गुड आफ्टरनून, और मैं भी जुड़ गया हूँ। अरशदुल्ला अंसारी जुड़े हुए हैं झारखंड से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और फरमाइश है, प्ले करने की पूरी कोशिश है, बने रहिए हमारे साथ में। अजय जी जुड़ चुके हैं अयोध्या से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। नंद कुमार जी जुड़ चुके हैं छिंगरौली MP से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और गाने की फरमाइश है, प्ले करेंगे फिलहाल बिना देरी के, अगली फरमाइश की तरफ रुख करेंगे। और अगली फरमाइश है कॉल के माध्यम से। हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन में।
1: नमस्ते मैम
0: जी। नमस्ते,
1: हम थावे से रामा जी प्रसाद राजन मार्केट
0: जी। का हाल चाल बा? आज तो पहले ही बाजी मार गए। हां
1: सोनिया की आज हमारे नंबर आए चाहिए
0: जी जी, और लग भी हो गई।
1: हां गाना सुना दे बोल बम वाला।
0: बोल बम वाला गाना हम ना चलाएं, ओकरा खाते हेलो माय चॉइस में फरमाइश करें।
1: ए मैना
0: ना
1: जी, तब सुना दे कि हमारा मेरे आँख तुमको देखता है तो मेरा क्या कसूर है।
0: अच्छा, तुम्हें देखे मेरी आँखें, ये वाला गाना ना।
1: हाँ हाँ,
0: चलिए तो प्ले कर दे बनी गाना।
1: नमस्ते
0: नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद सुमे कॉल करने।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
6: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
5: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
6: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
5: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
7: 90.4 रेडियो रंजन सुन रहे आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का, और अभी गाना सुन रहे थे राजेश कौशल जी की फरमाइश थी मुंबई से, और यहाँ मैसेज भी पहुंच गया इनके तरफ से, लिख रहे हैं सॉन्ग प्ले करने के लिए दिल से धन्यवाद है सोनी मैडम जी, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे यहाँ और भी सारे मैसेज है हमारे पास, शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ एक और प्रेम मदेसिया जुड़ चुके हैं पडरौना कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत है आपका, लिख रहे हैं वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सोनी जी, कैसी हैं आप? तो मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, और हमारे यहाँ मौसम की बात करें तो काफी उमस है, धूप नहीं है लेकिन गर्मी कम भी नहीं है, और गाने की फरमाइश है तो बिल्कुल आपकी फरमाइश जो है प्ले करने की पूरी कोशिश है, थोड़ा देर वेट करिए आपकी बारी आती है, हम आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे, और आप फिलहाल बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ बिना देरी किए, और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है वो है बलमुआ कैसे तेज अमरे छोटी नंदी, और गाने की फरमाइश करने वाले है नाम है इनका अनिल कुमार जी, जो कि जुड़े हुए हैं दरभंगा से, तो एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

0: और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की बात करें तो काफी सारे मैसेज है हमारे पास। और यहाँ बबलू जयसवाल जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनेरी हमारे साथ में और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को, और अगली फरमाइश की तरफ रुख करेंगे। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है उसे शामिल करेंगे और प्ले करेंगे। हमारे साथ है मनोरमा जी, तो चलिए अगली फरमाइश लेते हैं।
1: ये अगला फरमाइश जो है आरजे वंशिका जी की तरफ से है
0: और गाने का बोल है मैंने दिल से कहा। तो चलिए आरजे वंशिका जी की फरमाइश पे एंजॉय करते हैं इनके पसंद का गाना रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। काफी खूबसूरत गाने की फरमाइश है, गाने की फरमाइश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए, गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
4: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
3: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9939365923।
5: वेलकम बैक दोस्तों, रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे आपके अपने कार्यक्रम में और वॉइस और चॉइस में। यहाँ 1:30 हो चुके हैं शुरू घड़ी में, और व्हाट्सएप मैसेज की बात करें तो काफी सारे मैसेज पहुंचे हुए। इंद्र देव जी है, लिख रहे हैं कि वेरी टू गुड सॉन्ग, और आपकी भी फरमाइश है, बिल्कुल प्ले करने की कोशिश है, बने रही है हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। यहाँ एक और मैसेज पहुंच चुका है, लिख रहे हैं कि हेलो सोनी दी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? और बलराम यादव जी हैं, पीछे पीछे घूम रहे हैं और साथ रहने के लिए, और कल जो दोस्ती खत्म किए थे इनको क्या क्या क्या किया जाए, कोई सजा हो तो आप बताइए। और कोई बात नहीं, दोस्ती खत्म नहीं कीजिए, दोस्त को माफ कर देना चाहिए। अगर दोस्त को अपनी गलती का एहसास हो जाए और पीछे पीछे घूम रहे हैं, तो फिर तो आपको माफ कर देना चाहिए। और मैसेज करने वाले हैं राकेश भारती जी बक्सर से, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और आगे एक और यहाँ मैसेज है, संजय कुमार जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका कर्नाटका से, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM को। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग। और केशव राज जी जुड़ चुके हैं बेगूसराय बिहार से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और फिल्म है मेरे हम सफर से गाना सुनना है, अगर तुम अच्छा अगर टाइम मिलेगा तो मेरा सॉन्ग चला दीजिएगा, बिल्कुल आपकी यानी कि फरमाइश से प्ले करेंगे। और सॉन्ग है किसी रात में किसी मोड़ पे, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश से प्ले करने की पूरी कोशिश है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और काफी खूबसूरत गाने की फरमाइश है इनकी तरफ से। एक और यहाँ मैसेज है, फीडबैक मैसेज पहुंचा हुआ है, लिख रहे हैं कि और यहाँ लिख रहे हैं कि शो में डर डर कर गाने मैसेज पढ़ती थी, मेरे को लगा फर्स्ट टाइम है योर वॉइस योर चॉइस पे। जी हाँ, बिल्कुल फर्स्ट टाइम ही था उनका। और मैसेज करने वाले हैं रितेश कुमार जी फ्रॉम सिवान से, और आगे यहाँ मैसेज है और भी सारे लिख रहे हैं कि फिल्म में अर्पण का गाना सुनना है, लिखने वालों ने लिख डाले, बिल्कुल आपकी फरमाइश से प्ले करेंगे। धर्मेंद्र कुमार जी है सवाल अयोध्या से, जो कि अभी जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र से, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश से प्ले करने की पूरी कोशिश है। फिलहाल ये अगली फरमाइश जो हम प्ले करेंगे, काफी देर से वेट कर रहे हैं, और लिख रहे हैं कि मेरे इधर बारिश हो रहा है सिवान में, तो थोड़ा बारिश इधर भी भेज दीजिए। और गणेश कुमार जी है पिपरा नारायण से, गाने की फरमाइश है पिया जी की मुस्की, तो एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो 90.4 FM पर।

और यहाँ रोहित जी जुड़ चुके हैं देहरादून से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भी लिख रहे हैं, हेलो मैम हम भी जुड़ गए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है, एंजॉय करिए पियाजी के मुस्की गाना। गणेश कुमार पिपरा नारायण जी के फरमाइश नारायण से है जो कि उनकी फरमाइश है।

0: आज के शो में बहुत अच्छा लग रहा है भारती जी दीदी के साथ में और मुनर्मा दीदी के साथ में और आपके साथ में बहुत अच्छा लग रहा है शो सुनने में। बाकी अभी मेरी तरफ बारिश हो रहा था, बहुत सुबह से बहुत तेज हवा चल रहा था, बाकी अभी बारिश हो रहा था और बारिश छूट गया है।
1: आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का और अभी काफी बेहतरीन गाने की फरमाइश आरजे वंशिका जी की तरफ से लिख रहे हैं। थैंक यू सो मच मेरा गाना बजाने के लिए। और आगे यहाँ और भी मैसेज है। ओम प्रकाश जी जुड़ चुके हैं नारायणपुर से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ आगे और एक मैसेज पहुंचा हुआ है, गणेश कुमार है पिपरा नारायण से, बोल रहे हैं कि हमरो गाना बजा दी और बिल्कुल अगला फरमाइश राउरे बाटे। और यहाँ कॉल भी पहुंचल बात, हम अगला फरमाइश कॉल के माध्यम से लेम, ओकरा बाद राउर फरमाइश जरूर प्ले करें। और चलिए बढ़ेंगे कॉल की तरफ, लेकिन उससे पहले यहाँ एक और मैसेज पहुंचा हुआ है तो मनोरमा जी शामिल करेंगे अगली मैसेज को, तो चलिए मनोरमा जी।
2: छोटे बच्चे के ताजा उगते हुए दांत गन्ने की मशीन जैसी है, जिसमें आपकी उंगली गई तो समझो आपकी चीख निकलनी तय है। यकीन ना हो तो आप चेक कर सकते हैं। और ये मैसेज करने वाले हैं सन्यासी रंजन जी।
1: आपको भी चेक की है मनोरमा जी,
2: आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं।
1: अच्छा, नहीं हम तो चेक नहीं किए पर मुझे पता है। और यहाँ अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है कॉल के माध्यम से, तो बात करते हैं, देखते हैं कौन है कहाँ से और फरमाइश क्या है।
3: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन में।
3: जी मैं शहाबुद्दीन फरीदाबाद से।
1: जी कैसे हैं शहाबुद्दीन जी?
3: जी मैं ठीक हूँ, आप अपना बताइए।
1: हम भी बढ़िया हैं।
3: मौसम का हाल बता दीजिए।
1: अरे मौसम का हाल तो मत ही पूछिए, धूप तो नहीं है लेकिन गर्मी काफी है।
3: नहीं हमारे यहाँ भी कमी नहीं, हमारे यहाँ तो बहुत टेम्परेचर तो वाली है।
1: अब गर्मी है तो गर्मी रहेगा ही, उससे कहाँ भाग सकते हैं।
3: तो मौसम की तरफ बस नाम गाना कैसे निकलेगा, मौसम की तरफ बदलते न जाओगे।
1: जी जी बिल्कुल,
3: यही सॉन्ग सुना दीजिए।
1: अच्छा मौसम की तरह बदल तो न जाओगे, चलिए गाना डेडिकेट भी करिए किसी को।
3: नहीं हम किसी को नहीं पहचानते हैं, जो हम सुनते हैं उसी को सुना देंगे।
1: ओके तो गाना प्ले कर दिया आपका,
3: थैंक यू
1: वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद। सो मैं कॉल की एंजॉय करिए गाने को।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com। ओम नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
2: दूसरा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ तारापीठ जगन्नाथपुरी गंगा सागर कालीघाट कोलकाता रजरप्पा राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ गया बोधगया वाराणसी अयोध्या गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: चौथा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ गुवाहाटी माँ कामाख्या धाम दार्जिलिंग सिलीगुड़ी गंगटोक जनकपुर अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
2: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 91555

0: 81 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97 7 14 86 164।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
4: वेलकम बैक रेडियो रमजिम 90.4 FM पे, आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की बात करें तो काफी सारे हैं, और यहाँ इंस्टाग्राम पे मनीष राजा की फरमाइश है और लिख रहे हैं कि हमारा भी गाना है बजा दीजिए। बिल्कुल आपकी फरमाइश है, प्ले करेंगे, थोड़ा वेट करिए। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो सजाद जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि विजय वाली मुनिया काफी सुंदर गाना। और आगे एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि हर जख्म को लफ्जों में बयां करना मुमकिन नहीं, कुछ दर्द सिर्फ सुरों के खुराक से ठीक हो जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, दिस लाइन डेडिकेट टू रेडियो रमजिम 90.4 FM। और मैसेज करने वाले हैं अनिल जी छोटपुर से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक और यहाँ है मैसेज लिख रहे कि 15 दिन से लगातार बारिश हो रही है हमारे यहाँ कोल्हापुर में, और देखिए जहाँ हो रही है बारिश वहाँ हो ही रही है, और जहाँ नहीं हो रही है वहाँ सिर्फ क्या बोलेंगे तक तक की लगी हुई है, और बारिश नहीं हो रही है। और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि रामाजी प्रसाद की पसंद लाजवाब है और हमेशा लाजवाब ही होती है। मैसेज करने वाले उमाशंकर मिश्रा जी दिल्ली से, एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि हैरान हूँ मैं आपकी जुल्फों को देखकर, की खूबसूरत पंक्तियां है साबिर कुमार और अनुराधा पौडवाल जी द्वारा गाए गए ये रोमांटिक नगमे हैं। और 1987 में फिल्म जवाब हम देंगे से गाने की फरमाइश है, बिल्कुल आपकी फरमाइश जो है प्ले करेंगे और बने रहिए हमारे साथ में। और अजय जी हैं जुड़े हुए हैं अयोध्या से, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करने की पूरी कोशिश है, थोड़ा वेट करिए। एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि चलत मुसाफिर मोहलिया रे पीजे वाली मुनिया, और ये गाना 1966 में आई थी फिल्म तीसरी कसम का है, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थी लेकिन इसके गाने आज भी सुपर हिट है, पीजे वाली मुनिया, और सुनकर मजा आया। और मैसेज के साथ है रितेश कुमार जी फ्रॉम सिवान से, और आगे यहाँ मैसेज है अनिल जी है दरभंगा से लिख रहे हैं कि थैंक यू मैम मेरा गाना सुनाने के लिए, काफी देर बाद आपकी फीडबैक पहुंची। और आगे यहाँ और भी सारे फरमाइश है हमारे पास, लेकिन हम अगली फरमाइश की तरफ रुख करेंगे। और अगली फरमाइश जो हमारे पास है डॉक्टर अमोद कुशवाहा जी है, जय छपरा कुशनगर उत्तर प्रदेश से, और उनको सुनना है गाना तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। तो चलिए प्ले कर दिए आपके गाने को, एंजॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो रमजिम को। नेक्स्ट गाना जो है वो है कॉल के माध्यम

0: 93.4 रेडियो रमजम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का और अभी गाना सुन रहे थे डॉक्टर अमोद कुशवाहा जी की फरमाइश है जय छपरा कुशनगर उत्तर प्रदेश से और बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ और अगली फरमाइश जो हमारे पास है कॉल के माध्यम से और अगली फरमाइश जो यहाँ प्ले करेंगी है मनोरमा जी तो चलिए मनोरमा जी बात करिए और लीजिए अगली फरमाइश का
1: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजम 93.2 FM जी
2: आरती जी बोल रहे हैं कि सोनी
0: ना भारती है ना सोनी है मनोरमा है ये ब्लैक लिस्ट में रही तन रिंग ना हो एक रिंग पे कट जाए चलिए अभी उठ गए ज्वाइन तो काफी दिन से बने लेकिन लाइव में आज दूसरा दिन है यहाँ के कृष्णा प्रसाद बात करते नहीं नो
2: जी
0: भुलाई रहती तो फिर कैसे पहचानती बताई तनी और के आई लो हम मानो तनी बहुत कॉल आई रहे व्हाट्सएप पे भी काफी सारा फरमाइश रहे बहुत छूटल बाटे मान सकते ना ना ऐसा ना किसी आई लो कि ना करे जी
2: यार काहे के बनाए राम ने कोई आए मेरा जी
0: काफी खूबसूरत गाना
2: अच्छा जान दियो के पसंद हुई तो
0: जी जी बिल्कुल पसंद आई हमके जब पसंद आ गल तो श्रोता लोग के भी आई ऐसा बात तो नहीं के सबके ना सही लेकिन सबके अपन अपन पसंद होला कुछ लोग के तो जरूर आई
2: मामा जी भाई जी के गाना बड़ा तो फास्ट लागल
0: और राहुल गाना भी वहाँ के पसंद आई ये बात की गारंटी बा हमरा
2: हमने के जवानी के सब गाना है
0: तो गाना प्ले कर दे बनी ठीक बा जी बहुत बहुत धन्यवाद सो मैं कॉल के एंजॉय करी गाना के जी नमस्ते

कुछ मैसेज है, लिख रहा है कि थैंक यू वेरी मच फॉर प्लेइंग वेरी गुड सॉन्ग सोनी जी और योर टच माई हार्ट बाई प्लेइंग दिस सॉन्ग। और मैसेज करने वाले नौशाद अली जी मोतिहारी जिला से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और आगे यहाँ मैसेज है संतोष कुमार पटेल जी सूरत से, लिख रहे हैं कि सुपर लाजवाब सॉन्ग। एक और यहाँ मैसेज है नारायण जी, लिख रहे हैं कि लाजवाब क्या गाना है मैम, एंजॉय करिए।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, सुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
3: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
4: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
5: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
6: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, सुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
5: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
1: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता,
5: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड, थावे रोड, भी मार्केट के बगल में, कृष्णा जी के मकान में।
1: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
5: और 9097160602।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके से

0: या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमलाराय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
3: जिंदगी बन गए हो तुम, सुपर लाजवाब मस्त सॉन्ग। और रोहित जी देहरादून से, और आगे एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि एक बात बोलूं मैम, आपकी आवाज़ सुनने के लिए ही आते हैं, वरना शनिवार को नहीं आया था। ऐसा नहीं कहिए, क्योंकि भारती जी भी सुन रही है, उनको अच्छा नहीं लगेगा। और आगे यहाँ मैसेज और भी सारे हैं, शामिल करेंगे और अगली फरमाइश की तरफ रुक करेंगे। और अगली फरमाइश से पहले यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि हमारे मेघनाथ भाई बोल रहे हैं कि नाइस सॉन्ग है, और मैसेज करने वाले हैं धर्मेंद्र कुमार जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अगली फरमाइश यहाँ पहुँचा हुआ है कॉल के माध्यम से, बात करेंगे, सुनेंगे कौन है कहाँ से। और यहाँ तारकेश्वर माझी जुड़ चुके हैं दुबई से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आगे लिखते हैं कि मर गई मछली अपने ही पानी में, कर लिया इश्क भरी जवानी में, सोचा था साथ निभाएंगे मरते दम तक, बेवफा निकला महबूब मेरी कहानी में। और इस मैसेज के साथ है तारकेश्वर माझी जी दुबई से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में जुड़े। और आगे एक और यहाँ लाइन पहुँचा हुआ है, और गाने की फरमाइश से प्यार कभी कम नहीं करना, मुकेश करवाल जी हिमाचल प्रदेश से। बिल्कुल आपकी फरमाइश से प्ले करने की पूरी कोशिश। और आगे लिखते हैं कि उन्हें शक है कि हम उन पे मरते हैं, उन्हें शक है कि हम उन पे मरते हैं, हमें शक है कि वो हम पे मरते हैं। जिंदगी के दौर यूं ही गुजर जाते हैं, ना वो कुछ पूछते हैं और ना हम कुछ कहते हैं। क्या बात है। और बिल्कुल फरमाइश से प्ले करने की पूरी कोशिश है, आपकी फरमाइश जो है दोपहर समाचार के बाद प्ले करेंगे। फिलहाल यहाँ आगे और भी मैसेज लिख रहे हैं कि सुनिधि, ओहो आपकी फैन सीता भाभी होंगी है जब आप गुनगुना देती हैं। और समझ में नहीं आया मुझे आपका बात, एक बार क्लियर करके लिखिए, आप राकेश भारती जी हैं बक्सर से। और आगे यहाँ लिख रहे हैं कि आप नहीं तो फिर मैं तो नहीं सुनता रेडियो। और मैसेज के साथ है मिस्टर कुमार जी मोतिहारी जिला से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ अगली फरमाइश पहुँच चुकी है कॉल के माध्यम से, तो चलिए बात करते हैं, देखते हैं कौन है कहाँ से और सुनते हैं इनकी फरमाइश को। और जी हाँ, यहाँ प्रीति रदास जी हैं, लिख रहे हैं कि न्यूज़ के बाद मेरा गाना चलेगा। जी बिल्कुल न्यूज़ के बाद ही चलेगा, क्योंकि अभी जो फरमाइश है वो कॉल के माध्यम से लेंगे। और यहाँ कॉल रिसीव करते ही कॉल कट चुकी है, तो व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे। और व्हाट्सएप मैसेज की तरफ यहाँ हमारे पास गाने की फरमाइश है, काफी खूबसूरत गाना है लॉलीपॉप लागेलू। और गाने की फरमाइश के साथ है संतोष कुमार पटेल जी, सॉरी गाना है काला बिंदिया आर्यन बाबू शंकर की आवाज में। तो एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

लेंगे दोपहर समाचार के तरफ और आप सभी से फिर मुलाकात होगी दोपहर समाचार के बाद, तो कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को। आप सभी से मिलते हैं दोपहर समाचार के बाद, तब तक बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
4: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
9: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: 90.4 रेडियो रंजन सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे हैं, प्रीति रदास जी की फरमाइश है, लिख रहे हैं कि आप भी गुनगुना दीजिए मैम थोड़ा सा। बिल्कुल गुनगुनाते, लेकिन ये गाना मुझे याद नहीं है, इसके लिए नहीं गुनगुनाए इसमें, और जो याद रहता है उसमें गुनगुना देते हैं। और आगे हाँ, और भी सारे मैसेज पहुंच चुके हैं काफी सारे, और सबके गाने की फरमाइश बाकी है। और यहाँ रितेश पांडे जी की आवाज में गाना सुनना है, जा ये चंदा लिया हुआ खबरिया। और मैसेज करने वाले नाम इनका मेंशन नहीं है, नाम पता मेंशन करिए कि भाई आप है कौन और कहां से। और बहुत बहुत स्वागत है आपका, और फरमाइश है तो प्ले करने की पूरी कोशिश है, नाम एक बार बता दीजिए। और रुद्राक्ष कुमार जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आगे यहाँ एक मैसेज है, लिख रहे हैं कि हर मुलाकात पर वक्त का तकाजा हुआ, हर मुलाकात पर वक्त का तकाजा हुआ, हर याद पर दिल का दर्द ताजा हुआ। सुनी थी सिर्फ लोगों से जुदाई की बातें, खुद पर बीती तो हकीकत का अंदाजा हुआ। बात बिल्कुल सही है और आपकी, और क्या रुला के ही दम लीजिएगा क्या अनिल जी। और लाइन पहुंचाने वाले हैं अनिल जी छोटपुर से, और आगे यहाँ और भी सारे मैसेज है। और यहाँ जी जी हैं, लिख रहे हैं कि हमें भूल गई हैं क्या मैम। बिल्कुल नहीं भूले हैं आपको। और एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि दूसरे मैम का क्या नाम है, दूसरे मैम का नाम है मनोरमा, और जो हमारे साथ बैठी हुई है यहाँ पे, और सब ऑब्जर्व कर रही है कि क्या करना है कैसे करना है। और आगे यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि आपके आ जाने से गाना बेहद खूबसूरत, लेकिन गाने में एक शब्द है साकी, इसका मतलब कोई बता सकता है क्या। और मैं आफ्ताब आलम दोहा कतर से, बहुत बहुत स्वागत आफ्ताब जी आपका भी। और किसी को साकी का मतलब पता है तो इन्हें बता दीजिए। और आगे यहाँ और भी मैसेज है, लिख रहे हैं कि हेलो हाय गुड आफ्टरनून सोनी जी, और कृष्ण मोहन जुड़ चुके हैं सिपाया खास से, बोल रहे हैं सभी लिस्टनर को, सभी आरजे को गुड आफ्टरनून बोलिएगा। बिल्कुल बोल दिया, लखनऊ उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ मैसेज है कि बोली थी कि आप भी साथ हो, साथ दीजिए बिल्कुल। और आगे एक और यहाँ मैसेज है, और इतना लंबा चौड़ा मैसेज, और लिख रहे हैं कि सोनी मैडम जी, अमन नाम है मेरा जी। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और लिख रहे हैं कि आज का फरमाइश है आपकी आवाज सुन, फरमाइश तो बात की बात है, आपकी आवाज सुनते ही दिल को सुकून मिल जाता है, हर दिन थोड़ा और हसीन लगने लग जाता है। यूं मुस्कुराती रहिए और महफिल सजाती रहिए, रेडियो की दुनिया में आपका अंदाज सबसे प्यारा नजर आता है मैडम जी। और ये लाइन आपके लिए अमन की तरफ से सोनी जी। बिल्कुल, और अंकित प्रिंस जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सुनते रहिए रेडियो रमजिम 90.4 FM को, और आगे बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश से पहले एक और यहाँ लाइन पहुंचा हुआ है, और लाइन ये है कि लिख रहे हैं कि दिल का हाल बताना नहीं आता, किसी को ऐसे तड़पाना नहीं आता, सुनना चाहते हैं आपकी आवाज मगर बात करने का बहाना नहीं आता। हो ये बात है। और मैसेज करने वाले हैं मनीष जाग जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहाने की क्या जरूरत है, इतने सारे बहाने हैं हमारे यहाँ पे रेडियो रिमझिम के पास। हेलो माई चॉइस का कार्यक्रम है, ये है, फिर SMS फरमाइश है, आप जिस कार्यक्रम में चाहे बहाने ढूंढने की जरूरत नहीं, बहाना खुद पे खुद आपके पास है, और आवाज सुन सकते हैं, जुड़ सकते हैं। फिलहाल बढ़ेंगे आगे यहाँ अगली फरमाइश की तरफ, उससे पहले फिर एक मैसेज यहाँ, चलिए मैसेज को रोकेंगे, कॉल पहुंचा हुआ है, बात करेंगे और अगली फरमाइश लेंगे। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
1: मैं ऋतिक कुमार बात कर रहा हूं।
0: जी क्या हाल चाल है ऋतिक जी? कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: साबुद्दीन
0: टोला से। जी, और गाना कौन सा सुनवा दे आप?
1: अपने पसंद से कोई गाना सुना दे।
0: मेरे पसंद से सुनिएगा। तो ये बताइए कि आपको मेरे पसंद से कैसा गाना सुनना है, हिंदी भोजपुरी किस टाइप का गाना सुनना है?
1: भोजपुरी
0: में सुनना है। ओके, तो चलिए गाना प्ले कर दिया आपका खेसारी लाल की आवाज में, ठीक है? छुअल चाहे तो निकल जालू हाथ से। इंजॉय करिए गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। बहुत बहुत धन्यवाद सो मैं कॉल किया।

0: 104 रेडियो रंजन सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना चल रहा था, गाना तो खैर मेरे पसंद का था लेकिन फरमाइश जो थी कॉल के माध्यम से पहुंची थी। और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि आज कोई भी काम अपने मन का कीजिए, कोई रोक टोक नहीं है क्योंकि आज मंडे है। ओहो, और ये बात मुझे नहीं पता थी, बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी आपका। और आगे यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं, नमस्कार सोनी मैडम जी, और प्रोग्राम बहुत ही अच्छा चल रहा है, प्रोग्राम सुनकर मैसेज कर दिए। और गुरु नानकपुरा बठिंडा पंजाब से किशोर सबलनिया जी है, सवित्री सबलनिया, सुमन सबलनिया, बेटी अंशु के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आगे यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि तारों में जैसे खूबसूरत चांद सबसे न्यारा है, तारों में जैसे खूबसूरत चांद सबसे न्यारा, वैसे ही सोनी जी हमें आपका नाम सबसे प्यारा है। ओहो। और मिस्टर कुमार जी है मोतिहारी जिला से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और लिख रहे हैं कि भोजपुरी सॉन्ग सुना दी मैम, तो कौन सा गाना सुने के बाद भोजपुरी में जरूर बता दी और हम सुनाए की पूरा कोशिश करें। और आगे यहाँ एक और मैसेज लिख रहे हैं कि यहाँ बहुत तेज आंधी चल रहा है मैडम जी, संदीप कुमार जी हैदराबाद से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत और काफी दिनों बाद आए, कैसे हैं बताइएगा। और आपकी श्रीमती जी कैसी हैं, वो भी नहीं जुड़ रही हैं तो जरूर बताइए। और बहुत बहुत स्वागत है, एक बार फिर से बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रमसिम को। और आगे यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि एक गाना है प्ले कर दीजिएगा, बिल्कुल काहे नहीं करेंगे और इसीलिए तो हैं हम, और गाने की फरमाइश भेज दीजिए। और अंकित प्रिंस जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और कैसे हैं आप बताए नहीं। और आगे यहाँ मैसेज है, और यहाँ मनोरमा जी के लिए है, तो मनोरमा जी शामिल करिए, आपके लिए मैसेज पहुँचा हुआ है।
1: ये पलके बिछा कर तेरा इंतजार करते हैं, ये वो गुनाह है जो हम बार बार करते हैं, जलकर हसरत की राह पर चिराग, हम सुबह और शाम तेरे मिलने का इंतजार करते हैं।
0: है, क्या बात है। और मैसेज के साथ है मनीष जजाक जी, फाजिलनगर कृष्णनगर उत्तर प्रदेश से। और अगली फरमाइश की तरफ रुक करेंगे, और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है, और लिख रहे हैं कि सोनी मैडम जी बजा दीजिए, बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश है, प्ले कर दी, एंजॉय करिए। और मैसेज पहुंचा है गाने की फरमाइश जो है दिलीप कुमार ठाकुर है मिर्जापुर वाली पंजाब से, और काफी खूबसूरत गाना है। और आज इनके लड़के का सनी कुमार जी का जन्मदिन है, तो मेरे तरफ से आपके लड़के और पूरे रेडियो रंजन टीम के तरफ से आपके बर्थडे से आपके बेटे सनी जी को जन्मदिन की ढेरों सारी मुबारकबाद, और भगवान करे कि वो हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और जिंदगी में तरक्की करते रहे। फिलहाल एंजॉय करिए अपने गाने को।

0: आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है। सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स। BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94 309 45 651 या 97 097 06 575।
7: ठक ठक।
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा मिला ही नहीं।
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
10: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
10: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
1: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
11: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
1: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
12: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
13: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
14: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
13: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
15: वेलकम बैक, रेडियो रंजिम 90.4

0: और एफएम पे आप सभी के अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में और शो से जुड़ना है, जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप इंस्टा कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए नंबर है 9857788291 पे व्हाट्सएप मैसेज करिए या फिर अपनी आवाज में छोटा सा वॉइस रिकॉर्ड करके हमें भेज दीजिए अपने नाम पता और गाने की फरमाइश के साथ। उसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं 7277166596 पे या फिर रेडियो रिमझिम के इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और यहाँ अजय जी हैं अयोध्या से, तो अजय जी हम आपके गाने की फरमाइश जो है कल ही प्ले किए थे तो आज नहीं प्ले कर पाएंगे आपके गाने की फरमाइश को। और आगे यहाँ मैसेज है राजू जी जुड़ चुके हैं अयोध्या से और लिख रहे हैं मुझे भी गाना सुनना है बेवफा सनम से, चूड़ी मजाना देगी कंगन मचाना देगी। बिल्कुल फरमाइश से प्ले करेंगे। और यहाँ एक और मैसेज है लिख रहे हैं कि ऐप नहीं बज रहा है मैम। ओहो, और मैसेज करने वाले हैं अहमद अली जी, तो अभी एक बार मैसेज करके बताइए अगर मेरी आवाज़ पहुँच रही है कि नहीं, कि ऐप चल रहा है कि नहीं, अगर सुन रहे हैं तो। और मैं देखती हूँ कि क्यों नहीं आवाज़ जा रही है, और अगर नहीं जा रही है तो एक बार काट के उसे फिर से चेक करिए। और यहाँ एक और मैसेज है लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून, मैं भी जुड़ गया हूँ। बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। एक और यहाँ मैसेज है और गाना सुनना है बरसात के मौसम में, प्रमोद यादव जुड़ चुके हैं मुंबई से, बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल फरमाइश प्ले करने की पूरी कोशिश है, फिलहाल यहाँ फरमाइश प्ले करेंगे, हमारे पास पहुंचा हुआ है। और यहाँ नील जी है लिख रहे हैं कि ऐप तो चल रहा है। जी हाँ बिल्कुल, जब आपके पास चल रहा है तो फिर इनके पास भी चल ही रहा होगा। और बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं हमारे पास कि ऐप चल रहा है। और अगली फरमाइश हम प्ले करेंगे, हमारे पास पहुंचा हुआ है केरला से और फरमाइश करने वाले हैं एमडी महमूद जी, तो एंजॉय करिए अपने गाने को। और वॉइस मैसेज पहुंचा हुआ है तो सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है।
1: हाय हेलो, मैं एमडी महमूद केरला से, मुझे भी एक गाने की फरमाइश है। गाने के बोल है जीन

0: हो। और गाने डेडिकेट मेरे वाइफ रौनक परवीन रेपुड़ा, लालगंज रेपुड़ा, और उनके साथ साथ सोनी मैम के भी डेडिकेट है, मनोरमा मैम के भी डेडिकेट है, सोनू सर, अफसर अली, रेडियो रिमझिम की जितने भी टीम है सबों के डेडिकेट है, और रेडियो रिमझिम की जितने भी श्रोता हैं सबों के डेडिकेट है, और अभिनंदन टेलर के भी जितने टीम है सभी के डेडिकेट है। तो आशा करता हूँ कि मेरा गाना प्ले कीजिएगा, और बहुत टाइम के बाद मैं गाने का फरमाइश किया है, दो तीन हफ्ता हो गया, तो आप प्ले कीजिएगा तो सुनेंगे, नहीं प्ले कीजिएगा तो नहीं सुनेंगे, ये तो आपके हाथ में है। ओके
1: ओके, आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिया, और जी हाँ बिल्कुल मेरे ही हाथ में है, लेकिन कभी कभी होता है ऐसा कि छूट जाता है। खैर, आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिए, इंजॉय करिए अपने गाने को, और काफ़ी खूबसूरत गाना है, सुनते रहिए।

104 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश करने वाले एमडी महमूद जी केला से और लिख रहे हैं थैंक यू मेरा गाना प्ले करने के लिए। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि वेस्ट सॉन्ग और अयोध्या से जुड़े हुए हैं राजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और गाने की फरमाइश है तो बिल्कुल फरमाइश प्ले करने की पूरी कोशिश है। यहाँ सरफरोज अली जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी, इसलिए कि हम भी सुन रहे हैं और नाइस सॉन्ग। और बिना देरी के बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश जो हमारे पास है लुधियाना पंजाब से प्रमुख जी का, और इनको सुनना है गाना निकला गेला रेशम के जलीदार ओढ़नी। एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90

और यहाँ सुस्वागत जी की तरफ से मैसेज है, लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग, दिल को छू गया, जय माता दी। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मस्त सॉन्ग, सुन के मजा आ गया, और मेरा भी गाना बजा दीजिए। एक और मैसेज है, बिल्कुल एक एक करके सबकी गाने की फरमाइश जो है प्ले कर रहे हैं। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि कल से इंतजार कर रहे हैं, मेरा गाना कब बजेगा, तो बिल्कुल बजेगा। संजय यादव जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी।

0: रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
3: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
5: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
6: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
5: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
6: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27, बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
5: या अभी कॉल कीजिए 92-899-22567 या 97-714-86-164।
7: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और, वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25%

0: का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं। श्रृंगार वाटिका,
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 8604348652 पे।
2: प्रसाद क्लिनिक,
3: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चमरों के सफल इलाज के लिए मिले
2: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
4: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
5: बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रेडियो रिम झिम 90.4 FM में, आपके अपने कार्यक्रम में और वॉइस और चॉइस में। और कुछ कारण के वजह से ऐप पे रेडियो नहीं चल रहा था, उसके लिए माफी चाहेंगे हम आप सभी से। और फिलहाल अभी सब सही हो गया, और आप लोग बताइए कि आवाज पहुंच रही है कि नहीं आप सभी के पास। और पहले भी हम बोले थे लेकिन कोई मैसेज आया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई हमारे पास, इसलिए। और अभी सही हो चुका है, तो किसी के पास अभी भी कोई दिक्कत हो रही है तो जरूर बताइए आप सभी। फिलहाल बढ़ेंगे आगे यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ, और काफी सारे मैसेज है हमारे पास। और मुस्तफा जुड़ चुके हैं सऊदी से, बहुत बहुत स्वागत है। इरशाद मास्टर जी है धनाव से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और यहाँ मिस्टर कुमार जी जुड़े हुए हैं मोतिहारी जिला से, बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। अलीन जी आपकी आवाज क्लियर आ रही है, चलिए अच्छी बात है कि आवाज जा रही है। और यहाँ मैसेज पहुंच गया है, लिख रहे हैं कि थैंक यू मेरा गाना प्ले करने के लिए। शाजिया है नवादा से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। राम कुमार जी जुड़ चुके हैं बालाघाट से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अनिश यादव विलेज दुमरा यदुवंशी टोला से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आरजे अमन जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। दिनेश मिश्रा आ चुके हैं दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का। और बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश जो हमारे पास है आरजे अमन जी का, तो चलिए प्ले कर रहे हैं आपकी गाने की फरमाइश को। एंजॉय करिए अपने गाने को, और गाना है जब कोई बात बिगड़ जाए, तो प्ले कर दिए, एंजॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो रिम झिम को।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश आरजे अमन जी की तरफ से थी और काफी खूबसूरत गाने की फरमाइश। और बिना देरी के बढ़ेंगे आगे, यहाँ मैसेज है। और नमस्ते नमस्कार सोनी मैडम जी, लेकिन हमारा पूरा मैसेज आप नहीं पढ़ते हैं। मैं भी जुड़ गया हूँ राम कुमार बालाघाट एमपी से। नीलकमल जी की आवाज में कोई भी अच्छा सॉन्ग चला दीजिएगा। हमारे साथ है सुभाष भाई जी और धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पूरा मैसेज पढ़ते हैं, जब फरमाइश प्ले करना होता है तब हम आप सभी का पूरा मैसेज पढ़ के मैसेज शामिल करते हैं। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि चांद जैसा चेहरा तो हर दिल हमार ले गए, गाना सुनवा दी बिल्कुल। और कृष्ण मोहन जी जुड़ चुके हैं सिफाया खास से, सभी लिसनर सभी आरजे को गुड आफ्टरनून बोल दीजिएगा। बिल्कुल बोल दिए, लखनऊ उत्तर प्रदेश से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और फरमाइश है प्ले करने की पूरी कोशिश है। यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि आरजे अमन सर को गुड मॉर्निंग बोल दीजिएगा। बिल्कुल बोल दिया। और उनके लिए एक लाइन है कि आरजो थी कि हम उनके साथ साथ चले, ये आरजो थी कि हम उनके साथ साथ चले, मगर वो शख्स तो रास्ता बदलता जाता है। और मैसेज करने वाले अनिल जी चोटपुर से बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि मैं धनेश कुमार मिश्रा दिल्ली से, और मैं माने में कोई दिक्कत हुआ क्या, बहुत लेट आई प्रोग्राम करते हुए। ओहो, मैं बहुत लेट नहीं आई, मैं बिल्कुल समय के साथ थी, लेकिन कुछ दिक्कत के कारण जो है आप सुन नहीं पाए। और मुझे काफी देर बाद पता चला कि ऐप पे आवाज नहीं जा रही है, फिर ठीक किए, उसके बाद सही हो गया, इसलिए आपको लगता है कि देर से आए, लेकिन मैं बिल्कुल समय के साथ थी। और बहुत बहुत स्वागत है आपका। यहाँ रोहित जी जुड़ चुके हैं देहरादून से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और गाने की फरमाइश है तो बिल्कुल प्ले करने की आपकी फरमाइश पूरी कोशिश है। फिलहाल बने रहिए, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और लिख रहे हैं कि उठकर देखिए सुबह का नजारा, उठकर देखिए सुबह का नजारा, हवा भी है और ठंड भी है, मौसम है प्यारा, सो गया चांद छुप गया तारा, कबूल कीजिए गुड आफ्टरनून हमारा। ओहो, बिल्कुल कबूल है। और आगे यहाँ और भी सारे मैसेज लिख रहे हैं। हर हर महादेव।

और हम भी जुड़ गए हैं बहुत, और बहुत तेज बारिश हो रही है हमारे यहाँ। बहुत बहुत स्वागत है, बसंती देवी जी हैं लामी चौर चवरिया टोला से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मैडम जी रेडियो चल ही नहीं रहा था, आपकी आवाज आ रहा है और अभी आ रहा है ना, ये बताइए। इरशाद मास्टर जी है धनाव से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बिना देरी के बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है, श्री राम जी है सासाराम टू दिल्ली से, और यहाँ दीनानाथ यादव जी जुड़ चुके हैं कुवैत से, अहमद अली जी सारे वार्ड नंबर एक से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। फिलहाल इंजॉय करिए श्री राम जी की फरमाइश से और गाने की से, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से। एंजॉय करें अपने गाने को, रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमान गढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: ओम नमः शिवाय।
5: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
4: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
5: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
5: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
5: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
4: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
5: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
4: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
5: बोलबम हर हर महादेव।
6: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
7: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
8: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545-67666।
9: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
10: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
9: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
11: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
9: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
11: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554-94-53
9: और 90-97-61-60-02।
12: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
13: वेलकम बैक रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे आपके अपने कार्यक्रम में और वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो काफी सारे मैसेज है। मिस्टर कुमार जी हैं, लिख रहे हैं कि आ रहा है मैम अब साउंड, और सोनी मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बारिश हुआ कि नहीं वहाँ? अभी तभी हमारे यहाँ तो बारिश नहीं हुआ है।

और एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे सुनील मैम नमस्कार, राधे राधे, हम भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैहर एमपी से सुनील कुशवाहा जी हैं। एक और यहाँ मैसेज है, विपुल सिंह जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका और फरमाइश है प्ले करने की पूरी कोशिश है। और शाहुद्दीन अंसारी जुड़ चुके हैं फरीदाबाद से और गाने की फरमाइश है, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, फरमाइश है प्ले करने की पूरी कोशिश है। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि यही नहीं मिल रहा था सुनने को सुपर सॉन्ग मैम, और अहमद अली जी हैं सारे अवार्ड नंबर एक से। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि आंखें उसी रात हो जाए अंधे जो देखे तेरे सिवा सपना किसी का, सॉन्ग सुपर सॉन्ग। और मैसेज के साथ है इरशाद मास्टर जी धनाव से, यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि जी मैम वक्त का। और नई मंसारी जी है जामतारा से, बहुत बहुत स्वागत है आपका, फरमाइश है तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करने की पूरी कोशिश है। यहाँ एमडी निसार, एमडी नौसाद, रिजवान, एमडी सदाम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी लोग जुड़ चुके हैं बजाजी रोड लालगंज से। और आगे यहाँ नागपुर महाराष्ट्र से न्यू फैशन टेलर जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बिल्कुल हाजिरी लग चुकी है। और बिना देरी के बढ़ेंगे आगे अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश जो हमारे पास है गाने की, और सिपाही खास से जुड़े हुए हैं कृष्ण मोहन जी, इनको सुनना है गाना चांद जैसा चेहरा तो हर दिल हमारे ले गए। तो चलिए एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे शिवाय खासिश, किशन मोहन जी की फरमाइश थी और उन्होंने गाना सुन लिया। बढ़ेंगे आगे यहाँ अगली फरमाइश की तरफ बिना देरी के। और मैसेज है लिख रहे हैं कि प्यार हुई ना दोबारा हो, नीलकमल की आवाज में गाना सुनवा दी। और गुड आफ्टरनून सुनी जी मैसेज करने वाले हैं, डॉक्टर अमोद कुशवाहा जी छपरा कुशनगर उत्तर प्रदेश से बहुत बहुत स्वागत है आपका। और फरमाइश है तो बिल्कुल पे करने की पूरी कोशिश है, बनी रही हमारे साथ में। फिलहाल यहाँ कॉल पहुंचा हुआ है तो अगली फरमाइश हम कॉल के माध्यम से लेंगे, बात करेंगे कौन है कहाँ से, जानेंगे फरमाइश को। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो सुन, नमस्कार। आज हो गया ना, विमलेश जी बात कर रहे हैं ना।
1: शर्मा जी नमस्ते।
0: जी जी कैसे हैं? कौन सा सवाल के गाना चला रहे
1: हैं?
0: अच्छा अच्छा चलिए तो गाना प्ले कर दिए हैं।
1: सुनवाना है और
0: जी, एंजॉय करिए गाने को।

90.4 रेडियो रंजन सर, आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश कॉल के माध्यम से थी मुंडेश जी की तरफ से। और बिना देरी की अगली फरमाइश की तरफ रुक करेंगे। और यहाँ अगला फरमाइश हमारे पास है मुस्तफा जी का, तो चलिए सुनते हैं इनकी फरमाइश को रेडियो रंजन 90.4 FM पर। एंजॉय करिए अपनी फरमाइश को।

और यहाँ भी महमूद जी जुड़ चुके हैं केरला से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपकी आने की फरमाइश है। तो हम आपको बता दें ओके, आपकी एक सप्ताह हो चुकी है और आपकी आने की फरमाइश जो है प्ले करने की पूरी कोशिश है। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और यहाँ दिलीप राम जी जुड़ चुके हैं दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फिलहाल अपने गांव सुनहरवा से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमरेश कुमार जुड़ चुके हैं हैदराबाद से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और एक और अनिल कमल जी की आवाज़ में गाने की फरमाइश पहुंची थी, और एक बार मैसेज कर दीजिए कि किन की फरमाइश थी। अनिल कमल की आवाज़ में मुझे दिख नहीं रहा उनका मैसेज। और

और यहाँ सनी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। लिखते हैं कि आपका बहुत देर से इंतजार कर रहा था, रेडियो रिमझिम सुन रहा था और आवाज आ रही है। ओहो, चलिए तो इंतजार खत्म हुआ आपका और आगे यहाँ मैसेज है और भी सारे लिखने के हेलो है, गुड आफ्टरनून, मैं भी जुड़ गया हूँ। और थावे से जुड़े हुए हैं लाल सिंह, जुड़ चुके हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत है आपका, फरमाइश है तो बिल्कुल प्ले करने की कोशिश है। और यहाँ एक और वॉइस मैसेज है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक और यहाँ मैसेज है, लिखे हैं सोनी जी गुड आफ्टरनून, और हम भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
1: बोलबम, हर हर महादेव।
2: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9528374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहां है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहां दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय

0: कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
4: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
5: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
4: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायकोट,
5: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
4: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
5: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
4: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
5: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
4: कुचायकोट ब्रांच में 9।

0: 9-3-1-0-1-6-0-2 भोरे ब्रांच में 8-2-0-7-8-5-6-4-0-4
1: सिवान ब्रांच में 9-9-4-2-0-7-1-4-0-5 मेरवा ब्रांच में 8-2-0-7-8-5-6-4-0-3
2: शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ,
3: भरोसे वाले से लेंगे,
2: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
3: और कीमत भी।
2: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
4: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
6: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
7: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
6: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
8: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
6: कॉल करें 85070-32042 पे।
9: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
10: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
9: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
11: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9939365923।
12: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
4: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
5: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200424403 6200424403।
6: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
7: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
8: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
9: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
8: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
9: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
8: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
9: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
8: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
9: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-400 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
8: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
9: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
8: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर X सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
9: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27, बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
8: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97714-86164।
10: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
11: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
10: आज ही संपर्क करें 7388-8947-0 या 9198-8869-73।
12: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से। All right.

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-3945-651 या 97-0-97-06-575।
4: ठक ठक।
5: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
6: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
7: जी हाँ कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
2: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
2: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92-8-99-22-5-67 या 97-7-14-86-164।
8: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98-527-88-291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता

0: सकते हैं। नंबर है 98-527-88-291 या 95-238-74-088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।

0: अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92899227567 या 97,714,86,164।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम वेरी वेरी गुड आफ्टरनून कैसन बानी रउआ सबे। उम्मीद करता नहीं कि रउआ सबे ठीक होके मोर रउआ सुन रहल बानी रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम और हम बानी रउआ सबे के रेडियो दोस्त आरजे सोनी रउआ सबे के बीच बिल्कुल समय के साथ हाजिर हो चुकल बानी अपन पसंदीदा कार्यक्रम भोजपुरी एक्सप्रेस के साथ है। तो अगर रउआ भी करे के चाहता नहीं आज के एक्सप्रेस में सफर तो करे खातिर माध्यम बाटे व्हाट्सएप कॉल रउआ जौन माध्यम से चाहे जुड़ सकता नहीं आज के कार्यक्रम से और व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े खातिर नंबर बांटे हमने के 98-527-88-291 पे व्हाट्सएप मैसेज करी या फिर अपना आवाज़ में एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्ड करके हमें भेज दी या फिर कॉल करी 72-77-16-65-96 पे और जुड़ जाइए अपन कार्यक्रम भोजपुरी एक्सप्रेस से। तो चलिए जब तक रुआ सुबह के मैसेज पहुँचाता रुआ जब तक शो से जुड़ा था नहीं तब तक एंजॉय कर जाओ एक खूबसूरत से गाना के रेडियो रूम से 90.4 एफएम पे और गाने के बाद आओ तनी तब बढ़े रुआ सुबह के मैसेज की तरफ।

वेलकम बैक रेडियो रंजीम 90.4 एफएम पे रुवा सभी के अपन कार्यक्रम भोजपुरिया एक्सप्रेस में और 2:07 हो चुकल बा स्टूडियो घड़ी में। और हम मैसेज की बात करी तो काफ़ी सारा मैसेज पहुँच चुकल बा हमरा पास। और अगर रुवा भी आज के एक्सप्रेस में सफ़र करे के चाहता नहीं तो माध्यम बाटे व्हाट्सएप और कॉल रुवा जौन माध्यम से चाहे जुड़ सकता नहीं। व्हाट्सएप से जुड़े खाते नंबर बाटे 98-527-88-291 पे व्हाट्सएप मैसेज करी या फिर कॉल करी 72-77-16-65-96 पे। जे लोग भी व्हाट्सएप ना यूज करेला कॉल के माध्यम से ओकरे खातिर बा। और दूसर बात की रुआ से भी गाना के फरमाइश करी भोजपुरी, लेकिन एक बार गाना सुन ली, देख ली, समझ ली ताकि गाना अच्छा होके के चाहिए। ऐसा ना होके कि कोनो गाना के फरमाइश कर दी और जो की सुने वाला ना होके, तो ऐसा बिल्कुल गाना के फरमाइश ना करी। अगर कोई भी गलत गाना के फरमाइश आओ तो फिर हम दोबारा मौका ना दें कि गाना चेंज करी या फिर कुछ भी। तो पहले ही सोच समझ के गाना के फरमाइश करी, बेशक पसंद रहा और बा, लेकिन सुने वाला रुआ अकेले ना बनी बात के ख्याल करके गाना के फरमाइश करें। और बिना देरी के मैसेज के तरफ बढ़ें। व्हाट्सएप मैसेज यहाँ पहुँचल बाटे रागनी जी जुड़ल बनी और गाना सुने के बाटे शादी हुई तोहरे से शिल्पी राज की आवाज़ में। बिल्कुल फरमाइश बा, प्ले करे के पूरा कोशिश बा। और बहुत बहुत स्वागत बाटे सरफरोज अली बानी गोपालगंज से गाना सुने के बाद पवन सिंह की आवाज़ में बिल्कुल प्ले करें। धनेश मिश्रा जी बानी दिल्ली से फरमाइश के साथ है, बहुत बहुत स्वागत बाटे। उमा शंकर मिश्रा जी बानी लिखा तनी का हाल चाल बा, बिल्कुल बढ़िया बा, रहुआ बताएं कैसन बानी, बहुत बहुत स्वागत बटे। एक और यहाँ मैसेज बाटे लिखा तनी कि प्रभु निगवाले जुड़ चुकल बनी मध्य प्रदेश से, नमस्ते जी और हमें भी सुना दी। बिल्कुल गाने के फरमाइश बात तो सुना दें, कौन गाना सुने के बता दी, बहुत बहुत स्वागत बटे। प्रीति रदास जी जुड़ चुकल बनी, बहुत बहुत स्वागत बटे रुआ के भी। और मेहंदी लगा के रखना के गाना सुने के बाद बिल्कुल प्ले करे के पूरा कोशिश बा। मनीष जागबानी फाजिल नगर कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, मिथुन शर्मा जी जुड़ चुकल बनी, बहुत बहुत स्वागत बटे। और आर जे अमन जी जुड़ चुकल बनी, बहुत बहुत स्वागत बटे। अनिश यादव जी बानी डुमरा यदवंशी टोला सिवान से, बहुत बहुत स्वागत बटे रुआ के भी। यहाँ गणेश कुमार जुड़ चुकल बानी पिपरा नारायण से, सन्यासी रंजन बाबा जी बानी, बहुत बहुत स्वागत बटे। एक और यहाँ मैसेज बटे लिखा तनी कि हम प्रदीप सहानी दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत बटे रुआ के भी। और गाना सुने के बाद इतना पता ही ये दुल्हा गंगा पार के, तो बिल्कुल गाने के फरमाइश पर प्ले करें। फिलहाल बिना देरी के अगला फरमाइश, आज के पहला फरमाइश हम प्ले करें रागनी जी जुड़ल बनी और गाना सुने के बस शिल्पी राज की आवाज़ में शादी हुई तोहरे से। तो एंजॉय करिए अपन गाना के रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

0: और ई गाना के बाद हम बढ़े दोपहर समाचार के तरफ तरुआ सबे से हम मिले दोपहर समाचार के बाद कहीं मजा आई सुना तो रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।
1: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
2: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
1: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
2: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
3: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
4: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
4: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
4: कॉल नाउ 9056-59536 या 9056-57902।
5: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
6: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
7: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
8: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
9: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की। 10 भारतीय सुरक्षित बचाए गए, एक लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे, इस दौरान कई समझौते हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना शुरू की। विंबलडन टेनिस में आज शाम पुरुष सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज्वेरेव होंगे आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड और अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने आज ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक अब भी लापता है। मंत्रालय ने बताया कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर चिंता जताई है। मंत्रालय ने तनाव तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए जारी वार्ता को जल्द पूरा करने का आह्वान किया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप क्षेत्र के समुद्री मार्गों पर निर्बाध और सुरक्षित नौवहन तथा व्यापार जल्द से जल्द बहाल किए जाने की बात कही है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए हैं। ये हमले ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला किए जाने के बाद किए गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है और चेतावनी दी है कि यदि अमेरिकी हमले जारी रहे तो वो भी जवाबी कार्रवाई करेगा। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2017 में जारी यमन यात्रा संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है। ये अधिसूचना यमन में गृहयुद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की गई थी। हालांकि मंत्रालय ने परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों को यमन की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की सफल यात्रा पूरी कर स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी की इस महत्वपूर्ण यात्रा की प्रमुख उपलब्धियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
10: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण में इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों देशों ने रक्षा, दुर्लभ खनिज, कृषि, समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष जैसे कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण से सम्मानित किया गया। इस दौरे के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ 3rd भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की आपूर्ति का रास्ता भी साफ हुआ। साथ ही ऑस्ट्रेलिया सुपर ने भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 50 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश की घोषणा की। अपने दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की घोषणा की। इसके अलावा दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
9: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत और विश्वसनीय शक्ति के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत के रणनीतिक संबंध और मजबूत हुए हैं।
11: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बन के इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
9: श्री संबित पात्रा ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। इसके तहत दोनों देशों के युद्धपोत एक दूसरे के डॉक पर सर्विसिंग करा सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चलाने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर दिया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि ये योजना 6 महीने तक लागू रहेगी। इसका लाभ उन प्रतिष्ठानों को मिलेगा जो आयकर अधिनियम 1961 के तहत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट का संचालन कर रहे हैं। ऐसे ट्रस्ट में कर्मचारी भविष्य निधि का प्रबंधन सीधे EPFO के बजाय संबंधित प्रतिष्ठान अपने निजी ट्रस्ट के माध्यम से करता है।
12: ईपीएफओ की एमनेस्टी योजना मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चला रहे पात्र संस्थानों को नियमित करने का एक और अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत वे अपने ट्रस्ट की स्थिति को पिछली तारीख से नियमित करा सकते हैं। इसका उद्देश्य ऐसे ट्रस्टों को एक समान वैधानिक व्यवस्था के दायरे में लाना और सभी लागू कानूनी प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित करना है। कर्मचारियों के लिए यह योजना उनके नियोक्ता के भविष्य निधि ट्रस्ट की कानूनी स्थिति को लेकर अधिक स्पष्टता और भरोसा प्रदान करेगी। योजना के तहत निर्धारित राहत का लाभ तभी मिलेगा जब सदस्यों के खातों में निर्धारित अवधि के दौरान अंशदान जमा किया गया हो और उस पर ईपीएफओ की वैधानिक ब्याज दर के बराबर या उससे अधिक ब्याज दिया गया हो। छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्टों को नियमित किए जाने से भविष्य निधि लाभों का प्रबंधन अधिक सरल, सुव्यवस्थित और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप होने की भी उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
9: योजना का लाभ लेने के लिए पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन भेजना होगा। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने को लेकर चिंतित है।
13: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
9: गृहमंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में 405 करोड़ रुपए की लागत वाली नगर निगम की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से अधिक पौधे लगाए गए। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
14: गृहमंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और 0% प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
9: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि देश के समाज सुधारकों की महान विरासत का सम्मान करना और उसे बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। श्री राधाकृष्णन ने नई दिल्ली के द्वारका में मन्नम इंटरनेशनल सेंटर में मन्नम स्मृति मंडपम का उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एक पौधा भी लगाया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने आज बताया कि फू क्वोक द्वीप के निकट कल हुई नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन सिटी ले जाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने कहा कि वहां आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को भारत लाया जाएगा। इससे पहले दूतावास ने बताया था कि नौका दुर्घटना में घायल 15 भारतीयों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और वे भारत लौट रहे हैं। दक्षिण की कोकिला के रूप में प्रसिद्ध रही गायिका एस जानकी अम्मा का कर्नाटक के मैसूर में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 88 वर्ष की थीं।
15: छह दशक से अधिक लंबे अपने संगीत सफर में एस जानकी ने कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी सहित कई भाषाओं में लगभग 48,000 गीतों को अपनी आवाज दी। अपनी बहुमुखी गायकी और भावपूर्ण प्रस्तुति के कारण उन्हें नाइटिंगेल ऑफ द साउथ के नाम से जाना जाता है। एस जानकी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुए। इसके अलावा उन्हें 33 राज्य फिल्म फिल्म पुरस्कार भी मिले। वर्ष 2013 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। एस जानकी के निधन से भारतीय फिल्म संगीत जगत ने एक ऐसी महान स्वर साधिका को खो दिया है जिनकी आवाज आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा और विरासत बनी रहेगी।
9: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। खतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने खाड़ी देश को कूटनीति, मीडिया और निवेश के क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया था। उन्होंने अल जजीरा समाचार नेटवर्क की भी शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के पूर्व अमीर शेख के निधन पर दुख व्यक्त किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ है आनंद पाठक।
16: फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की, जबकि अर्जेंटीना ने आज सुबह स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया। दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों के विजेता 20 जुलाई को न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। सेमीफाइनल की दोनों पराजित टीमें 19 जुलाई को मियामी में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ खेलेंगी। टेनिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। महिला डबल्स के फाइनल में चीन की ग्वो हनयू और फ्रांस की क्रिस्टीना म्लादेनोविक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की ग्रेबियेला ड्रोवास्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 बजे खेला जाएगा।
9: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गंगा के मैदानी इलाकों, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर आज तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पंजाब और उत्तराखंड में भी आज इसी तरह की स्थिति बने रहने का अनुमान है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की। 10 भारतीय सुरक्षित बचाए गए, एक लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। इस दौरान कई समझौते हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना की शुरुआत की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
1: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
2: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
1: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
2: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
1: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
2: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
3: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
1: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
5: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
6: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
7: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
8: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
6: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
5: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
6: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
8: कॉल करे 87894 18744।
9: ठक ठक।
10: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
11: अच्छा मिला ही नहीं।
10: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
1: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
10: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
1: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
12: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
13: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
12: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।

दोपहर समाचार के बाद एक बार फिर से रुवा सभी के बहुत बहुत स्वागत बटे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में रुवा सभी के अपन कार्यक्रम भोजपुरी एक्सप्रेस में 2:33 हो चुकल बा स्टूडियो घड़ी में। अगर रुवा भी जुड़े के चाहतनी कार्यक्रम में जुड़े खातिर माध्यम बटे व्हाट्सएप और कॉल रुवा जौन माध्यम से चाहे जुड़ सकतनी। व्हाट्सएप से जुड़े खातिर नंबर बाटे 98-527-88-291 और कॉल के माध्यम से जुड़े खातिर नंबर बाटे 72-77-16-65-96 और यहाँ मैसेज काफ़ी सारा पहुँचल बामनी के पास। और शिवसागर दीवाना जी जुड़ चुकल बनी बहुत बहुत स्वागत बटे। रुवा के भी एक और यहाँ मैसेज बटे लिखतनी हम आगल बनी बहुत बहुत स्वागत बटे। और आगे यहाँ निर्मला कुमारी बानी जादवपुर से बहुत बहुत स्वागत बटे सुनत रही रेडियो रिमझिम का। और बिना देरी के आज के अगला फरमाइश हम प्ले करें जोन की पहुँचल बा हमरा पास सरफरोज अली बानी गोपालगंज से। और गाना सुने के बाद पवन सिंह के आवाज़ में जब से दिल पे नजरिया के जादू भइल। तो इन्जॉय करिए अपन गाना के रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहल बानी रउवा सभे और कार्यक्रम बाटे भोजपुरी एक्सप्रेस के। और अभी हमनी के गाना सुनत नहीं सन, सरफरोज अली जी के फरमाइश रहल गाना के। और बढ़े आगे अगला फरमाइश के तरफ, उससे पहले यहाँ सचिन कुशवाहा जुड़ चुकल बानी पुणे से। बहुत बहुत स्वागत बटे, लिखा था नहीं कि पूरा एक महीना बाद शो से जुड़ल बानी, बहुत बहुत स्वागत बटे। और जे भी शेरो शायरी भेजा ताटे तो रउवा लोनी से हमारा निवेदन बा कि आज के शो में शेरो शायरी ना भेजी, काहे कि काफ़ी सारा फरमाइश रहला तो आज हम शेरो शायरी ना शामिल कर पाएम। और शेरो शायरी अगर करे के बाटे तो ओकरा खातिर योर वॉइस योर चॉइस के कार्यक्रम बाटे। और एक और यहाँ मैसेज बाटे, लिखा था नहीं कि आज हमार गाना ना बाजी का, अभी तो शो शुरू ही भइल बा और गाना सबके बाजी। और अनिल कुमार जी बानी दरभंगा से, नमस्ते जी। और भारती जी मुझे भी गाना सुने के बाटे, तो बिल्कुल गाना सुनवाए के पूरा कोशिश बाटे। और अब ना रहा बसैया माटी के घर में, अच्छा देवी की आवाज़ में ही गाने के फरमाइश बा, बिल्कुल प्ले करे के पूरा कोशिश बा। फिलहाल सुनते हैं रेडियो रिमझिम के। और आगे यहाँ मैसेज बा, लिखा था नहीं कि हमरो गाना सुनवा दे, बिल्कुल गाना बाटे सुनवा दे। यहाँ एक और मैसेज बाटे, और श्याम सुंदर जी जुड़ चुकल बानी संग्रामपुर से, बहुत बहुत स्वागत बा। फिलहाल कॉल पहुँचल बा तो बात कर लिया के बानी और कहाँ से। हेलो,
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत बाटे रेडियो रिमझिम में।
1: नमस्कार मैम
0: जी। नमस्कार
1: मैम, कैसन बानी?
0: बिल्कुल बढ़िया बानी, रहुआ बताई कैसन बानी?
1: बस हम ठीक बानी, और ही सब आधे लोग कैसन बानी लो?
0: और ही सब लोग भी अच्छे बाटे और अपन अपन काम में जुटल बा।
1: सब बारिश हो रही होता कि ना
0: भाई? रहे सुबह 6 बजे तक लास्ट।
1: अच्छा, तो मैम गाना सुना दे। ये पिया जाता रहा लंदन,
0: पिया जाता रहा लंदन।
1: हाँ,
0: और नाम पता बता दी अपन
1: जी? नाम हमारे पप्पू कुमार साहब पड़ा रहना पड़ा रही है। और जितना भी भोजपुरी श्रोता सुना था सबके सुनी।
0: शिल्पी राज की आवाज में बहु है ना?
1: हाँ
0: हाँ, चलिए तो प्ले कर दिले बनी गाना।
1: ठीक
0: ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सुनो कॉल के लिए।
1: ठीक बन, नमस्ते।

0: और यहाँ प्रमोख जी जुड़ चुके हैं लुधियाना पंजाब से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम कुमार पांडे जी हैं लंदन से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र शाह ने जी हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नैन टेलर शिवराजपुर से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इंजॉय करिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को। और फिलहाल अभी पप्पू जी की फरमाइश चल रही है, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को।
1: जाता

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765655750।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए, गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
4: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
3: अरे, अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का आधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
4: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज, ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: फिर से स्वागत रहुआ सभी के रेडियो रिमझिम 90.4 FM में, अपन कार्यक्रम भोजपुरी एक्सप्रेस में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज के बात करी तो काफ़ी सारा मैसेज बाटे, और जी हाँ, बिल्कुल भोजपुरी में ही बोला तनी। और यहाँ गाना सुने के बाटे राजा जी के दिलवा टूट जाए, पवन सिंह की आवाज़ में बिल्कुल प्ले करे के पूरा कोशिश बा। और यहाँ मैसेज पर लिखा था नहीं कि एगो गाना हमरो बजा दे बिल्कुल। और सबसे हमार निवेदन बा कि मैसेज के लिए बनी फरमाइश बा, तो थोड़ा सबर के साथ जी जहाँ बा वही जे रहो, अपन सीट पकड़ के बैठा रहो, क्या कि फिर इन्हें उन्हें उठ के जाई और बाद में कहम लो रुए लोग कि हमार गाना ना बाजल। फिलहाल बिना देरी के हम अगला फरमाइश प्ले करें, और अगला फरमाइश हमारा पास बा प्रीति रदास जी बानी मिले जकड़ी दरगाह जुटिक सिवान से। और यहाँ के सुने के बाद गाना सकिया रे बरपा गईनी, मेहंदी लगा के रखना फिल्म से। तो चली रहो, टिकट भी कंफर्म होता है, एंजॉय करिए अपन गाना के रिव्यू रूम जिम 90.4 FM पर।

और यहाँ राकेश भाती जी जुड़ चुकल बानी बक्सर से, बहुत बहुत स्वागत बटे। अनिल जी जुड़ चुकल बानी छोटपुर से, बहुत बहुत स्वागत बटे। और लिखा था नी की संदार फरमाइश सखी रे बर पा गई नी, और फरमाइश करे वाला बानी प्रीति रैदास जी। और यहाँ मैसेज पर लिखा था नी की सॉन्ग प्ले करे खातिर दिल से और साथ देवे खातिर धन्यवाद बटे बहुत बहुत, और इन्जॉय करिए अपन गाना के। और यहाँ मैसेज बटे लिखा था नी की नाइस सॉन्ग हमार फेवरेट गाना। और मैसेज करे वाला बानी जम्मू से दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत बटे रोवा के भी शो में।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहल बानी रउआ सबे और कार्यक्रम भोजपुरी एक्सप्रेस के। और अभी गाना सुना तनी से हम प्रीति जी के फरमाइश और बिना देरी के अगला फरमाइश के तरफ बढ़े। और अगला फरमाइश जोन हमरा पास बा गाने का फरमाइश करे वाला बानी मनीष रजाक जी फाजिल नगर कुशीनगर उत्तर प्रदेश से। तो चलिए रावर टिकट भी कन्फर्म होता है, इंजॉय करिए अपन गाना के रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। और पढ़ते से नुरवा गाना के फरमाइश बात तो बिल्कुल प्ले कर दिले बानी राहुल गाना के।

और यहाँ मैसेज पहुँचल वाली खतनी अस्सलाम वालेकुम मैम, और मैसेज करे वाला बानी नाम बटे यहाँ के इरफान अंसारी जी जम्मू से, बहुत बहुत स्वागत बटे। धर्मेंद्र शाहनी जी बहुत बहुत स्वागत बटे। रुआ के भी अहमद अली जी जुड़ चुकल बनी, बहुत बहुत स्वागत पाया लिखा तनी की सारा वार्ड नंबर एक से, और गजब के गाओ तनी मैम, सुन के मजा आ गए, सुपर गाओ तनी। और आगे यहाँ मनीष जी के तरफ से मैसेज पहुँच गल बल लिखा तनी गाना बजाए खातिर बहुत बहुत धन्यवाद बटे। और यहाँ पर मुख जी बने लिखा तनी प्रीति रदास जी के गीतों का खजाना साथ में लाती है, हर एक धुन में दिल की बगिया महका जाती हैं, आपके चुने हुए गानों में अपनापन नजर आता है, हर सुर सुनकर मन को सच्चा सुकून मिल जाता है, जब भी आपकी पसंद का कोई गीत बजता है हर श्रोता के चेहरे पर मुस्कान सज जाता है, यूं ही मधुर गीतों की सौगात देती रहिए और अपनी शानदार पसंद से सबका दिल जीतते रहिए। और ये मैसेज स्पेशल में प्रीति रैदास जी खातिर रहला प्रमुख जी लुधियाना पंजाब के सेवानी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुन में जुड़े खातिर फिलहाल इंजॉय करी मनीष जी के फरमाइश।

और अगला गाना हमरा पास पहुँचल बा फरमाइश भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाड़न, तो चली गाना प्ले कर दिल बानी और फरमाइश करे वाला बानी मिथुन शर्मा जी, तो एंजॉय करी अपन गाना के रिव्यू रूम जिम 90.4 FM पर। और यहाँ प्रीति जी के तरफ से मैसेज बा लिखा था, निकी थैंक यू बोल दी मैडम जी प्रमुख जी के, बिल्कुल बोल दिले बानी। और एक और यहाँ मैसेज बा प्रभु निगवाले बानी लिखा था, निकी सुपर सॉन्ग सुपर गाना बाटे, तो एंजॉय करी, बहुत बहुत धन्यवाद शो से जुड़ने।

और यहाँ मैसेज बांटे लिखा था निकी सी सागर दीवाना जी नहीं सुनत का, बिल्कुल सुनत नहीं हुआ के भी शो में जुड़ल बनी और गाना की फरमाइश बा और अगला फरमाइश उन्हें के बांटे। और लिखा था काफी दिन बाद भोजपुरी गाना सुन रहा बनी और मजा आवता, तो चलिए मजा ली इंजॉय करी और सुनत रही रेडियो रिमझिम को। और यहाँ मैसेज बा लिखा था आई मैम खाना खाए हमने के खा तनी सन, तो बिल्कुल हम खाना खा के ही शो शुरू करनी है और बहुत बहुत धन्यवाद पूछे खातिर। फिलहाल इंजॉय करी रेडियो रिमझिम पे पवन सिंह की आवाज़ में ये खूबसूरत गाना।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
3: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
4: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: बहुत बहुत स्वागत बटे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में रुवा सुबह के अपन कार्यक्रम भोजपुरिया एक्सप्रेस में, और कार्यक्रम से जुड़े खातिर माध्यम बटे व्हाट्सएप कॉल रुवा जौन माध्यम से चाहे जुड़ सकत नहीं। और यहाँ काफ़ी सारा मैसेज बटे, प्रभु निगवाले बानी लिखा था दबे पाओ या नजरिया बचा के गाना सुने के बटे, बिल्कुल गाने की फरमाइश व प्ले करें। पप्पू ठाकुर जुटकल बानी बगही बाजार से, फरमाइश बात है बिल्कुल फरमाइश प्ले करे के पूरा कोशिश बा, सुनत नहीं रेडियो रिमझिम के। एक और यहाँ मैसेज बा लिखा था नहीं कि आज का शो जबरदस्त चल रहा बा और बहुत ही अच्छा गाना बाजा था। जी हाँ, रुआ सभी के हाथ में बाकी गाना कैसन चली गया हुआ, अच्छा अच्छा गाने के फरमाइश रुआ सभी करम तो शो में गाना भी जोन बा अच्छा ही बाजी कहे कि गाना जोन बा वो हमारा हाथ में नहीं है, हम बस प्ले करे खातिर बैठल बानी। बाकी गाना कैसन चलो शो के, आज के शो कैसन हुई, इस सब रुआ सभी के हाथ में बात, तो रुआ हाथ में बाकी आज के शो कैसन बने तो जे भी गाने के फरमाइश करता अच्छा गाने के फरमाइश करी। फिलहाल यहाँ कॉल पहुँचल बात, बात कर जाओ के बानी कहाँ से और फरमाइश का बा।
7: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत बाटे रेडियो रिमझिम में।
7: ये पचपरा से भोला जी बोलता नहीं
6: जी, का हाल चाल बा भोला जी?
7: ठीक तो बा, अपन बताई?
6: हमरो बढ़िया बा।
7: चलिए बहुत बढ़िया
6: जी। ताज का सुने के चाहता नहीं?
7: आ गाना सुना दी टिकुली लिए ले सैया हो टिकवा लिए लो
6: जी,
7: ये गाना सुना दी, बहुत अच्छा गाना लाला। ये गाना सुने के चाहता नहीं।
6: चलिए, और गाना सुनाए के भी रही
7: जी, सब कोई सुनी, यही व्रत है सब जुड़ल बा
6: जी जी
7: जी, सब कोई सुनी, जितना आदमी जुड़ल बा अलग है
6: जी जी। गाना प्ले कर दे बने
7: जी। नमस्ते
6: नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद सो मैं कॉल करने।

90.4 रेडियो रंजन सुन रहा बानी रोवा सभी और कार्यक्रम बटे भोजपुरी एक्सप्रेस के और अभी गाना सुनतने सन गाने के फरमाइश बटे भोला जी के और बिना देरी के बड़े मगला फरमाइश के तरफ और अगला फरमाइश जौन बाटे अखिया लड़ल बा जब से दिल में करार नहीं के और गाने के फरमाइश करे वाला बानी श्री सागर दीवाना जी जम्मू एंड कश्मीर से। तो एंजॉय करिए अपन गाना के रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर और गाने के फरमाइश जौन बा प्ले कर दे बानी।

और यहाँ शिव सागर दीवाना जी की तरफ से मैसेज पहुँच गया, बल्ली खतनी बहुत बहुत धन्यवाद गाना बजाए खातिर। और प्रमुख जी कहत रहनी है कि हमरा आज हमके शिव सागर दीवाना जी के बहुत ही याद आवत अटे, तो शिव सागर दीवाना जी के ही फरमाइश चला था, इंजॉय करी रहुआ प्रमुख जी। और बिना देरी के हम अगला फरमाइश प्ले करें, और अगला फरमाइश हमरा पास बटे हम ना रहब सैया माटी के घर में, और देवी के आवाज़ में ही गाना बटे। और गाने के फरमाइश करे वाला बानी अनिल कुमार जी दरभंगा से, तो अपन गाना भी इंजॉय करम। ये गाना के जस्ट बाद राहुल फरमाइश भी प्ले हुई।

और यहाँ श्याम बहादुर जी जुड़ चुकल बनी देहरादून से, बहुत बहुत धन्यवाद शो में जुड़े खातिर। एक और यहाँ मैसेज बाटे लिखा था, नहीं माटी के घर में ना रही तो सोना के ताजमहल बनवा दी क्या मैम? बिल्कुल बनवा दी तो और अच्छा हुई। और पता ना सोना के ताजमहल में रहले रही और अभी के समय ऐसा बाकी ताजमहल गायब हो जाए हुई जैसे। मैसेज करे वाला बानी अहमद अली जी सारे वार्ड नंबर 1 से टुनटुन यादव के आवाज़ में गाने के फरमाइश बात बिल्कुल प्ले करे के पूरा कोशिश बात

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403 6200042403।
4: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
5: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 8604348652 पे।
6: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
7: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
6: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
3: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
8: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
9: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
10: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
11: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
12: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9493456551 या 9707056575।

वेलकम बैक 90.4 एफएम रेडियो रिमझिम पे रोवा से विज्ञापन कार्यक्रम भोजपुरी एक्सप्रेस में 3:20 हो चुकल बा स्टूडियो घड़ी में। अगर रोवा भी जुड़े के चाहते नहीं कार्यक्रम से जुड़े खातिर माध्यम बाटे व्हाट्सएप कॉल रोवा जोन माध्यम से चाहे जुड़ सकता नहीं और यहाँ मैसेज बा लिखा तनी बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी वानी दरभंगा से। और आगे यहाँ और मैसेज बा लिखा तनी कि हम ना रहब माटी के घर में कौन लिखा तनी ई कौन खिचड़ी पकाओ तनी मैम। ओहो हो तो हम कोनो खिचड़ी ना पकाओ तनी वो गाना सही ना मिलल है इसे चेंज करनी है फिलहाल। एक और यहाँ मैसेज बा और लिखा था नमस्ते मैडम जी अनिश यादव वानी और हमके भी गाना सुनने के बाद बिल्कुल गाना सुनने के बाद तो कौन गाना सुनने के बाद बता दी बहुत बहुत स्वागत बेटे शो में। और आगे यहाँ मैसेज बा नहीं लिखा था नहीं कि ताजमहल संगमरमर के पहले के बनल बाटे आगरा में। ओहो तो बिल्कुल आगरा में जौन बनल बा वो पहले के बनल बाटे लेकिन अभी अगर बनवाए के बाद तो फिर कुछ अलग करे के पड़ी नो। और बिना देरी के हम अगला फरमाइश प्ले करें। फिलहाल हमारा पास अगला फरमाइश जौन बाटे गणेश कुमार वानी पिपरा नारायण से और यहाँ के बस सुने के बाद गाना पिया जी के मुस्की। तो चलिए राव टिकट भी कन्फर्म हो गए बा एंजॉय करिए अपन गाना के रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहा बानी रुवा सभी और कार्यक्रम बाटे भोजपुरी एक्सप्रेस के और अभी गाना सुना तनी सन गाना के फरमाइश करे वाला बानी गणेश कुमार जी पिपरा नारायण से और गाना सुन ले बानी और बिना देरी के बढ़े मास के अगला फरमाइश के तरफ और अगला फरमाइश हमरा पास पहुँचल बा गाना के फरमाइश बाटे ममता के अनमोल खजाना और फरमाइश करे वाला बानी नाम बाटे यहाँ के इरफान अंसारी जी तो चली रहा और टिकट भी कन्फर्म होता है। इन्जॉय करिए अपन गाना के रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

0: माई से सुन ले बनी कि माई के ममता का होला और बेटा के दिल का होला। सुनी
1: ध्यान से सुन ले भाई एगो बेटा।
2: और यहाँ धर्मेंद्र शाहनी जी बानी लिखा था नहीं कि अभी हमरा यहाँ समस्तीपुर में बहुत तेज बारिश हो रहा बा, लेकिन हमने के यहाँ तो अभी काफी बढ़िया मौसम बाटे। और यहाँ मैसेज में लिखा था नहीं कि पिया जी के मुस्की ये गाना पर चार चांद लाग गए सोनी मैडम जी। और धनेश मिश्रा जी बानी दिल्ली से एक और यहाँ मैसेज में लिखा था नहीं गणेश भाई के गाना बहुत ही अच्छा लागल, लेकिन गणेश जी आपसे अच्छा गणेश जी के लेके तीन बार हो गए जी। हाँ इस सप्ताह लेके तीन बार हो गए और हमको लगा था कि वहाँ के गाना काफी पसंद बटे, यही से ये गाना के फरमाइश बार बार करे नहीं। और हमनियों के जी जी बिल्कुल चले हम रोगा भी बराती। और मैसेज करे वाला वानी अनिल जी छोटपुर से, और यहाँ मैसेज आगल बली कहते हैं शुक्रिया मैम गाना बजाए खातिर, बिल्कुल एंजॉय करिए अपन गाना के।

0: और यहाँ रमेश कुमार राम जुड़ल बानी, बहुत बहुत स्वागत बटे रुआ के। और रुआ गाना के फरमाइश के लिए बानी जवान, हम गाना प्ले नहीं कर सकत क्या कि वो भक्ति गाना बाटे और वो भी हनुमान जी के बजरंग बाण बाटे, तो एक के ना है मैं भोजपुरी गाना के फरमाइश करी। जो कोई भी गाना होके भोजपुरी जवान अच्छा होके फरमाइश कर सकता नहीं सुने के बाद। फिलहाल इंजॉय करी रेडियो टिमचिम के।
1: चोटी कहीं तो न लागल
2: और आखिरी बार

0: 94.4 रेडियो रंजन सुन रहल बानी रउवा सभे और कार्यक्रम बाटे भोजपुरी एक्सप्रेस के और अभी गाना सुना तनी सामनी के गाने के फरमाइश करे वाला बानी इरफान जी और बिना देरी के अगला फरमाइश के तरफ और अगला फरमाइश का कॉल के माध्यम से बात कर जाओ के बानी और कहाँ से हेलो वालेकुम अस्सलाम नाम बता दें बिल्कुल बढ़िया बानी रउवा बताई कैसन बानी ठीक बने होत रहे अभी हम रउवा से पहले खा ले बानी अब इतना जल्दी तो दोबारा ना खाई जाए अच्छा कोनो बात ना खा लेनी नो चलिए तो गाना कौन सुना दे बता दे
1: फोन उठ के कट गए कितना रोनी
0: ओहो एकरा खातिर माफ कर दी और फिलहाल बता दी हम का सुनवा दी आज रुआ के
1: आज हमरा के सुनवा दी एगो पवन सिंह और धर्मेंद्र का फिल्म रहे देश पर देश वही में एगो गाना बा झीरी झीरी बहेला बेरिया वो गाना सुनवा दे नदिया के तीरे वाला एगो गाना बा झीरी झीरी बहेला बेरिया
0: झीरे झीरे बहेला पुरवैया हुए ना बा
1: पवन सिंह के फिल्म का गाना हो
0: तो प्ले कर दिल बनी गाना
1: चलिए थैंक यू सुनाने खाते बहुत बहुत धन्यवाद
0: जीरो आके भी बहुत बहुत धन्यवाद बस सो मैं कॉल के नहीं एंजॉय करी गाने के अपन

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
4: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
5: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार्य एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
5: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
5: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
6: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
7: भरोसे वाले से लेंगे,
6: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
7: और कीमत भी।
6: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
8: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
9: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
10: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
10: आज यहाँ SP ज्वेलर्स जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
11: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
10: कॉल करें 85070 32042 पे।
0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।

90.4 रेडियो रंजन सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का और यहाँ 3:40 हो चुके हैं। तो चलिए बिना देरी के व्हाट्सएप मैसेज की तरफ रुख करेंगे और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज वाले लिखा था नहीं कि गुड आफ्टरनून श्रुति दी, हमके भी गाना सुने के बाटे और गाना बाटे श्याम सुंदर जी रुआ अगर गाना के फरमाइश के लिए बने तो हम रहा और गाना प्ले ना करें, अगर ऐसा गाना सुनने के बाद रुआ शो में ना जुड़े। और आगे एक और यहाँ मैसेज वाली कहते हैं नमस्ते मैम, हमके भी गाना सुनने के बाद, बिल्कुल गाना सुनने के बाद तो प्ले कर दें, बाकी गाना कौन बात जरूर बताएं। और अनिश यादव जी वानी दुमरा यदुवंशी टोला सिवान से। और आगे बढ़े में एक और यहाँ मैसेज बांटे लिखा था नहीं कि गाना सुनने के बाद टुनटुन यादव की आवाज़ में और हम गोपालगंज से बानी अंकित बहुत बहुत स्वागत बटे और फरमाइश बटे, तो बिल्कुल और फरमाइश प्ले करे के पूरा कोशिश बा, फिलहाल बिना देरी के अगला फरमाइश हम प्ले करें। और अगला फरमाइश जोन हमारा पास बा दबे पाँव यहाँ नजरिया बसा के और यहाँ मोहम्मद इरफान जी जुड़ चुकल बानी फ्रॉम दुबई से और बिल्कुल हमारा हाल बढ़िया बा, रहुआ बताएं कैसा बानी, बहुत बहुत स्वागत बटे रुआ के शो में और इन्जॉय करी गाना के दबे पाँव यहाँ नजरिया बजा के। और गाना के फरमाइश करे वाला बानी प्रभु निगवाले जी, तो सुनत रहें रेडियो रिमझिम 90.4 FM के राहुल गाना प्ले कर दिले बानी।

90.4 रेडियो रंजन सुन रहा बानी रोवा सभी और कार्यक्रम बाटे भोजपुरिया एक्सप्रेस के और अभी गाना सुना तनी सर प्रभु निकवाले के फरमाइश रहला मध्य प्रदेश से और यहाँ की तरफ से मैसेज भी पहुंच गया लिखा था थैंक यू मैम गाना बजावे खातिर और बिना देरी के अगला फरमाइश हम प्ले करें जोन की गाना के फरमाइश बाद दिल्ली से धनेश मिश्रा जी के तो एंजॉय करिए अपन गाना के नीलकमल के आवाज में जा पलट के देखब ना

और यहाँ राम कुमार पांडे जी जुड़ चुके बनी लंदन से। बहुत बहुत स्वागत बटे रुआ के भी शो में, और फरमाइश बटे तो बिल्कुल, और फरमाइश प्ले करे के पूरा कोशिश बात सुनत रही रेडियो रिमझिम के। और यहाँ और भी सारा गाना बा उमा शंकर मिश्रा जी लिखा तनी, थैंक यू गाना बजावे खातिर। और आगे फिलहाल इंजॉय करी गाना के फरमाइश जनबा हुआ धनेश मिश्रा जी के।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहल बानी और कार्यक्रम भोजपुरिया एक्सप्रेस के बार सब कोई से हमार निवेदन बाटे कि गाना के फरमाइश करो तनी तो भोजपुरी गाना के फरमाइश करी और बिना देरी के अगला फरमाइश प्ले करें। हम अगला फरमाइश जौन हमरा पास पहुँचल बा वह नीलकमल के आवाज़ में और गाना के फरमाइश करे वाला बानी रंजन कुमार जी बानी तमकुही रोड कुशनगर उत्तर प्रदेश से। तो चली रहा और गाना भी प्ले कर दिल बानी, इंजॉय करिए अपन गाना के रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

कि का बैठल का हाल हो गईल, का बताई का हाल हो गईल, गली जब से गैली जब से जियल काल हो गईल। मस्त सॉन्ग जी, हाँ बिल्कुल बखासे खूबसूरत गाना बाटे। और यहाँ और भी कई सारा मैसेज बाटे, और मैसेज बाटे इरफान जी लिखा था कि गाना में बहुत ही मधुर स्वर बाटे, गुनगुनैनी सोन सोनी बहन जी, और दिल से आभार व्यक्त करत नहीं, और साथ में हमरा तरफ से 121 रुपया के पेमेंट पुरस्कार मिलत बा। और बिल्कुल, और यहाँ एक टोकरी आम भेजले बनी, बोलते नहीं सबके में बांट देम, पूरा लोग मोहल्ला में बांट देम, सोनी बहन जी के घर छूटे के ना चाहिए, बिल्कुल ना छूटी। और फिलहाल इंजॉय करी गाना के। रंजन जी के फरमाइश बा पंजाब से, और यहाँ के तरफ से मैसेज भी पहुँच कर लिखा था सोनी जी गाना बजाओ खातिर धन्यवाद।

और 90.4 रेडियो रंजन सुन रहा बानी कार्यक्रम भोजपुरी एक्सप्रेस का। और अभी गाना सुना तनसा रंजन कुमार के फरमाइश है पंजाब से, और चलिए अगला फरमाइश इंजॉय कर जाओ। और अगला फरमाइश जो हमारा पास बांटे गाने के फरमाइश कोनो दिन शिकार हो जेबू, तो चलिए गाने के फरमाइश प्ले कर दिले बानी। और फरमाइश करे वाला बानी पप्पू ठाकुर।

0: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाई कोर्ट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचाई कोर्ट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान,
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198869793।
2: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार

0: एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
2: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
3: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399।

0: 90.4 FM रेडियो रिमझिम पे और वह सभी ज्ञापन कार्यक्रम भोजपुरी एक्सप्रेस में 4:01 हो चुका है स्टूडियो घड़ी में और 1 घंटा बचल बा। और फरमाइश के बात करी तो यहाँ काफ़ी सारा मैसेज बांटे और मैसेज बांटे लिखा था नहीं सोनी मैम अगर मैडम जी बताई फरमाइश बात तो बजा दी नहीं तो शाम के हमरा से शिकायत करेंगे। ओहो और केकर फरमाइश के बात होता धनेश जी जरूर बताएं राउर फरमाइश तो हम प्ले कर दे बानी। फिलहाल यहाँ आगे बढ़े और गुरु नानकपुरा बठीटा पंजाब से किशोर साबलनिया जी जुड़ चुके बानी साथ में यहाँ के बानी सवित्री साबलनिया सुमन साबलनिया बेटी अंशु के साथ है। बहुत बहुत स्वागत बटे शो में और लिखा तनी कोई भी गीत में हमके शामिल कर दी और हमारे भी हाजिर लगा दी मैडम जी आपके बहुत बहुत धन्यवाद हुई तो बिल्कुल और सब गाना में हम लोग के शामिल कर तनी इंजॉय करी। और यहाँ मैसेज बांटे लिखा तनी कि हमार गाना भी बा बिल्कुल राउर गाने के फरमाइश बा प्ले करें और बिना देरी के हम अगला फरमाइश की तरफ बढ़े और अगला फरमाइश जोन हमरा पास पहुँचल बटे एमडी मिन्नू जी जुड़ल बनी बहुत बहुत स्वागत बटे रुआ के भी शो में। एक और यहाँ मैसेज बा कहते नहीं कि हमारे दोस्त लोग के भी नाम ले ली तो बिल्कुल राउर दोस्त लोग बानी और यहाँ के दोस्त बानी सुनील जी प्रमोद जी और धर्मेंद्र कुमार जी रुआ सभी के बहुत बहुत स्वागत बा। फिलहाल यहाँ कॉल पहुँचल बा तो बात कर जाओ के बानी और कहाँ से। हेलो
1: मैडम जी प्रणाम
0: जी प्रणाम बहुत बहुत स्वागत बटे
1: नगेंद्र माझी गुरु दयावान जी अगर पकौली बदो से बोलता
0: नहीं। जी जी का हाल चाल बा
1: ताना क्या ठीक बा मैडम जी आपन बताई
0: हमरो बढ़िया बा
1: प्रोग्राम चलता है अच्छा चलता है हम सुबह से सुने नहीं
0: तो बताइए रोगा के कौन गाना सुनवा दी हम
1: गाना हम गावत हैं भोजपुरी फिल्म का भोजपुरी प्रोग्राम है ना बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले मैं के की कभी ना याद आए ससुरार में इतना प्यार मिले। मैडम जी
0: जी तो हिंदी गाना है
1: हिंदी हो
0: जी
1: हिंदी है जी
0: हाँ जी हिंदी गाना है लेकिन
1: अच्छा ठीक बात भोजपुरी हम गावत है नहीं
0: जी बिल्कुल
1: दुनिया उठा के कंधा चल ले कहाँ रवा बेटी परदेसी भैली परत सिंदूरावा दुनिया उठा के कंधा चल ले कहाँ रवा बेटी परदेसी भैली परत सिंदूरावा। मैडम जी ये सुना दी भोजपुरी और देख ले
0: जी जी तो प्ले कर दिले बनी गाना
1: सुनी ना रोबत चेक कर ली हम कहीं अंदर यहाँ मरा जो हम देखी आवला
0: ना ना ये भोजपुरी गाना है।
1: अरे मान लेके मिस्टेक हमरो से हो जाएगी ऐसा बात नहीं है
0: ना ना कोनो बात नहीं के फिलहाल गाना प्ले कर दिले बनी ठीक बा
1: सुनवाओ के चला तो इस रोबत के पहले जन नहीं जितना लोग सुनता सब लोग के पूरा परिवार के साथ सुने ठीक बा नो
0: ओके चलिए एंजॉय करी बहुत बहुत धन्यवाद समय कॉल करने
1: ठीक बा प्रणाम
0: प्रणाम।

90.4 रेडियो रंजन सुन रहा अलबानी कार्यक्रम बाटे भोजपुरी एक्सप्रेस के और अभी गाना सुनत नेशन गाने के फरमाइश कॉल के माध्यम से पहुंचा रहे तो चलिए बिना देरी कर ले अगला गाना के फरमाइश प्ले करें से नुरवा डाले के और गाना के फरमाइश के लिए बने अनिल जी छोटपुर से तो एंजॉय करिए अपन गाना के रेडियो रंजन 90.4 FM पर।

और इरफान जी कहते नहीं कि झकास सॉन्ग रहल अनिल भाई के। जी हाँ, बिल्कुल ही झकास सॉन्ग और काफ़ी दर्द भरा गाना बाटे जौन की बाटे अनिल भाई के। और मैसेज करे वाला बानी इरफान जी फ्रॉम दुबई से। और अगला फरमाइश हम प्ले करें।

और बिना देरी के लिए अगला फरमाइश जोन हमरा पास बा मेहरारू से के हुना जीतल बा और गाना के फरमाइश प्ले कर दिल बानी और फरमाइश करे वाला बानी नाम बटे यहाँ के और समीर जींस जामो से जुड़ल बानी तो इंजॉय करी समर जींस इंजॉय करी अपन गाना के रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

मैसेज बानिल जी के तरफ से लिखा था, निकिर फान जी बहुत दर्द बा। जी हाँ, दर्द तो बहुत बा और सबके लाइफ में बा कोनो ना कोनो बात के। फिलहाल इंजॉय करी गाना के, जो कि समर जींस जामो से जुड़ल बनी यहाँ के तरफ से गाना बा। खेसारी लाल के आवाज में मेहरारू से केहू ना जीतल बा।

और बिना देरी के अगला फरमाइश की तरफ बढ़े और यहाँ मैसेज भी आई तो बात सही बा कि मेहरारू से कहूँ ना जीतल बा। अमरजीत शुक्ला जी बानी दुबई से और चलिए रावर टिकट भी कंफर्म होता है। इंजॉय करिए अपन गाना के, राजा जी के दिलवा टूट जाए। रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

और यहाँ अभी अभी दस्तक देले बानी पाजी यूपी चौवन से बहुत बहुत स्वागत बटे रुआ के भी सुनत रही रेडियो रिमझिम का। और यहाँ मैसेज में लिखा था नहीं आज तो मजा आ गया प्रोग्राम सुन के सोनी जी बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन रोज आई प्रोग्राम में बिल्कुल रोज ही आवे नहीं और कभी कभी कुछ ऐसा काम पड़ जाला जेकरा वजह से छुट्टी लेवे के पड़ेला। अनिल जी बानी दरभंगा से और यहाँ मैसेज बटे इरफान जी के लिखा था नहीं अनिल भाई चोटपुर से केने घर बा खालिसपुर आई तो रुआ दर्द के दवाई लेके आए। ओहो हो बिल्कुल और इरफान जी अनिल जी के दर्द के दवाई लेके आवे लबानी है तनी हम भी जानी कौन दवाई लेके आए बिल्कुल हमरों के बताएं।

और यहाँ प्रमुख जी बानी लिखा था कि सुपर सॉन्ग राजा जी के दिलवा टूट जाए तब तब बड़ा मजा आई। हाँ बिल्कुल मजा आई, उ तो जेकर टूटी ओकरे बुझाई।

0: मैसेज पहुंच गए बाटे। लिखत निकी बताई कैसन गाना बा, धन्यवाद परिवार रिमझिम परिवार के गाना बजाए खातिर। तो बिल्कुल बढ़िया गाना बाटे, फिलहाल इंजॉय करी। और यहाँ काफी सारा मैसेज बाटे, लिखत निकी बहुत बहुत धन्यवाद और काफी सुपर सॉन्ग। एक और यहाँ मैसेज लिखत इरफान जी कहाँ बानी अभी, इरफान जी अभी दुबई बानी। और मिलत नहीं रघुआ सभी से छोटा सा ब्रेक के बाद।
1: अरे माँ ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनो फेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
0: वेलकम बैक रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे रहुआ सबे क्या अपन कार्यक्रम भोजपुरिया एक्सप्रेस में। और यहाँ 4:21 हो चुकल बाई स्टूडियो घड़ी में। और रुआ भी कार्यक्रम से जुड़े के चाहता नहीं, तक कई सारा माध्यम बाटे जिससे मैं व्हाट्सएप बाटे, कॉल बाटे, रुआ जौन माध्यम से चाहे जुड़ सकता नहीं। और यहाँ कॉल पहुँचल बा तो चली मैसेज रोके में और अगला फरमाइश के तरफ बढ़े में। और अगला फरमाइश देखल जाओ के बानी कहाँ से और गाने का फरमाइश का बा। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत बाटे रेडियो रिमझिम में।
7: नमस्ते मैम
0: जी। नमस्ते, का समाचार बाजी?
7: समाचार ठीक बा, हम थावे लाले मार्केट से रामा जी प्रसाद। गाना तो बोलो जी, सैया जी के मुस्की अच्छा लगला तो हमरा साली जी के मुस्की अच्छा लगला।
0: हाँ हाँ, तो रहुआ तो साली जी के मुस्की अच्छा लगबे करी।
7: तो गाना सुना दे।
0: हाँ,
7: बनवारी हो बलमा हमरो गवार।
0: जी जी, काफी बढ़िया गाना बाटे। और आज हमको उम्मीद रहे कि रोवा ये गाना का फरमाइश करें, कहे कि सुबह से हमारे दिमाग में ये गाना चलत रहे।
7: हमरो सब से सो चल भला दिमाग में रहला कि हम ये गाना फरमाएं जब हमर कॉल लागी।
0: चलिए ठीक बाटे, तो गाना प्ले कर देले बानी।
7: नमस्ते।
0: नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद समय कॉल करी, एंजॉय करनी।

और अभी अभी यहाँ मुस्तफा जी जुड़ चुकल बानी, लिखा था नहीं गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत बटे रुबा के भी। और यहाँ मैसेज बटे लिखा था नहीं इरफान जी के फॉरवर्ड कर दिया, अच्छा बिल्कुल। और अनिल जी बानी चोटपुर से एक और यहाँ मैसेज पहुँचल बा, और नाम पता मेंशन नहीं किया था, नाम पता मेंशन करी, बहुत बहुत स्वागत बटे रुआ के भी। अनीता देवी जुड़ चुकल बनी रूप छाप से, बहुत बहुत स्वागत बटे रुआ के भी। और यहाँ मैसेज पर लिखा था नहीं मेहरा उसे केहू ना जीतल बा आज के लिए, ठीक बटे जी हाँ बिल्कुल। धनेश मिश्रा जी बानी दिल्ली से, फिलहाल इंजॉय करी रामा जी प्रसाद के फरमाइश के।

90.4 रेडियो रंजन सुन रहल बानी और कार्यक्रम बटे भोजपुरी एक्सप्रेस के और अभी काफी खूबसूरत गाना सुना तनी सन हमने के ओल्ड इज गोल्ड बनवारी हो हमारा के बलमा गंवार और फरमाइश करे वाला बानी रामा जी प्रसाद और यहाँ आगे मैसेज बटे और लिखा था नहीं कि रामा जी का बात बात साली जी के मुस्की पर इतना फिदा बानी हमने के नसीब में ये ऑफर मिली कि ना। और मोहम्मद इरफान जी बानी फ्रॉम दुबई से और बिना देरी के अगला फरमाइश हम प्ले करें हमरा पास पहुँचल बाटे लंदन से गाना के फरमाइश राम कुमार पांडे जी बानी तो चली रहा और टिकट भी कन्फर्म होता है इंजॉय करिए अपन गाना के रेडियो रिमसिम 90.4 FM पर गाना राउ प्ले कर दे बानी पिया पियावा क्रिया धरावे

और यहाँ राम कुमार जी की तरफ से मैसेज पहुंच गल बा, लिखा तनी बहुत बहुत धन्यवाद आपका गाना सुनावे खातिर, एंजॉय करिए अपन गाना के। और यहाँ मैसेज बा लिखा तनी सुपर सॉन्ग गुड मॉर्निंग, और नंद उपाध्याय जुड़ चुकल बनी तुलसिया से बहुत बहुत स्वागत बटे रुआ के बीचों में।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहल बानी और यहाँ सुबह साहू जुट चुकल बानी, बहुत बहुत स्वागत बाटे। और यहाँ सुचिन कुशवाहा जी बाने लिखा तरी नाइस सॉन्ग, और जेकर जेकर फरमाइश अभी तक छूटल बा एक बार मैसेज कर दी, रउआ सबे समय काफी कम बाटे फिर भी कोशिश करेम कि रउआ सबे के फरमाइश जान बा प्ले करे में। और यहाँ मैसेज बा लिखा तनी बड़ा अच्छा गाना बाटे मैम पियवा कुछ ना बतावे, और निमल आता गाना और मैसेज करे वाला बानी नाम बाटे यहाँ के बसंती देवी जी, बहुत बहुत स्वागत बाटे रउआ के भी शो में। फिलहाल सुनत रही रेडियो रिमझिम के। और यहाँ प्रमुख जी बानी लुधियाना पंजाब से लिखा था नहीं कि क्रिया वाला गाना हमके भी अच्छा लागल। और यहाँ निजामुद्दीन जी जुड़ चुकल बानी सऊदी अरब से, बहुत बहुत स्वागत बटे रुआ के भी। और आगे यहाँ और भी कई सारा मैसेज बटे, तो हम बिना देरी के अगला फरमाइश प्ले करें। और अगला फरमाइश हमारा पास पहुँचल बटे गाना सुनने वाला बानी अनिता देवी जी रूप छाप से, तो चली रहा और टिकट भी कन्फर्म हो गल बा, अपन गाना के एंजॉय करी रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

और यहाँ मॉडर्न टेलर से अजय जी जुड़ चुकल बानी अयोध्या से। बहुत बहुत स्वागत बाटे और फरमाइश बात और फरमाइश प्ले करे के पूरा कोशिश बाटे। सुनत रही रेडियो रिमझिम के एक और यहाँ मैसेज पहुँचल बली का तनी कि हमरो गाना बा। मैडम जी प्रणाम, सिवान से बोला तनी और आज पहला बार जुड़ल बानी। उम्मीद बा कि हमार गीत प्ले हुई और रुआ तो पहले ही उम्मीद बा लगा देनी तो फिर का कर सकता नहीं हम। और कमला देवी जी बानी, बहुत बहुत स्वागत बटे शो में। फरमाइश बात तो प्ले करे के पूरा कोशिश बटे। फिलहाल सुनत रही रेडियो रिमझिम के और इंजॉय करी अनिता देवी जी के फरमाइश के। और यहाँ अनिता जी के तरफ से भी मैसेज पहुँच गया बली का तनी कि धन्यवाद मैडम जी और गाना बजैनी। ओके, इंजॉय करिए अपन गाना के।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
8: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
9: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
8: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
10: एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत बटे रुआ सबे के रेडियो रंजीम 90.4 FM पे। रुआ सबे क्या अपन कार्यक्रम भोजपुरिया एक्सप्रेस में 4:36 हो चुकल बा और यहाँ काफ़ी सारा मैसेज पहुँचल बा। अभी अभी कुछ लोग शो से जुड़ल बानी तो रिकॉर्ड यहाँ मैसेज वाले के तनी गुड इवनिंग मैम, हम भी जुड़ चुकल बानी सोनाली जी बानी और गाने के फरमाइश बा, तो बिल्कुल प्ले करे के पूरा कोशिश बा। बहुत बहुत स्वागत बटे। मुन्ना जी दिल्ली से जुड़ चुकल बानी, बहुत बहुत स्वागत कर तनी रुआ के भी। एक और यहाँ मैसेज वाले लिखा तनी सोनी जी और भाई, पर्सनल नंबर चाहे तो ऑफिस के नंबर बाटे, जो भी पर्सनल बात करे एक बार हुआ वहाँ कर सका तनी। और फिलहाल हम बढ़े अगला फरमाइश के तरफ और अगला फरमाइश जो हमारा पास बा कॉल के माध्यम से, तो चलिए बात कर जाओ के बानी और कहाँ से। हेलो।
11: हेलो
10: जी, बहुत बहुत स्वागत बाटे रेडियो रंजीम में। नमस्कार, नाम बता दी। तो थोड़ा सही जगह पे शांत जगह से बात करी, आवाज काफी साफ नहीं क्या होती से भी।
11: वे रेडियो बाजत रहला,
10: वे सुना। कम कर दियो करके रेडियो के।
11: हाँ, हट गए नहीं, दूर हो गए।
10: चलिए बढ़िया बात, फिर भी बगल से कुछ आवाज आता है। जी, तो गाना कौन सुनवा दी बता दी।
11: पागल कहेला ना लोग वा पागल कहेला।
10: और सुनवाए के भी बा।
11: सुनिया कते सबल सुननी।
10: चलिए तो गाना प्ले कर देले बानी। कल्पना के आवाज में बाऊ है गाना ना।
11: हाँ।
10: चलिए एंजॉय करी गाना के।
11: जी।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहा बानी रउआ सभी और कार्यक्रम बटे भोजपुरी एक्सप्रेस के। और अभी हमने के गाना सुना था, निशन गाना का फरमाइश कॉल के माध्यम से पहुंचा रहे और बिना देरी के अगला फरमाइश प्ले करें जॉन की पहुंचल बा हमरा पास दुबई से मोहम्मद इरफान जी की तरफ से। तो इंजॉय करिए अपन गाना के रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। ओढ़नी प्यार करे लागल पुरवैया से।

और यहाँ मैसेज बटे लिखा था कि तहे दिल से शुक्रिया डियर सोनी बहन जी और अनिल भाई, दुबई में बहुत तेज पुरवैया हवा बहुत आ राउर का विचार बा। और यहाँ मैसेज बटे लिखा था कि इरफान जी, इरफान जी रुआ तब तक हमार मौसिया भाई बने हो जी। हाँ, और आगे यहाँ और भी सारा मैसेज बटे लिखा था दिव्या मैम आप पर अफसर भाई कहाँ बने, तो अफसर भाई अपन काम करतनी और वहाँ के ना बानी। बहुत बहुत स्वागत बाटे रुआ के शो में, शो से जुड़ी और फरमाइश बात प्ले करे के पूरा कोशिश बा। फिलहाल इरफान जी के फरमाइश एंजॉय करी रेडियो।

और यहाँ अभी अभी फरमाइश पहुँचल बा कौना देवता के गढ़ल सवारल हो। तो बिल्कुल फरमाइश बा प्ले करे के पूरा कोशिश बा। पल्लवी पांडे जी जुड़ल बनी, बहुत बहुत स्वागत बटे और काफी खूबसूरत गाना के फरमाइश बा। फिलहाल एंजॉय करिए और गाना जोन बा पूरा कोशिश बा कि हम प्ले करके जाएं।

और चली बिना देरी के अगला फरमाइश एंजॉय कर जाओ। और अगला फरमाइश बाटे मुस्तफा जी के सऊदी से, एंजॉय करिए अपन गाना के रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

और यहाँ प्रमुख जी के मैसेज पहुँचल बा, लिखा था नहीं कि मुस्तफा भाई कैसन गाना सुनावत बाड़ा। अभी तक मुस्तफा भाई जनियन के यहाँ के पसंद कैसन बाटे, फिलहाल गाना ठीक ठाक बा लेकिन थोड़ा सा अलग बाटे। और लिखा था नहीं कि हमार गनवा पर, बिल्कुल राहुल गनवा पर भी नज़र बा, फिलहाल सुनत रही रेडियो रिमझिम के।

और यहाँ राम कुमार पांडे जी बानी लिखा था आज तो बहुत मजा आ गया। जी हाँ बिल्कुल, और ऐसे ही मजा आवत रही। अगर वह सभी अच्छा अच्छा गाना के फरमाइश करम तक, कभी कभी ऐसा होला कि ऐसा गाना के फरमाइश पहुँच जाला कि मूड खराब हो जाएगा पूरा के पूरा, और फिर मजा भी किड़किड़ा हो जाला। तो रुआ सभी खुद ही सोची कि जोन गाना रुआ अपन फैमिली के साथ है नहीं कि सुन सका, तो गाना के फरमाइश काहे भेजता नहीं। तो अच्छा अच्छा गाना के फरमाइश भेजम तो सो भी बढ़िया चली और मजा भी आई। और यहाँ मैसेज बैठे लिखा तनी सोनी जी हमरो गाना बा, और लुकमान जी जुड़ चुकल बनी अयोध्या से, बहुत बहुत स्वागत बटे। और आगे बढ़े यहाँ और भी कई सारा मैसेज बार हुआ, सभी से बता दी कि वॉइस मैसेज ना भेजी, हमें वॉइस मैसेज की जरूरत नहीं कि वो योर वॉइस योर चॉइस में भेजें। फिलहाल यहाँ गाना के नाम और आप नाम लिख के भेज दें।

और यहाँ अनिल जी के मैसेज पहुँचल बा, लिखा था नहीं हवा तेज बहत आता रहुआ अफ्तर, अच्छा रफ्तार बढ़ा दी, और भाभी जी इंतजार करो तनी वही जैसे प्यार भेज दी बिल्कुल, और मैसेज बाटे इरफान जी खातिर, और यहाँ सिर्फ राज के आवाज़ में गाना के फरमाइश बात प्ले करे के पूरा कोशिश बाटे, और अनिल जी के तरफ से मैसेज पहुँच गल वाली खतनी थैंक्स गाना बजावे खातिर, और आगे और भी कई सारा फरमाइश बा, और समय काफ़ी कम बा, तो जेकर भी फरमाइश छुट्टी हमरा के माफ़ कर देम लोग, और कल पूरा कोशिश करेम कि योर वॉइस योर चॉइस मेरे वास्तविक के फरमाइश जौन बा प्ले हो।

और चलिए बिना देरी के अगला फरमाइश, और अगला फरमाइश भाई यहाँ कोना देवता के गढ़ल सवारल हो, तो चलिए एंजॉय करिए अपन गाना के पल्लवी पांडे जी बानी भेड़िया से रेडियो 90.4 FM पर गाना प्ले कर दे।

0: बाबूजी, हेलो। हाँ बाबूजी,
1: अभी तक ले तो
0: लाइन में लागल बनी, लाइन में लागल बनी,
1: चल जल्दी करे।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहा बानी रउआ सभी और कार्यक्रम बटे भोजपुरी एक्सप्रेस के और अभी गाना सुनत नहीं सन पल्लवी पांडे जी के फरमाइश और बिना देरी के अगला फरमाइश प्ले करे और यहाँ मनोज कुमार जी जुड़ चुकल बानी बहुत बहुत स्वागत बटे रउआ के भी और आगे यहाँ और भी कई सारा मैसेज बाटे लेकिन हम अगला फरमाइश बिना देरी के प्ले करे और अगला फरमाइश बाटे कमला देवी जुड़ल बानी और आज शो में यहाँ के पहला दिन बात चली रहा और टिकट भी कन्फर्म करते नहीं और गाने का फरमाइश बा जब केहू दिल में समा जाला हो काफी खूबसूरत गाना एंजॉय करी रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

90.4 रेडियो रंजन सुनाल बानी रउवा सभे और कार्यक्रम बाटे भोजपुरी एक्सप्रेस के और अभी गाना सुना तनी सन कमला देवी जी के फरमाइश बा और यहाँ के गाना सुन ले बानी और यहाँ और भी कई सारा मैसेज बा लिखा तनी अभी भी शो से जुड़ल बानी विनोद कुमार चौहान जी बानी विलेज कमही से बहुत बहुत स्वागत बटे और 4:59 हो चुकल बा एक मिनट में समय समाप्त हो जाइए और यहाँ पीआर मुंबई से जुड़ल बानी बहुत बहुत स्वागत बटे रुआ के भी मनोज कुमार कुशवाहा जी बानी रागे यहाँ और भी कई सारा मैसेज बटे तो बिना देरी के हम अगला फरमाइश प्ले करें और यह फरमाइश के साथ हम ले जाए की इजाज़त और निर्मला कुमारी बानी जादोपुर से और यहाँ के गाना सुनने के बाद सुन रहा के कदर सुन रहे जाने तो चलिए इंजॉय करिए अपन गाना के रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर प्ले कर दिल बने राउर गाना के और ये गाना के साथ दी आज के इस शो से जाए की इजाज़त स्वस्थ रही मस्त रही रखी अपन ख्याल अपनों के ख्याल और सुनत रही रेडियो रिमझिम के फिर मुलाकात हुई कल योर वॉइस योर चॉइस में तब तक के लिए नमस्कार।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, सुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
0: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
1: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
0: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82101-87952। नियम और शर्तें लागू।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
5: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
6: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
5: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
6: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
5: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86164।
7: ठक ठक।
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा मिला ही नहीं।
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
10: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
10: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
11: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। तो दोस्तों, हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए आपको कॉल करना होगा हर रविवार 12 बजे से हमारे स्टूडियो के नंबर 8029-94-91, 8029-94-91 पर। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं रेडियो रिमझिम के इस रोमांचकारी खेल के रूल्स को। इस हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे 10 प्रश्न, हर प्रश्न के होंगे 3 ऑप्शन, जिसमें से होगा एक सही जवाब और आपको मिलेंगे 10 सेकंड का समय। यदि आप 10 सेकंड में जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप इस खेल से बाहर हो जाएंगे। 10 प्रश्न के सही जवाब देने वाले प्रतिभागी को मिलेगा रेडियो रिमझिम के तरफ से एक एक्साइटिंग गिफ्ट और हमारे स्टूडियो में आने का मौका। तो दोस्तों, आपको अपने तरफ से इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके मोबाइल में पर्याप्त बैलेंस हो, साथ ही हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट के दौरान शांत जगह से कॉल करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी से सहायता ना लें और इंटरनेट पर जवाब सर्च ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट को और लेते हैं पहले प्रतिभागी का कॉल।
12: स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
13: जी नमस्ते मैम।
12: नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
13: नाम सालू कुमारी।
12: कहाँ से बात कर रही हैं सालू जी?
13: बिरती टोला से।
12: जागीरी टोला से?
13: बिरती टोला।
12: अच्छा, श्रीसिया बिरती टोला। ठीक, कैसे हैं सालू जी?
13: अच्छा, आप बताइए।
12: मैं भी बढ़िया हूँ। तो क्या करती हैं सालू जी आप?
13: पढ़ाई करती
12: हैं। किस क्लास की पढ़ाई करती हैं?
13: नाइन्थ क्लास में आ गए।
12: नाइन्थ क्लास में आ गई हैं आप। और पढ़ाई कैसा चल रहा है आपका?
13: अच्छा चल रहा
12: है। ये बढ़िया है। आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में पहली बार कॉल की है सालू जी?
13: पहले भी कर चुकी हूँ।
12: अच्छा, पहले भी बात हुई है। तो अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
13: मम्मी का नाम श्रीमती निर्मला देवी, पापा का नाम बरेंद्र कुमार प्रसाद।
12: जी, क्या करते हैं पापा जी आपके?
13: बिजनेस मैन
12: है। और आपका क्या लक्ष्य है, आगे क्या करना है पढ़ाई करके, कुछ सोचा है आपने?
13: जी, आगे पढ़ाई करके सिविल सर्विसेज में जाना
12: है। सिविल सर्विसेज में जाना है, चलिए बढ़िया है। तो शुरू किया जाए आज का कार्यक्रम आपके साथ।
13: यस मैम।
12: जी, लिया जाए पहला प्रश्न।
13: यस मैम।
12: ओके,

0: तो सालू जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है।
1: हाँ।
0: रतौंधी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी और ऑप्शन सी विटामिन डी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन बी क्या था?
0: विटामिन बी।
1: और ऑप्शन सी?
0: विटामिन डी।
1: दोनों विटामिन डी?
0: ऑप्शन बी विटामिन बी है।
1: हाँ।
0: और ऑप्शन सी विटामिन डी है।
1: अच्छा। विटामिन ए?
0: हाँ,
1: विटामिन ए।

0: विटामिन ए?
1: हाँ।
0: श्योर है?
1: श्योर नहीं है, लॉक कीजिए।
0: चलिए तो चलिए सालू जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए विटामिन ए को लॉक करते हैं, और आपको बताएं कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: आज से आपका दूसरा प्रश्न ये है, चार्ल्स बेबेज ने किस मशीन का आविष्कार किया? ऑप्शन ए टेलीविजन, बी कंप्यूटर, सी रेडियो। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन बी कंप्यूटर।
0: क्यों है?
1: यस मैम।
0: लॉक कर दूं?
1: यस मैम।
0: ओके तो चलिए सालू जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी कंप्यूटर को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: ओके तो सालू जी, आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, भारत का राष्ट्र गीत कौन सा है? ऑप्शन ए जनगणमन, ऑप्शन बी वंदे मातरम, और ऑप्शन सी विजय विश्व तिरंगा। आपका समय शुरू होता है अब।
1: वंदे मातरम।
0: श्योर है?
1: यस मैम।
0: लॉक कर दूं? चलिए तो सालू जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी वंदे मातरम को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: ओके आज से आपका चौथा प्रश्न ये है, भारतीय संविधान के जनक कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी डॉक्टर विधान चंद्र राय, और ऑप्शन सी डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम ऑप्शन सी डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर।
0: श्योर है?
1: यस मैम।
0: ओके तो लॉक कर दूं?
1: यस मैम।
0: तो चलिए सालू जी, आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप पांचवें प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: आज से आपका पांचवा प्रश्न ये है, जनवरी को भारत के किस महापुरुष की पुण्यतिथि मनाई जाती है? 30 जनवरी को भारत के किस महापुरुष की पुण्यतिथि मनाई जाती है?
1: 30 जनवरी।
0: हाँ। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: क्योर है आप?
1: क्योर नहीं है।
0: तो लॉक करूं?
1: यस मैम।
0: ओके तो चलिए सालू जी, आपके पांचों प्रश्न के उत्तर ऑप्शन सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पांचों प्रश्न का उत्तर जो है बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद।

0: अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: पता: जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: पता: जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
5: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
6: एक सूचना: संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200-42-34-03, 6200-42-34-03।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170-856587।
8: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
9: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
8: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
9: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
10: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिंजन के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029-94-21 8029-94-21 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
11: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से।
12: जी मैं बिमल कुमारी बोल रही हूँ, लाइन बाजार से।
11: जी कैसे हैं बिमल जी?
12: ठीक हूँ, आप कैसी हैं मैम?
11: मैं भी बढ़िया हूँ। तो
12: हेलो।
11: हाँ
12: जी बोलिए।
11: मतलब की पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी?
12: पढ़ाई अभी तो बंद है।
11: अच्छा, तो अभी क्या हो रहा था?
12: अभी कुछ नहीं, सिलाई चलाती हूँ तब तक फ्री टाइम में।
11: क्या चलाती हूँ?
12: सिलाई कर लेती हूँ फ्री टाइम में।
11: अच्छा, सिलाई भी करती हैं? सब कुछ सिल लेती हैं?
12: हाँ, लेडीज स्वामी लेडीज।
11: अच्छा, लेडीज मतलब सारी चीज सिल लेती हैं।
12: हाँ,
11: तो आपको लेडीज टेलर बोल सकते हैं।
12: हाँ, नामी अपना सिल कर पहन लेते हैं लोग, दूसरे का सिल देते हैं।
11: चलिए अच्छी बात है, करना चाहिए, वो भी जरूरी है।
12: हाँ,
11: तो आप हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं तो तैयार हैं आप पहले प्रश्न के लिए?
12: जी मैम।
11: जी मम्मी पापा का नाम बता दीजिए अपने।
12: मम्मी का नाम प्रभाती देवी है, पापा जी के नाम श्री रामाजी प्रसाद है।
11: जी तो लिया जाए ना पहला प्रश्न।
12: जी मैम।
11: जी

0: तो विमल जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? ऑप्शन ए जनगण मन, ऑप्शन बी वंदे मातरम और ऑप्शन सी विजय विश्व तिरंगा। आपका समय शुरू होता है अब।
1: वंदे मातरम।
0: श्योर है?
1: हाँ
0: जी। और आपके बगल में कोई बच्चा है?
1: हाँ।
0: बीच बीच में आवाज आ रही है थोड़ा।
1: बेबी, छोटा सा बेबी, एक मंथ का, वो आप आसी में है।
0: चलिए कोई नहीं, तो लॉक करें आपका आंसर।
1: जी
0: जी। तो चलिए विमल जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी वंदे मातरम को लॉक करते हैं।
1: जी
0: जी। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: जी। आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, रतौंधी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी और ऑप्शन सी विटामिन सी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: विटामिन ए।
0: श्योर है?
1: जी मैम।
0: जी, लॉक करो।
1: जी मैम।
0: ओके, तो चलिए विमल जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए विटामिन ए को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार हैं आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: जी। आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, बिहार केसरी के नाम से किस महान पुरुष को जानते हैं? बिहार केसरी के नाम से किस महापुरुष को जानते हैं? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, बी कर्पूरी ठाकुर, सी श्री कृष्ण सिंह। तो आपका समय शुरू होता है अब।
1: श्री कृष्ण सिंह।
0: जो है
1: जी,
0: लॉक कर दो। तो क्या कहती हैं, लॉक करो कि कोई और ऑप्शन दीजिएगा?
1: कर दीजिए मैम, देखते हैं।
0: कर दिए, चलिए। तो विमल जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी श्री कृष्ण सिंह को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार हैं आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: जी। आज से आपका चौथा प्रश्न ये है, चार्ल्स बेबेज ने किस मशीन का आविष्कार किया? चार्ल्स बेबेज ने किस मशीन का आविष्कार किया? ऑप्शन ए टेलीविजन, बी कंप्यूटर, सी रेडियो। आपका समय शुरू होता है। क्लियर है?
1: हाँ।
0: लॉक कर दूँ?
1: जी मैम।
0: ओके, तो चलिए विमल जी, आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी कंप्यूटर को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर सही है। तो तैयार हैं आप पांचवें प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: जी। तो पांचवा प्रश्न आपसे ये है विमल जी, जनवरी को भारत के किस महापुरुष की पुण्यतिथि मनाई जाती है? 30 जनवरी को भारत के किस महापुरुष की पुण्यतिथि मनाई जाती है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, बी महात्मा गांधी और
1: महात्मा गांधी।
0: जी। तो रहे आप?
1: जी मैम।
0: तो लॉक कर दो?
1: जी।
0: चलिए, तो चलिए विमल जी, आपके पांचों प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी महात्मा गांधी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पांचों प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार है आप छठे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: जी। आपसे आपका छठा प्रश्न ये है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाई जाती है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए 8 मार्च, बी 28 फरवरी और सी

0: 22 मार्च आपका समय
1: पूरा मार्च
0: क्लियर है
1: जी मैम,
0: लॉक कर दो
1: जी जनरल नॉलेज।
0: ओके तो चलिए विमल जी, आपके छठे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 8 मार्च को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके छठे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तो तैयार हैं आप सातवें प्रश्न के लिए?
1: जी मैम
0: जी। तो सातवां प्रश्न आपसे ये है, निम्न के किस जिला में 2 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? निम्न के किस जिले में 2 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? ऑप्शन ए छपरा, बी बेतिया, सी सिवान। आपका समय शुरू होता है अब।

0: कंफर्म नहीं है मैम, फिर भी
1: छपरा लॉक कर दीजिए।
0: छपरा कर दें
1: जी,
0: प्योर है लॉक?
1: प्योर तो नहीं है, मैं चेक कर रहा है, लेकिन लॉक कर दीजिए, देखते याद नहीं आ रहा है तो क्या करें।
0: चलिए कोई नहीं, तो आपके सातों प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए छपरा को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके सातों प्रश्न का उत्तर गलत है, सही उत्तर होगा सिवान।
1: ओके मैम,
0: ओके। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल की, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में, सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
5: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
6: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
5: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
7: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
5: संपर्क करें 9939365923। ओम नमः शिवाय।
7: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
5: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
7: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
5: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
7: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
5: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
7: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
5: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
7: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
5: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई।

0: घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव। नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97714-86164।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिंजन के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029-94-91 8029-94-91 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
3: हेलो,
4: नमस्ते मैम।
3: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजन के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
4: ये मैं अभिजीत कुमार पचुरुखी से बात कर रहा हूँ।
3: पचुरुखी से?
4: जी।
3: सिवान पचुरुखी?
4: जी जी
3: जी। और अभिजीत नाम पड़ेगा आपका?
4: जी।
3: क्या करते हैं अभिजीत जी?
4: बारहवीं का एग्जाम पढ़ाई करता हूँ।
3: बारहवीं में?
4: जी
3: जी। पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी?
4: बढ़िया चल रही
3: है। अच्छी बात है, तो आगे क्या करना है पढ़ के, कुछ सोचा आपने? आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है।
4: गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है।
3: अच्छा, अभी शुरू नहीं किया है?
4: नहीं।
3: ओके, हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में इससे पहले भी कॉल किए हैं आप?
4: जी जी
3: जी। अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए अभी बीजी।
4: मम्मी जी का नाम उषा देवी और पिताजी का नाम दिनेश ठाकुर।
3: क्या करते हैं पापा जी आपके?
4: फार्मर हैं।
3: तो शुरू किया जाए आज का प्रश्न आपके साथ।
4: जी
3: जी।

0: तो अभिजीत जी आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाई जाती है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, बी 12 जनवरी, सी 17 जनवरी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: बारह जनवरी
0: है
1: जी।
0: चलिए तो अभिजीत जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 12 जनवरी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, पश्चिमी चंपारण का जिला मुख्यालय कहाँ है? पश्चिमी चंपारण का जिला मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए मोतिहारी, बी मुजफ्फरपुर, सी बेतिया। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन सी फिक्स कीजिए।
0: बेतिया
1: जी।
0: प्योर है
1: जी।
0: लॉक कर दो
1: जी।
0: तो विजय जी आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी बेतिया लॉक कर रहे हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: जी
0: जी। आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, तीस जनवरी को भारत के किस महापुरुष की पुण्यतिथि मनाई जाती है? तीस जनवरी को भारत के किस महापुरुष की पुण्यतिथि मनाई जाती है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आपका समय शुरू होता है अब।
1: महात्मा गांधी।
0: श्योर है
1: जी?
0: लॉक कर दो
1: जी।
0: जी। तो चलिए अभिजीत जी आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर महात्मा गांधी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है, बिहार राज्य को कितने प्रमंडल में विभाजित किया गया है? बिहार राज्य को कितने प्रमंडल में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 8, बी 9, सी 14। आपका समय शुरू होता है अब।
1: नौ फिक्स कीजिए।
0: आपके बगल में कोई है?
1: मेरा बात कर रहा था, गया हूँ।
0: हाँ
1: गए उधर बात कर रहे थे। नौ फिक्स कीजिए।
0: क्योर है आप
1: जी?
0: चलिए तो चलिए अभिजीत जी आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 9 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार है आप पांचवे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपसे आपका पांचवा प्रश्न ये है, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू का जन्म दिवस कब मनाई जाती है? भारत कोकिला सरोजिनी नायडू का जन्मदिन कब मनाया जाती है? ऑप्शन ए 12 फरवरी, बी 13 फरवरी और सी 16 फरवरी। आपका समय शुरू होता है अब। 12 फरवरी, बी 13 फरवरी और सी 16 फरवरी।
1: 13 फरवरी फिक्स कीजिए।
0: क्योर है
1: जी?
0: तो चलिए अभिजीत जी आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 13 फरवरी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप छठे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपसे आपका छठा प्रश्न ये है, बिहार राज्य के निम्न जिलों में दो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। ऑप्शन ए नालंदा, बी औरंगाबाद और सी पटना। आपका समय शुरू होता है अब।
1: औरंगाबाद फिक्स कीजिए।
0: श्योर है?
1: श्योर नहीं
0: है। लॉक कर दो
1: जी।
0: जी तो चलिए अभिजीत जी, आपके छठे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी औरंगाबाद को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके छठे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा पटना।
1: ठीक है मैम।
0: ओके हेलो, फिर कॉन्टेस्ट में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
3: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
3: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97746864।
3: ओम नमः शिवाय।
4: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, गोपालगंज।
3: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
4: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
4: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
3: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
4: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
3: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास, गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
4: बोलबम, हर हर महादेव।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 80029994121 पर आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
0: हेलो।
7: हाँ हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
7: जी मैडम।
0: जी नाम बता दीजिए अपना।
7: रंजीत कुमार।
0: जी कैसे हैं रंजीत जी?
7: ठीक है मैम, आपने बताइए।
0: हम भी बढ़िया हैं। तो क्या करते हैं रंजीत जी आप?
7: अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं।
0: किस क्लास की पढ़ाई चल रही है आपकी?
7: अभी ग्रेजुएशन हो गई है, कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी चल रही है।
0: चलिए अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
7: मेरे पिताजी का नाम श्री जग महतो और मेरी माता जी का नाम श्रीमती इंदु देवी।
0: जी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं, तैयार हैं पहले प्रश्न के लिए?
7: जी
0: जी। तो रंजीत जी आपसे, रंजीत नाम बताया ना आपने?
7: जी जी
0: जी।

0: पहला प्रश्न ये है, बिहार केसरी के नाम से किस महापुरुष को जानते हैं? बिहार केसरी के नाम से किस महापुरुष को जानते हैं? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, बी कर्पूरी ठाकुर और सी श्री कृष्ण सिंह। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन सी श्री कृष्ण सिंह।
0: श्योर है?
1: जी।
0: लॉक कर दूं?
1: हाँ।
0: ओके, तो चलिए रंजीत जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी श्री कृष्ण सिंह को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।

0: जी। आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, भारत कोकिला सरोजनी नायडू का जन्म कब मनाई जाती है? भारत कोकिला सरोजनी नायडू का जन्म दिवस कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए 12 फरवरी, बी 13 फरवरी और सी 14 फरवरी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन क्या क्या बोली है?
0: ऑप्शन ए 12 फरवरी, बी 13 फरवरी और सी 14 फरवरी।
1: 13 फरवरी को ठीक कीजिए।
0: क्यों है?
1: जोर तो नहीं है लेकिन ठीक कीजिए इसी को।
0: ओके तो चलिए रंजीत जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 13 फरवरी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: जी मैडम।
0: जी आज का आपका तीसरा प्रश्न ये है, बिहार राज्य के निम्न जिलों में से दो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। ऑप्शन ए नालंदा, बी पटना, सी कटिहार। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मतलब क्या कर रहे हैं कि दो लोकसभा
0: राज्य के निम्न जिलों में से दो लोकसभा वाला जिला निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है?
1: जी
0: जी
1: पटना, नालंदा और क्या ऑप्शन दिए हैं?
0: कटिहार।
1: कटिहार ठीक कीजिए।
0: श्योर है?
1: श्योर नहीं है, ठीक कीजिए।
0: ओके तो चलिए रंजीत जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर कटिहार को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा पटना।
1: ठीक है।
0: ओके हेलो, क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: नमस्कार।
0: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: जी मैं विमल कुमारी बोल रही हूँ।
0: जी कैसे हैं विमल जी?
2: ठीक है, आप कैसे हैं मैम?
0: मैं भी बढ़िया हूँ। तो विमल जी आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है?
2: जी मेरा ग्रेजुएशन फाइनल हो गया है।
0: चलिए अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
2: मम्मी के नाम श्रीमती प्रभावती देवी और पापा जी के नाम रामा जी प्रसाद है।
0: तो विमल जी तैयार हैं आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
2: जी मैम।
0: जी

0: विमल जी आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, बिहार राज्य का सबसे बड़ा परमंडल कौन सा है? ऑप्शन ए पटना, बी मुंगेर, सी तिरहुत। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन सी
0: तिरहुत।
1: जी
0: श्योर है?
1: जी मैम।
0: लॉक कर दो?
1: जी मैम।
0: ओके, तो चलिए विमल जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी तिरहुत को लॉक कर रहे हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: ओके, आज आपका दूसरा प्रश्न ये है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए 10 मार्च, बी 8 मार्च और सी
1: 8 मार्च को।
0: श्योर है?
1: जी मैम।
0: लॉक कर दो?
1: जी मैम।
0: चलिए, तो विमल जी आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर 8 मार्च को लॉक कर रहे हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार है आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? ऑप्शन ए सुंदरवन, बी नीलगिरी और सी मानस। आपका समय शुरू होता है अब।

0: ऑप्शन सी डी नीलगिरी। नीलगिरी रिजर्व। हाँ श्योर है आप? जी मैम। लॉक कर दो? जी ओके। तो चलिए विमल जी आपके 30% का उत्तर ऑप्शन बी नीलगिरी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके 30% का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: जी आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है, ब्लैक होल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ब्लैक होल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए है स्टीफन हॉकिंग, बी है अल्बर्ट आइंस्टीन और सी है जान व्हीलर। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन बी लॉक कीजिए मैम।
0: ऑप्शन बी लॉक करें?
1: जी।
0: श्योर है?
1: श्योर तो नहीं है।
0: अल्बर्ट आइंस्टीन?
1: हाँ कर दीजिए, तो कंफर्म नहीं तो क्या करें।
0: चलिए तो आपके चलिए चौथे प्रश्न के उत्तर को लॉक कर रहे हैं
1: जी,
0: अल्बर्ट आइंस्टीन को। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा जान व्हीलर।
1: ओके
0: ओके। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल की बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
2: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
4: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
5: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
6: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार सुझाव शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
7: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
8: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब टेबलेट इंजेक्शन सिरप गांजा स्माइक के इलाज और गठिया का पथरी कमर दर्द घुटना दर्द दमा मिर्गी दाद दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया मासिक खराबी बवासीर पेट रोग शुगर गैस्ट्रिक शीघ्र पतन शुक्राणु में कमी नपुंसकता धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग दिनाए खुजली एक्जिमा सोराइसिस तथा
7: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
9: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
7: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
9: जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
7: और 90971602।
10: ओम नमः शिवाय।
11: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
10: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
11: दूसरा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ तारापीठ जगन्नाथपुरी।

0: नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
0: बोलबम हर

0: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029294921 8029294921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
1: हेलो
2: जी, बहुत बहुत आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
1: जी नमस्ते मैम।
2: जी नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
1: संदीप सिंह
2: जी, कहाँ से बात कर रहे हैं संदीप जी?
1: सिवान आनर से।
2: सिवान आनर से
1: जी।
2: जी क्या करते हैं आप संदीप जी?
1: पढ़ाई करता हूँ अभी, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर।
2: जी पढ़ाई कैसे चल रही है?
1: बढ़िया चल रही है मैम।
2: चलिए बढ़िया। इससे पहले हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं आप?
1: जी जी।
2: तो अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए आप।
1: मम्मी का नाम उर्मिला देवी और पिताजी का नाम गणेश सिंह।
2: जी तो लिया जाए पहला प्रश्न आपसे आज का।
1: जी
2: जी,

0: आज का पहला प्रश्न आपसे ये है संदीप जी, भाखड़ा बांध के निर्माण से कौन सी झील बनी है? भाखड़ा बांध के निर्माण से कौन सी झील बनी है? ऑप्शन ए गोविंद सागर, बी हीराकुंड जलाशय और सी नागार्जुन सागर। आपका समय शुरू होता है अब।
1: गोविंद सागर फिक्स कीजिए। मैं
0: श्योर है
1: जी।
0: ओके तो लॉक करें।
1: जी
0: जी तो संदीप जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए गोविंद सागर को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आज से आपका दूसरा प्रश्न ये है, पूरे वर्ष में एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन क्या कहलाती है? ऑप्शन ए स्थानीय पवन, बी मौसमी पवन और सी सनातन पवन यानी अस्थाई पवन। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन सी
0: अस्थाई पवन।
1: जी
0: श्योर है?
1: नहीं।
0: लॉक कर दूं?
1: जी
0: जी। तो चलिए संदीप जी आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी अस्थाई पवन को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार है आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: जी
0: जी। आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, लौह पुरुष की उपाधि किस महापुरुष को दी गई थी? लौह पुरुष की उपाधि किस महापुरुष को दी गई थी? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक, सी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन ए
0: सरदार वल्लभ भाई पटेल।
1: जी
0: क्यों है आप?
1: जी जी।
0: लॉक करूं?
1: जी
0: जी। तो चलिए संदीप जी आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आज से आपका चौथा प्रश्न ये है, तिरहुत प्रमंडल का प्रमंडलीय मुख्यालय कहाँ है?

0: तिरहुत प्रमंडल का प्रमंडलीय मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए पश्चिमी चंपारण, बी पूर्वी चंपारण, सी मुजफ्फरपुर। आपका समय शुरू होता है अब।
1: पूर्वी चंपारण फिक्स कीजिए।
0: श्योर है? ओके, तो चलिए संदीप जी आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी पूर्वी चंपारण को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा मुजफ्फरपुर।
1: ओके,
0: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। हेलो,
1: नमस्ते मैम।
0: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आप के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
1: जी मैं सोनू दूर बोल रहा हूँ।
0: जी कैसे हैं सोनू जी?
1: मैं अपना बताइए।
0: मैं भी ठीक हूँ। तो पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी?
1: बढ़िया चल रही है मैम।
0: जी अच्छी बात है। मम्मी पापा का नाम बता दीजिए अपने।
1: मम्मी का नाम कालिंदा देवी और पिताजी का नाम संतोष दुबे।
0: जी लिया जाए पहला प्रश्न आपका।
1: जी जी
0: जी

0: तो पहला प्रश्न आपसे ये है सुनील जी आज का, विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? ऑप्शन ए लेक नासेर, बी लेक करीबा और सी लेक वोल्टा। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन बी
0: लेक करीबा।
1: जी
0: श्योर है आप? चलिए तो सुनो जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी लेक करीबा को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर ही गलत है। सही उत्तर होगा लेक वोल्टा।
1: लेक वोल्टा,
0: वोल्टा। हाँ
1: ठीक है,
0: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
6: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
7: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
6: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
7: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
6: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
7: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
6: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
8: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
9: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
10: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
11: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
10: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029-94-91, 8029-94-91 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज़ में।
1: नमस्कार मैम।
0: जी नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
1: रुपेश कुमार, जादवपुर से।
0: एक बार और बताइए नाम।
1: रुपेश कुमार। रुपेश कुमार।
0: रुपेश कुमार,
1: हाँ।
0: जादवपुर से।
1: हाँ
0: जी, क्या करते हैं रुपेश जी?
1: पढ़ाई करते हैं।
0: जी, किस क्लास में पढ़ते हैं?
1: 12th में।
0: 12th में। पढ़ाई कैसी चल रही है?
1: अच्छा चल रहा है।
0: चलिए, तो हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में आप इससे पहले भी कॉल किए हैं?
1: हाँ
0: जी। अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
1: माता जी का नाम श्रीमती सुमिता देवी और पिताजी का नाम श्री संजय प्रसाद चौरसिया।
0: जी, लिया जाए पहला प्रश्न आपसे?
1: हाँ।
0: ओके,

0: तो रुपेश जी आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाई जाती है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, बी 12 जनवरी, सी 14 जनवरी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: बारह जनवरी को फिक्स करिए।
0: क्योर है आप?
1: कंफर्म तो नहीं है लेकिन इसी को फिक्स करिए।
0: ओके, तो चलिए रुपेश जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 12 जनवरी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए? बिहार राज्य का कौन सा प्रमंडल सबसे छोटा है? बिहार राज्य का कौन सा प्रमंडल छोटा है? ऑप्शन ए सारण, बी दरभंगा, सी भागलपुर। आपका समय शुरू है अब।
1: भागलपुर कंफर्म नहीं है लेकिन इसी को फिक्स करिए।
0: ओके चलिए, तो चलिए रुपेश जी आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी भागलपुर को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप तीसरे प्रश्न के लिए? जी। आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? ऑप्शन ए लेक, लेक नासेर, बी लेक करीबा और सी लेक वोल्टा। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन बी को फिक्स करिए।
0: ऑप्शन
1: बी,
0: बी लेक करीबा। जी लॉक कर दो।
1: कर दीजिए लेकिन कंफर्म तो नहीं है, थोड़ा डाउट में है। ऑप्शन बी और ठीक है
0: तो कौन सा लॉक करे? कंफर्म करिए, नहीं है तो
1: बी को ही कीजिए।
0: बी को ही करे, लेक करीबा
1: नहीं, सी को। सी को
0: लेक वोल्टा।
1: हाँ
0: चोर है इसके लिए।
1: हाँ कीजिए। ओके
0: चलिए, तो चलिए रुपेश जी आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी लेक वोल्टा को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर जो है बिल्कुल सही है। तैयार है चौथे प्रश्न के लिए?
1: हाँ।
0: आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है, भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? ऑप्शन ए इंदिरा सागर, बी गोविंद सागर, सी नागार्जुन सागर। आपका समय शुरू होता है अब।
1: गोविंद सागर को फिक्स कीजिए।
0: इसमें श्योर है कि ये भी लग के सारे
1: कीजिए, इसी को फिक्स।
0: ओके, तो चलिए रुपेश जी आपके चौथे प्रश्न का उत्तर गोविंद सागर को लॉक करते हैं। और आपको बता दी कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप पांचवे प्रश्न के लिए? जी। पांचवा प्रश्न आपसे ये है, कला के क्षेत्र में किस महापुरुष को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कला के क्षेत्र में किस महापुरुष को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए लता मंगेशकर, बी किरण बेदी, सी मदर टेरेसा। आपका समय शुरू होता है अब।
1: लता मंगेशकर को फिक्स करिए।
0: श्योर है?
1: हाँ उन्हीं को कीजिए।
0: ओके, तो चलिए रुपेश जी आपके पांचवें प्रश्न का उत्तर लता मंगेशकर को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पांचवें प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार हैं आप छठे प्रश्न के लिए?
1: हाँ
0: चलिए, आपसे आपका छठा प्रश्न ये है, तिरहुत प्रमंडल का प्रमंडलीय मुख्यालय कहाँ है? तिरहुत प्रमंडल का प्रमंडलीय मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए पश्चिमी चंपारण, बी पूर्वी चंपारण, सी मुजफ्फरपुर। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मुजफ्फरपुर को फिक्स चाहिए। हाँ
0: लो कर दो।
1: हाँ
0: ओके तो चलिए रुपेश जी आपके छठे प्रश्न का उत्तर मुजफ्फरपुर को लॉक कर रहे हैं। और आपको बता दें कि आपके छठे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप सातवें प्रश्न के लिए?
1: हाँ।
0: आपसे आपका सातवां प्रश्न ये है, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो पुस्तक के लेखक कौन है? भ्रष्टाचार भारत छोड़ो पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, बी किरण बेदी, सी अमृत प्रीतम। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन डी को पिक कीजिए, किरण बेदी को।
0: श्योर है?
1: हाँ कीजिए।
0: ओके तो चलिए रुपेश जी आपके सातवें प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी किरण बेदी को लॉक कर रहे हैं। और आपको बता दें कि आपके सातवें प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार हैं आप आठवें प्रश्न के लिए?
1: हाँ।
0: ओके आपसे आपका आठवां प्रश्न ये है, ब्लैक होल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ब्लैक होल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए स्टीफन हॉकिन, बी अल्बर्ट आइंस्टीन।
1: क्वेश्चन फिर से बोलिएगा। ब्लैक होल
0: शब्द का प्रयोग सबसे पहले सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए स्टीफन हॉकिंग, बी अल्बर्ट आइंस्टीन और सी जॉन व्हीलर। आपका समय स्रोत है अब।
1: जॉन व्हीलर को फिक्स कीजिए।
0: श्योर है?
1: प्योर तो नहीं है, मतलब लक के भरोसे है।
0: लक के भरोसे आठवें प्रश्न तक पहुंच गया।
1: अरे तो मतलब लक के भरोसे सब थोड़ी है, मतलब उसमें से कुछ तो बताए गए हैं, इसमें लक के भरोसे दो को बताएंगे।
0: ओके ओके नहीं आप बोल रहे हैं कि प्योर नहीं है इसलिए बोले।
1: अरे तो मतलब हमको ऐसा लग रहा है, मतलब इतना मतलब हम जानकार थोड़ी है कि हमको सब पता ही होगा।
0: ये तो बिल्कुल सही है कि किसी को सब पता नहीं होता है।
1: हाँ तो वही जो मतलब हमको लग रहा है कि मतलब यही सही होगा, तो मतलब हमारे मतलब हमको जो लग रहा है हम बोल रहे हैं।
0: हम भी वही बोले हैं कि लग के भरोसे आप आठवें प्रश्न तक आ गए, हम कुछ गलत नहीं बोले हैं। गलत ठीक है?
1: ठीक है
0: जी। तो लॉक कर दे आपके उत्तर को जॉन व्हीलर को।
1: हाँ
0: चलिए तो चलिए आपके आठवें प्रश्न का उत्तर जॉन व्हीलर को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके आठवें प्रश्न का उत्तर सही है। तैयार है आप नौवें प्रश्न के लिए?
1: हाँ।
0: आपसे आपका आठवां प्रश्न ये है,
1: नौवा है मैम
0: जी, नौवा प्रश्न है जी। साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी केरल। आपका समय शुरू होता है अब।
1: तमिलनाडु को फिक्स कीजिए।
0: श्योर है?
1: हाँ कीजिए।
0: ओके तो चलिए रुपेश जी आपके नौवे प्रश्न का उत्तर तमिलनाडु को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके नौवे प्रश्न का उत्तर जो है तमिलनाडु गलत है। सही उत्तर होगा केरल। जी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट पे कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
4: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
5: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
6: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
7: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
8: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
7: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
8: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
7: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
8: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
7: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
9: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
7: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
9: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
7: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
10: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
11: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
12: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
13: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
12: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
10: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिंजन के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029-94-921 8029-94-921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
0: हेलो।
14: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
14: थैंक यू मैम
0: जी। नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
14: नाम सलोनी कुमारी, बंजारी फेमस है, गोपालगंज से।
0: जी, कैसी हैं सलोनी जी?
14: ठीक हूँ
0: जी। पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी?
14: अच्छी चल रही है।
0: किस क्लास में पढ़ती हैं?
14: BA, फाइनल ईयर।
0: फाइनल ईयर चल रहा है। चलिए, तो आप तैयार हैं आज के प्रश्न के लिए?
14: हाँ।
0: नाम बता दीजिए अपने मम्मी पापा का।
14: मम्मी का नाम है सविता देवी और पापा का नाम है कुंदन लाल।
0: जी, लिया जाए पहला प्रश्न।
14: हाँ लीजिए।
0: ओके,

0: तो सलोनी जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? ऑप्शन ए लेक नासेर, बी लेक करीबा, सी लेक वोल्टा। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम ऑप्शन दीजिएगा फिर से।
0: ऑप्शन ए लेक नासेर, बी लेक करीबा और सी लेक वोल्टा।
1: ए लगाइए।
0: लेक नासेर।
1: हाँ।
0: योर है?
1: तो नहीं है।
0: चलिए तो सलोनी जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर लेक नासेर को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर ही गलत है। सही उत्तर होगा लेक वोल्टा। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट, ये बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: जी आपका मैम।
0: जी नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना।
2: नाम अनुराधा गुप्ता है।
0: जी कहाँ से बात कर रही है अनुराधा जी?
2: थाने से बोल रहा।
0: जी कैसी है?
2: हम ठीक है, आप बताइए।
0: मेरी बढ़िया। तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है आपकी अनुराधा जी?
2: ये फर्स्ट ईयर में है।
0: अभी चल रही है
2: जी।
0: पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी?
2: ठीक ही चल रही है, घर से ही करते हैं।
0: जी जी चलिए बढ़िया है। तो आप लोग क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया तो तैयार हैं आज के पहले प्रश्न के लिए?
2: जी एक बार किए थे।
0: जी आज के लिए आप रेडी हैं?
2: जी।
0: अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
2: जी पापा का नाम श्री प्रभुनाथ गुप्ता है और मम्मी का नाम श्रीमती वरुण शिवला देवी।
0: जी पापा जी क्या करते हैं आपके?
2: काम करते हैं किसी के अंदर में।
0: अच्छा अच्छा, तो पहला प्रश्न ले आपसे।
2: हाँ
0: शुरू करें पहला प्रश्न। जी
2: जी ना।

0: आपसे आज का पहला प्रश्न ये है
1: जी,
0: टॉयलेट मैन को उपनाम से किस महापुरुष को जाना जाता है? टॉयलेट मैन को उपनाम से किस महापुरुष को जाना जाता है? ऑप्शन ए दशरथ मांझी, ऑप्शन बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और ऑप्शन सी डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक। आपका समय शुरू होता है अब।
1: क्वेश्चन एक बार रिपीट कीजिएगा।
0: टॉयलेट मैन के उपनाम से किस महापुरुष को जाना जाता है?
1: दशरथ मांझी।
0: दशरथ मांझी का है
1: जी।
0: तो लाला जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए दशरथ मांझी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर जो है बिल्कुल गलत

0: सही उत्तर होगा डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक। खाली पुरुष में ट्रस्ट में कॉल की बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
2: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
3: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
3: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
3: कॉल नाउ 9056-59536 या 9056-57902।
4: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली जुलने की गारंटी।
3: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029-94921 8029-94921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
7: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में।
7: जी नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
7: रुपेश कुमार यादव बोलते हैं।
0: रुपेश?
7: हाँ।
0: कैसे हैं रुपेश जी?
7: ठीक है।
0: तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है आपकी?
7: अभी 12th क्लास का चल रहा है।
0: जी 12th का पढ़ाई चल रहा है, पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी?
7: ठीक चल रहा है।
0: जी तो अभी क्या कर रहे थे आप?
7: कुछ नहीं, कॉल ही लगा रहे थे।
0: ओके, और पढ़ाई करके आगे क्या करना है, कुछ सोचा है आपने?
7: अभी तो नहीं सोचे हैं।
0: अभी नहीं सोचे हैं। चलिए, तो हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में इससे पहले भी कॉल किए हैं आप?
7: हाँ किए हैं।
0: किए हैं, तो अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
7: मेरे माता जी का नाम श्रीमती सुमिता देवी और पिताजी का नाम श्री संजय प्रसाद चौरसिया।
0: जी, तो क्या करते हैं पापा जी आपके?
7: फार्मर है, किसान है।
0: अच्छा, चलिए तो लिया जाए पहला प्रश्न आपसे।
7: जी
0: जी, तो रुपेश जी आपसे आज का पहला प्रश्न ये है

0: भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ऑप्शन ए जनगणमन, ऑप्शन बी वंदे मातरम, ऑप्शन सी विजय विश्व तिरंगा। आपका समय शुरू होता है अब।
1: वंदे मातरम ऑप्शन बी।
0: श्योर है? चलिए तो लॉक करूं।
1: हाँ
0: ओके। तो रुपेश जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन

0: बी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर वंदे मातरम बिल्कुल सही है। तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए? दूसरा प्रश्न आपसे ये है, चार्ल्स बेबेज ने किस मशीन का आविष्कार किया? ऑप्शन ए टेलीविजन, बी टेलीफोन, सी कंप्यूटर। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन डी को क्लिक करिए।
0: टेलीफोन।
1: हाँ।
0: श्योर है? ओके, तो चलिए रुपेश जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी टेलीफोन को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा कंप्यूटर। जी, हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
2: हेलो।
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
1: जी नमस्ते।
0: जी नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
1: गणेश कुमार सीते नारायण से।
0: कैसे हैं गणेश जी?
1: बढ़िया हूँ, आप बताइए।
0: हम भी बढ़िया हैं। तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है आपकी?
1: पढ़ाई तो 7th क्लास तक हुआ है।
0: अच्छा, तो गणेश जी आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए, तो तैयार है आप आज के प्रश्न के लिए?
1: जी
0: जी। मम्मी पापा का नाम बता दीजिए अपने।
1: मम्मी के पापा का नाम श्री सुदर्शन पंडित, मम्मी के नाम श्री कमल देवी।
0: तो लिया जाए पहला प्रश्न आपसे।
1: जी
0: जी,

0: तो गणेश जी आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ऑप्शन ए जनगण मन, ऑप्शन बी वंदे मातरम और ऑप्शन सी विजय विश्व तिरंगा। आपका समय शुरू होता है अब।
1: बी वाला को लॉक करिए।
0: बी वाला को
1: जी।
0: वंदे मातरम
1: जी।
0: क्योर है?
1: क्योर तो नहीं है।
0: तो लॉक करो?
1: नहीं कर दीजिए।
0: चलिए तो गणेश जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी वंदे मातरम को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए? जी। आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, रतौंधी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी नामक बीमारी किस विटामिन के कमी से होती है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी और ऑप्शन सी विटामिन सी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: विटामिन सी कर दीजिए।
0: श्योर है?
1: श्योर तो नहीं है।
0: तो लॉक करूं?
1: जी कर दीजिए।
0: चलिए तो गणेश जी आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी विटामिन सी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका लुक्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए।
2: तो दोस्तों ये रहा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का आज का एपिसोड। अगर आप भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029294921 8029294921 पर और बने हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट के विनर। और हमें दीजिए अब जाने की इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
3: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
4: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
5: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
4: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायकोट,
5: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
4: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान
5: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
4: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
5: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
4: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
5: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
6: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
7: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
8: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
9: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527881 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527881 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
10: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
11: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
10: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
12: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
10: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
12: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554-94-53
10: और 90-97-61-60-02।
13: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई। इस कार्यक्रम को हम स्मार्ट संस्थान नई दिल्ली और रेडियो रिमझिम के सहयोग से आप तक पहुंचा रहे हैं और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अफसर अली। श्रोताओं, आज हम बात करने जा रहे हैं, आज का विषय थोड़ा अलग है। सच कहूं तो मुझे थोड़ा झिझक भी हो रही है इस पर बात करने में, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं नवजात शिशुओं की देखभाल के एक ऐसे तरीके पर जो सुनने में बहुत ही सरल लगता है लेकिन असल में जीवन बचाने की ताकत रखता है। और इस विषय को समझने के लिए हमारे साथ हमारे रेडियो रिमझिम के स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे अपने सेहतिया भैया, जो हमेशा हमें स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरी बातें आसान भाषा में समझाते हैं। सेहतिया भैया, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज के इस कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में।
14: धन्यवाद, और हमारे सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद अपने सारे प्यार और भरोसे के लिए। आज तो आपने शुरुआत ही इतनी भावुक कर दी है कि लग रहा है कोई बहुत बड़ी बात होने वाली है।
13: बात तो सच में बहुत बड़ी लग रही है सेहतिया भैया, लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज भी हूँ। ये कंगारू मदर केयर आखिर है क्या? नाम सुनते ही मेरे दिमाग में तो बस वही जानवर वाला कंगारू आ जाता है जो अपने बच्चे को पेट के थैले में रखता है। तो क्या इसका मतलब कुछ वैसा ही है या मैं पूरी तरह गलत सोच रहा हूँ?
14: अरे नहीं नहीं, आप पूरी तरह गलत भी नहीं हैं और पूरी तरह सही भी नहीं। नाम जरूर कंगारू से लिया गया है लेकिन ये तरीका इंसानों के नवजात बच्चों के लिए है और बहुत ही खास और जीवन बचाने वाला तरीका है। इसमें भी एक तरह से माँ अपने बच्चे को अपने शरीर से ऐसे लगा कर रखती है जैसे कंगारू अपने बच्चे को सुरक्षित रखता है, इसीलिए इसे कंगारू मदर केयर कहा जाता है।
13: अच्छा, अब थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है, लेकिन एक सवाल अभी भी दिमाग में घूम रहा है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अगर अस्पताल में इलाज और मशीनें हैं तो फिर इस तरह के तरीके की जरूरत क्यों आई?
14: देखिए, यही वो जगह है जहां हमें सच्चाई को समझना होगा। हर साल दुनिया भर में लगभग 13 करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन दुख की बात ये है कि इनमें से करीब 40 लाख बच्चे अपने जीवन के पहले ही 4 हफ्तों में दुनिया छोड़ देते हैं। सोचिए, अभी जिंदगी ठीक से शुरू भी नहीं होती है और खत्म हो जाती है। ये आंकड़ा हमें बताता है कि नवजात बच्चों की देखभाल कितनी जरूरी है।
13: ये तो सच में बहुत डराने वाला आंकड़ा है भैया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में बच्चे इतनी जल्दी अपनी जान गंवा देते हैं।
14: जी हाँ, और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि बहुत से बच्चे या तो समय से पहले पैदा होते हैं, यानी 9 महीने पूरे होने से पहले, या फिर उनका जन्म के समय वजन बहुत कम होता है। ऐसे बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, उन्हें ज्यादा देखभाल, गर्मी, पोषण और सुरक्षा की जरूरत होती है, जो हर जगह आसानी से उपलब्ध नहीं होती।
13: तो क्या ऐसे बच्चों के लिए अस्पताल में कोई खास इंतजाम होता है? जैसे कि मैंने फिल्मों में देखा है, वो कांच का डिब्बा जिसमें बच्चे को रखा जाता है, वो क्या होता है?
14: हाँ, उसे इनक्यूबेटर कहा जाता है। ये एक मशीन होती है जो बच्चे को जरूरी गर्मी और सुरक्षित माहौल देती है, लेकिन समस्या ये है कि ये हर जगह उपलब्ध नहीं होती, खासकर हमारे गांवों और दूर दराज इलाकों में। और जहां उपलब्ध होती भी है, वहां हर जरूरतमंद बच्चे तक पहुंच पाना मुश्किल हो जाता है।
13: तो फिर ऐसे बच्चों का क्या होता है भैया? अगर मशीन भी नहीं है और बच्चे को खास देखभाल चाहिए, तो परिवार क्या करे?
14: यहीं पर कंगारू मदर केयर उम्मीद की किरण बनकर सामने आती है। ये एक ऐसा तरीका है जिससे किसी महंगी मशीन की जरूरत नहीं होती। इसमें सिर्फ माँ का स्पर्श, उसका प्यार और उसका समय लगता है। माँ अपने बच्चे को अपने सीने से लगा कर रखती है, जिससे बच्चे को गर्मी मिलती है, उसकी सांसें स्थिर रहती है और उसे वही सुरक्षा महसूस होती है जो उसकी माँ के गर्भ में मिलती थी। और यही साधारण सा तरीका कई बार बच्चे की जान बचा सकता है।
13: सिर्फ माँ के स्पर्श से? ये बात सुनने में बहुत ही अशुद्ध लग रही है भैया, लेकिन सच कहूँ तो मेरे मन में अभी भी ये सवाल उठ रहा है कि ये आखिर संभव कैसे है? क्या सच में सिर्फ पास रखने से ही बच्चे की हालत बेहतर हो सकती है?
14: देखिए, यही तो कंगारू मदर केयर की खासियत है। इसका मतलब है कि बच्चे को माँ के सीने से सीधे लगाकर रखा जाए, जिसे हम स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट कहते हैं। जैसे कंगारू अपने छोटे से बच्चे को अपने थैले में सुरक्षित रखता है, वैसे ही माँ अपने नवजात को अपने शरीर में लगाकर रखती है। इस दौरान बच्चे को ना केवल गर्मी मिलती है, बल्कि उसे एक तरह से सुरक्षा और सुकून महसूस होता है, जो उसके विकास के लिए बेहद जरूरी है।
13: ओ, तो क्या इसका मतलब ये है कि बस बच्चे को गोद में ले लिया जाए, वही काफी है?
14: नहीं, सिर्फ गोद में लेना काफी नहीं है। इसमें खास बात ये है कि बच्चे सीधे शरीर से लगा कर रखा जाए, ताकि उसका पूरा शरीर माँ की त्वचा के संपर्क में रहे। इससे बच्चे को लगातार गर्मी मिलती है, उसकी सांसें संतुलित रहती है और वह खुद को सुरक्षित महसूस करता है। ये एक तरह से बच्चे को वही माहौल देने जैसा है जैसा उसकी माँ के गर्भ में मिलता था।
13: सुनने में तो ये बहुत ही आसान लग रहा है, जैसे कोई भी कर सकता है, लेकिन क्या ये तरीका सच में इतना असरदार है?
14: बिल्कुल असरदार है। कई शोधों में ये साबित हुआ है कि जिन बच्चों को कंगारू मदर केयर दी गई, उनकी मृत्यु दर कम रही, उनका वजन तेजी से बढ़ा और वे ज्यादा स्वस्थ पाए गए। यहाँ तक कि वे लंबे समय में भी ऐसे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर देखा गया है।
13: मतलब एक माँ का साधारण सा स्पर्श एक बच्चे की जिंदगी बचा सकता है, ये सोचकर ही मन भर आता है।
14: बिल्कुल, और यही इस साल का संदेश भी है। स्टिलनेस इज स्ट्रेंथ, यानी जब माँ शांत होकर अपने बच्चे को अपने पास रखती है, उसे समय देती है, तो वही सादगी और स्थिरता बच्चे को सबसे बड़ी ताकत बन जाती है।
13: वाह, ये बात दिल को छू गई। सच में कभी कभी सबसे सरल चीजें ही सबसे ज्यादा ताकतवर होती हैं। सिहतिया जी, अब एक जरूरी सवाल, क्या ये तरीका घर पर भी अपनाया जा सकता है या सिर्फ अस्पताल में ही किया जाता है?
14: जी हाँ, इसे घर पर भी किया जा सकता है। शुरुआत अस्पताल में डॉक्टर या नर्स की सलाह से होता है, लेकिन माँ और बच्चा घर लौटते हैं तो वहाँ भी इसे जारी रखा जा सकता है, बशर्ते सही तरीके से किया जाए और स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह ली जाए।
13: तो फिर इसे सही तरीके से करने का तरीका क्या है, थोड़ा विस्तार से बताइए ताकि हमारे श्रोता भी समझ सके।
14: इसमें बच्चे को माँ के सीने पर सीधा रखा जाता है, उसका सिर हल्का सा एक तरफ मुड़ा होता है ताकि सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। बच्चे को इस तरह से रखा जाता है कि उसका शरीर सुरक्षित रहे और उसे कपड़े या दुपट्टे की मदद से अच्छे से बांध दिया जाता है ताकि वह हिले डुले नहीं और आराम से टिका रहे।
13: और इस दौरान बच्चे का खाना कैसे दिया जाता है?
14: इस दौरान सबसे जरूरी है कि बच्चे को केवल माँ का दूध दिया जाए। माँ का दूध ही उसके लिए सबसे अच्छा पोषण है, जो उसे ताकत देता है, बीमारियों से बचाता है और उसके विकास में मदद करता है।
13: तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तरीका सिर्फ बच्चे को गर्म रखने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसे जरूरी पोषण भी देता है। यानी कि एक ही तरीके से बच्चे की कई जरूरतें पूरी हो जाती है, जो सच में काफी खास बात है।
14: बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही समझा। यही सबसे बड़ी ताकत है कि बिना किसी महंगे उपकरण के सिर्फ माँ के स्पर्श और दूध से बच्चे को सुरक्षा, पोषण और सुकून तीनों मिल जाते हैं।
13: सेहतिया भैया, अब तो मेरा मन और भी जानने को हो रहा है। आप जरा विस्तार से बताइए कि इसके फायदे क्या क्या हैं, ताकि हमारे श्रोता भी इसे अच्छे से समझ सके।
14: देखिए, जब कंगारू मदर केयर सही तरीके से दी जाती है तो बच्चे का शरीर का तापमान संतुलित रहता है, जिससे उसे ठंड लगने का खतरा कम हो जाता है। उसकी सांसें भी ज्यादा स्थिर और बेहतर हो जाती है। ऐसे बच्चे आमतौर पर ज्यादा समय तक आराम से सोते हैं, कम रोते हैं और उनका वजन भी सामान्य से तेजी से बढ़ता है। कुल मिलाकर उनका शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर तरीके से होता है।
13: ये तो बच्चे के लिए बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन क्या इसका असर माँ पर भी पड़ता है?
14: जी हाँ, बिल्कुल पड़ता है। जब माँ अपने बच्चे को इस तरह से अपने पास रखती है तो उसका दूध भी बेहतर तरीके से बनने लगता है। साथ ही माँ और बच्चे के बीच में एक गहरा भावनात्मक रिश्ता बनता है, जो आगे चलकर बच्चे के विकास में बहुत मदद करता है। माँ का आत्मविश्वास भी बढ़ता है कि वे अपने बच्चे की अच्छी देखभाल पा रहे हैं।
13: वाह, ये तो सच में माँ का जादू ही हुआ। इतनी साधारण सी चीज, लेकिन असर इतना गहरा। सेहतिया भैया, एक बात मेरे मन में आ रही है। हम बार बार माँ की बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल सही भी है, लेकिन क्या इसमें पिता की भी कोई भूमिका होती है, या ये पूरी जिम्मेदारी सिर्फ माँ की ही होती है?
14: बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अक्सर हम यही सोचते हैं कि नवजात की देखभाल सिर्फ माँ का काम है, लेकिन सच तो ये है कि पिता की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। कंगारू केयर सिर्फ मदर केयर तक सीमित नहीं है, कई बार कंगारू पेरेंट केयर भी कहा जाता है, क्योंकि अगर माँ किसी कारण से उपलब्ध नहीं है या थकी हुई है तो पिता भी बच्चे को अपने सीने से लगाकर यही केयर दे सकते हैं।
13: अच्छा, मतलब पिता भी बच्चे को अपने सीने से लगाकर वही फायदा दे सकते हैं जो माँ देती है?
14: जी हाँ, बिल्कुल। पिता का शरीर भी बच्चों को गर्मी देता है, उनकी सांसों को स्थिर करने में मदद करता है और बच्चे की सुरक्षा का एहसास कराता है। इसके अलावा जब पिता इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं तो उनका बच्चे के साथ भावनात्मक जुड़ाव भी बहुत मजबूत होता है।
13: ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि पिता थोड़ा दूर रहते हैं या समझ नहीं पाते कि उन्हें क्या करना चाहिए।
14: बिल्कुल, और यही सोच बदलने की जरूरत है। जब पिता इस तरह से बच्चे के करीब आते हैं तो न सिर्फ बच्चे को फायदा होता है, बल्कि पिता का आत्मीयता भी बढ़ता है, आत्मविश्वास भी बढ़ता है। उन्हें लगता है कि वे अपने बच्चे की देखभाल में बराबर जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इससे पूरे परिवार का माहौल सकारात्मक होता है और माँ को भी आराम और सहयोग मिलता है।
13: तो साथियों, ये बात बहुत जरूरी है कि हम नवजात की देखभाल को सिर्फ माँ तक ही सीमित ना रखें। अगर पिता भी इसमें शामिल होते हैं तो बच्चे को दो गुना प्यार और देखभाल मिलती है। लेकिन सेहतिया जी, हर चीज के साथ कुछ सावधानियां भी जरूरी होती है। तो क्या कंगारू मदर केयर करते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए?
14: बिल्कुल, कुछ जरूरी सावधानियां हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जब भी कंगारू केयर दी जाए उस समय मोबाइल फोन से दूरी बनाएं, ताकि ध्यान पूरी तरह से बच्चे पर रहे। धूम्रपान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। खुशबू या परफ्यूम भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे को परेशानी हो सकती है। साथ ही जिस जगह बच्चे को रखा जा रहा है यानी छाती का हिस्सा, वह साफ और स्वच्छ होना चाहिए।
13: और इसे कितनी देर तक करना चाहिए? क्या इसका कोई तय समय होता है?
14: कम से कम 1 घंटे तक तो इसे करना ही चाहिए, लेकिन जितना ज्यादा समय दिया जाए उतना बेहतर होता है। कई मामलों में परिवार दिन में कई घंटे तक भी इसे जारी रखते हैं, जिससे बच्चे को लगातार फायदा मिलता है।
13: सहतिया भैया, आज की बातचीत ने सच में मेरी सोच बदल दी। शुरुआत में थोड़ा झिझक रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि ये विषय कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन अब महसूस हो रहा है कि ये जानकारी हर घर तक पहुंचनी चाहिए।
14: यही तो हमारा मकसद है, जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना, ताकि हर परिवार और बच्चों को बेहतर देखभाल मिल सके और कोई भी बच्चा सिर्फ जानकारी के अभाव में अपनी जिंदगी ना खोए।
13: इस कार्यक्रम को हम स्मार्ट संस्थान नई दिल्ली और रेडियो रिमझिम के सहयोग से आप तक पहुंचा रहे हैं। साथियों, अगर आपके घर में भी कोई बच्चा समय से पहले पैदा हुआ है या उसका वजन कम है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। कंगारू मदर केयर अपनाइए और अपने नजदीकी डॉक्टर या आशा कार्यकर्ता से सही जानकारी जरूर लें। याद रखिए, कभी कभी सबसे बड़ी ताकत किसी महंगी मशीन में नहीं, बल्कि माँ के प्यार और उसके स्पर्श में होती है। क्योंकि श्रोताओं, कई बार सबसे बड़ी ताकत शांति, धैर्य और अपनापन ही होता है। इसी के साथ हम अपना आज का ये प्रोग्राम यहीं खत्म करते हैं, पर श्रोताओं, जाने से पहले आइए हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी इसके बारे में जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। साथियों, जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा, तभी हमारा भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। आज के इस

0: खावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट खावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
0: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
0: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
0: बोलबम, हर हर महादेव।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 9956-97-644।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434068 पे।
9: ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं पर आधारित है। कार्यक्रम में जून 2015 में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन हॉट परस्यूट नाम से अंजाम दिए गए काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के हिस्सों का नाट्य रूपांतरण किया गया है। सुरक्षा कारणों से स्पेशल फोर्सेज के कर्मियों की पहचान गुप्त रखी गई है।

4 जून 2015 सुबह 7:25 भारतीय सेना का एक काफिला मणिपुर के चंदेल जिले से नागालैंड के दीमापुर की ओर बढ़ रहा है।

सफर में कुछ ही किलोमीटर आगे उन पर घात लगाकर हमला बोल दिया गया। जब तक जिंदा बचे सैनिक जवाबी हमला करते, हमलावर जंगल में गायब हो चुके थे। अठारह भारतीय सैनिक शहीद हो गए। यह हमला पिछले 10 साल से भी ज्यादा समय में उत्तर पूर्वी भारत में हुए सबसे भयानक उग्रवादी हमलों में से एक है। भारतीय सेना का जवाब होगा एक प्राणघातक हमला।

0: Special Operations India, Myanmar.
1: चार जून 2015 मणिपुर के चंदेल जिले में हुए इस उग्रवादी हमले के बाद सुरक्षा विभाग तेजी से हरकत में आ गया।
2: इंडियन आर्मी पर हुए अटैक की उस घटना के तुरंत बाद हम सब पूरी तरह से हाई अलर्ट पर आ गए थे।
1: भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए, नाकाबंदी गहरी कर दी गई, हमलावरों पर जवाबी कार्रवाई करने के लिए मोर्चे तैयार कर दिए गए। इसी बीच भारत के गृह मंत्री ने एक बैठक बुलाई।
3: राजनाथ सिंह ने कहा कि इसका बदला जरूर लेना चाहिए और तुरंत लेना चाहिए। इसकी दूसरी वजह थी गुस्सा, और ये गुस्सा उन उग्रवादियों के खिलाफ था जिन्होंने दुनिया की बेहतरीन सेनाओं में से हमारी सेना पर हमला करने की जरूरत की।
1: खुफिया विभाग ने संकेत दिए कि हमलावर इंडो म्यांमार बॉर्डर की तरफ से आए थे। भारत का उत्तर पूर्वी इलाका म्यांमार के साथ 1600 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, जिसे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था।
2: हमारी प्रतिक्रिया ये थी कि किसी को भी सरहद पार करके विदेशी हथियार लाकर भारतीय सरजमी पर आतंक मचाने का दुस्साहस नहीं करने दिया जा सकता।
1: उत्तर पूर्व में ऐसे कई विद्रोही दल काम कर रहे हैं जो भारतीय संघ के खिलाफ गुरिल्ला वॉर लड़ रहे हैं।
3: ये सभी बहुत पुराने मिलिटेंट्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट में फैले हुए हैं।
1: भारत म्यांमार सीमा पर कई उग्रवादी गुटों ने शिविर लगाए हुए हैं। अब जरूरत थी एक काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन की, और इस काम के लिए चुना गया भारतीय सेना के सबसे बेहतरीन जवानों को।
4: मुझे लगा कि स्पेशल फोर्सेस के जवानों को बुलाना बेहतर होगा,

0: भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट, स्पेशल फोर्सेस या फिर पैरा एसएफ। उच्च कोटि का एक लड़ाकू बल जिनका प्रतीक चिन्ह है वाघ नख, जो कि छत्रपति शिवाजी का पसंदीदा हथियार और गौरवशाली मराठा योद्धा परंपरा का प्रतीक रहा है।
1: बाघ मतलब टाइगर और नख यानी उसके पंजों के नाखून।
0: ये जवान जंगल में युद्ध करने में माहिर होते हैं। ये जवान जंगल में कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जंग लड़ सकते हैं। इस इलाके में कोई भी मिशन पहले प्रकृति के खिलाफ जंग होता है। इन जवानों को दुनिया का सबसे ऊंचे दर्जे का प्रशिक्षण दिया जाता है। पैरा एसएफ चकमा देने और अचानक हमला बोलने में माहिर होते हैं। ये एक गुरिल्ला की तरह गुरिल्ला युद्ध लड़ते हैं।

0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है। कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
2: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
3: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
4: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे।
5: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
6: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
7: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
5: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
4: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
5: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
7: कॉल करें 87894 18744।
8: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
7: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
7: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
7: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर X और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
5: ग्लैमर X, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
7: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
5: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
7: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
5: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
7: कॉल नाउ 9956-59536 या 9956-57902।
9: Special Operations India, Myanmar. June 2015, दोपहर 12 बजे। पैरा SF के गुप्तचर हरकत में आ जाते हैं ताकि हमलावरों की शिनाख्त की जा सके और उनके छिपने की जगह को भी ढूंढा जाए।

0: सुबह हमें पता चला कि ये किस गुट का काम है और उन्होंने इसका दावा भी किया था।
1: हालांकि ये हमला एक ऐसे गिरोह द्वारा किया गया था जिसका ताल्लुक कई उग्रवादी संगठनों से था, लेकिन हमले की योजना और संचालन करने वाले संगठन का नाम था नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग या NSCNK।
0: ये नॉर्थ ईस्ट के अधिकांश उग्रवादी संगठनों की एक मद ऑर्गेनाइजेशन है। ये लोग ही उन्हें पनाह देते हैं, उनके लिए कैंप्स का बंदोबस्त करते हैं और बदले में पैसे लेकर हथियार देते हैं।
1: NSCN खापलांग एक बेरहम और सुनियोजित संगठन है।
0: ये लोग बड़े गर्व से अपना यूनिफॉर्म पहन के आर्मी की तरह ऑपरेट करते हैं। इनका हमला बेहद घातक होता है और ये IED में एक्सपर्ट होते हैं।
1: इनका गुप्त हथियार इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस या IED, जो घरेलू चीजों से बनाया गया एक जानलेवा देसी बॉम्ब है। IED को बड़ी आसानी से छुपाया जा सकता है। इन बॉम्ब्स का पता लगाना भी लगभग असंभव है।
0: सब लक पर डिपेंड करता है। अगर ये आपको दिख गया तो ठीक है, वरना ये एक सूखी घास के ढेर से एक सुई को तलाशने जैसा है। ये बहुत मुश्किल है। ये लोग आसपास छिपे होते हैं, अचानक हमला करते हैं और भाग जाते हैं। यही इनके काम करने का तरीका है।
1: ये गुरिल्ला आर्मी जंगल में कठोर परिश्रम करती है और मारो और भागो की रणनीति पर अमल करती है।
0: ये चूहे बिल्ली के खेल जैसा है जो हमेशा बदलता रहता है।
1: यहाँ के नागरिक NSCN खापलांग को पैसा देते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं।
2: उनके पास अच्छे खासे संसाधन है, जहाँ जबरन वसूली एक बहुत बड़ा बिजनेस है, साथ ही फिरौती, अपहरण और ड्रग सप्लाई।
1: धमकी, जबरदस्ती और हिंसा जबरन वसूली के जरिए है।
0: 3 महीनों में उन्होंने कम से कम 50 करोड़ रुपए की एक्सटॉर्शन तो की होगी।
3: मिलिटेंट्स को रोकने की जरूरत है और इसके लिए भारत को उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर करनी चाहिए।
1: शाम ढलने तक स्पेशल फोर्सेस ने उग्रवादियों के ठिकानों की पुष्टि की सूचना दे दी। ये कैंप मणिपुर म्यांमार बॉर्डर के 10 किलोमीटर के दायरे में है। 1.5 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला यह शिविर NSCN खापलांग की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है। यहां तकरीबन 250 हथियारबंद मिलिटेंट्स के होने का अनुमान है।
2: टारगेट बहुत बड़ा था, जबरदस्त पहरेदारी थी, मजबूत घेराबंदी थी। यह तय किया गया कि उन्हें उस जगह मारा जाए जहां उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ हो, क्योंकि ये कैंप दूसरे सभी कैंप्स से बहुत बड़ा है और ये उनका गढ़ है जहां से वो अपनी हरकतों को अंजाम देते हैं।
1: 4 जून 2015 शाम 4:20, लेकिन खुफिया विभाग की अतिरिक्त जानकारी ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
3: खुफिया विभाग के लोगों ने हमें सूचना दी कि वो खुद को फिर से एकजुट कर रहे हैं और शायद एक नई योजना के तहत दूसरे हमले की तैयारी कर रहे हैं।
1: खुफिया सूत्रों से पता चला कि उग्रवादी और हमले करने की तैयारी कर रहे हैं।
3: हमने सोचा इससे पहले कि वो हम पर हमला करें, हम उनका नामोनिशान मिटा देंगे।
1: इम्फाल में भारतीय सेना के शीर्ष अधिकारियों की मुलाकात होती है। हालात बहुत नाजुक मोड़ पर हैं। उग्रवादियों को फिर से हमला करने का मौका देने का सवाल ही नहीं उठता। भारत को बहुत जल्द और जोरदार हमला करने की जरूरत है।
2: ये एक हाई रिस्क मिशन था, बहुत सारी प्लानिंग की जरूरत थी।
1: लक्ष्य साफ था, योजना बन चुकी थी। शुरुआत 24 घंटे के अंदर दुश्मन के इलाके में पैदल 50 किलोमीटर का सफर तय करना। पूरा इलाका घना जंगल था। लक्ष्य था NSCN खापलांग का मिलिटेंट कैंप, जो 1.5 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। दुश्मनों की ताकत करीब 250 हथियारबंद उग्रवादी, जो काफी खतरनाक हैं। मकसद, उग्रवादी शिविर को नष्ट करना। फैसले का दिन 9 जून 2015। अब हमला करने के लिए 90 घंटे की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है।
4: डिटेल में चर्चा करने के बाद हमने ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया और इन सर्जिकल स्ट्राइक्स को अंजाम दिया 9 जून 2015 को।
5: चीफ ने सिर्फ एक बात पूछी, क्या आप लोग ये कर पाएंगे?
1: टीम लीडर की सिर्फ एक ही परेशानी है, इस तरह के फैले हुए लक्ष्य के लिए बड़े दलबल की जरूरत पड़ती है, लेकिन उनके पास स्टाफ की कमी है।
6: उनकी टीम से कई लोग यूएन मिशन पर जा रहे थे और वो लोग दिल्ली में थे।
1: इन जवानों के बिना दुश्मन को हराना असंभव होगा। आर्मी चीफ ने एक कॉल किया, दिल्ली में रह रहे स्पेशल फोर्सेस के जवानों को मणिपुर रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया। हमला करने में 82 घंटे बचे हैं और मदद के लिए एक टुकड़ी पहुंच गई। अब टीम हमला करने के लिए तैयार है। ये एक टॉप सीक्रेट स्पेशल ऑपरेशन है। अब जवानों को अकेला रखा जाएगा। मिशन पूरा होने तक किसी का भी बाहरी दुनिया के साथ कोई संपर्क नहीं हो सकता। इन्हें अलग अलग कर दिया गया है। ऑपरेशन हॉट परस्यूट शुरू हो गया।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है। सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स। BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
9: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
10: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
11: ठक ठक।
12: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
13: अच्छा मिला ही नहीं।
12: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
14: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
12: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
14: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
15: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
16: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
15: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
16: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
17: Special Operations India, Myanmar.
1: मणिपुर में हथियारबंद उग्रवादियों ने भारतीय सेना के एक काफिले पर अचानक हमला कर दिया, जिसमें 18 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। भारत ने इसका मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला किया। स्पेशल फोर्सेस की स्ट्राइक टीम के पास 90 घंटे की समय सीमा है। उनका मिशन NSCN खापलांग के कैंप को तलाशना और नेस्त नाबूद कर देना। जवान अपने मिशन में लग चुके हैं। हर जवान अच्छे से जानता है कि जब देश को उनकी जरूरत पड़ती है तो उन्हें अपनी जान की बाजी लगाने से भी पीछे नहीं हटना है। ये उनकी जिंदगी के सबसे मुश्किल मिशन्स में से एक होने जा रहा है।

0: हमला करने में 56 घंटे बचे हैं और अब अपना जौहर दिखाने का वक्त आ गया है।
1: जनरल रावत ने एक बहुत ही जबरदस्त प्लान बनाया था।
0: स्पेशल फोर्सेस के जवानों को बिहार रेजिमेंट के पैदल सैनिकों के भेस में ले जाया जा रहा है। यह हमलावर दस्ता इंफाल से पूर्व की तरफ म्यांमार के साथ लगे इंटरनेशनल बॉर्डर के नजदीक भारतीय सेना की आखिरी पोस्ट तक जा रहा है। ये यात्रा 9 घंटे की है और खतरों से भरी हुई है।
2: ये उग्रवादी मणिपुर म्यांमार बॉर्डर पर ऑपरेट करते हैं। वो इस इलाके में आजादी से घूमते हैं और हमें इस बात का ध्यान रखना था कि जब तक हम इस कैंप तक ना पहुंचे तब तक हमें किसी की नजर में नहीं आना है, और ऐसा ना होने पर ऑपरेशन नाकाम हो जाता।
0: ट्रक्स ने उन्हें एक निश्चित स्थान तक पहुंचा दिया। सारे जवान मणिपुर म्यांमार सीमा से लगी नागा हिल्स के किनारे तक पहुंच गए। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उन्हें अब 50 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। ऑपरेशन हॉट पर्स्यूट शुरू हो चुका है। हमला करने में 48 घंटे बचे हैं।
1: 50 किलोमीटर की यह दूरी हमें सिर्फ 24 घंटे में पूरी करनी थी और कोई ऑप्शन ही नहीं था।
0: हर जवान ने 35 किलो का जंग लड़ने का सामान उठाया हुआ है, जिसमें घातक हथियार और गोला बारूद शामिल हैं। गोपनीयता बहुत जरूरी है, लेकिन उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। जिस रास्ते को चुना गया वो बेहद गर्मी और उमस से भरा हुआ है।
2: हमने बहुत ही मुश्किल और लंबा रास्ता चुना, जो पूरी तरह से घिरे एक घने जंगल के बीच से गुजरता था।
0: कुछ इलाके इतने घने हैं कि उन्हें सूरज की किरणें भी भेद नहीं पाती। इस इलाके में चारों तरफ हर रूप में खतरा मौजूद है। उमस 99% है। ये जंग है सोल्जर वर्सेस वाइल्ड। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया तापमान भी बढ़ता गया। हर कदम पर ऊर्जा कम हो रही है।

0: आखिरकार जवानों को कुछ राहत मिली। असॉल्ट से 37 घंटे पहले वो भारत के आखिरी गांव तक पहुंच गए। इसके आगे इंडो म्यांमार बॉर्डर है।
1: यहाँ एक प्रोटोकॉल के तहत नागरिकों को एक दूसरे की सीमा में 16 किलोमीटर तक आने जाने की अनुमति है और मिलिटेंट्स भी इसी का फायदा उठाते हैं।

पूरा इलाका दुश्मन के मुखबिरों से भरा हुआ है। हमलावर दस्ते को बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। सही मौके का इंतजार करना होगा।

0: वो आखिरी गांव से भी आगे बढ़ गए। हमला करने में 36 घंटे 30 मिनट बचे हैं और जैसे जैसे स्ट्राइक टीम इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब पहुंच रही है, उग्रवादियों द्वारा उनकी रेडियो कम्युनिकेशन के पकड़े जाने का खतरा बढ़ता जा रहा है। अब यहां से आगे जवानों को अपना रेडियो बंद करके बढ़ना होगा, लेकिन जनरल और टीम लीडर के पास एक गुप्त संचार की योजना भी है।
1: एक रेडियो सेट उनके पास था और एक मेरे पास। हर 2-3 घंटे में वो मुझे एक बजर टोन देते थे, जिसका मतलब था सब ठीक है। और जब तक मेरे पास वो बजर टोन आ रहा था, मुझे मालूम था सब अच्छा चल रहा है।
0: स्ट्राइक टीम अब इंडो म्यांमार बॉर्डर पर है, जहां नाम्या डुंग नदी दोनों देशों को अलग करती है।
2: हमने एक दिन में 50 किलोमीटर की दूरी तय की थी और हम बुरी तरह थक चुके थे।

0: हमला करने में 34 घंटे बचे हैं। रात के अंधेरे में जंगल को पार करना नामुमकिन है।
1: उस जंगल में आपकी विजिबिलिटी 5 मीटर से ज्यादा नहीं होती और हर वक्त आप नाइट विजन सेट्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए आपको कुछ नजर नहीं आता।
0: केवल एक ही चीज है जिस पर वो भरोसा कर सकते हैं और वो है उनका कंपास, और उन्हें अब उसकी सख्त जरूरत है क्योंकि ये बिल्कुल अनजान इलाका है। चाल बेहद धीमी है और रास्ता अनिश्चितताओं से भरा हुआ। वक्त बीतता जा रहा है और मिशन खतरे में है। ये लोग अब दुश्मन के इलाके में हैं। यहां उग्रवादियों की पकड़ मजबूत है। इन जंगलों में आईईडीज का जाल बिछा हुआ है और उग्रवादियों की निगाहें हर तरफ हैं।
2: मिलिटेंट्स ने कैंप्स के काफी पहले ही पहरेदार तैनात किए हुए थे, जिनका काम था किसी भी तरह की हलचल की सूचना उन तक पहुंचाना।

0: जंगल में कुछ हलचल हो रही है, कोई इस तरफ आ रहा है। टीम हाई अलर्ट पर है, क्या ये मिशन फेल हो जाएगा?
1: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
2: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
3: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
4: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
5: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
3: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस हर।
6: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुजफ्फरपुर में 1047 करोड़ रुपए की लागत वाली 900 से अधिक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन का कल अंतिम दिन, एनडीए और महागठबंधन ने अपनी अपनी जीत के किए दावे। गया जी के बिपाट परिसर में विधानसभा सदस्यों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर सह प्रबोधन कार्यक्रम संपन्न। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा, विधायकों को सदन में प्रभावी काम करने में मदद मिलेगी। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान मुजफ्फरपुर, वैशाली, कटिहार, जमुई और बांका सहित विभिन्न जिलों में तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य की एनडीए सरकार लोगों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। श्री चौधरी ने आज मुजफ्फरपुर में 1047 करोड़ रुपए की लागत वाली 900 से अधिक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नगर विकास और आवास विभाग की इन योजनाओं से शहर में सड़क, जल निकासी और पार्क समेत अन्य शहरी आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को राशि दी जाएगी।
7: सरकार के महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हम लोग उनको रोजगार के लिए राशि उपलब्ध कराएंगे। 1,81,00,000 हमारी बहनों के खाते में हम लोगों ने पैसा पहुंचाया। और बता देना चाहता हूँ, दूसरा किस्त हो या कुछ बहने हमारी जो छूट गई है उनको भी आश्वस्त करता हूँ, इसी महीने हमारी सरकार का 100 दिन पूरा हो रहा है, उस दिन आप सभी बहनों के खाते में फिर से आपके खाते में राशि देने का काम हमारी सरकार करेगा। साथियों,
6: मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार अपराध और अपराधी से कोई समझौता नहीं करेगी, अपराध करने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी।
7: अपराधी से कोई समझौता नहीं, अपराधी कोई हो उसको जेल के अंदर रहना पड़ेगा और नहीं तो उसको बिहार छोड़ना पड़ेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ भी जीरो टॉलरेंस है साथियों, और साइबर क्राइम में भी हम लोगों ने जीरो टॉलरेंस रखा है।
6: सभा को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि मुजफ्फरपुर में आर्किटेक्ट यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी।
7: मैं आज घोषणा करता हूं कि इस मुजफ्फरपुर MIT की धरती पर एक आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग का एक यूनिवर्सिटी बनाने का काम हमारी सरकार करेगा। सर,
6: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन का कल अंतिम दिन है। उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार का शोर बढ़ गया है। प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा और जन सुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर के कल नामांकन दाखिल करने की संभावना है। उपचुनाव के लिए अब तक 11 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किया है। उम्मीदवार 16 जुलाई तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान 30 जुलाई को होगा, जबकि मतगणना 3 अगस्त को कराई जाएगी। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने दावा किया है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में एनडीए की जीत पक्की है। श्री कुमार ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि चुनाव में राजद और जनसुराज की हार तय है।
8: जो सम्राट चौधरी के नेतृत्व में काम चल रहा है और नीतीश कुमार जी के काम को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है। हर क्षेत्र में बिहार आगे बढ़ रहा है, सबको मदद किया गया है, इसलिए एनडीए के उम्मीदवार काफी मतों के अंतर से विजय हुए। अभी तो सब ताल ठोक रहे हैं और ताल ठोकते रहेंगे।
6: इधर राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि बांकीपुर की जनता पार्टी प्रत्याशी रेखा गुप्ता के साथ है। श्री तिवारी ने कहा कि 3 अगस्त को चुनावी नतीजे चौंकाने वाले रहेंगे।
9: बांकीपुर की जनता राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के उम्मीदवार श्रीमती रेखा गुप्ता जी के साथ है। बीजेपी के पास उम्मीदवार ही नहीं है जो जनता के आक्रोश का सामना कर पाए, इसीलिए बीजेपी चुनाव से पहले ही हार मान गई। 3 अगस्त बीजेपी का किला बांकीपुर ध्वस्त।
6: गया जी स्थित बिपार्ट परिसर में विधायकों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण सह प्रबोधन शिविर आज संपन्न हो गया। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने समापन सत्र के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि समय समय पर इस तरह के आयोजन से विधायकों को सदन में जनता की आवाज अधिक प्रभावी ढंग से उठाने में मदद मिलेगी।
10: आज के समय में लोकतंत्र निरंतर विकसित हो रहा है, जनता की अपेक्षाएं बढ़ी है और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारियां भी पहले से अति व्यापक हुई है। ऐसे में समय समय पर इस प्रकार के प्रशिक्षण एवं संवाद कार्यक्रम अत्यंत आवश्यक ताकि जनप्रतिनिधियों अपने दायित्वों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सके। यह कार्यक्रम किसी एक दल या विचारधारा का नहीं बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को अधिक सशक्त उत्तरदायी और प्रभावी बनाने की भूमिका का प्रयास।
6: इस शिविर का उद्देश्य जनप्रतिनिधियों को संसदीय प्रक्रियाओं, विधायी परंपराओं, डिजिटल विधानसभा और उनकी संवैधानिक जिम्मेदारियों के बारे में प्रशिक्षित करना था। इस शिविर का उद्घाटन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कल किया था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार आने से पहले देश में केवल 5 जलमार्ग थे, लेकिन आज 111 जलमार्ग बनाए जा चुके हैं। श्री सिंह ने बेगूसराय में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि सिमरिया में मल्टी मॉडल टर्मिनल के निर्माण के लिए उन्होंने केंद्र से मांग की है।
11: हम भी मांग किए हैं कि सिमरिया में मल्टी मॉडल टर्मिनल। आज देखिए बड़े बड़े कार्गो रिफाइनरी के विस्तार के लिए उसमें जो लगेगा यंत्र वो बड़े बड़े कार्गो पे आ रहे हैं। ये आने वाले दिन में एक मल्टी मॉडल टर्मिनल यहाँ बनाने के लिए हम जल पोत डिपार्टमेंट को हमने लिखा है जल मार्ग विस्तृत करने के लिए। उम्मीद है वो होगा तो इसका एक नया स्वरूप दिखेगा।
6: केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस फर्जी तस्वीर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक में समस्या हो सकती है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताया है। कार्यालय ने कहा है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किया जाने वाला E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप है। मंत्रालय ने कहा है कि निर्धारित मानकों के अनुरूप होने पर इथेनॉल और पेट्रोल पूरी तरह से घुलनशील होते हैं। मंत्रालय ने यह भी आश्वासन दिया है कि भारत में आपूर्ति किया जाने वाला इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल उच्च गुणवत्ता मानकों का पालन करता है और उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराए जाने से पहले इसका गहन परीक्षण किया जाता है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बहुत ही महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और धरती का तापमान बढ़ने को लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1880 के बाद समुद्र के बढ़ते तापमान और पिघलते हिमनदों ने वैश्विक समुद्री जल स्तरों को लगभग 20 से 23 सेंटीमीटर तक बढ़ा दिया है। श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान को लेकर चिंतित है।
1: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संकट से निपटने के लिए कई पहल की है। उन्होंने कहा कि देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। श्री चौहान ने पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए एक पेड़ माँ के नाम अभियान और मिशन लाइफ जैसी पहलों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत ने वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा है कि विकास योजनाओं का लाभ पंचायत स्तर तक पहुंचाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। श्री प्रकाश ने शेखपुरा दौरे के दौरान संवाददाताओं से बातचीत में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को भी जनता के प्रति संवेदनशील रहने को कहा।
2: योजनाओं का लाभ मिल रहा है लोगों को, लेकिन जो अपेक्षित लाभ है जिस उद्देश्य के साथ योजनाएं बनाई जा रही है, निश्चित तौर पर पंचायत स्तर को इसमें और बेहतरी किए जाने की जरूरत है। मुख्यतः इसमें एक तो लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा, साथ ही साथ दूसरा जो जनप्रतिनिधि भी इसमें और ज्यादा बेहतर तरीके से काम करे, पूरी ईमानदारी के साथ काम करे, लोग खुद निरीक्षण करे और पदाधिकारी भी संवेदनशील होकर काम करे। अगर तीनों लेवल पर काम होगा, तीनों लेवल पर ही काम करने की जरूरत है। लोग लगे हुए आने वाले समय में पंचायती राज व्यवस्था और मजबूत होगी, जो भी योजनाएं चल रही है उनका लाभ लोगों को सही तरीके से मिलेगा, हर प्रकार से कोशिश की जा रही है।
0: प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अनेक भागों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सीवान जिले के कुछ स्थानों पर भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। जिले के मैरवा में सबसे अधिक 75.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान मुजफ्फरपुर, वैशाली, किशनगंज, कटिहार, जमुई और बांका जिले के अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है।
3: दिनांक 13 जुलाई राज्य के कटिहार एवं किशनगंज जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात तथा अत्यधिक भारी वर्षा के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के अररिया, बांका, भागलपुर, मधेपुरा, पूर्णिया एवं सुपौल जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर मध्य एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों जमुई, खगड़िया, मुंगेर एवं सहरसा जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर विभाग ने बेगूसराय, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, शिवहर और सीतामढ़ी जिले के कुछ भागों में अगले एक घंटे के दौरान वज्रपात के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। नेपाल के तराई क्षेत्रों में भारी बारिश और उत्तर बिहार के कई क्षेत्रों में लगातार बारिश से गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नदी का पानी पश्चिम चंपारण जिले के योगापट्टी प्रखंड के सिसवा गांव में कई घरों में प्रवेश कर गया है। जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता बाढ़ और कटाव पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। इधर कोसी नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हुई है। इसे देखते हुए नदी पर स्थित बराज के कई फाटकों को खोल दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा की जयंती पर पटना में राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पटना के श्रीकृष्णापुरी पार्क में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी सहित अन्य गणमान्य लोगों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। भागलपुर जिले के हबीबपुर थाना क्षेत्र स्थित कोल्ड स्टोरेज के सामने कब्रिस्तान में जनाजा ले जाने के दौरान हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 6 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रोहतास जिले के अकोढ़ी गोला थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक निर्माणाधीन मकान से 7,990 लीटर विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। जब्त शराब की कीमत 10 लाख रुपए बताई गई है। वहीं मुंगेर जिले के टेटिया बम्बर थाना क्षेत्र के छाता चौक के पास से पुलिस ने एक ट्रक से 3,447 लीटर शराब जब्त की है। सिवान जिले के मैरवा थाना की पुलिस ने पंडितपुरा गांव में छापेमारी कर जाली नोटों के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ करते हुए 5,45,000 रुपए के जाली नोट समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जमुई सांसद अरुण भारती ने शेखपुरा में केंद्रीय विद्यालय पहुंचने के लिए लगभग 15 लाख रुपए की राशि से पहुंचे पथ के निर्माण और विद्यालय के बाउंड्री वॉल की आधारशिला रखी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुजफ्फरपुर में 1,047 करोड़ रुपए की लागत वाली 900 से अधिक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। बाकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन का कल अंतिम दिन। एनडीए और महागठबंधन ने अपनी अपनी जीत के किए दावे। गैजी के बेपाट परिसर में विधानसभा सदस्यों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर सह प्रबोधन कार्यक्रम संपन्न। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने कहा, विधायकों को सदन में प्रभावी काम करने में मदद मिलेगी। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान मुजफ्फरपुर, वैशाली, कटिहार, जमुई और बांका सहित विभिन्न जिलों में तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।
4: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
5: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
4: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
5: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
4: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
6: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
7: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
6: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
7: आज ही एडमिशन के लिए आए चैनपट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
6: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
7: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
8: प्रसाद क्लिनिक,
9: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
8: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम LIC ऑफिस के पास गोपालगंज,
9: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
10: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
11: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
10: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
11: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
10: संपर्क करें 9939365923।
12: स्पेशल ऑपरेशंस इंडिया म्यांमार। NSCM खापलांग के सबसे बड़े कैंप्स में से एक को नष्ट करने के लिए इंडियन स्पेशल फोर्सेस के पास सिर्फ 90 घंटे की समय सीमा है। ये कैंप इंडो म्यांमार बॉर्डर के उस पार है और हमारे जवानों पर दुश्मन द्वारा पहचान लिए जाने का खतरा बढ़ता जा रहा है। हमला करने में 25 घंटे 10 मिनट बचे हैं।

0: क्या ये लोग दुश्मन के मुखबिर हैं? जल्द ही पता चल गया कि ये लोग स्थानीय शिकारी हैं। शिकार करना यहाँ की जीवन शैली का एक पारंपरिक हिस्सा है, लेकिन स्पेशल फोर्सेस कोई खतरा नहीं ले सकती। इन लोगों को छोड़ा नहीं जा सकता। ये लोग मददगार भी साबित हो सकते हैं।
1: उन लोगों को रास्ते मालूम थे तो हमने सोचा कि इनकी एक्सपर्टीज का फायदा उठाया जाए।
0: स्ट्राइक टीम को अब मानव कंपास मिल गया है, लेकिन क्या इन पर भरोसा किया जा सकता है?

0: सुबह के आसपास जब हम हिल टॉप पर पहुंचने वाले थे तो हमारे साथ जो लोकल शिकारी थे उन्होंने और आगे जाने से इनकार कर दिया।
1: ये शिकारी एक कदम भी आगे जाने के लिए तैयार नहीं है। स्थानीय लोगों को उग्रवादी कैंप के पास के जंगल में प्रवेश करने से मना किया गया है। टीम लीडर को अब यकीन है कि वो लक्ष्य के बिल्कुल पास हैं। हमलावर दस्ता अब फिर से अपने दम पर आगे बढ़ने लगा।

0: रेडियो रिमझिम सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा यानी रेडियो दोस्त सोनू के तरफ से नमस्कार प्रणाम। समय हो चुका है आपका संदेश मिला कार्यक्रम का, तो ठीक सही समय पे आप सभी के द्वारा संचार के विभिन्न माध्यमों से भेजे गए संदेशों को लेकर हाजिर हो चुका हूँ आप सभी के बीच। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके द्वारा भेजे गए संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया देते हैं रेडियो रिमझिम के प्रबंध निदेशक श्री कृपा शंकर श्रीवास्तव जी। तो सर, सबसे पहले आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: यदि आप भी इस कार्यक्रम में शिकायत, सुझाव, प्रशंसा या अपना विचार भेजना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम में भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा पता है रेडियो रिमझिम, बंजारी मोड़, गोपालगंज, पिन कोड 84 14 28। व्हाट्सएप नंबर है 98527 88291 और ईमेल आईडी है radioremjhim@gmail.com। आप संचार के जिस माध्यम से चाहें उस माध्यम से अपना शिकायत, सुझाव या प्रशंसा, अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। तो फिलहाल अपनी बातों को रोकते हैं और इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं।
1: आदरणीय श्रोता बंधु, रेडियो रिमझिम परिवार के पूरी टीम के तरफ से अपने परम आदरणीय श्रोताओं को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। साप्ताहिक कार्यक्रम आपका संदेश मिला में आप सभी सुनने वाले व्यक्तियों का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आपका संदेश मिला कार्यक्रम पूरे सप्ताह भर रेडियो रिमझिम 90.4 में चले हुए कार्यक्रमों का एक संक्षिप्त परिचर्चा करते हैं। यह सिलसिला वर्ष 2009 से शुरू हुआ और आज 2026 हो गया, जारी है। आदरणीय श्रोता बंधु, रेडियो रिमझिम में तकनीकी स्तर पर, व्यवस्थाओं के स्तर पर बहुत सारे सुधार हुए और उन सुधारों में हमारे परम आदरणीय श्रोताओं का महत्वपूर्ण योगदान है। एक दौर था जब रेडियो रिमझिम की स्थापना हुई तो हम लोग कई पार्ट में अपना प्रसारण करते थे। जो पुराने हमारे श्रोता हैं उन्हें पता है, जो नए जुड़े हुए हैं उन्हें भी जानकारी दे दें कि सुबह 6 बजे से 10 बजे तक, फिर 12 बजे से 3 बजे तक और फिर शाम को 5 बजे से 10 बजे तक केवल हम प्रसारण करते थे, फिर बंद हो जाता था। लेकिन हमारे श्रोताओं का डिमांड था कि नहीं, रेडियो रिमझिम का प्रसारण सारा दिन हो, सारा रात हो, और उनके डिमांड के आधार पर और तकनीकी सुधार के आधार पर हम लोगों ने धीरे धीरे इसका प्रसारण जो है 24 घंटे कर दिया। और कई श्रोता जो देश विदेश, प्रदेश, आईटी सेक्टर में हैं, उनका भी सुधार आया। हमें याद है 2011-12 में हमारे कई आदरणीय श्रोता समूह में रेडियो रिमझिम में पहुंचे थे और हम लोगों पर दबाव बनाते थे कि रेडियो रिमझिम को केवल हम गांव आने पर ही सुनते हैं, लेकिन जब हम पंजाब कमाने चले जाते हैं, सऊदीया कमाने चले जाते हैं, यानी घर से दूर चले जाते हैं, तो रिमझिम से हम लोग अलग हो जाते हैं। उनके बातों को हम जो तकनीकी एक्सपर्ट हैं उन तक पहुंचाया और धीरे धीरे 2015 तक ऐप जो है रेडियो रिमझिम का लॉन्च हुआ और आज जो है पूरे संसार में रेडियो रिमझिम को सुना जा रहा है। और जो नए लोग हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें बताते चलें, रेडियो रिमझिम का प्रसारण 4 तरह से होता है। प्रसारण तो एक ही होता है लेकिन 4 तरह से आप सुन सकते हैं, रेडियो पर, इंटरनेट पर, रेडियो रिमझिम के ऐप के माध्यम से जो गूगल के प्ले स्टोर में है, इसके अलावा जितने भी वाद्य यंत्र हैं उसके माध्यम से आप सुन सकते हैं। आप यदि सफर कर रहे हैं गाड़ी के माध्यम से, एक बहुत ही अच्छे अधिकारी हैं वे बता रहे थे कि हम जब सुनते जाते हैं तो मोहम्मदपुर के बाद मेरे गाड़ी में आवाज कम आने लगता है, तो हमने बताया कि आप सीधे अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड कीजिए, उसका वायर जो है साउंड बॉक्स में लगा दीजिए और आप लगातार और लंबे समय तक सुनते रहेंगे। आपका संदेश मिला कार्यक्रम आपके विचारों पर, आपके बातों पर और आपके द्वारा भेजे गए सुझावों पर यह प्रसारित होता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से जो हमें श्रोता सुन रहे हैं वे अपने विचारों को भेजते हैं, रेडियो रिमझिम के प्रसारण में कहीं कोई खामी है वे बताते हैं और हम सुधार करते हैं। मानव अपूर्ण है, हमेशा कुछ न कुछ उसमें सुधार करने की गुंजाइश बनी रहती है। यदि हम अपने जीवन में देखते हैं कि हमारा जो बाल्यावस्था है वह दूसरे तरह का, युवावस्था दूसरे तरह का, किशोरावस्था दूसरे तरह का और बुजुर्ग बनने के बाद बुढ़ापे का अवस्था जो है दूसरे तरह का हो जाता है, इसी तरह जीवन में जब आप किसी काम में धीरे धीरे निपुण

हुए हैं, आप हमसे जुड़े हुए हैं, यह सिलसिला लंबे समय से चल रहा है। और कहा जाता है कि जिसके लिए प्रसारण हो रहा है वे यदि सुनता है, समझता है, अपने बातों को रखता है तो बड़ा ही बेहतर होता है। आदरणीय श्रोता बंधु, इस कार्यक्रम के माध्यम से एक बड़े ही आदर के साथ निवेदन करूंगा कि जब भी ऑनलाइन कार्यक्रम होता है तो सैकड़ों के संख्या में विज्ञापन शाखा में फोन आने लगता है। हम कई बार इस कार्यक्रम के माध्यम से बताए हैं कि आप जिस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं उस कार्यक्रम का नंबर या रेडियो रिमझिम द्वारा प्रसारित जितना भी नंबर है वह सब रेडियो रिमझिम के फेसबुक पर एक पोस्टर बनाकर डाल दिया गया है, आप वहां से नंबर ले सकते हैं। कई श्रोता कहते हैं कि हम जो है फेसबुक तो चलाते नहीं हैं, तब कैसे नंबर लेंगे। तो उन तमाम आदरणीय श्रोताओं से मैं कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन कार्यक्रम जो करता है, जो आरजे होते हैं, बोलने वाले को आरजे कहा जाता है, जो रेडियो पर बोलता है, वह जो है हर 30 मिनट के बाद जिस कार्यक्रम को कर रहे हैं उन्हें हिदायत है कि वह जो है उसका नंबर जो है बताते रहेंगे। तो जो फेसबुक नहीं चलाते हैं वह ध्यान से कार्यक्रमों को सुने, और जो हमारे आरजे हैं वह 20 मिनट 30 मिनट के बाद उस कार्यक्रम का नंबर एक बार पुनः बताते हैं, ताकि नए नए जो श्रोता हैं वह हम लोगों से जुड़ते रहें। नयापन आना चाहिए। हमें लगता है कि जो आप लोग सुझाव देते हैं, जो सुनते हैं और उनका जो तकनीकी या कार्यक्रम संबंधी सुझाव आता है बड़ा ही अच्छा रहता है, रेडियो रिमझिम को आगे बढ़ने में, नए कार्यक्रम को गढ़ने में और नई नई बातें प्रसारित करने में। हमें भी पता है कि आज जो है जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं वह कार्यक्रम हमारे परम आदरणीय श्रोताओं के सुझावों के आधार पर चलते हैं। और मेरा मानना है कि जो रेडियो को लगातार और नियमित सुनता है वह दिल से जुड़ा हुआ है। रेडियो केवल एक मनोरंजन का साधन नहीं है, एक सूचना तंत्र है। हालचाल गोपालगंज YouTube पर, Facebook पर, हर जगह उपलब्ध है। रात को 9:05 में और सुबह 7 बजे गोपालगंज हालचाल जो प्रसारित होता है उसे जो है सोशल मीडिया अकाउंट पर रेडियो रिमझिम के नाम से YouTube पर डाला जाता है। आप अपने मोबाइल में लिखिएगा हालचाल गोपालगंज, तुरंत आ जाएगा, और पिछले 10 वर्षों का आ जाएगा, 15 वर्षों का आ जाएगा, तो एक रिकॉर्ड भी बन रहा है। आदरणीय श्रोता बंधु, हमारा जिला जो है कृषि प्रधान जिला है, जिसमें 95% से अधिक लोग जो है खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, सब्जी बागवानी उद्यान सबसे जुड़े हुए हैं। और इस समय समय समय से बारिश हो रही है और धान का बीज भी तैयार है, रोपनी भी खूब हो रहा है। अभी हम हाल में ही गोपालगंज के पूरब गए थे, देखे शानदार तरीके से रोपनी हो रहा है। विजयपुर, भोरे, कटिया, कुचायकोट के कुछ क्षेत्रों में हमने दौरा किया, देखा वहाँ भी रोपनी ससमय चल रही है। यह बहुत अच्छी खबर है। मानसून के समय से आ जाने से खेती बाड़ी में बहुत ही बढ़वार होगा और डीजल का भी बचत होगा। नहीं तो बिजली से, जनरेटर से, हम लोग जो है पंपिंग सेट से अपने खेती में रोपनी के समय पानी लेते हैं, जो प्रकृति को धन्यवाद देने का समय है। आदरणीय श्रोता बंधु, आपका संदेश मिला कार्यक्रम रात में तो प्रसारित ही होता है, सुबह में भी 7:10 पर सोमवार को हम प्रसारित करते हैं, और एक ही ताल पर, एक ही समय पर हर कार्यक्रम को प्रसारित किया जाता है। कई कार्यक्रम हैं जो नए हमारे साथ जुड़े हैं,
अब सुबह सुबह विक्रम संवत आपन देही आपन देखभाल कार्यक्रम जो है हम प्रसारित कर रहे हैं।

0: और यह भी ध्यान रखते हैं कि जो आपका सुझाव आता है उस पर हम लोग मंथन करते हैं, विचार करते हैं कि हम इस कार्यक्रम को कब और कहां प्रेषित करें। वैसे आप लोगों का प्यार भरा संदेश किसी न किसी माध्यम से पहुंच जाता है। कुछ लोगों का संदेश जो है विलंब से आता है, इसलिए इस कार्यक्रम में हम शामिल नहीं कर पाते हैं, उसे अगले सप्ताह के लिए प्रेषित कर देते हैं। लेकिन आपका संदेश मिला कार्यक्रम जो है उत्सव भरा कार्यक्रम है, हमारे जीवन में उत्सव बना रहे, खुशी बना रहे। व्यक्ति चाहता है प्रगति, लेकिन उसका तरीका जो है सही और सटीक होना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ना जरूरी है, जीवन में बेहतर कार्य करना जरूरी है। अभी हाल में ही आपको बताते चले, एक दिन हम लोग सुखदेव पट्टी से, जो उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पर है, नहर से पकड़कर मोटरसाइकिल से आ रहे थे, तो हमने देखा उस नहर पर कई जगह गड्ढे हो गए हैं, जो रात के समय बाइक वाले यदि आते हैं तो उनके जान का जोखिम होता है। मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार, हमारे साथ एक बच्चा था जो बाइक चला रहा था, जगह जगह रोक कर नहर के किनारे से डाढ़ काट काट के, यानी तोड़ तोड़ के, और हम लोगों ने उस गड्ढे में उस हरे वृक्ष को, यानी जो डाली था उसको लगा दिए कि रात के समय कोई खतरा ना हो। यदि आप नहर के किनारे रहते हैं, जैसे सुकुलवा हुआ और कई गांव है, पसरमा हुआ, यदि इस तरह के गड्ढे हैं तो आप स्थानीय होने के नाते उस गड्ढे में जरूर कोई डाली या कुछ लगा दें बांसों, ताकि किसी को कोई खतरा नहीं हो। हम जीवन में बहुत बड़ा समाज सेवा नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान दे तो किसी के जान की रक्षा हो सकती है। कई बार चार चक्का वाला गाड़ी में अपने परिवार सहित लोग बैठाए उस नहर पर तेजी से आ रहे हैं, उन्हें आप आगाह कर दें, संकेत दे दें, हाथ दिखा दें कि आगे जो है बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, बरसात का समय है, थोड़ा सावधानी से जाएं। हम जितना खतरा बचा सकते हैं, जितना जान माल की रक्षा अपने स्तर से कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। आज के दौर में किसी को फुर्सत नहीं है अपने से, लेकिन हमें उस समय भी दूसरों के लिए कुछ समय निकालना चाहिए। आदरणीय श्रोता बंधु हमारे साथ बैठे हुए हैं मिस्टर सोनू जी, और आप लोगों का भी बहुत सारा संदेश है जो पढ़ना शुरू करेंगे, और मैं अपनी पूरी ईमानदारी से उन प्रश्नों का उत्तर दूंगा।
1: जी सर, हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी संचार के विभिन्न माध्यमों से बहुत सारे संदेश पहुंचे हुए हैं। सबसे पहला संदेश मेरे पास है गुड़िया कुमारी का, लिखी है, सर नमस्कार, मैं रेडियो रिमझिम बहुत सुनती हूँ, अपना काम करते हुए भी रेडियो सुन लेती हूँ। मैं एक सिलाई सेंटर चलाती हूँ कबिलासपुर बाजार पे, हमें सबसे अच्छा योर वॉइस योर चॉइस शो लगता है। वैसे तो सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें सोनी मैम वाला शो बहुत पसंद है। पिछले सप्ताह आपका संदेश मिला में प्रिया जी के द्वारा बात बहनों की कार्यक्रम चालू करने की मांग की गई थी, उसे जरूर चालू किया जाए। तो सर इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दें।
0: आदरणीय गुड़िया जी, आपके पूरे परिवार को, कबिलासपुर बाजार के सभी निवासियों को, ग्रामवासियों को, रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। सबसे पहले हम आपको बधाई देते हैं कि आप अपने क्षेत्र के बेटियों को, बहनों को जो एक कला सिखा रही हैं, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। जो सिलाई कढ़ाई का कार्य है या कोई भी तकनीकी कार्य हो, गैर तकनीकी कार्य हो, जिसमें किसी व्यक्ति को दक्षता प्राप्त हो जाती है, तो उसको खोजने वाले लोग जो है सैकड़ों हो जाते हैं। मेरा मानना है आज के दौर में बेटियों को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, और केवल हम सरकारी नौकरी के लिए महामारी नहीं करें। जीवन में कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हम अपना प्रदर्शनी बेहतर कर सकते हैं और अपने दक्षता को, अपने कौशल को हम निखार सकते हैं। वैसे भारत सरकार, राज्य सरकार कौशल केंद्र बनाए हैं और वह जो है तरह तरह के तकनीकों को लोगों को सिखा रहे हैं। आज जो है किसानों को कृषि विभाग द्वारा किसान पाठशाला चलाया जा रहा है, जन जागरूकता चलाया जा रहा है ताकि किसान जो है खेती में दक्ष हों। तो आप हमारे कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस को सुनती हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी काम को जब लंबे समय से व्यक्ति करता है तो उसमें जो है परिपक्वता दक्षता प्राप्त होती है। आरजे सोनी जी बहुत ही बेहतर आरजे हैं, उनके अलावा आरजे भारती, आरजे मुनार मनोरमा, आरजे सोनू जी, यह सब लोग जो है अपने समय के साथ अपने कामों में उत्कृष्ट योगदान देते हैं। और कुछ लोग नए होते हैं, उन्हें परेशानी होती है, कुछ पुराने होते हैं जिनमें चमक होती है। अब मान लीजिए जीवन के हम लंबे समय से रेडियो रिमझिम का प्रसारण करते हैं तो भारतवर्ष के कई रेडियो स्टेशन हमसे कई तरह के तकनीकी गैर तकनीकी सलाह लेते हैं। वह चाहे हवेली खड़गपुर हो, कैमूर हो, भागलपुर हो या दूसरे प्रांत के लोग हों, तो हमारा यह जिम्मेवारी है उन्हें भी तकनीकी ज्ञान देना, जो अपना अनुभव है उसे देना। आप इस कार्यक्रम को लगातार सुने, इसके अलावा आप अन्य कार्यक्रमों को सुने। रेडियो रिमझिम का प्रत्येक कार्यक्रम सांचा में गाढ़ा हुआ होता है और प्रसारण से पहले कई बार हम लोग स्वयं उसे सुनते हैं, समझते हैं, तो उन कार्यक्रमों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दे। काफी अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: जी सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर, हम रेडियो रिमझिम शाम को हर रोज सुनते हैं, खासकर बुधवार और बृहस्पतिवार को, क्योंकि हमें सोटी बिरजाभार और बिरहा सुनना बहुत अच्छा लगता है। इस बार का बिरहा माँ और बेटा का मिलन की कहानी बहुत अच्छा बिरहा लगा। मेरा कहना है कि इस तरह का बिरहा सुनाया जाए हर सप्ताह। इस संदेश को भेजते हैं इसराफिल हक साधु चौक मठिया से। तो सर, इनके संदेशों पर अपना विचार दें।
0: आदरणीय श्रोता बंधु, आपके पूरे परिवार को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बहुत अच्छा लगा जब कोई श्रोता रेडियो रिमझिम के कार्यक्रमों के बारे में अपना समय निकाल कर किसी न किसी माध्यम से संदेश देता है तो काफी अच्छा लगता है। हमारा प्रत्येक कार्यक्रम चुन चुन कर बनाया जाता है, प्रसारण किया जाता है ताकि जो सुन रहा है उसका मन जो है हर्षित हो, खुश हो और वह जो है अपने बातों को हम तक पहुंचाते रहे। आदरणीय श्रोता बंधु, आपने जो संदेश दिया रेडियो रिमझिम के पूरी टीम में उत्साह भर दिया। चूंकि जो सर्च करता है देखता है कि हम किस तरह का बिरहा का प्रसारण करें, निर्गुण का प्रसारण करें, सोठी बिरजाभार का प्रसारण करें, और उसके संदर्भ में जब लगातार प्रतिक्रिया आती है और सकारात्मक प्रतिक्रिया आती है तो अच्छा लगता है। लगता है कि रेडियो रिमझिम टीम को कोई उपहार दे दिया, कोई पुरस्कार दे दिया। तो इस तरह का व्यवहार और संदेश जो है ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। मैं आपसे बड़े ही आदर से आग्रह करूंगा कि इसके अलावा सोठी बिरजाभार, निर्गुण और बिरहा के अलावा आप कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं, यदि किसी कार्यक्रम में कोई खामी है, कोई कमी है तो निसंकोच हमें बताएं। हम लोग सेवक हैं और यहाँ सेवा के उद्देश्य से पिछले कई वर्षों से हम प्रसारण कर रहे हैं, और आप जैसे आदरणीय श्रोता जो हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, पीठ थपथपाते हैं, हमारे टीम के अंदर एक नई ऊर्जा प्रदान करते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, नमन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका संदेश मिला कार्यक्रम में अन्य कार्यक्रमों के बारे में भी आप लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार
1: जी। सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है, हर हर महादेव। आदरणीय डायरेक्टर सर, आपको हमारे तरफ से सादर चरण स्पर्श और साथ ही रेडियो रिमझिम के सभी आरजे सोनी जी, भारती जी, सोनू जी, सभी को हमारे तरफ से नमस्कार है। हम अपनी तरफ से सबके आराध्य भगवान शिव और माँ भवानी थावे वाली से आपके चैनल को विधिवत चलते रहने की मंगल कामना करता हूँ। इस संदर्भ में कुछ सुझाव और कुछ शिकायत प्रेषित कर रहा हूँ जो कि निम्नलिखित है। पहला सुझाव है, सुबह में भक्ति संगीत के कार्यक्रम में किसी आरजे को रखा जाए जो किसी कथा के साथ कार्यक्रम प्रस्तुत करे। दूसरा सुझाव है, सुबह 7 बजे से 9 बजे तक भी मॉर्निंग मस्ती जैसा कोई कार्यक्रम हो जिसमें कोई आरजे रहे और इसमें दैनिक राशि फल, बाजार भाव और स्थानीय खबरें सम्मिलित हो। आगे शिकायत है, सोनू सर के कार्यक्रम का समय बढ़ाया जाए और इस कार्यक्रम से भोजपुरी गाने के फरमाइश को हटाया जाए। दूसरा शिकायत है, कभी कभी अश्लील भोजपुरी गाने बज जाते हैं जिसमें आरजे का कोई दोष नहीं है क्योंकि बहुत सारे गाने आरजे सुने नहीं होते हैं, इसलिए इस पर एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। आपका नियमित श्रोता अनिल कुमार, ग्राम छोटपुर, जिला सिवान, बिहार से। तो सर, इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दे।
0: आदरणीय अनिल कुमार जी, आपके पूरे जिले वासियों को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। सबसे पहले आपके शानदार सुझाव के लिए, शानदार शिकायत के लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं। बहुत अच्छा लगा। कहा जाता है कि जो रेडियो को सुनता है और लगातार और नियमित सुनता है वही कुछ बेहतर सुझाव और शिकायत कर सकता है। आपके जितने भी सुझाव हैं, पूर्व में रेडियो रिमझिम में इसका अनुपालन होता था, वर्तमान समय में सुबह मॉर्निंग में हमारे पास कोई आरजे उपलब्ध नहीं है, इसलिए थोड़ी सी परेशानी हो रही है। जितनी बातें आपने गुड मॉर्निंग कार्यक्रम के विषय में लिखा है, पूर्व में यह कार्यक्रम रेडियो रिमझिम पर चलता था, ऑनलाइन चलता था, जिसमें राशि फल, स्थानीय समाचार पत्रों का जो मुख्य बातें होती थी आरजे द्वारा बताया जाता था, लेकिन यह कार्यक्रम कुछ समय से बाधित है। हम इस पर कार्य करने की योजना बना रहे हैं। मानव बल की कमी है, मानव बल बढ़ते ही इस पर हम कार्य करना शुरू कर देंगे। और जो आपने सुझाव दिया कि कोई अश्लील गीत को न बजाया जाए, तो हमारे तरफ से 110% की तैयारी रहती है कि भूल चूक से भी अश्लील गाने भोजपुरी न बजे। लेकिन कभी कभार, चूंकि आपने कहा भी कि लाखों लाख करोड़ों की संख्या में भोजपुरी गीत है और हर गाना को सुन पाना असंभव हो जाता है, जो हमारे आरजे ऑनलाइन बैठते हैं बड़े ही आदर से, निवेदन से अपने श्रोताओं से प्रार्थना करते हैं कि किसी भी अश्लील गीत की फरमाइश न करें। लेकिन आप जानते ही हैं कि 5 उंगली जो है बराबर नहीं है, लेकिन 5ों का दर्द जो है बराबर होता है, इसलिए उसी में से कुछ श्रोता ऐसे गीत का फरमाइश कर देते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन बैठते हैं वह भी पूरी सजग और सतर्कता से बैठते हैं। जो ही एक कड़ी से दो कड़ी यदि अश्लील गीत सुनाई दिया तुरंत उसी समय रोक देते हैं और बड़े ही बेमन से उस व्यक्ति का नंबर भी ब्लैक लिस्टेड कर देते हैं, ताकि भविष्य में वह जो है रेडियो रिमझिम से न जुड़े। बड़े ही कष्ट के साथ करना पड़ता है। चूंकि रेडियो रिमझिम का यह वैचारिक सिद्धांत रहा है कि हमारे रेडियो को पिता और पुत्री, माँ और पुत्र एक साथ बैठकर सुने, समझें और उन्हें कोई भी अश्लील गीत न लगे। चूंकि मेरे परिवार के, आपके परिवार के सभी लोग सुनते हैं रेडियो रिमझिम को, कभी प्रादेशिक समाचार, कभी राष्ट्रीय समाचार, कभी हाल चाल गोपालगंज, और उसमें यदि कहीं कोई गंदगी या अश्लील गीत आए तो यह अच्छा नहीं लगता है। आप समाचार में भी देखते होंगे, हाल चाल में भी, कि कोई भी नेगेटिव न्यूज जो है हमारे जो एंकर हैं वह नहीं प्रसारित करते हैं। हमेशा हम लोग सकारात्मक और विकास उन्मुखी कार्यक्रमों का या बातों को बढ़ावा देते हैं। यह रेडियो रिमझिम का मौलिक सिद्धांत रहा जिस पर हम लोग अमल करते हैं। हम आपको शानदार तरीके से धन्यवाद देते हैं कि आपने अनिल कुमार जी जितने सुझाव दिए बहुत ही बेहतर है, और रेडियो रिमझिम का कायाकल्प करने वाला यह कार्यक्रम है, तो हम उस पर अभी से काम करना शुरू करेंगे। हम आपको डेट और तारीख तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे अपने टीम के साथ कि इस पर कब और कहां से शुरू किया जाए। इसी तरह का शानदार सुझाव देते रहिएगा। हमारा आधार, हमारा बेस, हमारा अस्तित्व रेडियो रिमझिम के श्रोताओं पर है, और आज रेडियो रिमझिम जिस मुकाम पर है, हर उम्र वर्ग के लोगों के सुझावों के आधार पर है। जब हम गांव देहात में जाते हैं, चाहे कोई भी गांव हो, गोपालगंज के 1554 गांव है और 2 अनुमंडल और 14 ब्लॉक हैं, जब भी किसी गांव में, देहात में, अनुमंडल में, नगर पंचायत, नगर परिषद क्षेत्र में जाते हैं तो रेडियो रिमझिम का फीडबैक हम लेते रहते हैं। मेरे अलावा जो हमारे टीम से वॉलंटियर के रूप में जुड़े हुए लोग हैं वे भी सुझाव लेते रहते हैं, और पूरा श्रोताओं के विचार पर आधारित कार्यक्रमों का हम लोग प्रसारण करते हैं। हमारा एक ही मूल सिद्धांत है, जो हमारे श्रोता को अच्छा लगेगा वही हम प्रसारित करेंगे। जो विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाए, उस तरह के करियर संबंधी सूचनाओं को प्रेषित करेंगे, ताकि जनहित में रेडियो रिमझिम सदैव लोकप्रियता बना रहे। आपके सुझाव के लिए एक बार पुनः हम आपको धन्यवाद देते हैं।
1: जी सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है। नमस्कार सर, मैं मुन्ना कुमार, घर रामचंद्रपुर, अभी मैं दुबई में हूँ। आपका रेडियो रिमझिम बहुत सुनता हूँ, जब भी समय मिलता है तो शो से भी जुड़ता हूँ। शनिवार को हमने सोनी मैम का इंतजार किया, लेकिन उनका आवाज नहीं आया। हम 3-4 सप्ताह से देख रहे हैं कि शनिवार को उनका आवाज सुनने को नहीं मिल रहा है, जिससे रेडियो सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो सर, इनके संदेशों पर अपना विचार दें।
0: आदरणीय श्रोता बंधु, आपके पूरे परिवार को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। रेडियो रिमझिम के प्रति इतना श्रद्धा और प्रेम रखने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले हम बताते चलें, मनुष्य के जीवन में बहुत सारा संघर्ष होता है, सब काम करते हुए बहुत सारी परेशानियां होती हैं। चूंकि आप अपने जिले के हैं और आजकल विदेशों में हैं, आप खुद महसूस करते होंगे कि कितना हूँ वीडियो कॉल पर बात कर लिया जाए, कितना हूँ फोन पर बात कर लिया जाए घर परिवार रिश्तेदार से, लेकिन जो आमने सामने बैठकर बातें होती है उतना संतुष्टि कभी तकनीक के आधार पर की गई बातों पर नहीं होता है। दूसरी बात यह रहा कि एक दौर था आरजे पल्लव, आरजे अफसर अली, आरजे चंद्रकला, आरजे पम्मी, बहुत सारे आरजे आए और समय के साथ वे लोग अपने करियर संबंधी चिंताओं के लिए आगे निकलते गए। यह खुशी की बात है कि जीवन में आदमी जहां है यदि अपने करियर संबंधी उत्थान करता है तो यह बहुत अच्छी बात है। तो रेडियो रिमझिम में आज जो है आरजे है, कल रहेगा, इसकी गारंटी ना आप दे सकते हैं ना हम दे सकते हैं। दूसरी बात यह रही कि जब व्यक्ति घर परिवार में रहता है तो जिस संस्थान में काम करता है उससे कभी छुट्टी लेना पड़ता है, कभी कार्यक्रम बाधित रहता है। जिस तरह पिता के जाने के बाद पुत्र जो है कमान संभाल लेता है, उसी तरह हर संस्था में सीनियर जूनियर सब तरह के लोग रहते हैं। आजकल आप जो है नई प्रशिक्षण प्राप्त आरजे भारती को सुन रहे होंगे, हो सकता है उसके प्रसारण में कई तरह की खामियां होगी और धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। शुरुआती दौर में हर व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है और जो संघर्ष करके निकलता है वही तो निखर जाता है। जिस तरह सोना को जितना ही आग में तपाया जाता है उसका चमक उतना ही बढ़ जाता है, उसी तरह जो जिस काम में जितना ही लगेगा वह उसमें बेहतर होगा। तो यह दौर तो चलता रहेगा। एक दौर था हमारे जमाने में कि वैजयंती माला का जब कोई मूवी आता था, सिनेमा आता था, संगम जैसा, तो सब लोग दौड़ जाता था। उसके बाद दौर आया कई अभिनेत्रियों का और आज का दौर देखिए तो समय जो है परिवर्तनशील है, जो सजीव है आज है कल जाना है, और जो निर्जीव है उसके लिए तो कोई बातें नहीं है। तो इस प्रेम को बनाए रखिए और रेडियो रिमझिम के नए नए आरजे से नई उम्मीद और नई उत्साह के साथ कार्यक्रम को सुनते रहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार
1: जी। सर अगला संदेश पहुंचा हुआ है अमित कुमार राय जी का मीरगंज से, लिखे हुए हैं, रेडियो रिमझिम टीम को हम प्रणाम करते हैं, हाल चाल और हमें पुराने गीत काफी अच्छे लगते हैं और रेडियो रिमझिम का ऐप का आवाज काफी अच्छा लगता है। मेरा शिकायत है कि समय के साथ गीतों में बदलाव कर प्रसारण किया जाए। तो सर इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दे। साथ ही देखे तो मेरे पास सभी कई संदेश हैं, लेकिन समय का इशारा है कि कार्यक्रम को समापन करना चाहिए। तो प्रतिक्रिया देते हुए कार्यक्रम को समापन करें और विदा लें।
0: आदरणीय श्रोता बंधु, आपके पूरे परिवार को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आपका संदेश मिला कार्यक्रम में, आप लोग लगातार जुड़ते हैं, अपनी बातों को हम तक पहुंचाते हैं, इससे बड़ा अहोभाग्य क्या हो सकता है। हमारे सुनने वालों की संख्या लाखों लाख में है, कोई इंटरनेट से, कोई ऐप से, कोई रेडियो से, कोई वाहन के माध्यम से सफर करते समय रेडियो रिमझिम को सुनते रहता है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मेरा मानना है कि ईश्वर ने जो मुझे अवसर दिया, मौका दिया जन जन की सेवा करने का, उसमें यदि मैं 1% भी सफल रहा तो जीवन जो है सफल हो जाता है। जीवन में सफलता पाने का एक मूल मंत्र यही है, लगातार परिश्रम। परिश्रम के अलावा कोई रास्ता नहीं। यदि हम अपने जीवन काल में आज परिश्रम करते हैं तो आने वाला हमारा अंश, वंश वह भी परिश्रमी होगा। परिवार में लोग कहेंगे कि वह बहुत मेहनती हैं। हमने अपने जीवन काल में कई लोगों को देखा। हमारे गांव के श्री सुब्राती मियाँ जी थे, जो आजकल नहीं थे, वह कपड़ा का सिलाई बहुत अच्छा करते थे। गांव भर के महिला, पुरुष, बच्चे सब लोग उनके यहाँ पहुँचते थे और हम लोग भी पहुँचते थे। आज से 50-60 साल पहले की बात है। और वह जो है किसी को दुदकारते नहीं थे। किसी का पेंट फटा है, किसी का छाता जो है थोड़ा सा खरोच आ गया है, किसी का साड़ी का फॉल लगाना है, तरह तरह के, और वह सबको रख लेते थे और सबका जो है बारी बारी से सिलाई कर देते थे। वह तो आज इस दुनिया में नहीं है, ऊपर वाले उन्हें जन्नत प्रदान करे, लेकिन उस व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य जो है आज भी दिल और दिमाग में रहता है। काम तो बहुत छोटा था, लेकिन वह जो है बहुत ही बेहतर ढंग से किए। कई शिक्षक ऐसे होते हैं जो जीवन में अपने बच्चों को अपने बच्चे जैसा पढ़ाते हैं, और जब वह बच्चे कहीं अधिकारी, कर्मचारी, बिजनेसमैन या जनप्रतिनिधि बनते हैं तो उन्हें अपने दिलो दिमाग में रखते हैं। अपना चार चक्का गाड़ी रोक कर भी आकर उनके पैर को छूते हैं, ऐसा हमने देखा है। तो जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में जो भी काम मिला है यदि बेहतर ढंग से किया है तो लोग उन्हें याद रखते हैं। हमारे गांव में एक बात और याद हुआ, हमारे नगीना काका थे, और जब रोपनी का समय आता था तो गांव का हर व्यक्ति चाहता था कि नगीना काका ही हमारे खेत में रोपनी करें, हमारे खेतों को देखें, और पूरा गांव का जो भी जमीन वाले थे उनके यहाँ राते से आकर धरना पर बैठ जाते थे। यह कहानी 40-50 साल की है। तो हम जो है इस बात को समझ नहीं पाते थे। ज्यों ही ज्यों उम्र बढ़ा हम समझने लगे। वह जब किसी के खेतों में जाते थे तो रोपनी से पहले घास पात, मेड़ी सेड़ी सब ठीक ठाक करते थे। इसके बाद वह जो है जितना बिड़ार से बिया निकालते थे उसकी मात्रा संख्या के हिसाब से खेत को अपना समझ के उस खेत में रोपनी करते थे। और लोगों को ठीका लेना था, एक कट्ठा रोपे चली अब वहाँ की यहाँ रोप दिहल जाओ, चली वहाँ की यहाँ रोप दिहल जाओ। और वह जो है जिसका लेते थे, जितना बात करते थे उतना सही और सटीक ढंग से करते थे। आज उनके बच्चे जो है बहुत अच्छे व्यवसायी बन गए हैं। कोई कपड़ा का दुकान खोल लिया है, तो कोई साइकिल का स्पेयर पार्ट्स बाजार में बेच रहा है। तो हमें यह आभास होता है कि यदि हम अपने जीवन काल में अच्छा, सच्चा और ईमानदारी से किसी का भी काम करते हैं या अपना भी काम करते हैं तो उसका प्रतिफल इसी जीवन में मिलेगा। इसलिए मेरा मानना है कि भगवान, खुदा, अल्लाह जिसे जो अवसर दिया है उसे पूरी ईमानदारी और सच्चाई से करना चाहिए। वह सरकारी हो, गैर सरकारी हो, और जो व्यक्ति टारू है यानी काम को टालने वाला है उसे भी भगवान धीरे धीरे टाल देते हैं। इसलिए जो अवसर मिले उसे पूरी ईमानदारी और सच्चाई से उपयोग करना चाहिए। एक बात देखते हैं कि लोग कहते हैं कि अब बुढ़ापा आ गई, अब हमारा से का हुई। अरे जीवन का तो असली आनंद बुढ़ापे में है। बेटा बेटी का शादी ब्याह कर दिए, आनंद से रहिए। कभी नाती छाती पर घूमेगा, कभी पोता पीठ पर चढ़ेगा, जीवन का आनंद लीजिए। जीवन के हर उम्र जो है उत्सव वाला है। विद्यार्थी जीवन में किताब पढ़िए, जीवन में आगे बढ़िए। कंपटीशन का टाइम है तो खूब कंपरेटिव किताबों को पढ़िए और जीवन को बेहतर बनाइए। जीवन में जो भी अवसर मिलता है उसे उत्साह और खुशी से यदि आप निर्वहन नहीं करते हैं तो यह जीवन जो है नीरस हो जाएगा, आपका जीवन अवसाद से भर जाएगा, तनाव से भर जाएगा, दूसरे के अलावा अपने शरीर अपने स्वास्थ्य के बारे में ज्यादा चिंतित रहे। पूरा समय सभी को दे लेकिन 30 से 40 मिनट अपने शरीर पर अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे। इसी के साथ आपका संदेश मिला कार्यक्रम से हमें जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
1: तो श्रोताओं, ये रहा आज का संदेश मिला कार्यक्रम। यदि आप भी इस कार्यक्रम में अपना शिकायत, सुझाव, प्रशंसा या अपने विचारों को भेजना चाहते हैं तो आप भी भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा पता है रेडियो रिमझिम, बंजारी मोड़, गोपालगंज, पिन कोड 84 14 28, तथा व्हाट्सएप नंबर है 98527 88 291, और ईमेल आईडी है radiorimjhim@gmail.com। आप जिस माध्यम से अपने शिकायत, सुझाव या प्रशंसा या अपने विचारों को भेजना चाहते हैं उस माध्यम का उपयोग करके हम तक पहुंचा सकते हैं। तो फिलहाल इस कार्यक्रम से हमें भी दीजिए जाने की इजाजत। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम, जो हमेशा से कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
3: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
4: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67 666।
5: ओम नमः शिवाय।
6: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
5: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
6: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
5: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
6: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
5: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
6: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
5: बुकिंग नंबर 91555485507 या 91629335388।
6: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
5: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
6: बोलबम, हर हर महादेव।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
8: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
9: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
8: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
9: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलता पूर्वक किया जा रहा है।
8: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
5: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
5: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
6: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
6: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
5: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
10: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
11: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
12: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
13: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
12: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434068 पे।
14: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
15: और

0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है। कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
2: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710-30-92 या 90765-65750।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
6: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमरीका ने कहा होर्मूज जलडमरू मध्य सभी जहाजों के लिए खुला और अमरीकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज़वरेव का मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। ये बयान अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमरीकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमरीकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। उन्होंने कहा कि ईरान का होर्मुज जलडमरू मध्य पर कोई नियंत्रण नहीं है और सुरक्षित पारगमन मार्ग खुले हैं। इससे पहले ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला करने और उसे आग लगाकर चालक दल को जहाज छोड़ने के लिए मजबूर करने के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हवाई हमले किए। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फुकवाक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन होंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। इन 14 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई अस्वीकार्य है। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बयान में इसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है।
2: इन बयानों में 12 जुलाई 2016 को हेग में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के तहत स्थापित न्यायाधिकरण के मध्यस्थता निर्णय का जिक्र किया गया है। उन्होंने इस ऐतिहासिक निर्णय को अंतिम और कानूनी रूप से बाध्यकारी बताया है। हालांकि चीन ने इस निर्णय को खारिज करते हुए इसे अमान्य बताया। उसने कहा कि इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। चीन ने दोहराया कि वह इसे ना तो स्वीकार करता है और ना ही मान्यता देता है। एक वर्ष पहले विवादित जल क्षेत्र में तनावपूर्ण गतिरोध के बाद दक्षिण चीन सागर तनाव का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहाँ चीन और फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान के बीच बार बार क्षेत्रीय गतिरोध होते रहते हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देशभर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया।
3: कार्यक्रम के दौरान जन भवन की नक्षत्र वाटिका में कुल 29 चंदन के पौधे लगाए गए। पौधारोपण अभियान में जन भवन के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ बालिका गृह की लड़कियों ने भी हिस्सा लिया। इस अभियान में कई मंत्रियों और जन प्रतिनिधियों के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों, विभिन्न विभागों के लोगों, विद्यार्थियों और आम जनता ने भी भाग लिया। ये अभियान राज्य के 75 जिलों में चलाया गया। राज्य ने इस वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 5 करोड़ से ज्यादा पौधे भी लगाए। उत्तर प्रदेश में इस साल अब तक कुल 40 करोड़ 29 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। यह अभियान 27 विभागों के आपसी सहयोग से चलाया गया, जिसमें वन विभाग ने 15.5 करोड़ पौधे लगाने का सबसे बड़ा लक्ष्य पूरा किया। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से रेशमा तिवारी।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्य भर में 21 लाख पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
4: जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, जलवायु संकट गहराएगा और ये नुकसान 2100 तक बढ़कर जीडीपी में जो कमी हो रही 20% तक पहुंच सकता है। आप कल्पना कीजिए क्या होगा। ये आर्थिक संकट इतना बड़ा होगा कि इसको मुकाबला करना फिर कठिन हो जाएगा। और इसलिए वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम के 405 करोड़ रुपए की लागत से विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। हमारी संवाददाता ने बताया कि गृहमंत्री ने 2029 के चुनाव तक निर्वाचन क्षेत्रों में पौधे लगाने की गतिविधि को 20% तक बढ़ाने की दीर्घकालिक पर्यावरणीय रूपरेखा पर बल दिया।
5: गृह मंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने चीन के ओर्डोस में खेले जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। भारतीय महिला टीम ने 4x400 रिले में स्वर्ण पदक जीता, जबकि भाला फेंक में भारत के आनंद सिंह ने स्वर्ण और शिवम लोहाकरे ने कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय पुरुष टीम ने 4x400 रिले और महिला टीम ने 4x400 मीटर रिले में रजत पदक जीते। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का फाइनल मुकाबला इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव के बीच जारी है। इससे पहले चीन की गुआओ हानयू ने और फ्रांस की क्रिस्टीना मिलाडेनोवा की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब जीता। उन्होंने फाइनल्स में कनाडा की गैब्रियला डाब्रोवस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी को 6-3, 7-5 से पराजित किया। उधर लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट में 457 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में तीसरे दिन इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 23 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन बनाकर घोषित कर दी। इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन की बना सकी। सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक की सीमित समस्या संबंधी दावे का खंडन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर वायरल फर्जी तस्वीर में ऐसा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किया जा रहा E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप है। निर्धारित मानकों के अनुरूप होने पर इथेनॉल और पेट्रोल पूरी तरह से घुलनशील हैं। नई पीढ़ी के प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधारों के विषय पर 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन कल से मेघालय के शिलांग में शुरू हो रखा है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा मेघालय सरकार इसका आयोजन कर रखे हैं। ये सम्मेलन देश भर के नीति निर्माताओं, प्रशासकों, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और शासन से जुड़े लोगों को एक मंच पर लाएगा ताकि वो लोक प्रशासन और डिजिटल गवर्नेंस के भविष्य पर चर्चा कर सके। सम्मेलन में 300 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने निर्माण क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल तकनीक अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के 172वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी भवन या संरचना के निर्माण के दौरान उसकी मजबूती से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से

0: श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। वो नरेंद्र मोदी ऐप या माई गॉव ओपन फोरम के माध्यम से भी ऑनलाइन अपने सुझाव दे सकते हैं। नागरिक 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर और SMS से प्राप्त लिंक का अनुसरण करके सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भेज सकते हैं। आगामी एपिसोड के लिए सुझाव इस महीने की 24 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया मंगलवार को देश भर में लगभग 668 करोड़ रुपए लागत वाली 7 कर्मचारी राज्य बीमा ESI स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमरीका ने कहा होर्मुज जल डमरू मध्य में सभी जहाजों के लिए खुला और अमरीकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में अंडर-23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
2: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
3: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
6: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
7: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
6: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
7: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
6: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
7: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
6: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
7: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
8: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
9: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
7: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH-27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
7: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH-27, गोपालगंज।
7: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
10: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
11: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है।

0: और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, Jio, Airtel, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
1: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
0: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034-48652 पे।
4: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
5: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
4: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
6: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। उत्पाद अवर निरीक्षक की परीक्षा हुई शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न। अलग अलग मामलों में 25 गिरफ्तार आरोपियों को भेजा गया जेल। सड़क सुरक्षा को लेकर DM ने की खास बैठक। पुलिस अधीक्षक ने भी क्राइम मीटिंग में अधिकारियों को दिया स्पष्ट संदेश। जेल में कैदियों को दी गई कानूनी जानकारी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। आज जिले के 4 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तथा कदाचार मुक्त वातावरण में मध्य निषेध अवर निरीक्षक की प्रारंभिक परीक्षा को प्रशासन ने संपन्न कराया। इसको लेकर सभी परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के परिधि में BNSS की धारा 163 लागू किया गया था। इस दौरान भीड़ जुटाने, मटर गश्ती करने, फोटो स्टेट की दुकानों को खोलने और मोबाइल सहित इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के इस्तेमाल को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया था। परीक्षा केंद्र के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे और उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी की जा रही थी। लगातार DM और SP ने भी इसकी मॉनिटरिंग की और वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर अलग अलग मामलों में आज लगभग 25 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इसमें मुख्य रूप से मोहम्मदपुर थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में 5 प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपियों में बिक्की राम, सनोज राम, ये दोनों हरेंद्र राम के पुत्र हैं, नरेंद्र राम ये सजावल राम के पुत्र हैं और 2 महिला हैं। इन सभी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। ये लोग मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के पकड़ी गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। सिद्धवलिया थाना की पुलिस ने भी चिटिंग के मामले में एक प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी रूपेश कुमार पंडित, जो सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के सरया पहाड़ गांव का निवासी है। इस पर पुलिस ने 2025 में चिटिंग का केस दर्ज किया था। अब इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बैकुंठपुर थाना की पुलिस ने भी चीटिंग के मामले में फरार चल रहे आरोपी विक्रम कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया। यह सोनवलिया थाना बैकुंठपुर के हीरा लाल यादव का पुत्र है। इसे भी आज पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इधर थामे पुलिस ने देशी शराब के साथ एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर विदेशी टोला राहिलपुर में पुलिस ने छापेमारी की और महिला आरोपी, जो सेमरा पूरब टोला की प्रमिला देवी है, इन्हें 11 बोतल देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। इधर पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर सभी थाना अध्यक्षों के नेतृत्व में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें कुचायकोट पुलिस ने भी अलग अलग मामलों में कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कुचायकोट थाना की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास में फरार चल रहे एक प्राथमिकी अभियुक्त बिट्टू महतो को गिरफ्तार किया, जो अमवा विजयपुर थाना कुचायकोट के राजा लाल महतो का पुत्र बताया जा रहा है। इस आरोपी पर भी मामला दर्ज था, इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जादोपुर थाना की पुलिस ने भी हत्या कांड के 3 प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी सोनू राय, राजकुमार राय, ये दोनों प्रभु राय के पुत्र हैं और एक महिला है। ये तीनों भोजली बलुआ टोला गांव के रहने वाले हैं, जो जादोपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। इन आरोपियों पर हत्याकांड का मामला दर्ज था, पुलिस ने आज इन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसी तरह से अलग अलग थाना क्षेत्रों से कुल लगभग 25 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें शराब की तस्करी और हत्या के प्रयास, SC/ST के मामले तथा अन्य कोर्ट के द्वारा जारी वारंट के आधार पर गिरफ्तारियां की गई थी। बताया जा रहा है कि NDPS के मामले में भी आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी। पुलिस ने 800 लीटर से अधिक देशी विदेशी शराब को भी जब्त किया और 99,500 रुपए वाहन चालान के रूप में अलग अलग अवैध वाहन चालकों से भी वसूल किया गया। जिलाधिकारी समीर सौरभ की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। इसमें सड़क हादसों में कमी लाने के लिए आवश्यक रणनीति बनाई गई। बताया जा रहा है कि ब्लैक स्पॉट को चिन्हित कर उसमें सुधार करने, हेलमेट और सीट बेल्ट को अनिवार्य रूप से पालन करने, ट्रामा रिस्पॉन्स को और तेज करने तथा सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्णय लिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि सड़क सुरक्षा के प्रति सभी लोगों को सजग रहने की जरूरत है। लोग सड़कों पर वाहन चलाते हुए यातायात नियमों का पालन करें। यातायात नियमों का पालन करने से सड़क हादसों में कमी आएगी और वाहन चलाने वाले भी सुरक्षित रूप से यात्रा करेंगे, साथ ही सड़क पर चलने वाले लोग भी सुरक्षित रूप से यात्रा कर सकेंगे। इसलिए जिला पदाधिकारी ने आम जनता से भी निवेदन किया कि लोग सड़क पर चलते समय यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करें। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें जिले के सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, सभी थानाध्यक्ष, अंचल पुलिस निरीक्षक तथा OP के थानाध्यक्ष और विभिन्न शाखाओं के भी प्रभारी पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान अनुसंधानकर्ताओं को निर्देशित किया गया कि हत्या, लूट, डकैती, आर्म्सेक, साइबर अपराध एवं अन्य गंभीर प्रकृति के कांडों का गुणवत्तापूर्ण वैज्ञानिक एवं समयबद्ध अनुसंधान सुनिश्चित करें। वैज्ञानिक साक्ष्यों के संकलन, तकनीकी विश्लेषण, अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी तथा समय पर आरोप पत्र समर्पित करने पर भी विशेष बल दिया गया। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि एक कांड में एक ही आरोप पत्र समर्पित करने की व्यवस्था का अनुपालन किया जाए तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में निर्धारित समय सीमा का 100% पालन सुनिश्चित करें। अपराध गोष्ठी में IGOT, ई थाना, PSM और विभिन्न पुलिस पोर्टलों की विस्तृत समीक्षा की गई। सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि इन पोर्टलों का नियमित उपयोग करते हुए लंबित प्रविष्टियों का समयबद्ध अद्यतन करें तथा उपलब्ध तकनीकी सुविधाओं का अधिकतम उपयोग कर अनुसंधान एवं पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी बनाएं। विशेष रूप से NAFIS पोर्टल पर योग्य अभियुक्तों के फिंगरप्रिंट की 100% प्रविष्टि तथा PSM पोर्टल पर दैनिक एवं मासिक अपराध प्रविष्टि समय पर अद्यतन करने का भी निर्देश दिया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में मंडल कारा चनावे में कैदियों के बीच नालसा के द्वारा जारी की गई SOP 2022 के मुताबिक जेल में कानूनी सहायता क्लिनिक के कार्यों के बारे में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसको संबोधित करते हुए पैनल अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार सिंह ने कैदियों को बताया कि जेल में स्थापित जेल कानूनी सहायता क्लिनिक को यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी कैदी को किसी भी चरण में कानूनी सहायता मिले, जेल में बंद व्यक्ति एवं अदालत के बीच की जानकारी की कमी को भी दूर करना, जेल में बंद व्यक्ति और वकील के बीच संवाद को सुगम बनाना, यह भी सुनिश्चित करना कि कोई व्यक्ति गैर कानूनी या अनावश्यक रूप से हिरासत में ना रहे। जेल में शरण लेने वाले कमजोर वर्गों, खासकर महिलाएं, युवा अपराधी, मानसिक रूप से बीमार और विदेशी नागरिक या दूसरे राज्यों के लोग आदि की खास जरूरतों पर भी ध्यान देने का निर्देश दिया गया। इसको लेकर विभिन्न तरीके की कानूनी जानकारियां कैदियों को दी गई। इसके साथ साथ विधिक सहायता प्राप्त करने के तरीके, वैसे कैदी जिनके वादों में अधिवक्ता नहीं है या जो कैदी अपना अधिवक्ता रखने में सक्षम नहीं है, वे सभी कैदी अपना आवेदन मंडल कारा स्थित लीगल एड क्लिनिक में मुफ्त अधिवक्ता हेतु आवेदन दे सकते हैं। इसके पश्चात उनका आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकार को प्राप्त होते ही लीगल एड डिफेंस काउंसिलिंग के द्वारा उन्हें अविलंब मुफ्त विधिक सहायता का कार्य सुनिश्चित किया जाता है और वे अधिवक्ता उनके वादों में पैरवी करना शुरू कर देते हैं। ये सभी बातें कैदियों को विशेष रूप से जानकारी दी गई। कुचायकोट थाने में आने वाले पंचायत चुनाव को लेकर शांति समिति की बैठक की गई और सभी जनता से आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में पंचायत चुनाव में हिस्सा लेने की अपील की गई। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना के द्वारा राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस के अवसर पर तकनीक और नवाचार से मत्स्य किसानों का सुदृढ़ीकरण विषय पर किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। बक्सर जिले के 58% मत्स्य पालकों ने इसमें हिस्सा लिया। इसमें 3 महिला मत्स्य पालकों की सक्रिय सहभागिता विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। कार्यक्रम का उद्देश्य मत्स्य किसानों को आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों, उन्नत मत्स्य प्रबंधन पद्धतियों तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान कर उनकी उत्पादन क्षमता एवं आय में वृद्धि करना बताया जा रहा है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में एक महिला को सरकारी कागज में मृत दिखाकर जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे अपराधियों को अब तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। इस मामले में पीड़ित जिंदा महिला प्रमिला कुंवर का कहना है कि अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। अपराधी फर्जीवाड़ा कर उनके जमीन को हड़पने की कोशिश कर रहे थे। जानकारी होने के बाद उन्होंने थाने में मुकदमा दर्ज कराया। बताया जा रहा है कि आरोपियों पर लगभग आधा दर्जन फर्जीवाड़े के मुकदमे पहले से दर्ज हैं और उन्होंने भी 14 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। उसमें से अब तक पुलिस ने एक भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया है। नगर थाना क्षेत्र के कुकुरभुका जीन बाबा के पास एक सड़क हादसा हो गया जिसमें पैदल जा रही एक महिला को तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने जोरदार टक्कर मार दी जिससे महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है घटना के बाद महिला के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और महिला के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। इधर गोपालगंज शहर के मॉडल सदर अस्पताल के पार्किंग से एक मोटरसाइकिल की चोरी कर ली गई। बताया जा रहा है कि इलाज कराने आए एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली। पीड़ित हरखुआ मोहल्ले का रहने वाला बताया जा रहा है। अब उसने पुलिस को आवेदन देकर सहायता की गुहार लगाई है। और आज के मौसम का तापमान, गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। उत्पाद अवर निरीक्षक की परीक्षा हुई शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न। अलग अलग मामलों में 25 गिरफ्तार आरोपियों को भेजा गया जेल। सड़क सुरक्षा को लेकर डीएम ने की खास बैठक। पुलिस अधीक्षक ने भी क्राइम मीटिंग में अधिकारियों को दिया स्पष्ट संदेश। जेल में कैदियों को दी गई कानूनी जानकारी। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: नमः शिवाय।
8: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
7: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
8: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
7: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
8: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
7: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
8: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
7: बुकिंग नंबर 91555485507 या 9162933538।
8: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
7: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
8: बोलबम हर हर महादेव।
9: ठक ठक।
10: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
11: अच्छा मिला ही नहीं
10: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
12: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
10: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
12: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
13: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
12: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
13: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
12: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
14: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
15: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
14: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
15: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
14: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान लिया।
15: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
16: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
14: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
17: इन पलकों में कैद कुछ सपने हैं, कुछ बेगाने, कुछ अपने हैं। न जाने कैसी कशिश है इन ख्यालों में, न जाने कैसी कशिश है इन ख्यालों में। कुछ लोग दूर होकर भी कितने अपने हैं। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर आज कई सालों पहले जो गाने हमसे छूट गए थे उन्हें हम वापस लेकर के आ रहे हैं आपकी जिंदगी में। मैं लेकर के आई हूँ आज सुपरस्टार शशि कपूर जी के कुछ चुने हुए गाने। सुपरस्टार उस समय भी थे, सुपरस्टार आज की तारीख में भी हैं। मुझे नहीं लगता है जितनी फैन फॉलोइंग शशि कपूर जी की हुआ करती थी उतनी फैन फॉलोइंग किसी और हीरो की या स्टार की रही होगी आज तक। इनफैक्ट मैं कहूंगी कि कपूर खानदान के सबसे हैंडसम मेंबर रहे हैं शशि कपूर जी, जिन्होंने उनके टाइम की सारी हीरोइंस के साथ काम किया है, जिनके चेहरे की मासूमियत और अदाएं इतनी लाजवाब थी कि 60s से लेकर के 80s तक उन्होंने हर किसी के दिलो दिमाग पे राज किया है। क्या आपको पता है आम जनता तो हर किसी की फैन हो जाती है, लेकिन एक बॉलीवुड हीरोइन थी जो कि शशि कपूर जी की मैड फैन हुआ करती थी, आज भी है। बताऊंगी आपको इनके बारे में कि कौन है ये कुछ ही देर के बाद वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर। फिलहाल जो मोहब्बत हम सभी लोगों को रही है शशि कपूर जी से, उसी के नाम मोहब्बत बड़े काम की चीज, त्रिशूल फिल्म से गाना।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, और आज के इस शो में हम बात कर रहे हैं उस शख्सियत की जिनकी की कई सारी लड़कियां बिल्कुल पागलों की तरह फैन हुआ करती थी, और उन फैन में से एक थी हमारी खुश मिजाज शबाना आजमी जी। जी हाँ, आप विश्वास नहीं करेंगे, एक समय ऐसा था जब शबाना आजमी जी अपनी पॉकेट मनी बचाया करती थी। तब तक वो हीरोइन नहीं बनी थी, तो अपने पॉकेट मनी के पैसे बचाया करती थी और शशि जी के पोस्टर्स खरीद के उन्हें अपने कमरे में लगाया करती थी। इनफैक्ट लंबी लंबी लाइनों में खड़ी हुई है शबाना आजमी जी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो शशि जी का ऑटोग्राफ लेना चाहती थी। आज तक भी शबाना आजमी जी मानती हैं कि उस जमाने में वो अपने बैग में शशि कपूर जी की तस्वीरें लेकर के घूमा करती थी और स्कूल कॉलेज में जा करके अपनी किताबों के अंदर उनकी तस्वीरें देखा करती थी। एक मूवी आई थी जिसमें शबाना जी को शशि जी के ऑपोजिट कास्ट किया गया था और शबाना जी एक सीन के दौरान रो पड़ी थी। क्यों रोई थी और कौन सी थी ये फिल्म, याद दिलाऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
2: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
3: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0975-6575।
5: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
4: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स। BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
3: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
4: RR मोड SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड के पास कुचायकोट,
3: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
4: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान
3: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
4: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
3: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
4: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
3: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
6: वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। शशि कपूर जी को आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे शो पर, उन्हीं के कुछ बेहतरीन सुपरहिट गाने लेकर के आई हूँ आज मैं आपके लिए। शबाना आजमी जी शशि कपूर जी की बहुत बड़ी फैन हुआ करती थी, इनफैक्ट इतनी बड़ी कि एक गर्ल क्रश सा था शबाना जी को शशि कपूर जी पर। फिर मानिए किस्मत कुछ ऐसी रही कि शबाना जी को शशि जी के ऑपोजिट एक रोल मिल गया। फिल्म का नाम था फकीरा। इस फिल्म का एक गाना था दिल में तुझे, जिसके रिहर्सल्स पे जब डांस डायरेक्टर ने डांस मूव्स बताए तो हमारे शशि कपूर जी को तो ये डांस मूव्स बड़े अच्छे लगे, लेकिन शबाना आजमी जी बेहद नर्वस हो गई शशि जी के सामने डांस करने में। इतनी ज़्यादा नर्वस हो गई कि उन्होंने रोना शुरू कर दिया। इस पर शशि जी आए, शबाना जी के साथ में बैठे, कुछ स्टेप्स उन्होंने खुद शबाना जी को सिखाए और कुछ स्टेप्स कोरियोग्राफर से कह करके बदलवा दिए और तब जाकर के ये गाना इन दोनों ने साथ में शूट किया। मुझे लगता है तब जो प्यार शबाना जी का था शशि जी के लिए वो थोड़ा और ज्यादा बढ़ गया होगा, है कि नहीं। फिलहाल सुनते हैं अगला गाना वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर, और मैं बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद कि एक्टिंग तो लोगों ने शशि कपूर जी से करवाई ही, लेकिन उन्हें एक्टिंग छोड़ के कुछ और ज्यादा पसंद था फिल्म इंडस्ट्री में। क्या था वो जानने के लिए स्टे ट्यून्ड।
7: तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किसी में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं।

देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं जाना है तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किसी में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम।

देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं जाना है तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर वेलकम बैक। और आज हम बात कर रहे हैं शशि कपूर जी के बारे में। जैसा मैंने कहा था, कपूर खानदान के वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम मेंबर शशि कपूर जी के बारे में। शशि जी एक्टिंग की दुनिया में तो नाम कमा चुके थे, पर एक्टिंग के साथ उन्होंने डायरेक्शन और प्रोडक्शन में भी अपना हाथ आजमाना चाहा था। उनकी पहली फिल्म एज अ डायरेक्टर अमिताभ बच्चन जी की अजूबा थी। अमिताभ जी का कहना था कि शशि जी इतने स्ट्रिक्ट डायरेक्टर थे कि वो एक छड़ी अपने साथ में रखा करते थे ताकि जो भी मिसबिहेव करे उन्हें उसी समय एक फटकार, एक मार पड़ ही जाए। अजूबा एक इंडियन और रशियन कोलैबोरेशन थी। फिल्म की पूरी क्रू रशियन थी और शूटिंग भी रशिया के कुछ हिस्सों में हुई थी। बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होने के कारण ये फिल्म पैसे तो नहीं कमा पाई थी, लेकिन उसके बाद शशि जी और अमिताभ बच्चन जी का बॉन्ड इतना अच्छा हो गया था कि वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थे। और उनकी दोस्ती हमने फिल्म कभी कभी, दीवार और नमक हलाल जैसी सुपरहिट फिल्मों में तो देखी ही। लेकिन क्या आपको पता है, आज के जमाने में कुछ ऐसी हरकतें हैं जो अक्षय कुमार दिखाते हैं, जो हूबहू वैसी ही हैं जो उस समय शशि कपूर जी की थी। क्या है ये हरकतें, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर।

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंद स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
6: वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। शशि कपूर जी को हम कैसे जानते हैं? कुछ सीरियस रोल्स के जरिए जानते हैं, कुछ बेहतरीन गानों के जरिए जानते हैं, कुछ अमेजिंग लव स्टोरीज के जरिए जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, शशि कपूर जी अपने ज़माने के सबसे बड़े प्रैंकस्टर भी हुआ करते थे। अक्षय कुमार आज की तारीख में इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में फेमस है चीज़ें इधर की उधर करने के लिए। अगर आप उनके साथ बैठेंगे तो कभी वो आपकी घड़ी चुरा लेंगे, कभी आपका बैग गुम कर देंगे, कभी आपके हाथों में रखे हुए पेपर गायब हो जाएंगे। किसी को पता नहीं चलता कि अक्षय कुमार ये करते कैसे हैं। शशि जी भी कुछ ऐसा ही किया करते थे, उनके लिए जैसे मानो ये पास टाइम टाइप का था। इसलिए सारी की सारी हीरोइनें इनसे दूर रहा करती थी सेट्स पे। सारी हीरोइंस का कहना था कि हम स्क्रिप्ट लेके जब भी शशि जी के साथ में बैठते हैं, कुछ देर हम स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, उसके बाद में जैसे ही स्क्रिप्ट को बाजू टेबल पे रखा, शशि जी उसे गायब कर देते हैं। बस उसके बाद में आधे घंटे तक ढूंढते रहो कि स्क्रिप्ट आखिर गई कहाँ। वैसे हमारे यही मस्त मौला शशि जी के गाने बड़े रोमांचक रोमांटिक हुआ करते थे। ऐसा ही एक और गाना वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर सुना रही हूँ मैं।

0: कैसा लगा आपको ये एपिसोड हमें जरूर बताइए। चलिए तो मैं यहाँ से विदा लेती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते कुछ ऐसे ही किस्से कहानियाँ और आपके पसंदीदा कानों के साथ।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
2: ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाएं।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साथ खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: ओ मेरी चांदनी, तू मेरी चांदनी।
1: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: संसार से सुनर सिंगार सहज सुहाला, तू जब ताके लो तो तुहसे मोहब्बत हो जाए।

0: प्राण ले बु
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: अगर आप लोग इन फ्यूचर किसी भी एयरलाइंस की सस्ती टिकट लेना चाहते हैं, तो हमारे वेबसाइट त्रिमूर्ति ट्रैवल.com पर विजिट करें।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।
1: कहो साली जी, कहाँ की तैयारी बाहो?
2: रहो न जीजा, मैंने तैयार ना होके।
1: ओहो,

0: बजे जा बुझने।
1: अच्छा तो चला।
2: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: Jab phone ghunte bajte hai to kehte hain hello.
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
7: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 में।
6: सलामुअलैकुम।
7: वालेकुम अस्सलाम।
6: कैसे समाचार?
7: मेरा ठीक है, आप अपना बताइए।
6: हम भी ठीक है सर, पानी तो हो रहा है।
7: बारिश हो रहा है।
6: हाँ, कोई नहीं कहता है कि गर्मी लग रहा है।
7: अच्छा,
6: हाँ ठीक है सर। और सब सुनाइए।
7: और सब तो ठीक है।
6: सब ठीक है, ठीक है, मालिक करे जी सब कोई ठीक रहे। हाँ, कुली का गाना हमको सुना दीजिए।
7: गाना बता दीजिए, कौन सा?
6: सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं।
7: अच्छा, और कौन, किसी को सुनाना भी है?
6: हाँ सुनिए, और पूरा रिमझिम परिवार के सब लोग सुने।
7: अच्छा चलिए फिर, ठीक है, गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4।
6: ठीक है, ठीक।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेमजी 90.4
0: एफएम पे। बोल रहे हैं कैमरा से।
1: क्या हाल चाल है आपका?
0: ठीक बना ना?
1: हाँ, हमने भी ठीक बानी सन।
0: चलिए, ठंडा बाद आज के पानी भर रहा है।
1: पानी तो अभी होता है जा
0: ना, हमारे यहाँ पे अभी नहीं क्या हो, लेकिन हो सब होता जुम्मा बाद हुई। सब ठीक बा घर के?
1: हाँ, हमने फिर ठीक बानी। वो बताए रोवर ठीक बानी ना?
0: हाँ ठीक बानी, हम सब ठीक।
1: तो बताए कौन गाना सुने आज?
0: कौन बाकी कव्वाली छोड़ के कहा सुनी लो?
1: तो बता दी कव्वाली में बहुत अच्छा तो बताए।
0: अपना मुंह से सुनाओ बढ़िया होगा।
1: चले फिर गाना प्ले करते नहीं, सुनाते रहेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
0: ठीक है।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन गिनते बजते हैं तो कहते हैं hello, hello, hello, hello, hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: हेलो, नमस्कार।
5: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM
6: के लिए। दिल से धन्यवाद है भारती जी को। और सब सुनाइए, कैसे हैं?
5: हम तो अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं?
6: मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मैं रामविलास प्रसाद को बोल रहा हूँ, त्रिपुर बघापुर भी चंपारण से जी। और मौसम कैसा है उधर?
5: तो मौसम अभी ठीक है, बारिश हो रहा है अब।
6: जी यहाँ पर तो सुबह में बारिश हुई है लेकिन अभी मौसम सुहाना बना हुआ है। और सब घर परिवार में अच्छा है?
5: हाँ हाँ, सब कोई ठीक है। आप बताइए आप सब कैसे हैं?
6: जी जी, सब कोई अच्छा है यहाँ पर भी।
5: तो क्या हो रहा है अभी?
6: जी अभी तो काफी कोयल जैसी मधुर आवाज सुनकर बातें कर रहा हूँ, साथ में दुकान भी चल रहा है।
5: अच्छा
6: जी,
5: कौन सा गाना सुनना है आपको आज?
6: जी फिल्म का नाम है फूल और कांटे, और गाने का बोल है तुमसे मिलने को दिल कर रहा है।
5: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
6: जी सबसे पहले भारती जी आपको सुनाना चाहता हूँ, और दोस्त लोग संजय, साजिद, दीपक कुमार दास जी, रामचंद्र मिंजा जी, अंचल कुमार, कंसराज जादू जी, पारसनाथ कुशवाहा जी, नगीना प्रसाद कुशवाहा जी, धनलाल प्रसाद कुशवाहा जी, राजा बाबू, गुरुदास का भाई कुमार, सुधीर कुमार, अजय कुमार, आयुष कुमार, राजा कुमार, उदास कुमार, सोनू कुमार, बबसर वहाजी, रविशा प्रसाद कुशवाहा जी, और गोपालगंज जिले के संतरा कुशवाहा जी, काजल जी, गुड़िया जी, नेहा जी, मुस्कान जी, उदिता जी, सुजीता जी, सूर्यमोहन जी, नवीन सिंह जी, जितेंद्र जमी जी, दिलीप राम जी, राम कुमार पांडे जी, और अभी रेडियो रिव्यू सुन रहे सभी श्रोता बंधु को सुनाना चाह रहा हूँ।
5: जी जी बिल्कुल, तो फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
6: धन्यवाद।

0: नमस्ते मैडम जी।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
0: गोपाल बोल रहा हूँ, ग्राम कसवासा जिला गुना से।
1: जी जी, क्या हाल चाल है आपका?
0: बढ़िया है। अभी तो क्या है, खेत पर जा रहे हैं, अभी तो मक्का लगा रखी है।
1: अच्छा,
0: और क्या?
1: चलिए बढ़िया है। तो कौन सा गाना सुनना है आज?
0: गाना सुनवाई दिल है तुम्हारा फिल्म।
1: और सॉन्ग कौन सा है?
0: एक मस्ताना मौसम है रंगीन नजारा, धड़कन क्या कहती है, जरूर इतना नलका है नीचे बाज में। और क्या गाना
1: बता दीजिए।
0: कैमरे है सुनील साहू जी, ज्योति साहू जी है, मांगलाल धागड़ जी है, और आपके लिए भी है जी दीदी।
1: ओके
0: जी, प्ले कर दीजिए।
1: फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4।

0: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
1: Now pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
3: The phone ring, they touch the head, to get it.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029994911। जी हाँ, 80029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो,
6: नमस्कार जी।
5: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: कॉल तो लगाते लगाते तो अभी लगा है।
5: अच्छा,
6: हाँ जी, बराबर हमारा कॉल लास्ट में लगेला।
5: कोनो बात नहीं के कबू लागल न लाग गई न
6: लागल वाला गाना तो बजाते नहीं होगा
5: ना। ना अब जितना अथी कॉल रहला सब बाज गेल बा।
6: सिल्वर आदि गाना बोल रहे हैं।
5: अच्छा,
6: हाँ जी,
5: तो कल तो बजू है।
6: कल तो बजल बा,
5: सुनले नहीं की
6: नाइट वाला ड्यूटी हो गई है तो ना सुन पहले ही गाना बजाए, 5 बजे आज बजे फिर ही गाना आज सुन लिया।
5: अच्छा, कौन सा गाना सुन बता दी?
6: देश प्रेम गाना कहीं बढ़िया बजा दी।
5: कौन सॉन्ग रघु बता दी थी?
6: अच्छा, रघु बजा ली अपने पसंद से, कहा पता कहा बजाई कल को सुन ले।
5: अच्छा ना, रघु लोगों की पसंद से बजाए नहीं, बस थोड़ा गाना अच्छा हो के जाएगा। और
6: देश प्रेम जो नहीं बताओ
5: उन्हें के कौन सा सॉन्ग मैंने वहाँ ने तो बहुत
6: सॉन्ग तो बाटे तो वही मैं आठा कौन दिए तो बजा दे।
5: अच्छा,
6: भोजपुरी है। आज 5 बजे तक बजा दे, आज 5 बजे उनके बानी का टाइम बाहर
5: लेके। अच्छा, और गाना क्योंकि सुना होगा
6: रेडियो में जितना लोग सुना था सबके पहले रघु खतरा बाकी और सब अपने बाल सुन लीजिए अपन कहा भेजवा सुन रहे बढ़िया गाना भोजपुरी बजा दे। और इस
5: ठीक गाना प्ले करते नहीं सुनते रहे सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
1: नमस्ते जी। नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मैं सुधीर पाल बोल रहा हूँ, कोहरिजमुआ जिला देवघर झारखंड से मैम।
0: क्या हाल चाल है आपका?
1: हाल चाल ठीक है मैम। उधर का मौसम कैसा है, बारिश हो रही कि नहीं?
0: बारिश तो हो रहा है इधर।
1: हाँ, इधर भी हो रही है बारिश में।
0: चलिए सब तो बढ़िया है, ये लग रहा है चारों तरफ हो रहा है।
1: हो रही है जी, चारों तरफ हो रही है बारिश।
0: तो
1: आज सुना दीजिए मैम दुश्मन फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीत के बोल रहे बलमा सिपहिया आए रे तेरे दम्बुक से डर लागे, इस तरह के गीत के बोल रहे।
0: एक बार और बोल दीजिए।
1: बलमा सिपहिया।
0: ओके।
1: बलमा सिपहिया तेरे बंदूक से डर लागे, गियरा धक धक धक करे, ऐसे गीत के बोल रहे।
0: चलिए, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है
1: जी? सबसे पहले मैम आपको, सोनी मैम को और जो मनोरमा मैम है उनको और पूरे रेडियो के लिसनर है सभी को और कुछ फ्रेंड्स है, मदन कौल है, किशनो कौल है, राजकुमारी है, जुगल कौल है, कमली कौल है और जो आपके बिहार में जो है पुराने लिसनर्स है मन्नान भाई को, किस्मत राघव जी को, इन सब सारे साथियों को डेडिकेट करना चाहता हूँ
0: जी। चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: जी मैम।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग 90.4 FM में। नमस्ते मैम।
3: नमस्ते, कैसी है मैम?
2: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
3: हम भी ठीक हैं।
2: नाम बता दीजिए अपना।
3: मनीषा कुमारी।
2: क्या हो रहा है अभी?
3: अभी तो कॉल लगा रही थी।
2: हाँ,
3: लग रहा था कॉल नहीं लगे।
2: सब
3: लगाते लगाते तो लग गया।
2: चलिए, ऐसे अच्छा और क्या ही हो सकता है। तो
3: हो रही है?
2: हाँ, तो हो रहा है।
3: हाँ, इधर भी हो रहा है।
2: चलिए, सब दोनों तरफ हो रहा है और अच्छा है।
3: बारिश में नहा रही
2: लीजिए आप बारिश का आनंद। मेरी तरफ से भी थोड़ा और ले लीजिएगा, और इतना नहीं कि तबीयत ही खराब हो जाए।
3: तो सब बताइए, बढ़िया है ना? आपके घर में सब कोई ठीक है ना?
2: हाँ, मेरे घर सब कोई ठीक है।
3: चलिए, गाना सुनवा दीजिए।
2: बता दीजिए।
3: हम प्यार करने वाले, दुनिया को न डरने वाले।
2: ओके, और कौन किसी को देख देख दिया?
3: नया वाला सुनाइएगा।
2: ओके, कौन किसी को सुनाना भी है?
3: फरमाइश सुन लिया अपना बुधवार को दिन के।
2: हेलो, बढ़िया है, फिर सुन लिया। तो आज आता फरमाइश की तो आज नहीं तो कल फिर सुन लेंगे।
3: कल बजेगा?
2: हाँ।
3: चलिए, तभी सुनवा दीजिए तब।
2: ओके, फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
3: बाय मैम।
2: बाय।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजी 90.4 FM में।
0: जी गुड मॉर्निंग मैम।
1: गुड मॉर्निंग, नाम बता दीजिए अपना।
0: नाम है मेरा गुलशन साहिबा।
1: और कहाँ से हैं आप?
0: हम सिवान से हैं।
1: अच्छा जी, क्या हालचाल है आपका?
0: जी अलहमदुल्ला ठीक है, आप ठीक हैं?
1: तो मौसम उधर का कैसा है? बारिश हो रहा है उधर या नहीं?
0: मौसम बहुत ही अच्छा है, बारिश हो रही है।
1: तो लग रहा है ये चारों तरफ हो रहा है।
0: जी
1: भोजन हो गया?
0: जी नाश्ता हो गया, अब हो गया।
1: तो बता रही है कौन सा गाना सुनिएगा आज?
0: ये गाना नहीं है सही आ रहा, तू तो बदला नहीं हो, मौसम जरा सा रूठा हुआ है, वही गाना।
1: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट दिया है?
0: जी हम अपने हस्बैंड को सुना।
1: चलिए, तब तो बढ़िया है। ओके, फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रमजी 90.4 FM।
0: जी ओके, अल्लाह हाफिज।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
1: हेलो हेलो हेलो हेलो।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: नमस्ते मैडम जी।
5: नमस्ते,
6: कैसे है मैडम जी, नाश्ता हो गया?
5: हाँ हम तो ठीक है, नाश्ता भी हो गया है
6: जी।
5: आप बताइए, आप सब कैसे हैं और क्या हो रहा है?
6: मैं अच्छा हूँ, आपके पास फोन लगा रहा हूँ।
5: कौन सा गाना सुनना है आज?
6: गाना सुनना है दिल वाले
5: गाने के बोल।
6: एक ऐसी लड़की थी उसे प्यार करता,
5: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है
6: जी आपको। जितना रेडियो रिमझिम आगे है सुनते हैं सब, आदो सब सुनते हैं, तोता सबके साथ
5: जी। चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रेंजिंग 90.4 FM
6: जी। मैडम जी नमस्ते।
5: नमस्ते।

0: हेलो मैम, नमस्ते
1: जी नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: नमस्ते मौसम बा मैडम,
1: नाम बता दी पहले।
0: संतोष
1: जी, मौसम तो ना बारिश होता है बहुत ज्यादा।
0: यहाँ तो बहुत धूप है। भेज दीजिए उधर से बारिश, इधर भेज दीजिए, बहुत हम लोग गर्मी से परेशान है।
1: जाएगा जाएगा, जरूर जाएगा इधर से, अभी तो हो रहा है।
0: अच्छा जी,
1: तो कौन सा गाना सुनना है आज?
0: गाना मलपुआ वाला बजा दीजिए।
1: गाना सुने लाइक नहीं थे,
0: लाइक नहीं थे,
1: रेडियो को बजाए वाला नहीं थे।
0: अच्छा जी, तो राम लखन का गाना सुना दीजिए।
1: अच्छा चलिए ठीक बा, और गाना क्योंकि सुना होगा।
0: हाँ जी, सबसे पहले आपको सुनवाना है, बाद में परमात्मा को, बिजली को, धनजय को, और अपना पूजा सरोज का। बहुत रेडियो में जितना साथी है लोग तरह के हुआ।
1: चलिए ठीक है, गाना प्ले करते नहीं सुनते हैं सबके साथ रेडियो रंजन 90.4।

0: हो रहा है इधर अभी।
1: हाँ हम लोग तो बारिश नहीं हो रहा है लेकिन बादल है सुबह से,
0: यहाँ रात से ही बारिश हो रहा है।
1: आते आते ना। चलिए और सब, चलिए हम लोग भी ठीक है,
0: ठीक होना ही चाहिए।
1: आज तो जुम्मा का दिन है, आज तो हम लोग जुड़ेंगे तो जुम्मा बाद ही 1:30 बजे के बाद है। चलिए तो गाना बजा दीजिएगा, बीबी हो तो ऐसी मूवी का,
0: कौन सा सॉन्ग?
1: फूल गुलाब का, तुम्हें हजारों में एक चेहरा जनाब का। और सबसे पहले आप लोगों को सुनाना चाहते हैं और जितने रेडियो रेंजिंग सुनने वाले हैं सभी को सुनवाएंगे, और हम लोग रोशन टिकर में तनाव से आपके कार्यक्रम सुनते हैं, सभी लोग सुनेंगे।
0: चलिए ठीक है, गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रेंजिंग 90.4 FM।
1: जी धन्यवाद।

0: हेलो जी नमस्ते, मैं नेपाल बिहार संग्रामपुर बिहार से संजय कुमार का।
1: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 असम में।
0: चलिए इसके लिए धन्यवाद। खबर सुनाइए उधर का, हाल खबर सुनाइए। हमारे उधर तो बारिश हुआ था सुबह में।
1: इधर का भी हाल ठीक है
0: जी,
1: इधर का भी हाल खबर ठीक है और इधर भी बारिश हो ही रहा है अभी।
0: इधर बारिश हो रहा है, उधर छूट गया है लेकिन देखने में सब लोग लग गए।
1: चलिए फिर ठीक है।
0: धान का रोपाई आपके तरफ होता है कि नहीं?
1: क्या
0: बोल रहे हैं कि धान का रोपाई आपके तरफ होता है या होती है कि नहीं?
1: हाँ होता है मेरे यहाँ भी।
0: हाँ इसीलिए आपको तो बढ़िया लगता होगा वो देखकर।
1: बहुत ही
0: देखने में अच्छा लगता है क्योंकि हम लोग रोपाई होता है तो मिलता है हम लोग खाने के लिए धान चावल। इसलिए ठीक है सब। आज गाना सुना दीजिए हमें। तेरी मेरी दिल की मेरे बंधन हम दोनों अलजा, तेरी अंदर मेरी जान, मेरी अंदर तेरी जान। इसी संग सुना दिया जाए
1: और कौन किसी को डेडिकेट भी है?
0: डेडिकेट में सबसे तो पहले आपको रेडियो रंजीम संपूर्ण परिवार को दोस्त कुमार जी राम लक्ष्मण स्वामी दीपक दास दैवान ठाकरे मध्य प्रदेश ऐसी राजेंद्र यादव भारतीय संतला गौतम उत्तर प्रदेश मऊ से हमारे नाम से जाने पहचान तमाम विशेषकर को मधुबलिया को सलाह अधिकारी को पारस चौहान।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone ding ding bajti hai to kehte hain hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: नमस्कार जी।
6: नमस्कार।
5: और कैसे हैं भारती जी?
6: मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
5: बस ठीक है। भारती जी बोल रहे हैं ना? आजकल तो आवाज भी पकड़ना मुश्किल हो जा रहा है।
6: अच्छा जी।
5: हाँ,
6: सबका आवाज सेम ही लग रहा है।
5: हाँ सेम ही लग रहा है, थोड़ी सी की फर्क है बस।
6: अच्छा,
5: पकड़ में आ गया है आवाज की कैसे बोला जाता है।
6: हाँ।
5: सेम मिलते जा रहा है अब।
6: कोई नहीं, कोशिश तो हो ही रहा है कि मतलब और बेहतर किया जाए।
5: कोशिश करने वाले के हार कभी नहीं होती है, इतना तो पता है। कोशिश करो, जरूर काम हासिल होगा
6: जी। आप सबकी है दुआ साथ में।
5: बिल्कुल रहेगा, कुछ हम लोग का रहेगा, कुछ ऊपर वाले का रहेगा, मुकाम हासिल हो ही जाएगा।
6: बिल्कुल।
5: अब तो हेलो हेलो फरमाइश के लिए तो दिक्कत नहीं होती होगी, अभी भी हो रहा है?
6: नहीं नहीं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं
5: हो गया है।
6: हाँ।
5: तो गाना सुना दीजिए।
6: बता दीजिए कौन सा गाना सुनिए।
5: खेसारी लाल का गाना है और तोहरा बिना खाना पीना नहीं है, जान तीनों तोहरा, यही सुना दीजिए।
6: और कौन किसी को डेडिकेट दिया है?
5: बस आप लोगों के और जितने सुनने वाले हैं नाम से जानने वाले।
6: अपना नाम मेंशन कर दीजिए।
5: दनेश कुमार मिश्रा। अब आपके लिए नाम रखना पड़ेगा, अब इसमें भी आदत वही पड़ी है तो कम से कम पूछ लेना चाहिए ना पहले।
6: कई इसमें पहचान जाते हैं, उसमें अब नंबर से रहता है तो नहीं पहचान जाते हैं।
5: चलिए फिर सुना दीजिए।
6: ओके, फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए उसके साथ रेडियो।
5: चलिए।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 94 FM में।
0: गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग,
0: क्या हाल है?
1: मेरा ठीक है, आप अपना बताइए।
0: मेरा भी ठीक है। पहला कॉल है क्या? चलिए ठीक है, पहला कॉल पहला गया। पहचान रहे हैं क्या? कौन बोल रहे हैं?
1: गणेश।
0: चलिए ठीक।
1: तो क्या हो रहा है अभी?
0: कुछ भी नहीं, बारिश हो रही है।
1: यहाँ भी बारिश ही हो रहा है।
0: समझ नहीं है क्या?
1: आई है तो बता दीजिए, कौन सा गाना सुनेगा?
0: हिंदी बता दीजिए, कोई
1: बताइएगा तभी ना। हिंदी तो सॉन्ग बजा ही देंगे, लेकिन कौन सा?
0: बारिश वाला बजा दीजिए कोई।
1: बारिश वाला कोई भी सॉन्ग? ओके, और सॉन्ग किस डेडिकेट कीजिएगा?
0: आपको पूरा रेडियो।
1: ओके, तो फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029 94 911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाजत। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: उत्तर बिहार का गौरव,
2: सारण प्रमंडल की शान,
1: गोपालगंज की धड़कन
2: और अपने भाषा की पहचान,
1: रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
2: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: तू जतना खर्चा करेबू हम उतना खर्चा करब। ओकरा खातिर हम भागल ना हई। आ जदि हमरा के छोड़ के गइलू तो बुझ लीह
1: हम संतोष पागल नहीं।

0: अरे एक करे जा, जितना तुहरा से रात में बात कोइले बनी न उतना केहू और खाती जागल ना है। लेकिन जदि तू हमार दिल तुरलू तो बुझ ली हम
1: संतोष पागल नहीं।

0: खाली गर्जे वाला बादल ना हो आ जदि हमारा के छोड़ के गयलू तो बुझ लीह
1: हम संतोष पागल नहीं।

0: कि हम ग्रेड ए पोल नहीं पोल नियर खड़ा हो जाए।
1: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
2: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।
1: पापा मम्मी के लिए बेस्ट गिफ्ट, कारवा मिनी।
2: सारे गामा कारवा इस तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। कारवा क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूँ रुचि आपके साथ।
3: बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो जैना। जरा

0: अरे पूरा इंडिया हिली बाबू, खाली तू देखत जा। अरे पूरा इंडिया हिली बाबू, खाली तू देखत जा।
1: उत्तर बिहार का गौरव,
2: सारण प्रमंडल की शान,
1: गोपालगंज की धड़कन
2: और अपने भाषा की पहचान,
1: रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
2: सुनो दिल से।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
2: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
2: सुनो दिल से।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
2: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
2: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।